0: टीएमसी में तेज हुए वर्चस्व की जंग, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठे के बाद स्पीकर से मिले तृणमूल के बागी नेता, एनसीपीआई में विलय की कही बात, ममता गुट के सांसदों ने भी ओम बिरला को सौंपा ज्ञापन। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत, भारत इनोवेटिव समिट में पीएम ने भारत की तकनीकी बदलती हुई ताकत पर बात की। पटना में छात्रों के बवाल पर एक्शन, 5 नामजद समेत 500 के खिलाफ FIR, ट्रेन में देरी के कारण पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल, आंसू गैस के गोले छोड़े, IG को लगी चोट। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भीषण हादसा, कुएं में पिकअप वैन के गिरने से 8 लोगों की मौत, MP के मुरैना में ट्रेन की चपेट में आने से 4 यात्रियों की मौत। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा, दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट, ऋचा घोष और स्मृति मंधाना ने खेली तूफानी पारी। सत्रह जून को मोदी और ट्रंप की मुलाकात है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया, वहां राष्ट्रपति मैक्रों भी मौजूद थे। वहां पर पीएम मोदी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
1: ये दो शक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिखाती हैं दुनिया भर में भारत के दम को। फ्रांस के नीस में जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई तो नजारा ऐसा था, मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत बाहें फैला कर किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले लगे। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर दोनों ने भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है।
1: मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय निवेश को जोड़ने वाला मंच है, इससे भारतीय स्टार्टअप्स, युवा उद्यमियों और नए आइडिया को दुनिया के बड़े निवेशकों और विशेषज्ञों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर नई पहल शुरू किए हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है, और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं।
1: पीएम मोदी भारत की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र है, भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, ये स्टार्टअप्स भारत के साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में भी योगदान दे रहे हैं। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हर चुनौती नए मौके लेकर भी आती है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक जैसी कई नई तकनीकें आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगी। भारत में स्टार्टअप क्रांति चल रही है और देश के युवा नई सोच के साथ लोगों की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा इस बार बेहद अहम होने वाली है। विदेश नीति के लिहाज से बहुत अहम, अर्थनीति के लिहाज से और सैन्य नीति के लिहाज से भी। कई मोर्चों पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। ऐसे में ट्रंप और मोदी की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में और कुछ अहम उम्मीद लेकर भी आ रहा है।
3: तारीख 17 जून, जगह फ्रांस का इवियन शहर, वक्त शाम के 6:15। ये वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों और ईरान युद्ध के मद्देनजर पूरी दुनिया की निगाहें G7 के साथ साथ इस मुलाकात पर होंगी। पिछले साल फरवरी में वाशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप और मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। तब भारत और पाकिस्तान के तल्ख होते रिश्तों के बीच ट्रंप के बयानों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव आया है, खास तौर पर ट्रेड डील को लेकर। अब जबकि दोनों नेताओं की फ्रांस में मुलाकात तय हो गई है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर सहमति बनने जा रही है और ये दोनों देशों के रिश्तों में आने वाले सुधार के संकेत हैं। वैसे अभी हफ्ते भर पहले ही ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की बात फिर दोहराई थी और जल्द ही ट्रेड डील करने का ऐलान किया।
4: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
3: माना जा रहा है कि जब G7 बैठक के बाद मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो कई मुद्दे एजेंडे में रहेंगे। व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। कारोबार को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन किसी अंतिम समझौते के ऐलान की उम्मीद फिलहाल नहीं। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिले। रूस से तेल खरीदने से लेकर भारतीय जहाजों पर हमले जैसे कई मुद्दों पर खींचतान बढ़ी। ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान और रूस के साथ कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों को लेकर काफी संतुलित रवैया अपनाया है। भारत की जरूरतों और सोच को प्राथमिकता दी है और अपना साफ रुख पूरी दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका और यूरोप को कई बार भारत का ये रुख अखरा भी है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति और अर्थनीति को इस मुश्किल वक्त में और मजबूत बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट और ट्रंप से मुलाकात के बाद 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वो अतिरिक्त द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश में 27 के समर के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस ली है। उन्होंने बहराइच में एक रैली की। ओवैसी की यूपी में सक्रियता, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की पीडीए को असदुद्दीन ओवैसी डेंट करेंगे।
1: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव और इनके बीच अपनी सियासी जमीन तलाश थी AIMIM।
5: हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं, पूरी पार्टी तैयार है और देखिए गठबंधन भी होगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है।
1: ऐसे में सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी या फिर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
6: उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स करने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, उनके दल गलने वाले खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
1: उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए तो 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 फीसदी से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में हैं। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ाव में हुई चोरी के आरोपों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है जो हर आरोपों की जांच करेगी।
1: करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप सामने आते ही सियासत सुलग पड़ी, सैकड़ों सवाल उठे, विपक्षी हमले तेज हुए। अब राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन मामले की जांच तेज हो गई है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। इस एसआईटी का प्रमुख लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को बनाया गया है। साथ ही आईपीएस किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। हालांकि जांच के लिए एसआईटी के गठन के बीच विपक्ष का हमला थम नहीं रहा।
7: वोट लेते हो तो मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जब मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है।
8: योगी सरकार ने लगभग 100 से ज्यादा अब तक एसआईटी गठित की, एक भी एसआईटी का आज तक रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया कि किस एसआईटी में कौन दोषी पाया गया।
1: आरोप यह है कि मंदिर के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए चुरा लिए। ये मामला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि जिन कर्मचारियों के तनख्वाह महीने के 18 से 20,000 रुपए थी, उन्होंने करोड़ों की जमीन और प्लॉट खरीद लिए। यहीं से मामला खुला और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के अटकलों के बीच में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक बुलाई। अब बड़ी खबर यह रही कि इस बैठक में शिवसेना के 3 सांसद नहीं पहुंचे। हालांकि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता ने दावा किया कि लोकसभा के सभी 9 सांसद इस बैठक में मौजूद थे।
1: क्या टीएमसी में हुई बड़ी टूट का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिख सकता है? क्या ममता बनर्जी के बाद उद्धव ठाकरे को भी बड़ा सियासी झटका लग सकता है? दरअसल इन चर्चाओं को बल तब मिला जब ये बात सामने आई कि शिवसेना उद्धव गुट के कुछ सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। चर्चा इस बात की भी है कि उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद सियासी पाला बदलने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे का यह कदम उस बड़े मिशन का हिस्सा माना जा रहा है जिसका मकसद अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना और संसद में अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा करना है। इन अटकलों को तब और बल मिल गया जब उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सांसदों की बैठक बुला ली और खबर मिली कि इस बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे। लेकिन बैठक के बाद संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा के सभी 9 सांसद बैठक में थे, 4 खुद आए थे और 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
9: 4 सांसद बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थित रहे और हमारे 5 सांसद है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस मीटिंग में सहभागी हुए।
1: जब महाराष्ट्र की सियासत में यह खबर उड़ी कि शिवसेना यूबीटी में भी टूट हो सकती है तो संजय राउत ने हुंकार भरी।
10: कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
1: टीएमसी में टूट पहले ही ममता और पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई सियासी खेल होता है तो इसका।
0: अब बात देहरादून की जहां पर विकास नगर में हिंसा भड़क उठी। विकास नगर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। बवाल इतना बड़ा कि 2 समुदायों में झड़प हो गई। एक युवक की मौत हो गई जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया।

0: एक ओर मकान पर भीड़ पथराव कर रही है, दूसरी ओर घर के भीतर लपटे धधक रही हैं। देहरादून के विकास नगर के बैरागी वाला गांव में भारी बवाल मचा है। एक युवक की मौत के बाद ये उपद्रव मचा है।
1: इस वक्त हमारी मौजूदगी बैरागी वाला गांव में है, जहां आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। सीधी तस्वीरें आपको आज तक में दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है, आग के लपटे, हालांकि विस्फोट भी हो रहा है। आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था,
0: लेकिन लोगों का गुस्सा थमा नहीं। भीड़ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गई। इस बीच प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई और टीम आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गई।
2: सबसे पहले खेतों में पानी को लेकर जो हुआ, और बताया जाता है कि ये विवाद बीते कुछ दिनों से चल रहा था। यहाँ पर भारी भीड़ समय जो आरोपियों के घर पर पहुंच चुकी है और पुलिस बल भी तैनात है। बुलडोजर लगातार जो है वो एक के बाद एक जो आरोपी का घर है, जिसे इम्तियाज या फिर मासूम का बताया जाता है, वो तोड़ा जा रहा है।
0: दरअसल खेत में पानी लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था, जो इतने बड़े हंगामे में बदल गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कई लोग लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं।
3: कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा। भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे।
0: अब भारी बवाल और बुलडोजर एक्शन के बीच विकास नगर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस का एक्शन जारी है, आरोपियों की तलाश हो रही है। इस बीच मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। विकास नगर से टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, आज तक।
4: अब बात पटना में हुए बवाल की। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल हुआ। बड़ी संख्या में परीक्षा देने जा रहे छात्र स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। जब ट्रेन लेट हुई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ देर में स्टेशन पर पथराव, उपद्रव और बवाल शुरू हो गया। हालात बिगड़ते चले, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
5: देर रात छात्रों ने ट्रेन रोकी, नारेबाजी की, भारी हंगामा किया और देखते ही देखते छात्रों के इस गुस्से ने उग्र रूप ले लिया। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, पूरे स्टेशन पर अराजक स्थिति बन गई। स्टेशन पर काफी देर तक ऐसे ही बवाल जारी रहा। हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर उतराना पड़ा। यहां तक कि उपद्रव को काबू करने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ ट्रेन लेट होने को लेकर। बड़ी संख्या में छात्र बिहार पुलिस के मध्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे। इसके लिए छात्र पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमा हुए। जब ट्रेन देर हुई तो छात्र आक्रोशित हो गए और रेलवे ट्रैक पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। अधिकारियों की ओर से छात्रों को समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। अव्यवस्था से नाराज छात्र भड़क गए और कुछ ही देर बाद पत्थरबाजी करने लगे।
6: यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में जो आक्रोशित छात्र थे, जो नाराज थे कि ट्रेन समय से नहीं आई है, और उसके बाद उनका गुस्सा फूटा। और फिर देखिए किस तरीके से पूरे स्टेशन पर यहाँ पर रोड़ेबाजी की गई है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं रोड़ेबाजी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस पिकेट है, उसके शीशे यहाँ पर जो है वो तोड़े गए हैं, और जमकर रात भर जो है वो बवाल मचा रहा। और इन अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि समय पर ट्रेन नहीं चल रही है और इनकी परीक्षा जो है वो छूट जाएगी, और उसके बाद ये मांग कर रहे थे कि आज परीक्षा को ही जो है वो रद्द किया जाए।
5: पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए उपद्रव में कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर। बवाल के बाद स्टेशन पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है, साथ ही स्टेशन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: में हुए बवाल को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए।
7: छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई है, छात्रों ने भी पथराव किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनको परीक्षा देने जाना है, समय निर्धारित है, कोई व्यवस्था रेल की ओर से नहीं,

0: हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे नीट्स का हो, ये लगातार आम आदमी और आम बच्चे सफर कर रहे हैं, तो मरता क्या नहीं करता।
1: वहीं बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं कि छात्रों के हाथ में उपद्रव करने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी।
2: कुछ उपद्रवी तत्वों ने रेलवे ट्रैक जाम कर, पथराव कर और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपनी मंशा स्वयं उजागर कर दी। जब रेल प्रशासन ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी, उसके बाद भी हिंसा और हंगामा जारी रखना, यह साबित करता है कि उनका उद्देश्य परीक्षा देना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना था। भाजपा स्पष्ट रूप से मानती है कि मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं होता।
3: देखिए, छात्रों का अपनी सुविधा के लिए मांग उठाना बिल्कुल स्वाभाविक है और हमारी सरकार छात्रों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है, लेकिन अधिकार के नाम पर अराजकता को, तोड़फोड़ को और सरकारी संपत्ति के नुकसान को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
1: बंगाल के साउथ 24 परगना में एक शख्स को बच्चे चोरी के शक के आधार पर पीट पीट कर मार डाला गया। उसे रस्सी से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई।
4: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक शख्स को कुछ लोग मिलकर पीट रहे हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इस युवक को देखिए, रस्सी से किस कदर बांध दिया गया है इसे। पीटने वालों ने हैवानियत की हद पार कर दी है। तस्वीरें 24 साउथ परगना की हैं। यहाँ कुलताली इलाके में यह शख्स अपने किसी जानने वाले से मिलने आया था, मगर रास्ता भटक गया। इस शख्स को इन लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया और इसी शक में इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसे जानवरों की तरह रस्सी से बांधा गया और इतना पीटा गया कि इसकी जान चली गई। मारा गया युवक केरल का बताया जा रहा है। इस मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी जरूर हो गई, मगर इस तरह शक के आधार पर मार डालने की यह घटना दहशत पैदा करती है। प्रसेनजीत साहा, 24 साउथ परगना, आज तक।
1: बिंदु अकादमी चलाने वाले रोशन आनंद के भाई का शव नेपाल में मिलने से सनसनी मच गई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर के खोटल में मिला। प्रिंस के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। अब जांच हो रही है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई।
4: चीख पुकार मची है। घर में मातम पसरा है। लोग बिलख रहे हैं क्योंकि इस घर के एक नौजवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल में मिला है। देखिए, ये प्रिंस यादव की तस्वीर है। प्रिंस ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी चलाने वाले रोशन आनंद के भाई हैं। वही रोशन आनंद जिन पर खान सर की कोचिंग पर हमले का आरोप है। दरअसल फैजल खान के साथ विवाद में रोशन आनंद और उसके भाई प्रिंस यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। रोशन आनंद को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रिंस गिरफ्तारी के डर से नेपाल चला गया था। लेकिन आज नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल से प्रिंस यादव का शव मिला है। नेपाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घर में चीख पुकार मची है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
5: प्रिंस की मौत हो चुकी है। अब मौत के पीछे क्या कारण है ये अभी तो नहीं पता चल रहा है। मेरे परिवार से बहुत लोग गया है वहाँ।
4: प्रिंस यादव की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें आंख पर चोट के निशान दिख रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रिंस यादव की हत्या हुई। फिलहाल नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं फैजल खान की मुसल्लहपुर स्थित कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धीरज कुमार सिंह, सहरसा, आज तक।
1: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: जा रही है सूर्य देव की चाल। किसकी बढ़ेंगी मुश्किलें, कौन होगा माला माल। सूर्य देव के राशि परिवर्तन में देश दुनिया का कैसा होगा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
8: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर्स।
9: सो सॉरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एनसीपीआई में विलय को तैयार, टीएमसी के सांसद लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया संवैधानिक। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा, दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट, ऋचा घोष और स्मृति मंधाना ने खेली तूफानी पारी।

0: के साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आज की सुबह बेहद खास है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते का ऐलान कर दिया है। पहले 40 दिन की जंग, उसके बाद 110 दिनों का तनाव, और आखिरकार वो दिन आ गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौते की डील हो गई है, जिसके आधार पर बिना टोल के हॉर्मुज खोला जाएगा। साथ ही ट्रंप ने अब अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि कर दी है। इस शांति समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों को बधाई दी है, साथ ही उन देशों को भी बधाई दी है जिन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की शांति समझौते में, तुर्की के साथ, पाकिस्तान और वो तमाम देश। देखिए, ये वो सोशल मीडिया पोस्ट है, सभी को बधाई। इसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की मंजूरी देता हूं, अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तुरंत हटाने के आदेश देता हूं, दुनिया भर के जहाज अब अपने इंजन चालू कर लें, तेल का प्रवाह शुरू हो रहा है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। दोनों देशों के बीच जो समझौता है, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से दस्तखत किया जाएगा। इस बड़े घटनाक्रम को वैश्विक शांति ऊर्जा बाजार के लिए अहम माना जा रहा है। यानी बहुत संभव है कि जब आप सो के उठ रहे हों, ऊर्जा के बाजार में क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे गिरने लगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी भी तुरंत हटाने के आदेश दे रहा हूं। तो दुनिया भर में जिस खबर पर नजर थी, पश्चिम एशिया का वो संकट आखिरकार टलता नजर आ रहा है। सुप्रीम काउंसिल ने भी कहा कि अब इस समझौता हो चुका है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से शुरू हो रहा है। इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट में वो 172 किसान सफर करेंगे जिन्होंने इस हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन दी है। ये उड़ान परियोजना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत होगी। पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी। इस दौरान किसानों के साथ जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह मौजूद रहेंगे। सभी यात्री लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। तो जेवर एयरपोर्ट इंडिगो की पहली फ्लाइट है, 172 इसमें मुसाफिर होंगे, और ये मुसाफिर वो होंगे किसान वहां के जिन्होंने अपनी जमीनें इस परियोजना के लिए दी। और दिल्ली आप कीजिएगा, जेवर एयरपोर्ट से ये उड़ान भरी जाएगी और लखनऊ के बाद तमाम किसान वहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। तो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, फेज वन में 11,200 करोड़ की लागत आई। यह खासियत है इस एयरपोर्ट की, और लगभग 1,02,00,000 यात्रियों की इसकी पूरी क्षमता है। 6 रनवे का इसका प्लान है और 100 से अधिक जहाजों को यहां खड़ा किया जा सकता है। यानी एनसीआर के क्षेत्र के नजरिए से अगर देखें तो जहां गुड़गांव के लिए दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत नजदीक होता था, वैसे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास अलीगढ़ से लेकर के आगरा, मथुरा, यहां रहने वाले तमाम लोगों के लिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। तो पहली फ्लाइट देख लीजिए, नोएडा से लखनऊ उड़ान भरेगी, 172 मुसाफिर, और इसमें यात्रा कौन करेगा? इसमें यात्रा करेंगे जमीन देने वाले वो किसान जिनकी जमीन पर यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। तो कल से आप भी जेवर एयरपोर्ट से उड़ाने भर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मैक्रोन वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
1: ये दो शक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं दुनिया भर में भारत के दम को। फ्रांस के नीस में जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई तो नजारा ऐसा था। मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत बाहें फैला कर किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले लगे। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर दोनों ने भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है।
1: मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय निवेश को जोड़ने वाला मंच है। इससे भारतीय स्टार्टअप्स, युवा उद्यमियों और नए आइडिया को दुनिया के बड़े निवेशकों और विशेषज्ञों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर नई पहल शुरू किए हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है, और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं।
1: पीएम मोदी भारत की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र है। भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स भारत के साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में भी योगदान दे रहे हैं। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हर चुनौती नए मौके लेकर भी आती है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक जैसी कई नई तकनीकें आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगी। भारत में स्टार्टअप क्रांति चल रही है और देश के युवा नई सोच के साथ लोगों की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा बेहद अहम होने वाली है, विदेश नीति के लिहाज से और अर्थनीति के लिहाज से, क्योंकि सैन्य नीति के लिहाज से भी कई मोर्चों पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में ट्रंप और मोदी मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और कई अहम ऐलान की उम्मीद लेकर आ रही है।
3: तारीख 17 जून, जगह फ्रांस का इवियन शहर, वक्त शाम के 6:15। ये वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों और ईरान युद्ध के मद्देनजर पूरी दुनिया की निगाहें G7 के साथ साथ इस मुलाकात पर होंगी। पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप और मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। तब भारत और पाकिस्तान के तल्ख होते रिश्तों के बीच ट्रंप के बयानों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव आया, खास तौर पर ट्रेड डील को लेकर। अब जबकि दोनों नेताओं की फ्रांस में मुलाकात तय हो गई है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर सहमति बनने जा रही है और ये दोनों देशों के रिश्तों में आने वाले सुधार के संकेत हैं। वैसे अभी हफ्ते भर पहले ही ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की बात फिर दोहराई थी और जल्द ही ट्रेड डील करने का ऐलान किया।
4: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
3: माना जा रहा है कि जब G7 बैठक के बाद मोदी और ट्रंप मिलेंगे, तो कई मुद्दे एजेंडे में रहेंगे। व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। कारोबार को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन किसी अंतिम समझौते के ऐलान की उम्मीद फिलहाल नहीं। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिले। रूस से तेल खरीदने से लेकर भारतीय जहाजों पर हमले जैसे कई मुद्दों पर खींचतान बढ़ी। ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान और रूस के साथ कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों को लेकर काफी संतुलित रवैया अपनाया है। भारत की जरूरतों और सोच को प्राथमिकता दी है और अपना साफ रुख पूरी दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका और यूरोप को कई बार भारत का ये रुख अखरा भी है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति और अर्थनीति को इस मुश्किल वक्त में और मजबूत बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट और ट्रंप से मुलाकात के बाद 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वो अतिरिक्त द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो
0: करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में 27 के समर के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस ली है। उन्होंने बहराइच में कल एक कार्यक्रम के दौरान यूपी में सक्रिय हो जाने पर सवाल उठाए कि क्या अखिलेश के पीडीए को ओवैसी डेट करेंगे।
1: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव और इनके बीच अपनी सियासी जमीन तलाश थी AIMIM।
5: हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं, पूरी पार्टी तैयार है और देखिए गठबंधन भी होगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है।
1: ऐसे में सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी या फिर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
6: उत्तर प्रदेश में करने वाले की राजनीति करने वाले थे, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले थे, उनके दल करने वाले थे भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
1: उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए तो 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 फीसदी से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में हैं। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उधर महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक बुलाई। बड़ी खबर यह रही कि इस बैठक में शिवसेना के 3 सांसद नहीं पहुंचे। हालांकि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता ने दावा किया कि लोकसभा के सभी 9 सांसद बैठक में मौजूद थे।
1: क्या टीएमसी में हुई बड़ी टूट का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिख सकता है? क्या ममता बनर्जी के बाद उद्धव ठाकरे को भी बड़ा सियासी झटका लग सकता है? दरअसल इन चर्चाओं को बल तब मिला जब ये बात सामने आई कि शिवसेना उद्धव गुट के कुछ सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। चर्चा इस बात की भी है कि उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद सियासी पाला बदलने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे का यह कदम उस बड़े मिशन का हिस्सा माना जा रहा है जिसका मकसद अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना और संसद में अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा करना है। इन अटकलों को तब और बल मिल गया जब उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सांसदों की बैठक बुला ली और खबर मिली कि इस बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे। लेकिन बैठक के बाद संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा के सभी 9 सांसद बैठक में थे, 4 खुद आए थे और 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
7: 4 सांसद बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थित रहे और हमारे 5 सांसद है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस मीटिंग में सहभागी हुए।
1: जब महाराष्ट्र की सियासत में यह खबर उली कि शिवसेना यूबीटी में भी टूट हो सकती है तो संजय राउत ने हुंकार भरी।
8: कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। आप देखो
1: टीएमसी में टूट पहले ही ममता और पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई सियासी खेल होता है तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक शख्स को बच्चा चोरी के आधार पर पीट पीट कर मार डाला गया। उसे रस्सी से बांधकर इतना पीटा कि उसकी जान चली गई।
1: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक शख्स को कुछ लोग मिलकर पीट रहे हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इस युवक को देखिए, रस्सी से किस कदर बांध दिया गया है इसे। पीटने वालों ने हैवानियत की हद पार कर दी है। तस्वीरें 24 साउथ परगना की हैं। यहाँ कुलताली इलाके में यह शख्स अपने किसी जानने वाले से मिलने आया था मगर रास्ता भटक गया। इस शख्स को इन लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया और इसी शक में इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसे जानवरों की तरह रस्सी से बांधा गया और इतना पीटा गया कि इसकी जान चली गई। मारा गया युवक केरल का बताया जा रहा है। इस मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी जरूर हो गई मगर इस तरह शक के आधार पर मार डालने की एक घटना दहशत पैदा करती है। प्रसेनजीत साहा, 24 साउथ परगना, आज तक।
0: रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर...
10: बदलने जा रही है सूर्य देव की चाल। किसकी बढ़ेंगी मुश्किलें, कौन होगा मालामाल? सूर्य देव के राशि परिवर्तन में देश दुनिया का कैसा होगा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
11: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: साथियों, दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है। और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्ञान बिंदु अकेडमी चलाने वाले रोशन आनंद के भाई का शव नेपाल में मिलने से सनसनी मच गई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर में एक होटल में मिला। प्रिंस के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। अब जांच हो रही है कि ये मौत किन परिस्थितियों में हुई है।
3: चीख पुकार मची है। घर में मातम पसरा है। लोग बिलख रहे हैं क्योंकि इस घर के एक नौजवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल में मिला है। देखिए, ये प्रिंस यादव की तस्वीर है। प्रिंस ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी चलाने वाले रोशन आनंद के भाई हैं। वही रोशन आनंद जिन पर खान सर की कोचिंग पर हमले का आरोप है। दरअसल फैजल खान के साथ विवाद में रोशन आनंद और उसके भाई प्रिंस यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। रोशन आनंद को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रिंस गिरफ्तारी के डर से नेपाल चला गया था। लेकिन आज नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल से प्रिंस यादव का शव मिला है। नेपाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घर में चीख पुकार मची है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
4: प्रिंस की मौत हो चुकी है। अब मौत के पीछे क्या कारण है ये अभी तो नहीं पता चल रहा है। मेरे परिवार से बहुत लोग गया है वहाँ।
3: यादव की हत्या हुई। फिलहाल नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं फैजल खान की मुसल्लहपुर स्थित कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धीरज कुमार सिंह, सहरसा आज तक।
2: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
6: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right? Nice.

0: स्मार्टफोन पर उंगलियां घुमाते हुए शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है। घर बैठे मनपसंद सामान मिल जाए तो दिन बन जाता है। हमारी इसी चाहत का फायदा उठाकर ऑनलाइन कंपनियां चुपके से जेब पर डाका डाल रही हैं। इसके लिए कंपनियां डार्क पैटर्न नाम से एक मायाजाल का सहारा ले रही हैं। ये डिजिटल दुनिया की ऐसी चालाकी है जिसके जरिए ग्राहकों को झांसा देकर जबरन ज्यादा पैसे खर्च कराए जाते हैं। हाल ही में आई डार्क पैटर्न इन इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट कंपनियों की भ्रामक ट्रिक से भारतीय ग्राहकों को सालाना 25 से 28 हजार करोड़ रुपए की भारी चपत लग रही है। देश में करीब 30 लाख 40 हजार करोड़ ऑनलाइन खरीदारों में से 88% लोग इस चालाकी का शिकार बने हैं। इस जाल में फंसकर हर प्रभावित ग्राहक हर महीने औसतन 78 से 87 रुपए फालतू गवा रहा है। ये पूरा खेल बेहद शातिर तरीके से खेला जाता है। जब आप सामान पसंद कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर नकली टाइमर चलने लगता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है। हड़बड़ी में जैसे ही आप पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं कंपनी अपना असली रूप दिखाती है। डेटा के मुताबिक 63% डिजिटल पेमेंट करने वाले खरीदारों को अंतिम फेज में अचानक छिपे हुए चार्ज का सामना करना पड़ता है। 2024 में यह आंकड़ा 52% था, जो साफ दिखाता है कि कंपनियों की ये लूट लगातार बढ़ रही है। वहीं करीब 73% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को अनचाहे विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इस खेल की सबसे हैरान करने वाली वजह कंपनियों का शातिर इंटरफेस डिजाइन है। लोग समझते हैं कि वो समझदार हैं, लेकिन डिजिटल चालबाजी के आगे उनकी एक नहीं चलती। आंकड़े बताते हैं कि 81% ग्राहक इन ट्रिक्स को पहचानते हैं, फिर भी असलियत में खरीदारी करते समय 85% लोग इस जाल में फंस ही जाते हैं। नुकसान होने पर 53% लोग प्लेटफॉर्म पर शिकायत भी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 23% को ही सही समाधान मिल पाता है। अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियों का तरीका भी एकदम जुदा है। क्विक कॉमर्स यानी चंद मिनटों में सामान पहुंचाने वाली प्लेटफॉर्म पर जल्दी खरीदने का नकली दबाव सबसे ज्यादा बनाया जाता है। ऑनलाइन ट्रेवल सेक्टर में टिकट बुक करते वक्त टैक्स और दूसरे चार्ज बिल्कुल आखिरी स्टेप पर दिखाकर धोखा दिया जाता है। इस धोखे की वजह से 36 से 45% ग्राहकों ने इन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कम करके शॉपिंग घटा दी है या ऐप डिलीट कर दिया है। कंपनियों की शॉर्टकट वाली कमाई डिजिटल इकोनॉमी के भरोसे को कमजोर कर रही है। ग्राहकों की जेब की सुरक्षा के लिए अब इन छुपे हुए शुल्कों पर पूरी पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी हो गया है। कंपनियां भले ही ट्रिक्स अपनाकर अपना फायदा देख रही हों, लेकिन ग्राहकों का टूटता भरोसा भविष्य में ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता है। आदित्य किराणा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आखिरकार अमेरिका ईरान के बीच जंग पर पूर्ण विराम, ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान, कहा टोल फ्री होगा हॉर्मुज, अमेरिकी नौसेना हटाने के आदेश। ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान, ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता फाइनल हुआ, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर, ड्राफ्ट में ईरान के अहम मुद्दे भी शामिल। दो दिनों की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, द्विपक्षीय मुलाकात में मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग, व्यापार, टेक्नोलॉजी पर होगी बात। एनसीपीआई में विलय को तैयार, टीएमसी के सांसद, लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, अभिषेक बनर्जी ने लिखा खत, विलय को बताया संवैधानिक। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा, दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट, ऋचा घोष और स्मृति मंधाना ने खेली तूफानी पारी।

बड़ी खबर की जो आ रही है पश्चिम एशिया से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते का ऐलान किया है। आखिरकार नाना करते वो समझौता हो गया जिसका इंतजार सिर्फ पश्चिम एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के साथ डील हो गई है जिसके आधार पर बिना टोल के हॉर्मुज को अब खोला जाएगा। साथ ही ट्रंप ने नौसेना की नाकेबंदी हटाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की है। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने भी समझौते की पुष्टि की है और अब दोनों देशों के बीच इस शांति समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से दस्तखत किया जाएगा। इस बड़े घटनाक्रम को वैश्विक शांति ऊर्जा बाजार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ये देखिए, ईरान की ओर से उप विदेश मंत्री का जो पोस्ट, उन्होंने लिखा कि ईरान अमेरिका के बीच समझौते ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। हमने एमओयू ड्राफ्ट में अपने सभी मुद्दों की बात की है और महत्वपूर्ण पक्ष इसमें शामिल कर लिए हैं। तो आखिरकार कल देर रात से जो भूमिका बन रही थी कि अब किसी भी वक्त वो डील साइन होगी, इधर युद्ध की परिस्थितियां भी बनती रहीं, तनाव भी बनता रहा, हॉर्मुज का संकट जारी रहा, इसराइल के हमले लेबनन में जारी रहे, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार ईरान और अमेरिका ने समझौता कर लिया। ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है, सभी को बधाई। मैं इसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की मंजूरी देता हूं। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तुरंत हटाने का आदेश देता हूं। और सबसे बड़ी खबर, दुनिया भर के जहाज अब अपने इंजन चालू करें, तेल का प्रवाह शुरू हो रहा है।

0: तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। रुक करें अगली खबर का। राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित चंदा विवाद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मामले में आज से SIT जांच शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार 24 घंटे से भी कम समय में SIT का गठन किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर सौंपे जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या अधिकारी उन लोगों की जांच करेंगे जो धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी चढ़ावा कथित रूप से चोरी हुआ है उसे लौटा दिया जाए, भगवान राम उन्हें माफ कर देंगे। तो राम मंदिर चंदा विवाद में अब SIT की जांच हो रही है, यानी पहले जो ट्रस्ट गोपनीय जांच की बात कर रहा था, अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई है। चंदा चोरी के मामले में अब SIT जांच करेगी।
1: चल क्या रहा है इस वक्त मंदिर में? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में अचानक से ये मामला आ गया।
2: मंदिर का अचानक नहीं कुछ है, वहां से ले जाने का है। क्यों ले गए पैसा वहां से?
1: कौन ले गया?
2: जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? वहां पर सब तय है, सिस्टम तय है।
1: सिस्टम क्या है और चंपत राय ने क्या किया है?
2: अरे भाई, कुछ ले नहीं गए, ऐसा तो था नहीं। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना। तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
1: कहाँ लेकर के गए चंपत राय?
2: वो जहां रहते हैं
1: कार सेवपुरम
2: जो हमारी कोठरी कभी हुआ करती थी।
1: तो एक दिन का है, एक दिन कोई लेकर के वहां गया
2: या एक दिन का भी अगर कोई लेकर चला जाएगा तो लंबी रकम जाएगी। एक दिन का लंबी रकम लेकर जाएगा वो। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने SIT का गठन कर दिया है, जांच शुरू हो गई।
0: तो वो राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार लोग वहां दान देते हैं, चंदा देते हैं, और अब उसके साथ भी धोखाधड़ी, वहां पर भी चोरी। इस मामले में अब SIT की जांच चल रही है, जिसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर भगवान राम को मिलने वाला श्रद्धालुओं से दान पात्र से चोरी किसने की, कहां गया वो पैसा। अब इसको लेकर के सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि कई सारी आवाजें मुखर हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में बना नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से शुरू हो रहा है। अब तक आप दिल्ली के IGI से उड़ाने भरते थे, और अब अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन इलाकों में रहते हैं तो आपको गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है। नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से ऑपरेशनल हो रहा है। इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट आज टेक ऑफ करेगी और इसमें 172 मुसाफिर होंगे। ये मुसाफिर बेहद खास हैं क्योंकि ये 172 वो मुसाफिर किसान हैं जिन्होंने इस हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीनें दी थी। उनकी जमीनों पर यह परियोजना तैयार हुई। उड़ान परियोजना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा क्योंकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इसी के साथ NCR में एक ग्रेटर NCR की रूपरेखा भी तैयार होगी। किसानों के साथ इस पहली फ्लाइट में लखनऊ के लिए जब उड़ान भरेगी उनके साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद होंगे। सभी यात्री लखनऊ जब पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। तो इंडिगो की आज पहली फ्लाइट 172 किसानों के साथ रवाना होगी। ये वो तस्वीरें हैं उस भव्य एयरपोर्ट के, लेकिन सीधे आपको जेवर एयरपोर्ट लिए चलते हैं। आज पहली उड़ान खासकर दिल्ली के नजर से न देखें लेकिन दिल्ली से सटे आसपास के वो तमाम इलाके। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी सीधे उसी जेवर एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। अमित, 172 मुसाफिर, सिंबॉलिक ऑप्टिक्स के नजरिए से देखें तो बड़ी बात होती है कि जिन किसानों की जमीन पर आज वो किसान जो है हवा में होंगे, कितना बड़ा योगदान इन किसानों का। और इसी के साथ दिल्ली के लिए तो एयरपोर्ट है, गुरुग्राम के लिए तो एयरपोर्ट है, हमें लगता था अगर ग्रेटर नोएडा से जाना हो तो बहुत लंबी यात्रा होगी। दिखाइए तस्वीरें, बताइए क्या माहौल है आज सुबह।
3: आशुतोष, देखिए सिर्फ ये 172 यात्रियों की उड़ान नहीं है बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उड़ान है। उड़ान सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स की नहीं बल्कि नौकरियों की, अपॉर्चुनिटीज की, कार्गो की, एमआरओ की, और ये सब कुछ हम अपने दर्शकों को समझाएंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए, दो सेट ऑफ पैसेंजर्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो कपल है जो दिल्ली से पहली टेक ऑफ के लिए यहां पहुंचा है, और सिर्फ उत्साह के साथ कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला उड़ान है तो हमें उस इतिहास का हिस्सा होना चाहिए। और इस तरफ जो हाथ में टिकट लिए आपको अंकल दिखाई देंगे, बुजुर्ग दिखाई देंगे, सबके हाथ में बारकोड वाला टिकट, यही वो लोग हैं जिनकी जमीन पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा है। तो पहले उन किसानों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम चंद्रशेखर।
3: चंद्रशेखर जी, तो ये टिकट जो है पहली, आपने कभी ऐसा सोचा था यहाँ नोएडा से उड़ान भरेंगे सीधे?
4: माननीय मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, 2001 में स्थापना की थी उन्होंने, उन्होंने प्रस्ताव रखा था इसका, और बनते बनते 2026 में आज उड़ान भरी जा रही है इसमें 2001 से। हाँ, आपको सैकड़ों कितने
3: बताइए सर, आप भी किसान हैं या आप नेता हैं भाजपा?
5: किसान हैं, किसान है, और इसमें सबसे पहली जो हमारी पहली सहमति 50 बीघे जमीन गई थी इस एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट के लिए पहली सहमति गई थी ग्राम बनवारी, वहां से हरीश पंडित मेरा नाम है, और हम बाबा महाराज जी का जो आभार व्यक्त करने जा रहे हैं कि उन्होंने इस जो हमने सपना सोचा भी ना था वो साकार करके दिखाया है। हमारी जमीन पर जिसमें हमने खेती करी थी, ट्रैक्टर चलाए थे, आज उसी से हम पहली उड़ान के साक्षी बनकर, पहली उड़ान में बैठकर हम महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहे हैं।
3: और आज मुख्यमंत्री से भी मिलने की उम्मीद है आपको?
5: हाँ जी, मुख्यमंत्री जी से मिलना है। हाँ। और उनके साथ में जो लंच भी है।
3: अच्छा, हाँ, दिन का प्रोग्राम तैयार है। मैं पवन को कहूंगा कि एक बार वो लगातार एयरपोर्ट फैसिलिटी आपको दिखाते रहे। आप लोग दिल्ली से आए हैं सर, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है।
3: महेश जी, पूरा परिवार साथ उठ रहा है?
6: हाँ जी, हाँ
3: जी। जा रहे हैं आप लोग?
6: हाँ, बंगलोर के लिए जा रहे हैं। बेंगलोर जा रहे
3: हैं,
6: बहुत ज्यादा,
3: बहुत अभी तो एयरपोर्ट था, यहाँ क्यों है आप?
6: सर, ये जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसी समय मैंने इसे सोचा था, मन में आया था कि इस एयरपोर्ट से जहाँ के लिए भी फ्लाइट जाएगी पहली, उस फ्लाइट में मुझे फ्लाइट करना है अपने परिवार के साथ।
3: चलिए हम अपने दर्शकों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा दिखता है वो भी दिखा देते हैं। आप जैसे ही पहुंचेंगे, ये टर्फ है जहां पे आपकी डिपार्चर के लिए एंट्री होगी, और उसके बाद आप सीधे यहां एस्केलेटर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो डिपार्चर टर्मिनल है उसके लिए बढ़ेंगे। हम आपको एक डिटोर भी लेके लिए चलते हैं कि अगर आपको जब डिपार्चर के लिए जाना होगा तो कुछ यू एस्केलेटर से आप जाएंगे। अहम बात क्या है एनआईए के लिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिहाज से, कि यहां आप सब कुछ वन टच में कर सकते हैं। वन टच का हिसाब यानी कि अगर आपको किसी भी एयरपोर्ट एम्प्लॉय से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। डीजी यात्रा से आप एयरपोर्ट के अंदर घुसिए, लगेज जो आपको चेक इन कराना है उसके लिए भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, आप डायरेक्ट वहां पर लगेज ड्रॉप कीजिए, टिकट का बारकोड नंबर दिखाइए, स्कैन कीजिए, लगेज ड्रॉप कीजिए। और तो और जब आप बोर्डिंग पे पहुंचेंगे, बोर्डिंग गेट पे पहुंचेंगे, तो वहां भी आप चाहें तो पूरी तरह से एयरपोर्ट स्टाफ को इग्नोर करते हुए, डिजिटल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए, डीजी यात्रा के सहारे आप बोर्ड कर सकते हैं फ्लाइट। पवन थोड़ा संभल के आइएगा, एस्केलेटर यहां पे खत्म हो रहा है। ये देखिए, ये डिपार्चर का टर्मिनल है, यहां आपको बीकैश सिक्योरिटी दिखाई देगी जिसके जिम्मे अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है। लोग अभी से लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी टिकट को स्कैन करा रहे हैं। ज्यादातर यात्री क्योंकि डीजी यात्रा पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको फिजिकली ये काम करवाना पड़ेगा। ये डिपार्चर टर्मिनल है, और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहां से जब आप डिपार्चर टर्मिनल से आगे बढ़ेंगे तो अंदर की तरफ आप चाहें, अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं भी है तो वो भी आप अंदर ही प्रिंट करा सकते हैं। अपना लगेज भी आप वहां पे बिना एयरपोर्ट स्टाफ से, बिना जो एयरलाइन स्टाफ है उनसे इंटरेक्ट किए बिना आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, डिजिटल सॉल्यूशन उसके लिए भी है। और इसके साथ साथ आप बोर्डिंग गेट पे भी डीजी यात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो तस्वीर है इसकी इमेजिनेशन कम से कम 2 दशकों की है। अलग अलग सरकारों में निरंतर इसको लेकर काम हुआ, लेकिन बीते 5 सालों में इस काम ने रफ्तार पकड़ी और अब ये सच्चाई में तब्दील हो चुका है। एक अहम बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर भी इससे पहले जा चुका हूं, जब ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, जो फ्लोरिंग है अंदर से, एक बार पवन आप नीचे करेंगे तो जब आप अंदर जाएंगे शाम के समय, ऊपर इस तरह से लाइट लगाई गई है कि ये कोशिश रही है जो डिजाइनर्स थे उनका, जो आर्किटेक्चुरल डिजाइन जिन्होंने तैयार किया, कि आपको नदी जैसा इम्पैक्ट दिखाई दे, बहते हुए पानी जैसा इम्पैक्ट दिखाई दे। और टर्मिनल बाहर से कैसा दिखेगा, टॉप एंगल व्यू भी एक बार आप देखिए। इस वक्त हम डिपार्चर टर्मिनल पे हैं, यानी कि आप यहां से उड़ान भरेंगे। ये आपका सामने का टर्फ है जहां पे आप सारे लोग, सारे जो यात्री हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। एटीएम लगाया गया है, अगर किसी को उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स पे पानी और पीने के सामान, जिस तरह के कोई बेवरेजेस हैं उनको भी सस्ते में मुहैया कराने की जो मुहिम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, उसके तहत आपको कियोस्क भी यहां पे मिलेगा। और पार्किंग दूर आपको एक दिखाई देगी, एक बार पवन कैमरा पैन करके दिखाएंगे तो दूर पार्किंग दिखाई देगी, गाड़ियां वहां, आप पर्सनल गाड़ियां वहां पार्क कर सकते हैं चाहे तो। और उसी से, उसी पार्किंग से डायरेक्टली सबवे से होते हुए सीधे जिस टर्मिनल पे एक तरह से आप कह सकते हैं इंक्वायरी काउंटर्स हैं और डिपार्चर के लिए एस्केलेटर्स हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं।
0: अच्छा, एक चीज और, एक चीज जरूर
3: ज्यादा ध्यान यहां रखा गया है कि कम से कम, जी जी आशुतोष,
0: ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे तमाम दर्शकों के लिए, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, आज से आपकी यात्रा वहां से भी शुरू हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। आज साल की पहली सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद दुर्लभ और शुभ माना जा रहा है। ये अधिक मास की सोमवती अमावस्या है जिसमें ज्येष्ठ अधिक मास का भी समापन हो रहा है। इसी दिन सूर्यदेव के मिथुन राशि में गोचर करने का भी संयोग बन रहा है। जानकारी के मुताबिक ऐसा विशेष खगोलीय योग करीब 100 साल बाद देखने को मिला है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है और मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पूजा पाठ, स्नान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। उदयतिथि के आधार पर यह पर्व सुबह 8:24 तक रहेगा, जिसके बाद इसका समापन होगा। और सोमवती अमावस्या होने के कारण देश भर में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात के भुज में पानी की भारी किल्लत के बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। स्मृति वन के पास नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन का वॉल टूटने से सड़क पर करीब 20 फुट ऊंचे पानी के फवारे फूट पड़े। हजारों लीटर शुद्ध पीने का पानी बहता रहा। एक तरफ शहर के लोग पानी की कमी, दूषित जल की समस्या से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग इस लीकेज को फ्री कार वॉश में बदलते नजर आए। कार, बाइक, यहां तक कि एम्बुलेंस तक फवारों के नीचे खड़ी धोई गई। घटना के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। नगर निगम ने वॉल की खराबी को वजह बताया। लाइन बंद करते हुए मरम्मत का काम तब जाके पूरा किया गया। खबर राजस्थान से। अजमेर में शहर के माखोपुरा इलाके में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली तो दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। फायर विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। राजौरी के नौशेरा डिवीजन के जंगल में भीषण आग लगी है। आग ने देखते देखते जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया है। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

घर में रखे सोने की चमक हर भारतीय का दिल खुश कर देती है। शादी ब्याह से लेकर मुसीबत के वक्त यही पीला सोना हमारा सबसे सच्चा साथी बनता है। देश के करोड़ों लोग जरूरत पड़ने पर इसी सोने को गिरवी रखकर बैंक से लोन भी लेते हैं। आम आदमी की इस बड़ी जरूरत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार सोने के बाजार में कुछ बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। इसी वजह से बैंक से गोल्ड लोन का पूरा लेखा जोखा मांगा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक से 2023 से लेकर अब तक के गोल्ड लोन का पूरा डेटा मांगा है। इसमें बैंक को दिए गए लोन की कुल रकम, ग्राहकों और उधारकर्ताओं की संख्या के साथ गिरवी रखे सोने की मात्रा बतानी होगी। इसके साथ ही विदेशी सप्लायर से जुड़े गोल्ड मेटल लोन का पूरा पोर्टफोलियो भी सरकार को सौंपना होगा। इस बड़े कदम के पीछे सरकार की सोच गोल्ड लोन और गोल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम की गहराई से समीक्षा करना है। दरअसल देश में सोने की लगातार

0: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और अब इन सब के बीच अपनी सियासी जमीन तराशते AIMIM। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी, या फिर इसकी पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM इसे संगठन विस्तार का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुस्लिम वोटों की नई गोलबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यानी मुस्लिम, पिछड़ा और दलित सामाजिक समीकरणों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, जहां प्रतिनिधित्व की भूख बढ़ती है वहां नए दावेदार भी पैदा होते हैं। ओवैसी उसी दावे के साथ मैदान में है।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है और उसी कड़ी में AIMIM ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बहराइच में रैली है। ये रैली मटेरा विधानसभा, जो बहराइच जिले में पड़ते मटेरा विधानसभा, वहां पर ये रैली आयोजित की गई है। अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसकी धमक यहाँ पर ज्यादा है, जो वोटर है वो ज्यादा है। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी।
0: समाजवादी पार्टी की रणनीति में फिलहाल दम भी दिखता है, क्योंकि अब तक ओवैसी पिछले दो चुनाव में कुछ खास नहीं कर सके। 2017 विधानसभा में ओवैसी की AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन शून्य पर सिमट गई, वोट सिर्फ 0.24% मिले। इसी तरह 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाई, वोट 0.49% मिला।
2: आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम।
0: उत्तर प्रदेश में AIMIM अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती, कुछ हारे जमीन।
2: आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम।
0: उत्तर प्रदेश में AIMIM अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती, कुछ हारे जमीन।
2: आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम।
0: उत्तर प्रदेश में AIMIM अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती, कुछ हारे जमीन तैयार करती है और कुछ जीते सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती है। ओवैसी शायद पहली श्रेणी की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर बहराइच के मटेरा को ही ओवैसी ने यूपी चुनाव की तैयारियों के लिए क्यों चुना। मटेरा विधानसभा मुस्लिम बहुल है, इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 45% है। समाजवादी पार्टी का लगातार 3 चुनाव से इस सीट पर कब्जा है, अभी सपा की मरिया शाह यहां से विधायक है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बहराइच में 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेल देव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इसमें महाराजा सुहेल देव ने सलार मसूद को मार गिराया था। सलार मसूद की मौत के बाद बहराइच में मजार बनाई गई। मटेरा इलाके में लगे क्षेत्रों में सालार मसूद गाजी की दरगाह का असर है। यूपी एक बार फिर पहचान, इतिहास, प्रतिनिधित्व और सत्ता की नई बहस के बीच खड़ा है। बीजेपी इस लड़ाई को करीब से देख रहा है। राजनीति में हर युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं होता, कभी कभी तीसरा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फायदा ले जाता है। अगर विपक्ष का वोट बढ़ता है तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता है। 2027 विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति में समय हमेशा

कैलेंडर से नहीं चलता। कभी कभी एक रैली, एक बयान, एक प्रतीक और एक यात्रा आने वाले चुनाव का माहौल तय कर देती है। यूपी की राजनीति में अक्सर जीत का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, कई बार 2 या 3% और पूरे चुनाव का भूगोल बदल देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि AIMIM कितने सीटें जीतेंगी, सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी सीट हरवाएंगे। बहराइच से संतोष शर्मा, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

आखिरकार अमेरिका ईरान के बीच जंग पर पूर्ण विराम, ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान, कहा टोल फ्री होगा हॉर्मुज, अमेरिकी नौसेना हटाने के आदेश। ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान, ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता फाइनल हुआ, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर, ड्राफ्ट में ईरान के अहम मुद्दे भी शामिल। दो दिनों की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, द्विपक्षीय मुलाकात में मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग, व्यापार, टेक्नोलॉजी पर होगी बात। एनसीपीआई में विलय को तैयार, टीएमसी के सांसद, लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, अभिषेक बनर्जी ने लिखा खत, विलय को बताया संवैधानिक। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा, दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट, ऋचा घोष और स्मृति मंधाना ने खेली तूफानी पारी।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना शुभ है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः 8:23 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:59 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य देव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, अब सूर्य देव 15 जून को दोपहर के समय में यानी आज दोपहर में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि मानी जाती है। मिथुन राशि में सूर्य देव के प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। ये परिवर्तन देश दुनिया और अलग अलग राशियों पर अगले 1 तक असर डालेगा। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आर्द्रा प्रवेश का विचार किया जाता है और उसके आधार पर आने वाले समय में वर्षा की स्थिति जानी जाती है। और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन ऐसे समय में होने जा रहा है जब देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं। तो देश दुनिया पर सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का बड़ा और गहरा असर पड़ेगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक
राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। हालांकि आज दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें आज तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय मंगल आठवें स्थान में बैठे हुए हैं, इसीलिए सूर्य देव का मिथुन राशि में प्रवेश देश में दुनिया में अशांति पैदा कर सकता है। बेवजह के विवाद बढ़ सकते हैं, वैमनस्य में वृद्धि हो सकती है और युद्ध की स्थितियां और ज्यादा भड़क सकती हैं। इस समय महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आरंभ में गर्मी बढ़ेगी लेकिन बाद में बरसात अच्छी होगी, इसीलिए राहत भी मिलेगी। बरसात की स्थिति शुरुआत में तो दिक्कत दिखा रही है लेकिन आगे चल करके वर्षा राहत के संकेत दे रही है। देश के पूर्वी इलाकों में उड़ीसा, बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में और दक्षिण के इलाकों में बारिश से वर्षा से थोड़ी समस्या हो सकती है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क सिंह आने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा,
काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अरविंद जी ने हमें लिखा है और अरविंद जी हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 10 मार्च 1961 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7:50। जन्म स्थान है हावड़ा पश्चिम बंगाल। अरविंद जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और मैं एक मुकदमे में भी फंसा हुआ हूं, तो उस मुकदमे से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। अरविंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति मार्च 2027 से बेहतर होती दिखाई दे रही है और आगे के जीवन में बेहतर बनी रहेगी। केवल आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाले समय में चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। दो उपाय करने की आवश्यकता है अच्छे स्वास्थ्य अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुने, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं मेष राशि से लेकर पहले कन्या राशि तक। अगर मेष राशि की बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। वृषभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको आंखों में समस्या हो सकती है, तो आंखों की समस्या पर ध्यान दीजिएगा। परिवार में बेवजह की अशांति ना हो, परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, इससे बचिएगा। मिथुन राशि, करियर और जीवन में बड़े परिवर्तन का समय है। करियर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस समय अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। कर्क राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके महत्वपूर्ण काम रोक सकता है, महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, आंखों की समस्या और सरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है।
आपके लिए आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है, धन की स्थिति बेहतर होगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है। कन्या राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी और अगर इस समय आप ठीक से कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। यानी कन्या राशि वालों के लिए भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। बाकी बची हुई राशियों पर भी सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव जानेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बाकी राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि इस समय स्वास्थ्य की समस्या भी आपको काफी परेशान कर सकती है, चोट चपेट और हड्डियों की समस्या से बचिएगा। वृश्चिक राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में समस्याएं आ सकती हैं, करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय शांति बनाए रखें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके पति का या आपकी पत्नी का।
उच्चाधिकारियों के साथ ऑफिस में हायर ऑफिशियल्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऑफिस में और परिवार में दोनों जगह ध्यान बनाए रखें। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। धन की स्थितियों में आपके लिए सुधार होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। करियर और नौकरी में लाभ की स्थितियां बनेंगी। आपके तनाव और चिंता में सुधार होगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपसे गलतियां करवा सकता है, इसलिए जल्दबाजी में इस समय निर्णय मत लीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपने डाइजेशन का ध्यान बनाए रखिएगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से तनाव बढ़ेगा आपका, सेहत आपकी बिगड़ेगी, इस बात को लेकर सतर्क रहिए। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए इस समय दिखाई दे रहे हैं। प्रेशर में जगह बदलनी पड़ सकती है। तो तुला से लेके मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का आपने हाल जाना। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, चोट चपेट से बचाव करें। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग संध्या के समय, सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः लोग सुबह उगते हुए सूर्य को जल देते हैं, लेकिन सूर्य देव की पूजा करने का नियम है
तीन वेला, सुबह, दोपहर और शाम, इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। जो लोग तीनों वेला सूर्य देव की पूजा करते हैं वो सुबह भी जल चढ़ाते हैं, दोपहर में भी चढ़ाते हैं और संध्या में भी चढ़ाते हैं। अगर आपको केवल एक टाइम जल चढ़ाना है तो सुबह जल चढ़ाइए, अगर आपको तीनों टाइम जल चढ़ाना है तब आप शाम को जल चढ़ा सकते हैं। सामान्य स्थिति में अस्ताचल सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को जल नहीं दिया जाता। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर एक से लेके नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर एक, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर दो, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर तीन, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर चार, काम की अधिकता रहेगी। नंबर पांच, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर छह, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर सात, ऑफिस में समस्या हो सकती है। नंबर आठ, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और नंबर नौ, धन का लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह के समय शिव जी को जल चढ़ा के तब जाइएगा, मीटिंग में काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है चिकित्सा के लिए या इलाज के लिए, तो चंदन का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा वृषभ राशि के लिए, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त तो होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए, करियर में सफलता मिलेगी, संतान की उन्नति होगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, कोई नया और शुभ कार्य इस समय ना करें। आज जल और सफेद मिठाई का दान करने से जीवन में शुभता आएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

ईरान और अमेरिका के बीच डील पूरी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में किया दावा। ट्रंप ने लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दी गई है। इसके साथ उन्होंने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देने की भी बात कही है। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि दुनिया के जहाजों अब अपना इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। हालांकि पोस्ट में यह नहीं बताया कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी डील पूरी होने की दी जानकारी। कहा, समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। डील के बारे में बताते हुए शरीफ ने कहा कि दोनों देशों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए रोकने पर सहमति जताई है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतिम समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी। तब तक अमेरिका के वादों पर रहेगी ईरान की नजर। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में नाकाम रहता है तो वो तेहरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू कर देंगे। ईरान की मेहर पत्रिका ने वाशिंगटन के साथ हुए समझौते के 14 सूत्री मसौदे को जारी किया। 24 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों में आधे को जारी करने का दावा किया गया। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पर लगे प्रतिबंध समय से पहले निलंबित कर दिए जाने का भी दावा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ईरानी सुरक्षा नियंत्रण में फिर से खोलने जाने की बात कही गई है। उधर कतर ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने में एक अहम कदम बताया है। ब्रिटेन की ओर से भी दोनों देशों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया गया। पीएम स्टार्मर ने कहा कि मध्यस्थता की भूमिका बनाने वाले सभी देशों को बधाई। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत E4 देशों ने कहा कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से प्रतिबंध हटाने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब समझौता हो चुका है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी फैसले का स्वागत किया। कहा, यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि वे इसे जल्दी से जल्दी और पूरी तरह से लागू करें। पर अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% से अधिक की भारी गिरावट देखने को मिली। G7 समिट से ठीक पहले जेनेवा में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। यूएन मुख्यालय के पास प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबरें आई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सड़क से ईंट उखाड़कर पुलिस पर फेंकी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हिंसा शुरू होने के बाद तनाव बढ़ने पर पूरे शहर में प्रदर्शन जारी रहा। पूंजीवाद, वैश्वीकरण, आर्थिक समानता के असमानता के विरोध में समर्थक जुटे थे। ब्राजील के लाइमीरा में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान भयानक हादसा हुआ। एडवेंचर कंपनी की घोर लापरवाही से 24 साल की युवती बंची जंपिंग के दौरान उसकी मौत हो गई। थाने पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि सुरक्षा प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और जिम्मेदारी किसकी। अमेरिका ईरान पीस डील से ठीक पहले इसराइल का बेरूत पर बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाकर हमले किए गए। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। औद्योगिक ईंधन डिपो को निशाना बनाया गया। जापानी प्रधानमंत्री सानी ताकाइची की लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सामर्थ मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच नई तकनीकी साझेदारी की घोषणा की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि मिडिल पावर देशों को महाशक्तियों का फेवर पाने के लिए आपस में होड़ अब नहीं करनी चाहिए। एनबीए फाइनल में न्यूयॉर्क निक्स के ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे बास्केटबॉल फैंस हुए बेकाबू। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में वर्ल्ड कप बस को आग लगा दी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में बर्बरता के खिलाफ लंदन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यूके पार्लियामेंट के बाहर लोगों ने पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद की। ट्रंप और पुतिन के बीच फोन वार्ता हुई। 55 मिनट में यूक्रेन, ईरान और आपसी रिश्तों पर भी चर्चा हुई। हॉर्मुज में तनाव के बीच भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर बोके मेरंगो पर ड्रोन हमला। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी भारतीय नाविक अभी सुरक्षित हैं। गाजा में मौत का आंकड़ा 73,000 के पार। सीज फायर के बावजूद इजरायली हमले गाजा पट्टी में लगातार जारी हैं। फ्रांस से 2 दिनों के स्लोवाकिया दौरे पर पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। स्लोवाकिया में रक्षा मोबिलिटी पर घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। फ्रांस के साथ पीएम मोदी ने रिश्तों को बेहद खास बताया। कहा, भारत और फ्रांस का रिश्ता भरोसे, साझा सोच और साझा लक्ष्यों पर आधारित है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट 2026 प्रोग्राम का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस समेत दूसरे देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को नीस के पास स्थित विला केरिलोस घुमाया। फ्रांस की प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून को फ्रांस के एवियन में जी समिट में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले टीएमसी के बाकी सांसद। दस्तखत वाली चिट्ठी सौंपी, लोकसभा में अलग सीट की मांग की।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी झटका लगा है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान हो गया है। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने दावा किया। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय के ऐलान के बाद बोली सांसद काकोली घोष, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। बागियों से पहले ममता के समर्थन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। कहा कि ममता बनर्जी ने ही इस पार्टी को खड़ा किया है, इसलिए वही असली पार्टी है। बंगाल में फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी का एक्शन भी देखने को मिला। अभिषेक बनर्जी से 7 घंटे और कुणाल घोष से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। बंगाल में अम्फान रिलीफ फंड में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। डायमंड हार्बर कोर्ट ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस हिरासत 6 दिन के लिए बढ़ाई। चुनाव में धांधली, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे आरोप हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठियों के 12,000 मामले दर्ज हैं। अब तक 5,000 घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। शिवसेना यूबीटी में ऑपरेशन टाइगर के अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री पर पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। संजय राउत बोले, सभी 9 सांसद मौजूद रहे। बीजेपी पर भड़के संजय राउत, कहा जिस दिन हमारे हाथ में आएगी सत्ता बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। बहराइच से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंका। कहा हमारी कोशिश हो रही है कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। अखिलेश यादव पर ओवैसी भड़के, कहा बिहार चुनाव में आपने मेरी पार्टी के खिलाफ प्रचार करके सांसदों को भेजा था, लेकिन आपकी साजिश बेनकाब हो गई और हम जीत गए। राम मंदिर की दान राशि को लेकर उठे सवालों पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान, एसआईटी जल्द जांच शुरू कर सकती है। राम मंदिर चंदा विवाद पर अखिलेश ने कहा कि ये अफसर साधु संतों की जांच करेंगे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आगरा में अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान माफ कर देंगे। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ भारत की धमाकेदार शुरुआत, अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। एल्बर्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की टीम ने जवाब में 17 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया, 44 गेंदों में 68 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की शानदार पारी खेली। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। तस्मिया रुबाब और रामीन शबीब को 1-1 सफलता मिली। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। श्री चढ़नी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला। नोएडा के लोगों को आज मिल रही है उड़ान की सौगात, जेवर एयरपोर्ट पर आज से शुरू हो रही है उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लखनऊ के लिए पहली उड़ान होगी। 172 किसान इसमें मुसाफिर बनकर सफर करेंगे। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे 172 किसान। परियोजना के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी थी। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना है। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज की। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़ी नजर है। ग्रेटर बेंगलुरु टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। पहले चरण में 518 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। बीजेपी और जेडीएस ने बिदादी टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में दखल देने के लिए राहुल गांधी को पत्र लिखा। डीके शिवकुमार ने प्रोजेक्ट का बचाव किया। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय पर स्टालिन का हमला, पूछा क्या करूर सीबीआई मामले की जांच से बचने के लिए गए थे दिल्ली। मीनाक्षी नटराजन के बहाने केटीआर ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को घेरा, रेवंत रेड्डी ने धोखा दिया। एसआईटी ने वैज्ञानिक जांच के लिए सबरीमाला मंदिर की चीजों के सैंपल इकट्ठा करना शुरू किया। सबरीमाला में सोने के नुकसान के मामले की जांच कर रही है एसआईटी। गिरिडीह में जमीन विवाद और जादू टोना के शक में पति पत्नी की हत्या की गई, 7 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। अलीगढ़ में महिला को गोली मारने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, वायरल सीसीटीवी के आधार पर हो रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुएं में गिरी पिकअप गाड़ी, 8 लोगों की मौत। मुरैना में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, आग की अफवाह के बाद ट्रैक पर कूद गए थे सभी। कटनी में बस पलटने से हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। राजस्थान के दौसा में यूपी रोडवेज की बस की टक्कर हो गई, 22 लोग हादसे में घायल हुए। सुपौल में युवक को गोली मारकर हत्या की गई, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। राजगढ़ में पति ने पत्नी को जंजीर से खंभे में बांधा, गरम सरिये से दागा। धौलपुर में कार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा जख्मी हो गया। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया, मामले में अब आगे की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, 3 लोगों की मौत हो गई, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार किए गए। दरभंगा में बाइक शोरूम मैनेजर हत्याकांड में आरोपी सोनू गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के भीतर दरभंगा पुलिस को कामयाबी मिली। कानपुर में मछलियों के मरने से नाराज युवक ने सुसाइड कर ली, घर में किसी ने बंद करके दिया था बिजली का प्लग। गाजियाबाद में मंदबुद्धि युवक की मौत पर कौशाम्बी थाना पुलिस पर सवाल उठे, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। गुजरात के खेड़ा में अनियंत्रित बस पलट गई, मौके पर एक यात्री की मौत हो गई, 35 यात्री घायल हो गए।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right fields, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स टीएमटी बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: In association with
6: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
7: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Hint, बड़े आराम से। Vimal, बोलो जुबां केसरी।
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
10: करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप सामने आते ही सियासत सुलग उठी, सैकड़ों सवाल उठे, विपक्षी हमले तेज हुए। अब राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन मामले की जांच तेज हो गई है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। इस SIT के प्रमुख लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को बनाया गया है। साथ ही IPS किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। हालांकि जांच के लिए SIT के गठन के बीच विपक्ष का हमला थम नहीं रहा।
11: सरकार के कोई मंत्री वहां गए थे और प्रेस के लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है। अरे भाई, वोट लेते हो तो मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है। तो ये सरकार की तरफ से इसी तरह की मामले को दबाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं।
12: योगी सरकार ने लगभग 100 से ज्यादा अब तक SIT गठित की, एक भी SIT का आज तक रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया कि किस SIT में कौन दोषी पाया गया और किसके खिलाफ कार्रवाई है। चाहे कोरोना काल की SIT हो, चाहे बाकी जगहों की SIT हो, चाहे मुठभेड़ों की SIT हो, आज तक किसी भी SIT का रिजल्ट सामने नहीं आया। SIT सिर्फ दोषियों को बचाने का एक एजेंसी भर रह गई है।
10: दरअसल राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान राम के लिए पैसे, गहने और दूसरी चीजें चढ़ाते हैं। ये दान मंदिर के दान पात्रों में जमा होता है। इनके पैसे निकालने और गिनने का काम कुछ कर्मचारियों को दिया गया है। आरोप है कि इन्हीं कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए चुरा लिए। ये मामला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि जिन कर्मचारियों की तनख्वाह महीने के 18,000 से 20,000 रुपए थी, उन्होंने करोड़ों की जमीन और प्लॉट खरीद लिए। यहीं से मामला खुला और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब SIT इस मामले की जांच में जुटी है ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। आज तक ब्यूरो।

0: दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त ऐसे बोर्ड पर खड़ी है जहां जंग, महंगाई और बाजार का डर एक साथ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर किचन तक और शेयर बाजार से लेकर नौकरी तक हर जगह अनिश्चितता का असर महसूस होने लगा है। सबसे बड़ा डर उस समुद्री रास्ते को लेकर है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। अगर वहां संकट लंबा चला तो 2008 जैसी आर्थिक तबाही का खतरा फिर सिर उठा सकता है। दरअसल अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ गया है। रैपिडन एनर्जी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अगस्त तक ये रास्ता प्रभावित रहा तो दुनिया भर में तेल सप्लाई बुरी तरह बिगड़ सकती है और रोजाना 60 लाख बैरल तेल की कमी हो सकती है, जिससे ब्रेंट क्रूड $130 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका बढ़ जाएगी। वैसे भी तेल की कीमतें फरवरी के बाद से करीब दोगुनी हो चुकी हैं। ये भारत के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, क्योंकि देश में जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात किया जाता है। तेल महंगा होने का असर धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी पर दिखने लगता है। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा है, दूध, सब्जी, राशन और रोजमर्रा का सामान भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे में महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे लोन की ईएमआई का अतिरिक्त बोझ लोगों के बजट को बिगाड़ सकता है। एक्सपर्ट्स इसे इकोनॉमिक डिजास्टर साइकिल मानते हैं। महंगाई बढ़ने पर कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे कई कंपनियां हायरिंग को धीमी करने के अलावा छटनी का विकल्प भी आजमाती हैं। इससे लोग गैर जरूरी के साथ साथ खर्च कम करने के लिए तमाम तरह के खर्चों पर लगाम लगाने लगते हैं। कुल मिलाकर मार्केट में मांग घटने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और मंदी आने का खतरा बढ़ जाता है। 2008 की मंदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका में आसान होम लोन के दम पर प्रॉपर्टी बाजार तेजी से बढ़ा, लेकिन जब लोग कर्ज नहीं चुका पाए तो लीमैन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक डूब गए और दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। इस बार खतरा तेल सप्लाई और जंग से पैदा हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि आईएमएफ ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है और भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा रहने का अनुमान है। फिलहाल तो घरेलू खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च भारत को मजबूती दे रहे हैं। वहीं आरबीआई के मजबूत फॉरेक्स रिजर्व की वजह से रुपए पर दबाव भी कई दूसरे देशों की करेंसीज पर पड़ रहे दबाव के मुकाबले कम माना जा रहा है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के खतरे के बेहद नजदीक मौजूद है। ऐसे माहौल में परिवारों को इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और अतिरिक्त इनकम के स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जा रही है, जिससे किसी बड़े आर्थिक झटके का असर कम किया जा सके। आदित्य के राणा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और अब इन सब के बीच अपनी सियासी जमीन तराशते AIMIM। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी, या फिर इसकी पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM इसे संगठन विस्तार का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुस्लिम वोटों की नई गोलबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यानी मुस्लिम, पिछड़ा और दलित सामाजिक समीकरणों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, जहां प्रतिनिधित्व की भूख बढ़ती है वहां नए दावेदार भी पैदा होते हैं। ओवैसी उसी दावे के साथ मैदान में है।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है और उसी कड़ी में AIMIM ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बहराइच में रैली है। ये रैली मटेरा विधानसभा, जो बहराइच जिले में पड़ती है मटेरा विधानसभा, वहां पर ये रैली आयोजित की गई है। अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसकी धमक यहाँ पर ज्यादा है, जो वोटर है वो ज्यादा है। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी।
0: समाजवादी पार्टी की रणनीति में फिलहाल दम भी दिखता है, क्योंकि अब तक ओवैसी पिछले दो चुनाव में कुछ खास नहीं कर सके। 2017 विधानसभा में ओवैसी की AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन शून्य पर सिमट गई, वोट सिर्फ 0.24% मिले। इसी तरह 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाई, वोट 0.49% मिला।
2: अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ।
0: उत्तर प्रदेश में AIMIM अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती, कुछ हारे जमीन तैयार करती हैं और कुछ जीते सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती हैं। ओवैसी शायद पहली श्रेणी की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर बहराइच के मटेरा को ही ओवैसी ने यूपी चुनाव की तैयारियों के लिए क्यों चुना। मटेरा विधानसभा मुस्लिम बहुल है, इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 45% है। समाजवादी पार्टी का लगातार 3 चुनाव से इस सीट पर कब्जा है। अभी सपा की मरिया शाह यहां से विधायक है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बहराइच में 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इसमें महाराजा सुहेलदेव ने सलार मसूद को मार गिराया था। सलार मसूद की मौत के बाद बहराइच में मजार बनाई गई। मटेरा इलाके में लगे क्षेत्रों में सालार मसूद गाजी की दरगाह का असर है। यूपी एक बार फिर पहचान, इतिहास, प्रतिनिधित्व और सत्ता की नई बहस के बीच खड़ा है। बीजेपी इस लड़ाई को करीब से देख रहा है। राजनीति में हर युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं होता, कभी कभी तीसरा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फायदा ले जाता है। अगर विपक्ष का वोट पड़ता है तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता है। 2027 विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति में समय हमेशा कैलेंडर से नहीं चलता। कभी कभी एक रैली, एक बयान, एक प्रतीक और एक यात्रा आने वाले चुनाव का माहौल तय कर देती है। यूपी की राजनीति में अक्सर जीत का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, कई बार 2 या 3% वोट पूरे चुनाव का भूगोल बदल देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि AIMIM कितनी सीटें जीतेंगी, सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी सीट हरवाएंगे। बहराइच से संतोष शर्मा, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

दुनिया का बाजार खुला है तो मुकाबला भी खुला है। जहाँ सामान सस्ता मिलता है, खरीदार अक्सर उसी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब सस्ते माल की भरमार किसी देश की फैक्ट्रियों और नौकरियों पर दबाव डालने लगे तो सरकारों की चिंता बढ़ना तय है। यूरोप में इन दिनों ऐसी ही बहस तेज हो गई है। चीन से आने वाले कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स ने कई देशों की इंडस्ट्री के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के कई बड़े सदस्य देश सस्ते आयात पर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर कड़े कदमों की वकालत की है और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति की मांग की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि सस्ते आयात से स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की चिंता है कि बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देशों से आने वाला सस्ता माल स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि चर्चा अब किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रही है और व्यापक व्यापारिक सुरक्षा उपायों की बात होने लगी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय आयोग चीन को लेकर अपनी रणनीति पर अहम चर्चा करने जा रहा है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा एंटी डंपिंग नियम हर चुनौती का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और व्यापार सुरक्षा के लिए नए टूल्स की जरूरत है। ऐसे में ईयू में सेक्टर आधारित सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा प्रोडक्ट आधारित एंटी डंपिंग मामलों से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बचाने पर फोकस बढ़ रहा है। इस बहस का सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जहां चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि ये मामला केवल यूरोप और चीन तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप का रुख वैश्विक व्यापार के लिए अहम संकेत दे सकता है। अगर सस्ते आयात पर नई बंदिशें लगती हैं, तो कई उद्योगों की कारोबारी रणनीति बदल सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि दुनिया का बाजार पूरी तरह खुला रहेगा या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।

अमेरिका ईरान के बीच जंग पर होगा पूर्ण विराम। ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान, कहा टोल फ्री होगा हॉर्मुज। अमेरिकी नौसेना हटाने के आदेश, कच्चे तेल की कीमतें गिरी। ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान, अमेरिका के साथ शांति समझौता फाइनल, स्विट्जरलैंड में होंगे शुक्रवार को हस्ताक्षर। ड्राफ्ट में ईरान के अहम मुद्दे शामिल।

कार्यक्रम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस। ट्रंप से मुलाकात पर होगी दुनिया की नजरें। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी। लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक।

सुबह के 8 बजे है, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। वक्त है खास बुलेटिन सुपर आज का। बुलेटिन में बात करेंगे उन सभी खबरों की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। दरअसल आपको सबसे पहले बताएंगे अमेरिका ईरान को लेकर आ रही राहत भरी खबर। डील फाइनल होने के साथ शांति का रास्ता खुल गया है। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके साथ आपको सियासत की खबर भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर टीएमसी के बागी सांसदों के नए फैसले ने क्यों सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति की भी करेंगे बात, जहां पर ऑपरेशन टाइगर के बाद अब ऑपरेशन वुल्फ भी चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ओवैसी के यूपी प्लान की भी खबर आपको बताएंगे, जिसकी शुरुआत बहराइच से हो चुकी है। साथ ही राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी पर गठित एसआईटी के एक्शन के बारे में भी बताएंगे। देहरादून में हिंसा के बाद आरोपियों के खिलाफ जारी एक्शन की भी खबर होगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुई पहली उड़ान की भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ डील का ऐलान कर दिया है। 107 दिन से ज्यादा ये युद्ध चला और ऐसे में ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते का अब ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के साथ डील का ऐलान कर दिया है।

0: अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर के पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला लिया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। सीजफायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का, बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो,
1: समझौता हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि इस समझौते के वो 14 बिंदुए क्या है, किन शर्तों के साथ ये समझौता हुआ है उसको अब समझ लेते हैं। देखिए, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध हमेशा के लिए बंद रहेगा, ये पहली शर्त। ईरान 30 दिन में हॉर्मुज खोलने की व्यवस्था जल्द से जल्द करेगा। वहीं ईरान के तेल एक्सपोर्ट से पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ईरान अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगा, ये कहा गया है। ईरान के फ्रीज 24 अरब डॉलर 60 दिन में जारी हो जाएंगे, साथ ही 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होते ही जारी कर दिए जाएंगे। ये समझौते किस डील पर हुए वो आपको बता रहे हैं। यूएस और सहयोगी देश 300 अरब डॉलर की ईरान पुनर्निर्माण योजनाएं पेश करेंगे। साथ ही ईरान की संप्रभुता के सम्मान का वादा अमेरिका करेगा। यूएस नौसेना की नाकेबंदी 30 दिन में पूरी तरह से हट जाएगी और साथ ही अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हटा दी जाएंगी, ये भी कहा गया है इस डील में। और परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाने के एनपीटी के वादे को भी बात की गई है। इसी के साथ समझौते को लेकर ईरान पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र भी बनेगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इस समझौते का हिस्सा नहीं है। तो डील में इस समझौते को लेकर क्या क्या बात हुई है वो हमने आपको बताई। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, वो 14 बिंदु तो हमने बता दी कि जो डील पर डील के बीच की गई है, लेकिन अब इस हस्ताक्षर की बात चल रही है। अब सुमित, क्या लग रहा है इसके बाद कहीं ऐसा सुनने में तो नहीं आएगा एक बार फिर से युद्ध विराम टल गया है?
2: नहीं, बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहला मौका होगा जिसमें ईरान ने भी खुलकर इस बात का समर्थन किया है। ईरान के फॉरेन अफेयर डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि देखिए सहमति बन गई। हालांकि देखिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक लाइन जरूर जोड़ी, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पर या फिर अपने अपने अपने दुश्मनों पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ईरान चाहता है कि वो चीजों को लेकर आगे बढ़े और चीजों को ठीक करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने 14 बिंदुओं के बारे में जिक्र किया, 14 बिंदुओं के बारे में बताया कि देखिए कैसे लगातार ना सिर्फ 30 दिन के अंदर ब्लॉक को ईरान अमेरिका को खोलना पड़ेगा, कोई एडिशनल मूवमेंट नहीं की जाएगी इस दौरान किसी भी तरीके की। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो डीफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है, 150 बिलियन के करीब जो है दुनिया भर के अंदर ईरान का जो एसेट्स है उसको फ्रीज किया गया है, जिसमें 24 इनिशियल जो बिलियन की जो डीफ्रीजिंग है उसमें से 12 बिलियन का एकदम से आपको रिलीज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइनिंग डी माइनिंग का काम होगा वो भी लगातार किया जाएगा। तो ये सारे संकेत तो देते हैं कि जब 19 तारीख को दोनों देश मिलेंगे तो इनको लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि जो 60 दिन का दौर होगा, क्योंकि पूजा इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब बातचीत करते करते जब अंडरस्टैंडिंग बनते बनते एक बार फिर से वॉयलेशन किया गया है, खासतौर पर लेबनान को लेकर ईरान की नाराजगी या ईरान की जो तलखी है बहुत ज्यादा सख्त रही है। अब ऐसे में इसराइल को मॉनिटर करना, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इसराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत करके सहमति बनाने की कोशिश की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। कल पीएम मोदी ने फ्रांस दौरे के पहले चरण में राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। आज पीएम मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनका स्वागत वंदे मातरम के साथ हुआ।
3: ये दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देर शाम पीएम मोदी और इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने वार्षिक व्यापार को मौजूदा 16 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करने का 5 वर्षीय लक्ष्य रखा। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे सहयोग गोपनीय डेटा के लिए सुरक्षा समझौता, पेरिस नीस हवाई अड्डों तक भारत के यूपीआई पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा और मोबिलिटी जैसे अहम समझौते शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया है। फ्रांस के बाद अब पीएम मोदी स्लोवाकिया की ऐतिहासिक दो दिन की यात्रा पर है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक क्षेत्रों में नए मौकों की तलाश करने पर केंद्रित होगी। स्लोवाकिया के बाद सबकी नजरें G7 समिट पर होंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं से मिलेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब बात कर लेते हैं सियासी खबरों की। टीएमसी के बागी सांसदों ने कल दिल्ली में बैठक के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ये सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में असली तृणमूल होने का भी दावा करेंगे।
0: टीएमसी में बगावत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एक क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के 19 बागी लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, एनसीपीआई में शामिल होने के लिए विलय का दावा पेश किया। सांसदों ने 20 हस्ताक्षरों वाला पत्र स्पीकर को सौंपा। वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हमारे साथ 20 सांसद हैं जो संसदीय दल की 2/3 संख्या बनाते हैं। अभी पार्टी के नाम पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसून सत्र के दौरान अदालत में असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा पेश किया जा सकता है। इस बार टीएमसी ममता गुट भी बागियों के सामने आ खड़ा हुआ है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधायी दल से ऊपर मूल राजनीतिक दल होता है और वैध विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल भी किसी दूसरे दल में विलय करे। केवल सांसदों के अलग होने से विलय मान्य नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल पार्टी की सहमति के बिना किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकता है। अब पूरे घटनाक्रम पर नजरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: पहले आम आदमी पार्टी फिर टीएमसी के सांसदों की टूट के बाद अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज है। अटकलें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की लग रही है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अब शिवसेना यूबीटी की ओर से इसका जवाब भी सामने आया है।
0: क्या टीएमसी में हुई बड़ी टूट का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिख सकता है? आखिर महाराष्ट्र के राजनीति गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा क्यों हो रही है, जिसके जवाब में अब शिवसेना ऑपरेशन वुल्फ चलाने की बात कर रही है। दरअसल इन चर्चाओं को बल तब मिला जब ये बात सामने आई कि शिवसेना उद्धव गुट के कुछ सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। चर्चा इस बात की भी है कि उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद सियासी पाला बदलने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे का यह कदम उस बड़े मिशन का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना और संसद में अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा करना है। इन अटकलों को बल तब और मिला जब उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सांसदों की बैठक बुला ली, जिसमें 3 सांसद नहीं पहुंचे। हालांकि इस हलचल के बीच शिवसेना ऐसे दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही है।
4: हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं।
5: जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, तो उनको सड़क पर तोड़ेंगे। जनता के मन में जो गुस्सा है ना, मैं देख रहा हूं। देखो आप, वो आगे दौड़ेंगे, जनता पीछे दौड़ते रहेंगे।
0: टीएमसी में टूट पहले ही ममता और पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई सियासी खेला होता है तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
1: वहीं उत्तर प्रदेश में 27 के समर के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस ली है। कल उन्होंने बहराइच में एक रैली की। ओवैसी के यूपी में सक्रिय हो जाने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश के पीडीए को ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे।
6: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और इनके बीच अपनी सियासी जमीन तलाश थी AIMIM।
7: हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं, पूरी पार्टी तैयार है, और देखिए गठबंधन भी होगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है।
6: ऐसे में सवाल है कि क्या वो वैसे मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी, या फिर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
8: उत्तर प्रदेश में करने वाले थे, धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने वाले थे, उनके दल करने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है, और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
6: उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए तो 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 फीसदी से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में हैं। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? आज तक ब्यूरो।
1: तो वही अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हुए चोरी की जांच SIT आज से शुरू करेगी, और SIT 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी।
3: करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप सामने आते ही सियासत सुलग उठी, सैकड़ों सवाल उठे, विपक्षी हमले तेज हुए। अब राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन मामले की जांच तेज हो गई है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। इस SIT के प्रमुख लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को बनाया गया है, साथ ही IPS किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। हालांकि जांच के लिए SIT के गठन के बीच विपक्ष का हमला थम नहीं रहा।
9: सरकार के कोई मंत्री वहां गए थे और प्रेस के लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है। अरे भाई, वोट लेते हो तो मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है।
10: सरकार ने लगभग 100 से ज्यादा अब तक SIT गठित की, एक भी SIT का आज तक रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया कि किस SIT में कौन दोषी पाया गया और किसके खिलाफ कार्रवाई है।
3: दरअसल राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान राम के लिए पैसे, गहने और दूसरी चीजें चढ़ाते हैं। ये दान मंदिर के दान पात्रों में जमा होता है। इनके पैसे निकालने और गिनने का काम कुछ कर्मचारियों को दिया गया है। आरोप है कि इन्हीं कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए चुरा लिए। ये मामला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि जिन कर्मचारियों की तनख्वाह महीने के 18 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने करोड़ों की जमीन और प्लॉट खरीद लिए। यहीं से मामला खुला और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब SIT इस मामले की जांच में जुटी है ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। आज तक ब्यूरो।
1: तो वही नोएडा के जेवा एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो गया है। दरअसल पहली उड़ान से 70 किसान लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये वो किसान हैं जिन्होंने जेवा एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमित, अब देखिए इसकी शुरुआत होने वाली है, ऐसे में एक बार तस्वीरें भी दिखाएगा और बताएगा कि कब तक वो किसान लखनऊ पहुंच जाएंगे।
11: पूजा, देखिए इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमने स्क्रैच से बनते हुए देखा है। जब ये फैसिलिटी लगभग बनकर तैयार हो गई थी तब भी मैं आया था, और आज जून के महीने में पहली उड़ान, जब हम ये बात कर रहे हैं तब लखनऊ की फ्लाइट के लिए और बेंगलुरु की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। यूनियन एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू अगस्त तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के बाद सीधे बोर्डिंग गेट तक गए हैं। वहां पे जो यात्री हैं, जिसमें लखनऊ जाने वाले यात्रियों में वो किसान भी शामिल हैं जिनकी जमीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए ली गई थी, अक्वायर किया गया था, उन तमाम लोगों को उस फ्लाइट में बोर्ड कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो आज मिलेंगे। ना केवल एयरपोर्ट पे चर्चा होगी बल्कि इस एयरपोर्ट की वजह से किस तरह से नौकरियों का अनटैप्ड जो पूरा एरिया है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन में आग की अफवाह से नीचे कूदे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें चार यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। ट्रेन के एक कोच में मोबाइल ब्लास्ट जैसी अफवाह फैल गई, जिससे कि यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्रियों ने जल्दबाजी में ट्रेन से उतरना शुरू कर दिया। तो ये आगे बढ़ते हैं, आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान का आगाज किया और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने 64 रनों से जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 171 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही सिमट गई। चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। राजस्थान के अजमेर में अचानक भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में भीषण आग भड़क उठी, आग ने देखते ही देखते बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। गुजरात के भुज में पानी की भारी किल्लत के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें, नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन फटने के कारण 20 फीट ऊंचा पानी के फवारे बना। प्रयागराज में मशहूर पड़पड़ वाटरफॉल बना जंग का मैदान, दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के हिंसक रूप ले लिया और जमकर लाठी डंडे चले। दक्षिण 24 परगना में चोर होने के शक में भीड़ ने मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी, मामले में 7 लोग गिरफ्तार। गया जंक्शन पर परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़, यात्रियों की छूटी ट्रेन, ट्रेन की खिड़की से घुसते हुए दिखे परीक्षार्थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने की वजह से बाढ़ आई, जिससे सड़क जाम हो गई और ट्रैफिक बाधित हो गया। बिहार के नालंदा में मैजिक गाड़ी में महज 9 से 10 लोगों के बैठने की क्षमता में करीब 50 लोग सवार हुए दिखे, आधे लोग गाड़ी के अंदर बैठे तो आधे छत पर बैठकर कर रहे थे सफर। क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? 10 लोगों के बैठने की क्षमता में करीब 50 लोग सवार हुए दिखे, आधे लोग गाड़ी के अंदर बैठे तो आधे छत पर बैठकर कर रहे थे सफर। क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द और साथ ही प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे ही घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में और गमलों में, साथ ही बालकनी या फिर कहीं भी जमा साफ पानी में, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति या एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। और इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें और साथ ही दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी तो डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए साथ लड़ेंगे डेंगू से। और इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: हाँ
13: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn. Sokudo.
14: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
15: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
16: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
14: मतलब
16: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
14: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
16: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
1: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
7: वैभव इंडिया खेलेंगे, ये सबको पता था। इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
8: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर। और आपको भी प्रणाम करते हैं सर, वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
7: जी,
8: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा, और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेनर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अमेरिका ईरान के बीच जंग पर होगा पूर्ण विराम। ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान, कहा टोल फ्री होगा हॉर्मुज। अमेरिकी नौसेना हटाने के आदेश, कच्चे तेल की कीमतें गिरी।

ईरान के उपविदेश मंत्री का बयान, अमेरिका के साथ शांति समझौता फाइनल स्विट्जरलैंड में होंगे, शुक्रवार को हस्ताक्षर, ड्राफ्ट में ईरान के अहम मुद्दे शामिल। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस, ट्रंप से मुलाकात पर होगी दुनिया की नजरें। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी, लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा, दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट, ऋचा घोष और स्मृति मंधाना ने खेली तूफानी पारी।

स्लोवाकिया के ब्रैटिस्लावा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। स्लोवाकिया में दो दिवसीय दौरा शुरू। पीएम मोदी का स्लोवाकिया में गर्मजोशी से स्वागत। ब्रेड सॉल्ट परंपरा और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने खींचा ध्यान। वंदे मातरम की गूंज वहां सुनाई दी। लोक नृत्य से गूंजा पीएम मोदी का स्वागत समारोह। स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी लुचिनका एंसेंबल ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग। यात्रियों ने तालियों से किया भव्य स्वागत। ट्रंप ने किया अमेरिका ईरान समझौते का ऐलान। युद्ध विराम लागू होने की घोषणा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम का दावा। युद्ध में ईरान की जीत के बाद दुश्मन को करनी पड़ी युद्ध विराम की मांग। स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को होगी ऐतिहासिक डील। आज रात से थमेगी जंग की आग और हटेगी अमेरिकी नाकेबंदी। ईरान अमेरिका समझौते की खबर के बाद लेबनान में जश्न। सड़कों पर उतरे लोग। प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते की चर्चाओं के बीच लेबनान में उत्सव का माहौल। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि यह अंतिम समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी। तब तक अमेरिका के वादों पर रहेगी ईरान की नजर। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में नाकाम रहता है तो वो तेहरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू कर देंगे। ईरान की मेहर पत्रिका ने वॉशिंगटन के साथ हुए समझौते के 14 सूत्रीय मसौदा को जारी किया। 24 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों में से आधी जारी करने का दावा। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर लगे प्रतिबंध समय से पहले ही निलंबित कर जाने का भी दावा। हुर्मुज जलडमरू मध्य को ईरानी सुरक्षा नियंत्रण में फिर से खोलने की कही बात। कतर में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने में बताया अहम कदम। ब्रिटेन ने भी दोनों देशों के बीच हुए समझौते का किया स्वागत। पीएम स्टार्मर ने कहा मध्यस्थता की भूमिका बनाने वाले सभी देशों की बधाई। यूके फ्रांस जर्मनी और इटली समेत यूरोप के चार देशों ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से प्रतिबंध हटाने को तैयार है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी फैसले का स्वागत किया। कहा यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक अहम कदम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि वो इसे जल्द से जल्द पूरी तरह से लागू करें। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद क्रूड तेल की कीमत में 4% से अधिक की भारी गिरावट आई। G7 समिट से ठीक पहले जिनेवा में हालात तनावपूर्ण। यूएन मुख्यालय के पास प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सड़क से ईंट उखाड़कर पुलिस पर फेंकी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हिंसा शुरू होने के बाद तनाव बढ़ने पर पूरे शहर में प्रदर्शन जारी रहा। पूंजीवाद वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता के विरोध में जुटे थे लोग। ब्राजील के लाइमीरा में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान एक भयावह हादसा हुआ। एडवेंचर कंपनी की घोर लापरवाही से 24 वर्षीय युवती की बंजी जंपिंग के दौरान मौत हुई। स्थानीय पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियां यहां पर पता लगाने में जुटी हुई है कि सुरक्षा प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और जिम्मेदारी किसकी थी। अमेरिका ईरान पीस डील से ठीक पहले इसराइल का बेरूत पर बड़ा हमला। हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर के हमले 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक। औद्योगिक ईंधन डिपो को बनाया गया निशाना। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात। दोनों देशों के बीच नई तकनीकी साझेदारी की घोषणा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि मिडिल पावर देशों को महाशक्तियों का फेवर पाने के लिए आपस में होड़ नहीं करनी चाहिए। एनबीए फाइनल में न्यूयॉर्क निक्स की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे बास्केटबॉल फैंस हुए बेकाबू। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में वर्ल्ड कप बस को लगाया। पीओजेके में बर्बरता के खिलाफ लंदन में विरोध प्रदर्शन। यूके पार्लियामेंट के बाहर लोगों ने पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना के खिलाफ आवाज की बुलंद। ट्रंप पुतिन के बीच फोन पर फिर से हुई बातचीत। 55 मिनट में यूक्रेन ईरान और आपसी रिश्तों पर चर्चा। हॉर्मुज में तनाव के बीच भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर बोकेम मरेंगो पर ड्रोन हमला। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा लेकिन सभी भारतीय नाविक सुरक्षित रहे। गाजा में मौत का आंकड़ा 73,000 के पार। सीज फायर के बावजूद इजरायली हमले जारी। फ्रांस से 2 दिनों के स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। स्लोवाकिया में रक्षा और मोबिलिटी पर घोषणाओं की उम्मीद। फ्रांस के साथ पीएम मोदी ने रिश्तों को बताया बेहद ही खास। कहा भारत और फ्रांस का रिश्ता भरोसे साझा सोच और साझा लक्ष्य पर आधारित। द्विपक्षीय वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स
2026 प्रोग्राम का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस समेत दूसरे देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को नीस के पास स्थित विला घुमाया और साथ ही फ्रांस की प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में कराया रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून को फ्रांस के एवियान में G7 समिट में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले टीएमसी के बागी सांसद, दस्तखत वाली चिट्ठी सौंपी, लोकसभा में अलग सीट की मांग की। बंगाल में ममता बनर्जी को झटका, टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान, बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने किया दावा। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय के ऐलान के बाद बोली सांसद काकुली घोष, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर करेंगे काम। बागियों से पहले ममता के समर्थन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात, कहा ममता बनर्जी ने ही इस पार्टी को खड़ा किया, इसलिए वही असली पार्टी। बंगाल में फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी का एक्शन, अभिषेक बनर्जी से करीब 7 घंटे और कुणाल घोष से 4 घंटे तक पूछताछ। बंगाल में अम्फान रिलीफ फंड में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज। डायमंड हार्बर कोर्ट ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस हिरासत 6 दिन के लिए बढ़ाई, चुनाव में धांधली, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे आरोप। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, घुसपैठियों के 12,000 मामले दर्ज, अब तक 5,000 घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका। शिवसेना यूबीटी में ऑपरेशन टाइगर के अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री पर पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक, संजय राउत बोले सभी 9 सांसद रहे मौजूद। बीजेपी पर भड़के संजय राउत, कहा जिस दिन हमारे हाथ में आएगी सत्ता बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। बहराइच से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंका, कहा हमारी कोशिश हो कि यूपी में दोबारा बीजेपी की ना बने सरकार। अखिलेश यादव पर भड़के ओवैसी, कहा बिहार चुनाव में आपने मेरी पार्टी के खिलाफ प्रचार के लिए सांसदों को भेजा था, लेकिन आपकी साजिश हो गई है बेनकाब और हम जीत गए। राम मंदिर की दान राशि को लेकर उठे सवालों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान, एसआईटी जल्द जांच शुरू कर सकती है। राम मंदिर चंदा विवाद पर अखिलेश बोले अफसर साधु संतों की करेंगे जांच, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। आगरा में अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान कर देंगे माफ। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ भारत की धमाकेदार शुरुआत, अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया, उन्होंने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। श्री चरणी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला। नोएडा के लोगों को आज मिलेगी उड़ान की सौगात, जेवर एयरपोर्ट पर शुरू होंगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, 172 किसान करेंगे पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे 172 किसान, परियोजना के लिए किसानों ने अपनी दी थी जमीनें। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर। ग्रेटर बेंगलुरु टाउनशिप परियोजना को मंजूरी, पहले चरण में 518 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। बीजेपी और जेडीएस ने बिदादी टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में दखल देने के लिए राहुल गांधी को लिखा पत्र, डीके शिवकुमार ने प्रोजेक्ट को बर्खास्त किया। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय पर स्टालिन का हमला, पूछा क्या करूं, सीबीआई मामले की जांच से बचने के लिए दिए गए थे दिल्ली। मीनाक्षी नटराजन के बहाने के टीआर ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को घेरा, कहा रेवंत रेड्डी ने दिया धोखा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः 8:23 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:59 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, हालांकि आज दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें आज तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे,
शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

समस्या आ सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, चोट चपेट से बचाव करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: We missed you a lot.
5: तारीख 17 जून, जगह फ्रांस का इवियन शहर, वक्त शाम के 6:15। ये वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों और ईरान युद्ध के मद्देनजर पूरी दुनिया की निगाहें G7 के साथ साथ इस मुलाकात पर होंगी। पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप और मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। तब भारत और पाकिस्तान के तल्ख होते रिश्तों के बीच ट्रंप के बयानों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव आया, खास तौर पर ट्रेड डील को लेकर। अब जबकि दोनों नेताओं की फ्रांस में मुलाकात तय हो गई है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर सहमति बनने जा रही है और ये दोनों देशों के रिश्तों में आने वाले सुधार के संकेत। वैसे अभी हफ्ते भर पहले ही ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की बात फिर दोहराई थी और जल्द ही ट्रेड डील करने का ऐलान किया।
6: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
5: माना जा रहा है कि जब G7 बैठक के बाद मोदी और ट्रंप मिलेंगे, तो कई मुद्दे एजेंडे में रहेंगे। व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। कारोबार को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन किसी अंतिम समझौते के ऐलान की उम्मीद फिलहाल नहीं। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिले। रूस से तेल खरीदने से लेकर भारतीय जहाजों पर हमले जैसे कई मुद्दों पर खींचतान बढ़ी। ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान और रूस के साथ कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों को लेकर काफी संतुलित रवैया अपनाया है। भारत की जरूरतों और सोच को प्राथमिकता दी है और अपना साफ रुख पूरी दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका और यूरोप को कई बार भारत का ये रुख अखरा भी है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति और अर्थनीति को इस मुश्किल वक्त में और मजबूत बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट और ट्रंप से मुलाकात के बाद 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वो अतिरिक्त द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो।
7: दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर देर रात एयरपोर्ट से घर लौटना हो, ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज हमारी लाइफ का खास हिस्सा बन चुकी हैं। आरामदेह सफर और एक क्लिक पर गाड़ी हाजिर होने की सहूलियत ने आम आदमी को इसका आदि बना दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स के नए नियमों की वजह से ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं काफी महंगी होने वाली हैं। दरअसल एक नए सर्वे से जो जानकारी बाहर आई है, वो पैसेंजर्स के साथ साथ ड्राइवरों को भी बड़ी टेंशन देने वाली है, जिसके मुताबिक ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर 5% एक्स्ट्रा GST लगाने की तैयारी चल रही है। इस अतिरिक्त टैक्स से पैसेंजर्स

पर सीधे किराए का बड़ा बोझ बढ़ने की आशंका है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को डर है कि इस नए बदलाव के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ड्राइवर उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना पसंद करते हैं जहां वो फिक्स चार्ज देकर जुड़ते हैं और पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। नया टैक्स लागू होने के बाद उनका पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सर्वे में दावा किया गया है कि 75% से ज्यादा ड्राइवर्स को डर है कि नए टैक्स की वजह से उनकी कमाई घट जाएगी। कमाई कम होने के डर से कई ड्राइवरों ने कैब एग्रीगेटर के साथ काम छोड़कर दूसरा काम तलाशने की बात कही है। 2/3 से ज्यादा पैसेंजर्स का कहना है कि किराया बढ़ने पर वो ऐप से कैब बुक करना कम कर देंगे। टैक्स के इस नए बोझ के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगे किराए की वजह से बड़ी संख्या में लोग और ड्राइवर दोनों ही दूसरे ऑप्शंस की तलाश में जुट जाएंगे। मौजूदा समय में टैक्स के सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल ओला और उबर जैसी कंपनियां जिस मॉडल पर काम कर रही हैं, उसमें टैक्स का पूरा जिम्मा कंपनियों के पास ही होता है। फिलहाल पैसेंजर्स अपनी कुल राइड वैल्यू पर 5% GST देते हैं। इस स्टैंडर्ड कमीशन बेस्ड मॉडल के तहत कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती और कानूनी तौर पर ऐप एग्रीगेटर कंपनियां ही पैसेंजर्स से ये टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करती हैं। इस पूरे सिस्टम में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर आपकी पॉकेट और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता को राहत देने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आदित्य किराणा, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अमेरिका ईरान जंग पर पूर्ण विराम, ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान। ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में करेंगे दस्तखत, कच्चा तेल हुआ सस्ता। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस, ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया भर की नजर। आज से SIT शुरू कर सकती है अयोध्या के राम मंदिर चंदा खबर मामले में जांच, कटियार ने चंपत राय पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव बोले चढ़ावा लौटा कर माफी मांगे। नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे TMC के बागी, लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बैनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ानें शुरू, लखनऊ से आई पहली फ्लाइट। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम 9 बज गए के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं इस खास पेशकश में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इस बुलेटिन में क्या स्पेशल आपके लिए। इस बुलेटिन में आपको बताया जाएगा अमेरिका और ईरान डील का सबसे बड़ा हासिल क्या है। साथ ही इस बुलेटिन में हम जिक्र करेंगे यूपी की सियासत की भी। असदुद्दीन ओवैसी के मिशन 2027 का क्या है एजेंडा। इसके साथ ही खबर गौतम बुद्ध नगर से लखनऊ की पहली उड़ान की भी आपको दिखाएंगे झलक। 172 किसानों की यह यात्रा कितनी खास रही दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे के बाद आपको दिखाएंगे आपके शहर की खबर 100 शहर 100 खबर में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहली खबर आपको देते हैं और सबसे बड़ी खबर विश्व भर के लिए। अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो गई है, दोनों ही देशों में शांति समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते का ऐलान कर दिया है। ईरान की ओर से भी जानकारी दे दी गई है कि अमेरिका से डील पर सहमति बन गई है। अब 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का रास्ता साफ हो गया, यानी अब इस अहम रूट से तेल और गैस के जहाज गुजरेंगे और मंडरा रहा आर्थिक संकट वो थोड़ा सा खत्म होगा। और बहुत बड़ी राहत है ईरान अमेरिका के बीच में शांति समझौता। अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध पर अब पूर्ण विराम लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ डील का ऐलान कर दिया है।
1: अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर के अब पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला लिया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। सीजफायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का, बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।
0: और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज की इस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग जरूर कहा जा सकता है, लेकिन अब किसकी शर्त मानी गई है?
2: देखिए, शर्तें तो आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कोशिश की गई कि एक दूसरे पर प्रेशर डालकर अपनी शर्तें मनवाने का। लेकिन अगर आप पूरे अगर ड्राफ्ट को देखें, मेमोरेंडम को आप देखें, तो आपको नजर आएगा कि देखिए ईरान ने जरूर ये कोशिश की कि एक प्रेशर पॉइंट बनाया जा सके जिससे ना सिर्फ अमेरिका से वो पैसे लिए जा सके, ब्लॉकेट खुलवाने की बात की जा रही। लेकिन अभी अगर आप मैं बताऊं, अगर राजीव जो गेम है या फिर जो प्रेशर है वो अमेरिका के हाथ में भी है, क्योंकि 30 दिन का वक्त है ब्लॉकेट खोलने का अमेरिका के पास। और ऐसे में 30 दिन के अंदर अगर ईरान की तरफ से कोई ऐसी आप कह सकते वॉलेशन होता है या ईरान की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर डाला जाता तो निश्चित तौर पर ब्लॉकेट तो नहीं खोला जाएगा बल्कि ईरान पर बड़े हमले भी होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन बात के संकेत दे चुके हैं। हालांकि शुभ संकेत यही है कि देखिए अब दोनों के बीच में बातचीत हो गई है और 19 तारीख को दोनों के बीच में ये ड्राफ्ट एक नेगोशिएशन टर्म्स का या फिर एक सहमति का आप कह सकते हैं कि रूप ले लेगा। और माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक होगी। लेकिन इसी बीच इसराइल के आप कह सकते हैं एक्शंस को भी देखना होगा, मॉनिटर करना होगा, क्योंकि इसराइल एक ऐसी पार्टी है पूरे कंफ्लिक्ट के अंदर जो ना तो अमेरिका की सुनती है ना ही किसी देश की और की सुन रही है। राजीव
0: और सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में अहम समझौते के जो मुख्य बिंदु क्या है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष बताएं 14 पॉइंट्स क्या हैं?
3: जो सबसे बड़ा टकराव का मुद्दा था वो था यूरेनियम को लेकर के। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है जिस पर शुक्रवार को दस्तखत हुआ, उसमें पहला पॉइंट ये है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो। यानी ईरान और अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशन रोकेंगे, लेकिन एक शर्त ये भी है कि अब लेबनान पर फायरिंग नहीं होगी। अब इसराइल ने कहा है कि वो दक्षिण से भले न हटे लेकिन वो अब लेबनान में बॉम्बिंग नहीं करेगा। ये देखना होगा कि इसराइल इस बात को मानता है कि नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ईरान 30 दिन में हॉर्मुज खोलने की व्यवस्था करेगा। ईरान ने कहा भी था अमेरिका ने कहा कि हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन हटा रहे हैं, नेवी ब्लॉकेड खत्म कर रहे हैं। ईरान को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 दिन में वो हॉर्मुज से हटे, जहाजों की आवाजाही शुरू हो। ईरान के तेल एक्सपोर्ट से जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएंगी। अब आप देखिए कि एक तिहाई तेल जो है वो अगर वेस्ट एशिया से निकलता है तो ईरान पर सैंक्शन था, अब वो खुले बाजार में अपना तेल बेच पाएगा, जिसका फायदा भारत को भी होगा। यानी तेल की कीमतें जो है कम होने के पूरे आसार हैं जैसे ही ये सैंक्शन हट जाते हैं। चौथी बड़ी बात, ईरान अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। $100 बिलियन उसके जो एसेट है दुनिया भर में, उसको अमेरिका ने सैंक्शन करके फ्रीज कर रखा। अगर वो खुल जाते हैं तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पांचवा मुद्दा, ईरान के फ्रीज $24 अरब 60 दिन में जारी हो जाएंगे। वो पैसा उसे जब वापस मिल जाता है जो अलग अलग दुनिया भर के वैश्विक संस्थानों में फ्रीज किए गए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कारोबार आगे बढ़ेगा। $12 अरब बातचीत शुरू होते ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी ईरान में अगर जो संकट है, आर्थिक संकट, उसको उससे तुरंत मदद मिलेगी, जहां पर वो उसकी अर्थव्यवस्था ठीक जाएगी। यूएस और सहयोगी जो देश है $300 अरब की ईरान पुनर्निर्माण योजनाएं पेश करेंगे। ईरान ने शर्त रखी थी, आपकी बॉम्बिंग में हमें नुकसान हुआ, हमारे रेलवे टूटे, हमारे पुल टूटे, स्कूल टूटे, अस्पताल टूटे, सड़कों को नुकसान हुआ है, उन सब के पुनर्निर्माण के लिए मदद की जाएगी। ईरान की संप्रभुता और सम्मान का वादा करेगा अमेरिका। ईरान ने कहा था कि जो उसकी सोवरेनिटी है वो हॉर्मुज पर रहेगी, और इसीलिए वो मानना पड़ेगा कि ईरान का स्वामित्व उस इलाके में बरकरार रहेगा। यूएस की नौसेना नाकेबंदी 30 दिन में पूरी तरह हट जाएगी, इस शर्त पर भी अमेरिका तैयार हुआ। ट्रंप ने खुद कहा कि नेवी ब्लॉकेड हटे हैं, सारे जहाज अपने इंजन अब शुरू कर लें, अब घर लौटने की बारी है। आखिर दूसरा पॉइंट दिखाते हैं कि दसवां मुद्दा वो क्या है, और ये जो पॉइंट है इसमें है अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगे। अब आप अगर देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान में जहां पर वो जहाज हैं वहां से उन्हें पीछे हटना होगा। 11वां जो मुद्दा है वो है परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की समय सीमा। जो उसके न्यूक्लियर डस्ट है, एनरिच यूरेनियम है, क्या वो इस्फहान में दब गए हैं? अगर उसे निकालना है आईएए को देना है या यूएस के पास होगा, कैसे उसका निष्कासन होगा, इसके लिए 60 दिन की सीमा। 12वीं बात क्या है, ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए एनपीटी के वादे को दोहराएगा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है जिसके तहत वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर ईरान ने सहमति दी है और इसके लिए 60 दिन की बातचीत होगी। समझौते को लेकर ईरान पर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा। यानी दोनों देशों के जो चौथा बिंदु हैं उन पे बिंदुवार तरीके से इनका पालन हो रहा है कि नहीं, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था होगी, क्या वो यूएन होगा, ये देखना होगा। 14वां मुद्दा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ईरान इसीलिए तैयार था कि अगर हम
0: बिल्कुल मुद्दे और इस बीच में अब उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान में समझौते का ऐलान होते ही अब लेबनान में जश्न देखने को मिला है। तस्वीरें सामने आए, ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया कि झील के पास लेबनान में कई लोग कई जगहों पर झूमते दिखाई दिए, खुशियां मनाते दिखाई दिए। ये देखिए लेबनान में लोगों की खुशी है, जहां लगातार टेंशन थी क्योंकि इसराइल लगातार हमला कर रहा था, युद्ध विराम के बावजूद भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा था, और जब ये डील हुई है, अब हस्ताक्षर इस पर भी होने हैं लेकिन डील हो गई है, समझौता हो गया है, तो ये लेबनान में जश्न है। चलिए खबर यूपी की सियासत की करते हैं। एक दिन पहले 2027 की सियासी लड़ाई के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने चुनावी प्लान का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बहराइच में बीती रात एक रैली की, इस रैली के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला, साथ ही योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए, साथ ही भावी गठबंधन को लेकर भी अपना रुख उन्होंने बता दिया है। यूपी के सियासी संग्राम और AIMIM की चुनावी रणनीति को लेकर आज तक संवाददाता समत श्रीवास्तव ने असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की है।
4: बहराइच को चुना है आपने, चुनावी शंखनाद किया है, कितनी सीट्स पर प्लानिंग है, गठबंधन के लिए भी क्या बातचीत होगी, क्या प्लानिंग है आपकी?
5: देखिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग इस चुनाव में पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं, और इस सिलसिले में हमारे जो स्टेट के अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब और हमारे पूरे पार्टी के पोस्ट होल्डर्स मेंबर्स सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि कल की जो हमारी पब्लिक मीटिंग हुई बहुत कामयाब रही। और तीसरी बात यह है कि हम पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
4: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
5: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा, किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा।
4: अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए है, क्योंकि आप देखें अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जाति समीकरण की बात करें, उसके हिसाब से
5: वो तो नाकाम साबित हो रहे हैं। 2014 से हर चुनाव हार रहे हैं, और फिर हमारी पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने खुद बैठकर बिहार में कैंपेन चलाया, उनके कितने 5 या 7 सांसद को वहां पर उतार दिए हमारे सीमांचल में, और बड़ा ही नेगेटिव और झूठा कैंपेन चलाया हमारे खिलाफ उन्होंने। उसका असर कुछ नहीं हुआ, हमारे एमएलए तो जीत गए, अच्छे खासे वोट भी मिले हमको जहां पर हम नहीं जीत पाए। तो अब नहीं मालूम, अब जाहिर चुनाव जब लड़ेंगे तो जाहिर है हम अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते।
4: आपसे कई बार सवाल हुआ है कि सपा दोबारा वही बात कह रही है, बी टीम, और आप इसका जवाब?
5: देखिए जवाब क्या देने का है, बिहार में आप हमारे खिलाफ कैंपेन किए, आपने तेजस्वी यादव राजद का साथ दिया, कौन जीता वहां पर? फिर उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव हुआ, उसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर लिमान साहब ने कहा कि सर हमको हम चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, मिला करिए, हम सपोर्ट किए। किसके एमएलए भाग गए? कांग्रेस के और राजद का मुस्लिम एमएलए भाग गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। बंगाल में लाइन लगाकर पूरे टीएमसी के लोग भाग रहे हैं, इसके जिम्मेदार मैं हूं। तो इन लोगों को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि भैया आप देख लीजिए बी टीम कौन है, अब आपकी वजह से लोग भाग रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी को जरूर हराइए, मगर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पैदा करिए। देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना, ये लोग, इनको अकल नहीं है, इनके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि नहीं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। भाई कभी संविधान का आर्टिकल 37 तो पढ़ लो जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, कभी संविधान का पहला पन्ना पढ़ लो जो जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल वर्ड इस्तेमाल हुआ उसमें। तो हम जो काम कर रहे हैं वो संविधान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और इसमें कोई गुनाह नहीं है।
0: अब बात अयोध्या की, अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है, और आज एसआईटी की जांच भी शुरू होने की संभावना है। अब इस पूरे मामले में विपक्षी हमले तेज हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर एक और अहम बयान दिया। उन्होंने एसआईटी गठित किए जाने पर कहा कि राम मंदिर और साधु संतों से जुड़े मामलों की जांच अधिकारियों से करवाना यह तो सनातन परंपरा का अपमान।
6: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए कि बताइए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ली, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो माफ कर दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है।
0: तो सवाल तब भी थे जब जांच शुरू नहीं हो रही थी, और अब जांच शुरू हो रही है तब भी सवाल है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या से शुरू कर रही है, और क्या सबसे पहले साधु संतों से इन्वेस्टिगेशन पूछताछ होगी इस मामले में?
7: देखिए इस पूरे मामले को लेकर जब राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एक सप्ताह हो गया, बीते रविवार से पूरा मामला उस समय आया जब अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की सिफारिश की और उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है। ये एसआईटी लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त फाइनेंस ऑफिसर है नील रतन, इनके द्वारा ये 3 सदस्यीय एसआईटी है जो आज एसआईटी जाएगी। एसआईटी ये तय करेगी कि ये घटना हुई तो कैसे हुई और किस तरीके की परिस्थितियों में हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे पहले अगर एसआईटी को ऐसे सबूत मिलते हैं कि कोई चोरी हुई है तो उसमें क्राइम हुआ है तो पहले तो एफआईआर ही होगी। एफआईआर होने के बाद ये तय होगा कि इसमें कौन कौन दोषी है, कौन कौन नहीं है, किसकी लापरवाही से। तो एसआईटी आज जाएगी, संभवतः करीब 1 बजे के लगभग एसआईटी की टीम पहुंचेगी वहां पर, जिसमें तीनों सदस्य होंगे। एसआईटी की टीम राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से, चाहे वो चंपत राय हो या गोपाल जी हो या तमाम अनिल मिश्रा हो, इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। वहीं पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम देखेगी और किन सबूतों के आधार पर, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं कि कोई एक कर्मचारी पकड़ा गया, उस जो नोट गिनने में लगा हुआ था उसके घर से 7 लाख रुपए बरामद हुए, ये तमाम बातें सामने आ रही, तो इन बातों की सत्यता क्या है और ये घटना हुई कि नहीं हुई, इस मामले को लेकर के एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी। तो आज एसआईटी अयोध्या पहुंचेगी, लगभग 1 बजे अपनी जांच शुरू करेगी।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब अयोध्या से पूर्व सांसद और फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर में चढ़ावे में हुई कथित चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक से खास बातचीत की और कहा कि वो जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे।
8: ये बताइए कि चल क्या रहा है इस वक्त मंदिर में, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में अचानक से ये मामला आ गया।
9: मंदिर का अचानक नहीं कुछ है, वहां से ले जाने का है। क्यों ले गए पैसा वहां से?
8: कौन ले गया?
9: जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? वहां पर सब तय है, सिस्टम तय है।
8: सिस्टम क्या है और चंपत राय ने क्या किया है?
9: अरे भाई, कुछ ले नहीं गए, ऐसा तो था नहीं। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना। तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
8: कहाँ लेकर के गए चंपत राय?
9: वो जहां रहते हैं
8: कारसेवपुरम,
9: कारसेवपुरम जो हमारी कोठरी कभी हुआ करती थी।
8: तो एक दिन का है, एक दिन कोई लेकर के वहां गया
9: या एक दिन का भी अगर कोई लेकर चला जाएगा तो लंबी रकम जाएगी। एक दिन का लंबी रकम लेकर जाएगा वो। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जांच शुरू हो गई।
8: नहीं, लेकिन आपके जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। आप कह रहे हैं कि चंपत राय जी मंदिर से चढ़ावे को लेकर के कार सेवकपुरम गए?
9: हाँ, नहीं जाना चाहिए था। पैसा उनको वहीं पर देना चाहिए था, वहीं गिनवा देना चाहिए था।
0: अब शेयर मार्केट से बड़ी खबर आपको देते हैं। ईरान यूएस शांति डील का इंपैक्ट अब शेयर बाजार पर दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ा है। 1000 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। निफ्टी भी 350 से ज्यादा के अंक की बढ़त के साथ खुला है और काफी समय के बाद ये सकारात्मक इंपैक्ट शेयर मार्केट पर दिख रहा है। ईरान यूएस डील अब फाइनल हो गई है, समझौते पर बस हस्ताक्षर होने बाकी हैं और अब उसका इंपैक्ट शेयर बाजार पर दिख रहा है। तो शेयर बाजार जहां से लगातार लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, ज्यादा से ज्यादा लगातार जो नुकसान हो रहा था, लेकिन अब जो शेयर मार्केट है, जो शेयर्स हैं वो दौड़ते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें 1000 से ज्यादा अंक के साथ बढ़त बनाए हुए है। सेंसेक्स अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग 327 पर इस समय चल रहा है। तो ये BSE NSE का भी डेटा आपके सामने, तो लगातार जो सारे शेयर लगातार गिर रहे थे शेयर मार्केट में, लगभग हर इंडस्ट्री हर सेक्टर पर इसका अभी पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है और लंबे समय के बाद जो शेयर धारक थे जो परेशान हो रहे थे क्योंकि शेयर की कीमतें बढ़ नहीं पा रही थी, मुनाफा हो नहीं पा रहा था, तो एक ये बड़ा सकारात्मक बढ़ा दिख रहे हैं। बात अब करेंगे तृणमूल कांग्रेस की टीएमसी के बागी सांसद कल दिल्ली में बैठक के बाद से नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का उन्होंने ऐलान कर दिया। ये सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में असली तृणमूल होने का दावा भी करेंगे। उससे पहले आप सबकी निगाहें स्पीकर पर टिकी है कि आखिर वो क्या रुख अपनाते हैं।
3: टीएमसी में बगावत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एक क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के 19 बागी लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, एनसीपीआई में शामिल होने के लिए विलय का दावा पेश किया। सांसदों ने 20 हस्ताक्षरों वाला पत्र स्पीकर को सौंपा। वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हमारे साथ 20 सांसद हैं जो संसदीय दल की 2/3 संख्या बनाते हैं। अभी पार्टी के नाम पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसून सत्र के दौरान अदालत में असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा पेश किया जा सकता है।
10: देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
3: इस बार टीएमसी ममता गुट भी बागियों के सामने आ खड़ा हुआ है।
11: जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। अभी गणतंत्रों में लोकतंत्रों में जो चुनाव नियम है वही होगा।
3: पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधायी दल से ऊपर मूल राजनीतिक दल होता है और वैध विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल भी किसी दूसरे दल में विलय करे। केवल सांसदों के अलग होने से विलय मान्य नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल पार्टी की सहमति के बिना किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकता है। अब पूरे घटनाक्रम पर नजरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, हर एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो चला है, आज क्या क्या होने वाला है इसमें?
12: देखिए, बिल्कुल, स्पीकर को अब फैसला लेना है क्योंकि कल 19 सांसदों ने जो है वो मुलाकात की और 20 सांसदों का जो है वो पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंपा कि उनको जो है एनसीपीआई जो है उसके अंदर मर्ज करने के लिए दिया जाए, मौका मिले। तो एक किस्म से जो है अब स्पीकर को फैसला लेना है कि उनका मर्जर जो है वो स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की थोड़ी सी परेशानियां जो है वो बढ़ेंगी अगर इस गुट को मान्यता मिलती है। कल जिस तरीके से शताब्दी राय या अन्य टीएमसी के सांसदों ने जो है वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया है कि वो आने वाले दिनों में जो है एनसीपीआई के अंदर अपना मर्जर करेंगे और एनडीए सरकार के साथ देंगे, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई है कि मानसून सत्र के अंदर जो है वो महिला आरक्षण बिल को 2029 में लागू किया जाए, उसके साथ साथ जो है वो सॉरी सीमन बिल जो है उसको पास कराने का रास्ता साफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में और जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है, पार्टी के सिंबल और पार्टी के नाम को लेकर जो है लड़ाई जो
0: है ऐसा लगता है कि ममता के बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं चुनावी हार के बाद। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात करते हैं अभिषेक बैनर्जी की, जो कि आज ईडी के सामने पेश होंगे। आज वो शिक्षक भर्ती घोटाले में पेश होने वाले हैं। एक दिन पहले सीआईडी ने लगभग 8 घंटों तक उनसे फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सवाल जवाब किए, उनसे पूछा गया, और इससे पहले 12 जून को लगभग 5 घंटों तक सवाल जवाब हुए थे ये, और इसके बाद कल भी लगभग 8 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है। ये सीआईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस बारे में आपको बता रहे हैं। टीएमसी में जारी बगावत पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल तंज किया और कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है।
13: कोई नहीं है बचा, सब खत्म, पूरा खत्म, वह सब हो गया है। जितना घमंड, इतना अत्याचार पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर ये राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टिकरण भ्रष्टाचारी परिवारवादी एक शक्ति को बंगाल की जनता को उखाड़ फेंकी है। सात साल एक महीने के अंदर उनका पार्टी भी बर्बाद हो गया है। जो सनातनी को गाली देता है, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलता है, जो राम मंदिर के खिलाफ जुलूस निकलता है, वो ये धराधाम में वो ज्यादा दिन तक उनका राज नहीं चलता है।
0: नोएडा के जेवा एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो गया है। पहली उड़ान से 172 किसान लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात करनी है। और ये वो किसान हैं जिन्होंने जेवा एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है। सरकार और प्रशासन का मानना है कि बिना किसानों के सहयोग से ये परियोजना संभव नहीं थी, और इस योगदान को सम्मान देने के लिए पहली उड़ान किसानों के नाम की गई।
14: कितना वायबल लगता है किस तरह से चलना
15: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संभावना बहुत बढ़िया है। यहाँ उसी संभावना के साथ ही यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का एक लक्ष्य हमने रखा, और उस लक्ष्य को आज हमने पूरा किया। आज सिविल एविएशन ऑपरेशंस भी यहाँ से फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट की भी शुरुआत आज होने वाली है। और जिस तरह से एक्साइटमेंट एक तरह से लोगों में, यहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, एक तरफ वो वाला एक्साइटमेंट और दूसरी तरह एयरलाइंस का भी एक्साइटमेंट, दोनों तरह से फुल हाई है एक्साइटमेंट। तो आपको ये से देख के पता चलता है कि आगे जाते हुए ये बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट का हब बनने वाला है।
14: इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब से? ये बड़ा
15: सवाल है। नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जैसे ही हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ये टर्मिनल अप्रूव करेंगे।
0: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी जैसे नेता आज होते हैं तो बीजेपी जैसी पार्टी पर बैन लगा देती। उन्होंने आज के हालात को खतरनाक बताते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है, इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है, ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं।
16: देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल मैंने, आपने भी साथ बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा होगा जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल। अब भी नहीं समझा देश तो देश खुद भुगतेगा, बाद में देशवासी भुगतेंगे, युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए युवा पीढ़ी की मन ज्यादा है, इतना उनको माफ नहीं करेगा। आप क्या कर रहे थे, युवा थे तुम, इन्हीं सोचे देश कमजोर हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझ करके। अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो, और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार।
0: बुलेटिन में बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला जारी। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

अमेरिका ईरान जंग पर पूर्ण विराम, ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान। ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में करेंगे दस्तखत, कच्चा तेल हुआ सस्ता। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस, ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया की नजर। आज से SIT शुरू कर सकती अयोध्या के राम मंदिर। चंदा गबन मामले में जांच, कटियार ने चंपत राय पर उठाए सवाल, अखिलेश यादव बोले चढ़ावा लौटाकर माफी मांगे। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे TMC के बागी, लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बैनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ाने शुरू, लखनऊ से आई पहली फ्लाइट। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर।

ट्रंप ने किया ईरान अमेरिका समझौते का ऐलान, युद्ध विराम लागू होने की घोषणा। ईरान के विदेश मंत्री काजेम ने दावा किया कि युद्ध में ईरान की जीत के बाद दुश्मन को युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी। स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को होगी ऐतिहासिक डील, आज रात से थमेगी जंग की आग, भी हटेगी अमेरिकी नाकेबंदी। ईरान अमेरिका समझौते की खबर के बाद से लेबनान में जश्न, सड़कों पर उतरे लोग। प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते की चर्चाओं के बीच में लेबनान में उत्सव का माहौल। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतिम समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी, तब तक अमेरिका के वादों पर रहेगी ईरान की नजर। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में नाकाम रहता है तो तेहरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू करेंगे। ईरान की मेहर पत्रिका ने वॉशिंगटन के साथ समझौते के 14 सूत्रीय मसौदे को जारी किया, 24 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों से आधी जारी करने का भी दावा। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर लगे प्रतिबंध समय से पहले निलंबित किए जाने का भी दावा है। होर्मुज जल डमरू बंदियों को ईरानी सुरक्षा नियंत्रण में फिर से खोलने की भी बात। कतर ने दोनों देशों के बीच में समझौते का स्वागत किया, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने के लिए बताया अहम कदम। ब्रिटेन ने भी दोनों देशों के बीच में समझौते का किया स्वागत, पीएम सामन ने कहा कि ये मध्यस्थता की भूमिका बनाने वाले सभी देशों को बधाई दी। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत E4 देशों ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से प्रतिबंध हटाने को तैयार है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी फैसले का किया स्वागत, कहा कि यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में अहम कदम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि जल्द से इसे लागू भी करें। अमेरिका और ईरान के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद क्रूड तेल कीमतों में 4% से ज्यादा की कमी आई। फ्रांस से 2 दिनों के स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे, रक्षा और मोबिलिटी पर घोषणाओं की उम्मीद है। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, 2 दिवसीय दौरा है। पीएम मोदी का स्लोवाकिया में गर्मजोशी के साथ स्वागत, ब्रेड सॉल्ट परंपरा और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने खींचा ध्यान। ब्रातिस्लावा में वंदे मातरम की गूंज, लोक नृत्य से गूंजा पीएम मोदी का स्वागत समारोह। स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी और लुचनिका इंसेम्बल ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिसाल। बहराइच में नारों के बीच असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली AIMIM के उम्मीदवार। शौकत अली ने आज तक से की बात कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार। ओवैसी का सियासी हमला, बोले न बुलडोजर से डर है न इनकाउंटर से, आई लव मोहम्मद कहने में डरेंगे नहीं। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को मिली जमानत, सहरसा में भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फैजल खान ने प्रिंस यादव की मौत पर जताया दुख, निष्पक्ष जांच की मांग की। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले टीएमसी के बागी सांसद, दस्तखत वाली चिट्ठी सौंपी। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा झटका, टीएमसी के बीच बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया ऐलान, बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का दावा। NCPI में विलय के ऐलान के बाद से बोली सांसद काकोली घोष कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर करेंगे काम। बागियों से पहले ममता के समर्थन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागर का घोष ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात। बंगाल में फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी का एक्शन, लगभग 7 घंटे तक अभिषेक बैनर्जी और 4 घंटे तक कुणाल घोष से पूछताछ। बंगाल में अम्फान रिलीफ फंड में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ केस। डायमंड हार्बर कोर्ट में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस हिरासत, 6 दिन बढ़ाए गए और चुनाव मैदान दी, रंगदारी जमीन कब्जे जैसे आरोप। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले कि घुसपैठियों के 12,000 मामले दर्ज, उनके खिलाफ 5,000 घुसपैठियों को वापस भेजा। शिवसेना यूपीटी में ऑपरेशन टाइगर की अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के सांसदों की बुलाई बैठक, संजय राउत बोले 9 सांसद मौजूद थे। बीजेपी पर भड़के संजय राउत, कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे बीजेपी बचेगी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंका, कहा कि हमारी कोशिश है कि यूपीपी दोबारा बीजेपी की सरकार न बने। अखिलेश पर भड़के ओवैसी, कहा कि बिहार चुनाव में आपने मेरी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, आपने सांसदों को भेजा, आपकी साजिश बेनकाब हुई, हम जीते। राम मंदिर की दान राशि को लेकर उठे सवालों पर अब ट्रस्ट का बयान, SIT जल्द शुरू करेगी जांच। राम मंदिर चंदा विवाद पर अखिलेश यादव बोले कि अफसर साधु संतों से करेंगे जांच, ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अब आगरा में अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा कि कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान से माफी मांग दीजिए, भगवान माफ कर देंगे।
वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत की शानदार धमाकेदार शुरुआत, जीत के साथ पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से हरा। बेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया, 44 गेंदों पर 68 रन बनाए। हरमनप्रीत ने 36 रन बनाए। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने दो दो विकेट लिए। तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम को एक एक सफलता। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट झटके। श्री चरणी को 3 तो शिफाली वर्मा को 1 विकेट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग, यात्रियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान, 172 किसानों का सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे 172 किसान। परियोजना के लिए इन किसानों ने दी थी जमीन। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री बनाने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन की तैयारियां, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर। ग्रेटर बेंगलुरु टाउनशिप परियोजना को मंजूरी, पहले चरण में 518 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। बीजेपी और जेडीएस ने बिदादी टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में दखल देने के लिए राहुल गांधी को लिखा पत्र। डीके शिवकुमार ने प्रोजेक्ट का बचाव किया। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय पर सैलिन कमला पूछा कि क्या करूर सीबीआई मामले की जांच से बचने के लिए दिल्ली गए थे। मीनाक्षी नटराजन के बहाने केटीआर ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को घेरा, रेवंत रेड्डी ने धोखा दिया कहा। करनाल में सेक्टर 7 में बड़ी चोरी, लॉकर तोड़कर 35 लाख का सोना नकदी लेकर चोर फरार। हाजीपुर में 70 लाख का प्रतिबंधित कफ सिरा बरामद, गोदाम मालिक पर केस। प्रयागराज के पटपड़ वाटरफॉल पर बवाल हुआ, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में लाठी डंडे चल गए। सहारनपुर में पड़ोसियों की कहा सुनी, पुलिस संघर्ष में तब्दील, गोली लगने से बुजुर्ग की मौत। झज्जर में विजय हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ से भिड़ंत हुई। गिरिडीह में जमीन विवाद जादू टोनर के शक में पति पत्नी की हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। अलीगढ़ में महिला को गोली मारने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, वायरल सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुएं में गिरी पिकअप गाड़ी, 8 लोगों की मौत। मुरैना में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, आग की अफवाह के बाद ट्रैक पर कूद गए थे सभी। कटनी में बस पलटने से हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। राजस्थान के दौसा में यूपी रोडवेज बस की टक्कर, 22 लोग घायल। सुपौल में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजगढ़ में पति ने पत्नी को जंजीर से खंभे पर बांधा और सरिये से दागा। धौलपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। दिल्ली के गोविंदपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 3 नाबालिग गिरफ्तार। दरभंगा में बाइक चोरों मैनेजर हत्याकांड में आरोपी सोनू गिरफ्तार, 24 घंटे के भीतर दरभंगा पुलिस को कामयाबी। कानपुर में मछलियों के मरने से नाराज युवक ने सुसाइड कर लिया, घर में किसी ने बंद कर दिया था बिजली कपला। गाजियाबाद में मंदबुद्धि युवक की मौत पर कौशाम्बी थाना पुलिस पर उठे सवाल, परिजनों का आरोप। गुजरात के खेड़ा में अनियंत्रित बस पलटी, मौके पर एक यात्री की मौत, 35 घायल। चारधाम यात्रा की पवित्र यात्रा का 68वां दिन, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा में अब तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन और प्रशासन रख रहा ध्यान। कपाट खुलने के बाद से सबसे ज्यादा केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा कर चुके हैं दर्शन। आस्था भक्ति के साथ बद्रीनाथ धाम भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, 11 लाख से ज्यादा ने अब तक किया दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, 80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब भी दर्शन किए। बाबा नीब करौरी महाराज के कैंची धाम में आज स्थापना दिवस से पहले आस्था का सैलाब उमड़ा दिखा और जयकारों से पूरा भक्तिमय माहौल दिखा। देश भर में आज मनाया जा रहा है सोमपति अमावस्या का त्यौहार, गंगा स्नान के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कबाड़ खुलने के बाद से सबसे ज्यादा केदारनाथ दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था भक्ति के साथ बद्रीनाथ भी लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु, इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तिरुमला मंदिर में जानवी कपूर ने पहनी हड़ौती की शान, सुने चांदी की बुनाई वाली साड़ी चर्चा का बने विषय।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
5: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: इन एसोसिएशन विद
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
10: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
15: करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप सामने आते ही सियासत सुलग उठी, सैकड़ों सवाल उठे, विपक्षी हमले तेज हुए। अब राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन मामले की जांच तेज हो गई है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। इस SIT के प्रमुख लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को बनाया गया है। साथ ही IPS किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। हालांकि जांच के लिए SIT के गठन के बीच विपक्ष का हमला थम नहीं रहा।
16: सरकार के कोई मंत्री वहां गए थे और प्रेस के लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है। अरे भाई, वोट लेते हो तो मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है। तो ये सरकार की तरफ से इसी तरह की मामले को दबाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं।
17: योगी सरकार ने लगभग 100 से ज्यादा अब तक SIT गठित की, एक भी SIT का आज तक रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया कि किस SIT में कौन दोषी पाया गया और किसके खिलाफ कार्रवाई है। चाहे कोरोना काल की SIT हो, चाहे बाकी जगहों की SIT हो, चाहे मुठभेड़ों की SIT हो, आज तक किसी भी SIT का रिजल्ट सामने नहीं आया। SIT सिर्फ दोषियों को बचाने का एक एजेंसी भर रह गई है।
15: दरअसल राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान राम के लिए पैसे, गहने और दूसरी चीजें चढ़ाते हैं। ये दान मंदिर के दान पात्रों में जमा होता है। इनके पैसे निकालने और गिनने का काम कुछ कर्मचारियों को दिया गया है। आरोप है कि इन्हीं कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए चुरा लिए। ये मामला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि जिन कर्मचारियों की तनख्वाह महीने के 18 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने करोड़ों की जमीन और प्लॉट खरीद लिए। यहीं से मामला खुला और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब SIT इस मामले की जांच में जुटी है ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा साफ पानी में, यानी कि डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और अब इन सब के बीच अपनी सियासी जमीन तराशते AIMIM। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी, या फिर इसकी पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM इसे संगठन विस्तार का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुस्लिम वोटों की नई गोलबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यानी मुस्लिम, पिछड़ा और दलित सामाजिक समीकरणों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, जहां प्रतिनिधित्व की भूख बढ़ती है वहां नए दावेदार भी पैदा होते हैं। ओवैसी उसी दावे के साथ मैदान में है।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है, हर पार्टी अपने तैयारी में जुट गई है और उसी कड़ी में AIMIM ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बहराइच में रैली है। ये रैली मटेरा विधानसभा, जो बहराइच जिले में पड़ते मटेरा विधानसभा, वहां पर ये रैली आयोजित की गई है। अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसकी धमक यहाँ पर ज्यादा है, जो वोटर है वो ज्यादा है। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी।
0: समाजवादी पार्टी की रणनीति में फिलहाल दम भी दिखता है, क्योंकि अब तक ओवैसी पिछले दो चुनाव में कुछ खास नहीं कर सके। 2017 विधानसभा में ओवैसी की AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन शून्य पर सिमट गई, वोट सिर्फ 0.24% मिले। इसी तरह 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाई, वोट 0.49% मिला।
2: अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ।
0: उत्तर प्रदेश में AIMIM अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती, कुछ हारे जमीन तैयार करती हैं और कुछ जीते सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती हैं। ओवैसी शायद पहली श्रेणी की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर बहराइच के मटेरा को ही ओवैसी ने यूपी चुनाव की तैयारियों के लिए क्यों चुना। मटेरा विधानसभा मुस्लिम बहुल है, इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 45% है। समाजवादी पार्टी का लगातार 3 चुनाव से इस सीट

पर कब्जा है। अभी सपा की मरिया शाह यहाँ से विधायक है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बहराइच में 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेल देव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इसमें महाराजा सुहेल देव ने सलार मसूद को मार गिराया था। सलार मसूद की मौत के बाद बहराइच में मजार बनाई गई। मटेरा इलाके में लगे क्षेत्रों में सलार मसूद गाजी की दरगाह का असर है। यूपी एक बार फिर पहचान, इतिहास, प्रतिनिधित्व और सत्ता की नई बहस के बीच खड़ा है। बीजेपी इस लड़ाई को करीब से देख रहा है। राजनीति में हर युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं होता, कभी कभी तीसरा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फायदा ले जाता है। अगर विपक्ष का वोट बढ़ता है तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता है। 2027 विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति में समय हमेशा कैलेंडर से नहीं चलता। कभी कभी एक रैली, एक बयान, एक प्रतीक और एक यात्रा आने वाले चुनाव का माहौल तय कर देती है। यूपी की राजनीति में अक्सर जीत का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, कई बार 2 या 3% वोट पूरे चुनाव का भूगोल बदल देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि AIMIM कितनी सीटें जीतेंगी, सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी सीट हरवाएंगे। बहराइच से संतोष शर्मा, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

घर में रखें सोने की चमक हर भारतीय का दिल खुश कर देती है। शादी ब्याह से लेकर मुसीबत के वक्त यही पीला सोना हमारा सबसे सच्चा साथी बनता है। देश के करोड़ों लोग जरूरत पड़ने पर इसी सोने को गिरवी रखकर बैंक से लोन भी लेते हैं। आम आदमी की इस बड़ी जरूरत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार सोने के बाजार में कुछ बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। इसी वजह से बैंक से गोल्ड लोन का पूरा लेखा जोखा मांगा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक से 2023 से लेकर अब तक के गोल्ड लोन का पूरा डेटा मांगा है। इसमें बैंक को दिए गए लोन की कुल रकम, ग्राहकों और उधारकर्ताओं की संख्या के साथ गिरवी रखे सोने की मात्रा बतानी होगी। इसके साथ ही विदेशी सप्लायर्स से जुड़े गोल्ड मेटल लोन का पूरा पोर्टफोलियो भी सरकार को सौंपना होगा। इस बड़े कदम के पीछे सरकार की सोच गोल्ड लोन और गोल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम की गहराई से समीक्षा करना है। दरअसल देश में सोने की लगातार बढ़ती डिमांड और भारी इंपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाने की हलचल तेज हो गई है। आंकड़ों को देखा जाए तो 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट करीब 24% बढ़कर 71.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान विदेशों से कुल 721 टन सोना आयात किया गया, जिसकी ऊंची कीमतों ने सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया। इसलिए आने वाले दिनों में गोल्ड लोन, गोल्ड ETF और आयात निर्यात से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की संभावना है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार नए रास्ते तलाश रही है। इस पूरे मामले में गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने सरकार और रिजर्व बैंक को कोई सुझाव दिए हैं। इनका कहना है कि विदेशों से पूरी तरह तैयार सोना मांगने की जगह घरेलू रिफाइनरियों में साफ होने वाले कच्चे सोने के बार का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। गोल्ड मेटल लोन के तहत बैंक विदेशी सप्लायर्स से सोना लेकर ज्वेलर्स को गहने बनाने के लिए देते हैं। इंडस्ट्री का सुझाव है कि बैंक और गोल्ड ETF स्कीम को देश में ही रिफाइंड डोरे गोल्ड बार खरीदने की इजाजत मिले। इससे घरेलू सोने का इस्तेमाल बढ़ने से विदेशों पर निर्भरता घटेगी और देश का चालू खाते का घाटा काबू में आ जाएगा। गोल्ड कारोबारियों ने सरकार से निर्यात नीति को भी थोड़ा आसान बनाने की मांग की है। मांग कमजोर होने पर बिना बिके अतिरिक्त सोने को चीन और टर्की जैसे विदेशी बाजारों में बेचने की अनुमति मांगी जा रही है। सरफा बाजार में सुस्ती के सीजन में सरकार पूरी व्यवस्था को सुधारने का खाका तैयार कर रही है, जिससे आम ग्राहकों की जेब और इकोनॉमी को सुरक्षित रखा जा सके। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान अमेरिका में शांति समझौते का ऐलान होते ही बम हुए दुनिया भर के बाजार। कच्चा तेल हुआ सस्ता। शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर दस्तखत। खत्म होगी हॉर्मूज की सारी बाधाएं। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस। ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया भर की नजर। उत्तर प्रदेश में तेज हो गई मुस्लिम वोटों की राजनीति। ओवैसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले, अब बराबर की होगी हिस्सेदारी। दरी नहीं बिछाएंगे मुसलमान। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी। लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बैनर्जी ने भी लिखा खत। विलय को बताया असंवैधानिक।

0: नमस्कार, आज सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्तवाल। 10 बजे के बुलेटिन में बात सियासत से जुड़ी चार बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की, जिन्होंने उस बहराइच से अपने अभियान की शुरुआत की है जहां सुहेल देव वर्सेज गाजी की जंग छिड़ी हुई है। इसके साथ बात करेंगे टीएमसी के बागी सांसदों के नए दांव पेंच की, जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। सवाल ये है कि आखिर इस दांव के पीछे टीएमसी के बागियों का प्लान क्या है। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की अटकलों के बीच जुबानी जंग जोर पकड़ रही है। साथ ही बताएंगे कि एसआईटी के गठन के बाद भी राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी पर राजनीति आखिर क्यों नहीं थम रही है। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तैयारियों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है कि कल उत्तर प्रदेश के बहराइच के मटेरा विधानसभा में ओवैसी ने अपनी रैली की, और इस रैली में ओवैसी ने न केवल एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने वालों को जवाब दे दिया, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी में मची टूट को लेकर भी करारा तंज कसा।
1: और फिर शुरू हो गए बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए, और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे हो ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के, एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूँ, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूँ, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे, मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे।
0: दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का सबसे करारा तंज सायोनी घोष पर था। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो रैली के दौरान काबा मदीना को दिल में बताते हुए गीत गाती दिखाई दी थी।
2: भाभी ने चुनाव में

0: না, জয় বাংলা মা।
1: তো আসাদুদ্দিন ওয়েসি র্যালি কর তো ইউপি মে রহে থে, লেকিন উনকে টার্গেট পর বঙ্গাল কি টিএমসি ভি থি। এসে মে সওয়াল ইয়ে হ্যায় কি আখির ইসকে পিছে ওয়েসি কি রণনীতি হ্যায় ক্যা। চলিয়ে হাম আপকো বাতাতে হ্যায়, দরাসল বঙ্গাল চুনাব মে ওয়েসি নে 11 সিটো পর আপনে উম্মীদবার উতারে থে, লেকিন উনে কোই কামিয়াবি নহীঁ মিলি। बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी नेताओं ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए हमला बोल दिया था। लिहाजा अब उसी हमले के जवाब के साथ ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं। तो वो साफ ये अब कह रहे हैं कि दरअसल वो टीएमसी वाले नेता थे जो पहले टीएमसी के थे, जो बह गए हवा के एक झोंके के साथ। बहराइच की चुनावी रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ ले लिया। फिर आज तक से खास बातचीत में ओवैसी ने अखिलेश यादव को एक नाकाम नेता बता दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नाकाम हो गए अखिलेश पिछले विधानसभा चुनाव में, ये दावा किया ओवैसी ने, नाकाम बुलाया।
2: अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए है, क्योंकि आप देखें अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जाति समीकरण की बात करें, उसके हिसाब से
3: वो तो नाकाम साबित हो रहे हैं। 2014 से हर चुनाव हार रहे हैं, और फिर हमारी पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने खुद बैठकर बिहार में कैंपेन चलाया, उनके कितने 5 या 7 सांसद को वहां पर उतार दिए हमारे सीमांचल में, और बड़ा ही नेगेटिव और झूठा कैंपेन चलाया हमारे खिलाफ उन्होंने। उसका असर कुछ नहीं हुआ, हमारे एमएलए तो जीत गए, अच्छे खासे वोट भी मिले हमको जहां पर हम नहीं जीत पाए। तो अब नहीं मालूम, अब जाहिर चुनाव जब लड़ेंगे तो जाहिर है हम अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते।
2: आपसे कई बार सवाल हुआ है क्योंकि सपा दोबारा वही बात कह रही है, बी टीम, और आप इसका जवाब
3: देखिए, जवाब क्या देने का है। बिहार में आप हमारे खिलाफ कैंपेन किए, आपने तेजस्वी यादव राजद का साथ दिया, कौन जीता वहां पर? फिर उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव हुआ, उसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर लिमान साहब ने कहा कि सर हमको हम चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, मिला करिए, हम सपोर्ट किए। किसके एमएलए भाग गए? कांग्रेस के और राजद का मुस्लिम एमएलए भाग गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है।
1: तो बंगाल की टीएमसी के बागी सांसदों ने कल दिल्ली में बैठक के बाद नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर यह है कि ये सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में असली तृणमूल कांग्रेस होने का भी दावा करेंगे। उससे पहले अब सभी की नजरें स्पीकर पर टिकी है कि आखिर वो क्या रुख अपनाते हैं।

0: तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद बांकुरा से आते हैं अरूप चक्रवर्ती, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपको बागी कहूं या एनपीसीआई का सांसद कहूं, क्या अब आप क्या हैं?
1: हम सांसद है भाई, पब्लिक हमको चुनाव में लाया काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है। हमको अफसोस है कि ज्योति बसु बामफ्रंट का जो चीफ मिनिस्टर था 35 साल बर्बाद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में। दिल्ली नहीं देता है, बंगाल को नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है, स्टेट को नहीं मिलता है। वो 35 साल चिल्लाया और ममता दी 15 साल चिल्लाया, 50 साल बंगाल की स्टेट या सेंट्रल पीछे हट रहा है।
0: आपके लिए
1: इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दो सरकार को एक साथ चलाने का कोशिश करता है।
0: आपके लिए भी बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि जब ये आपको कागुली घोष जी की तरफ से फोन आया होगा या बाकी सांसदों की तरफ से फोन आया होगा कि आप हमारे साथ है, ये 20 सांसद हम लोग एक साथ जाते हैं, टीएमसी से अलग होते हैं, एनडीए को सपोर्ट करते हैं, वो फैसला लेने में आपको मन में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, डर नहीं हुआ, मन में तकलीफ नहीं होगी? काफी लंबे समय
1: काकोली घोष हमको फर्स्ट टाइम फोन किया था, तो हम काकोली जी को बोला ये तुमको याद है आज से 30 साल पहले, तो आप जब रात को मुंह आप निकलता था गाड़ी लेके छुप छुप के स्टेथो लेके कांची लेके वर्कर लोग को खून बंद करना है, गोली निकालना है, पुलिस पकड़ लेगा, आप रात को मुकुल राय को साथ में घूमता था गांव गांव गांव गांव में, याद है आपको? तो बड़ा नहीं याद पड़ गया, हम तो इतना पुराना नेत्री है आप, आपको पार्टी बनाया, आपको हटाया कौन, आप क्यों हटेगा, आप चलिए काम कीजिए हम लोग साथ में।
2: तो बागी टीएमसी सांसदों ने बीजेपी और एनडीए को समर्थन देने का तो ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर अब सियासत तेज है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं।
1: हाँ, वी वांट टू सी इंदिरा गांधी के टाइम से ज्योति बसु तक, ममता बनर्जी तक जो आवाज उठाया था, दिल्ली नहीं देता है, सेंट्रल नहीं देता है, गरीब को कुछ पैसा नहीं मिलता है, 50 साल एक करके निकाल दिया, फायदा कुछ नहीं मिला। वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है, जो हम जॉइंट गवर्नमेंट मींस हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। बीजेपी हमको मदद मांगेगा, हम देगा मदद, वो हमको उसका मदद जरूर पड़े हम लेगा, एक साथ करेगा, खून खराबी बंद, गांव में झामेला बंद, चोरी डकैती बंद, पॉलिटिकल न्यूसेंस बंद, सबको एक साथ मिलके काम करने होगा।
3: जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है, ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है।
2: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, अब सबकी नजरें ओम बिरला की तरफ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये ममता बनर्जी की टीएमसी के ताबूत पर आखिरी कील माना जाए, जिस तरीके से अब सभी सांसद अलग होते हुए 20 सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं इस चिट्ठी पर?
0: जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत इस वक्त ममता बनर्जी के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उनके 20 सांसद जो हैं वो उनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं, और अब तो ये ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि ये सभी के सभी सांसदों ने एक चिट्ठी भी सौंप दी है लोकसभा स्पीकर को। अब इसमें समझने की जरूरत है कि दो चिट्ठियां लोकसभा स्पीकर के पास गई, पहली चिट्ठी अभिषेक बनर्जी की तरफ से गई जिसमें उन्होंने कहा कि 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है उसके हिसाब से जब तक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं करती तब तक जो है कोई दूसरा गुट नया तैयार नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी चिट्ठी है उनका यह मानना है कि वो एक नई पार्टी में मर्ज हो रहे हैं और एनडीए को समर्थन करेंगे, तो दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब देखना ही होगा कि लोकसभा स्पीकर किसकी दलील पर ज्यादा गौर करते हैं। जब मॉनसून सेशन शुरू होगा उसमें फैसला कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़े बगावत
2: सबकी नजर आएगी। शुक्रिया आपका। तो टीएमसी के बागी सांसदों की कल दिल्ली में एक बैठक हुई और इस पर हर किसी की नजर थी। स्पीकर से मुलाकात के बाद सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। आपको बताते हैं कि आखिर टीएमसी के बागियों के इस कदम के पीछे रणनीति क्या है।
4: टीएमसी के बागी सांसदों ने रविवार को दिल्ली में बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और फिर इस गुट ने एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सांसदों के लिए पाला बदलना इतना आसान नहीं था। अगर टीएमसी के बागी सांसद सीधे एनडीए के साथ जाते तो उनकी लोकसभा की सीट जा सकती थी। इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। इन्होंने एक ऐसी छोटी सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में खुद को मिला लिया, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। दरअसल दल बदल कानून के तहत आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर संसद या विधानसभा पहुंचे हैं और फिर उसे बाद में छोड़ देते हैं तो आपकी सीट जा सकती है। तो इन सभी टीएमसी सांसदों के सामने एक बड़ी मुश्किल थी, ममता बनर्जी को छोड़ना था लेकिन अपनी सांसदी भी बचानी थी। इस कानून से बचाव का एक और तरीका था कि अगर किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लें तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। टीएमसी के बागी गुट के लीडर काकोली घोष दस्तीदार ने साफ कहा कि उनके पास टीएमसी के कुल सांसदों में से दो तिहाई से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए वो ये कदम उठा सकते हैं।
5: देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो नहीं हो रहा कोई सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व।
4: टीएमसी के बागी सांसदों ने पहले ममता को झटका दिया और अब दूसरी पार्टी में विलय कर लिया है, जिसे लेकर अब कानूनी लड़ाई शीर्ष अदालत तक पहुंचती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
2: और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप जो आया है सामने, उसे लेकर एसआईटी का अब गठन हो चुका है और आज एसआईटी की जांच शुरू होने की संभावना है। अब इस मामले में विपक्षी हमले भी तेज हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित अपने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर एक अहम बयान दिया। उन्होंने एसआईटी गठित किए जाने पर कहा कि राम मंदिर और साधु संतों से जुड़े मामलों की जांच अधिकारियों से कराना सनातन परंपरा का अपमान है।
6: अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ली और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with Bharat Ki Apas.
4: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा साफ पानी में, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आशक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छर से बचाकर रखें। और दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मस्कीटो रेपेलेंट्स का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
3: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se paro. In association with Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान अमेरिका के शांति समझौते का ऐलान होते ही बम बम हुए दुनिया भर के बाजार। कच्चा तेल हुआ सस्ता। शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर दस्तखत। खत्म होगी हॉर्मूज की सारी बाधाएं। दो दिन की यात्रा पर स्लोवेकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया भर की नजर। उत्तर प्रदेश में तेज हो गई मुस्लिम वोटों की राजनीति। ओवैसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले, अब बराबर की होगी हिस्सेदारी, दरी नहीं बिछाएंगे मुसलमान। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी। लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बैनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ाने शुरू। लखनऊ से आई पहली फ्लाइट। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर।

0: और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान पर ईरान की तरफ से भी मोहर लग गई है। ईरान के उप विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि मसौदा तैयार है जिसमें ईरान की सभी मांगों पर विचार हुआ है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि अब ईरान की तरफ से भी इस पूर्ण विराम को लेकर हामी भर दी गई है।
1: अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर के अब पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला लिया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। सीजफायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का, बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।
0: ईरान अमेरिका डील के 14 पॉइंट्स क्या हैं, उनके मायने क्या हैं, ये भी समझिए।
1: जो सबसे बड़ा टकराव का मुद्दा था वो था यूरेनियम को लेकर के। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, जिस पर शुक्रवार को दस्तखत हुआ, उसमें पहला पॉइंट ये है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो। यानी ईरान और अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशन रोकेंगे, लेकिन एक शर्त यह भी है कि अब लेबनान पर फायरिंग नहीं होगी। अब इसराइल ने कहा है कि वो दक्षिण से भले ना हटे, लेकिन वो अब लेबनान में बॉम्बिंग नहीं करेगा। ये देखना होगा कि इसराइल इस बात को मानता है कि नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ईरान 30 दिन में हॉर्मुज खोलने की व्यवस्था करेगा। ईरान ने कहा भी था, अमेरिका ने कहा कि हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन हटा रहे हैं, नेवी ब्लॉकेड खत्म कर रहे हैं। ईरान को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 दिन में वो हॉर्मुज से हटे, जहाजों की आवाजाही शुरू हो, ईरान के तेल एक्सपोर्ट से जो पाबंदियां हैं वो हटा ले जाएंगे। अब आप देखिए कि एक तिहाई तेल जो है वो अगर वेस्ट एशिया से निकलता है तो ईरान पर सैंक्शन था, अब वो खुले बाजार में अपना तेल बेच पाएगा, जिसका फायदा भारत को भी होगा। यानी तेल की कीमतें जो है कम होने के पूरे आसार हैं जैसे ही ये सैंक्शन हट जाते हैं। चौथी बड़ी बात, ईरान अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। $100 बिलियन उसके जो एसेट है दुनिया भर में, उसको अमेरिका ने सैंक्शन करके फ्रीज कर रखा। अगर वो खुल जाते हैं तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पांचवा मुद्दा, ईरान के फ्री $24 अरब 60 दिन में जारी हो जाएंगे। वो पैसा उसे जब वापस मिल जाता है, जो अलग अलग दुनिया भर के वैश्विक संस्थानों में फ्रीज किए गए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कारोबार आगे बढ़ेगा। $12 अरब बातचीत शुरू होते ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी ईरान में अगर जो संकट है, आर्थिक संकट, उसको उससे तुरंत मदद मिलेगी, जहां पर वो उसकी अर्थव्यवस्था ठीक जाएगी। यूएस और सहयोगी जो देश हैं, $300 अरब की ईरान पुनर्निर्माण योजनाएं पेश करेंगे। ईरान ने शर्त रखी थी, आपकी बॉम्बिंग में हमें नुकसान हुआ, हमारे रेलवे टूटे, हमारे पुल टूटे, स्कूल टूटे, अस्पताल टूटे, सड़कों को नुकसान हुआ है, उन सब के पुनर्निर्माण के लिए मदद की जाएगी। ईरान की संप्रभुता और सम्मान का वादा करेगा अमेरिका। ईरान ने कहा था कि जो उसकी सॉवरेनिटी है वो हॉर्मुज पर रहेगी और इसीलिए वो मानना पड़ेगा कि ईरान का स्वामित्व उस इलाके में बरकरार रहेगा। यूएस की नौसेना नाकेबंदी 30 दिन में पूरी तरह हट जाएगी, इस शर्त पर भी अमेरिका तैयार हुआ। ट्रंप ने खुद कहा कि नेवी ब्लॉकेड हटे हैं, सारे जहाज अपने इंजन अब शुरू कर लें, अब घर लौटने की बारी है। आखिर दूसरा पॉइंट दिखाते हैं कि दसवां मुद्दा वो क्या है, और ये जो पॉइंट है इसमें है, अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगे। अब आप अगर देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान में जहां पर वो जहाज हैं वहां से उन्हें पीछे हटना होगा। 11वां जो मुद्दा है वो है परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की समय सीमा। जो उसके न्यूक्लियर डस्ट है, एनरिच यूरेनियम है, क्या वो इस्फहान में दब गए हैं? अगर उसे निकालना है आईए को देना है या यूएस के पास होगा, कैसे उसका निष्कासन होगा, इसके लिए 60 दिन की सीमा। 12वीं बात क्या है, ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए एनपीटी के वादे को दोहराएगा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसके तहत वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर ईरान ने सहमति दी है और इसके लिए 60 दिन की बातचीत होगी। समझौते को लेकर ईरान पर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा। यानी दोनों देशों के जो 14 बिंदु हैं उन पे बिंदुवार तरीके से इनका पालन हो रहा है कि नहीं, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था होगी, क्या वो यूएन होगा, ये देखना होगा। 14वां मुद्दा, गया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ईरान इसीलिए तैयार था कि अगर हम अपनी रक्षा के लिए लंबी दूरी के में।
0: और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका शांति डील का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। कच्चे तेल पर असर पड़ना शुरू भी हो गया। भारतीय शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल आया है। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त है, 1000 अंक से अधिक की बढ़त सेंसेक्स में और 350 से ज्यादा की बढ़त निफ्टी में दर्ज की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का। आशुतोष, समझौता पीस का लेकिन असर मार्केट पर बताइए, समझाइए कैसे।
2: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि सीधी सी बात है, ऊर्जा का संकट है और ऊर्जा पे अगर वो निर्भरता थी जिसके चलते कीमतें बढ़ रही थी। और आप अगर देखेंगे कि जब भी ट्रंप कहते थे कि अब तो हम बातचीत के करीब हैं, शुक्रवार का दिन होता था और ऐसा लगता था कि स्टॉक अचानक से कोई ट्रिगर हो गया और उनके स्टॉक सारे ऊपर चले जाते थे, बाजार अच्छी जंप ले लेता था। आज जब ये पता चला भारत में सुबह होने के पहले, बाजार खोलने के पहले, कि अब तो हो गया, तारीख भी आ गई, 19 तारीख को समझौता होगा, सीधे सेंसेक्स ने 1100 अंकों से ऊंची छलांग लगाई, निफ्टी ने 300 से ऊंची की छलांग लगाई और अब ये पूरी संभावना है कि अब जो है ये लगातार ये बढ़त बनी रहेगी। और ये बढ़त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा का संकट खत्म होगा, आप के समझिए कि हमारे पास जो अब तक परिस्थितियां थी उनमें वेस्ट एशिया था, वेनेजुएला था, लेकिन अब क्या होगा कि हमारे पास ईरान भी बतौर एक मुल्क होगा जहां से हम ऊर्जा यानी जो है पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल आगे खरीद सकेंगे, उसी का असर बाजार में दिख रहा है।
0: शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे की।

0: फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के आरी आरी गाना सुनाई दे रहा है और वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी दिखाई दे रही है। कल पीएम मोदी ने फ्रांस दौरे के पहले चरण में राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। आज पीएम मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनका स्वागत वंदे मातरम के साथ हुआ।
1: ये दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देर शाम पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने वार्षिक व्यापार को मौजूदा 16 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करने का 5 वर्षीय लक्ष्य रखा। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे सहयोग, गोपनीय डेटा के लिए सुरक्षा समझौता, पेरिस नीस हवाई अड्डों तक भारत के यूपीआई पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा और मोबिलिटी जैसे अहम समझौते शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया है। फ्रांस के बाद अब पीएम मोदी स्लोवाकिया की ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पर हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रीनी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक क्षेत्रों में नए मौकों की तलाश करने पर केंद्रित होगी। स्लोवाकिया के बाद सबकी नजरें G7 समिट पर होंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं से मिलेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: पीएम मोदी की यात्रा बेहद अहम है, विदेश नीति के लिहाज से भी, अर्थनीति के लिहाज से भी और सैन्य नीति के लिहाज से भी। कई मोर्चों पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और कई अहम ऐलान की उम्मीद लेकर आ रही है।
2: We missed you a lot.
1: तारीख 17 जून, जगह फ्रांस का इवियन शहर, वक्त शाम के 6:15। ये वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों और ईरान युद्ध के मद्देनजर पूरी दुनिया की निगाहें G7 के साथ साथ इस मुलाकात पर होंगी। पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप और मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। तब भारत और पाकिस्तान के तल्ख होते रिश्तों के बीच ट्रंप के बयानों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव आया है, खास तौर पर ट्रेड डील को लेकर। अब जबकि दोनों नेताओं की फ्रांस में मुलाकात तय हो गई है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर सहमति बनने जा रही है और ये दोनों देशों के रिश्तों में आने वाले सुधार के संकेत। वैसे अभी हफ्ते भर पहले ही ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की बात फिर दोहराई थी और जल्द ही ट्रेड डील करने का ऐलान किया।
2: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
1: माना जा रहा है कि जब G7 बैठक के बाद मोदी और ट्रंप मिलेंगे, तो कई मुद्दे एजेंडे में रहेंगे। व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। कारोबार को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन किसी अंतिम समझौते के ऐलान की उम्मीद फिलहाल नहीं। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिले। रूस से तेल खरीदने से लेकर भारतीय जहाजों पर हमले जैसे कई मुद्दों पर खींचतान बढ़ी। ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान और रूस के साथ कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों को लेकर काफी संतुलित रवैया अपनाया है। भारत की जरूरतों और सोच को प्राथमिकता दी है और अपना साफ रुख पूरी दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका और यूरोप को कई बार भारत का ये रुख अखरा भी है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति और अर्थनीति को इस मुश्किल वक्त में और मजबूत बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट और ट्रंप से मुलाकात के बाद 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वो अतिरिक्त द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
6: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
1: हिमाचल प्रदेश इन दिनों टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना हुआ है। गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों सैलानी हर दिन पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर दिखाई दे रहा है, जहां पंडोह से ओट तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई जगह गाड़ियां घंटों तक रेंगती नजर आ रही हैं। मनाली में हालात ऐसे हैं कि पिछले 13 दिनों में करीब 3 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल चल रहे हैं। अटल टनल, रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती गाड़ियों ने ट्रैफिक सिस्टम की परीक्षा भी ले ली है। उधर धर्मशाला भी वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार रही। हल्की बारिश, ठंडी हवाएं सैलानियों को खास आकर्षित कर रहा है। राजधानी शिमला में भी लॉन्ग वीकेंड पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। रिज मैदान, मॉल रोड और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी चहल पहल रही। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंडी पुलिस ने हाईवे पर 40 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। प्रशासन लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में जुटा है और पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। फिलहाल हिमाचल के पहाड़ पर्यटकों से गुलजार हैं, कारोबार चमक रहा है, होटल पैक हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या पर्यटन के इस रिकॉर्ड सीजन को बेहतर व्यवस्थाओं के साथ संभाला जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: Esto sí va a ir.
1: तारीख 17 जून, जगह फ्रांस का इवियन शहर, वक्त शाम के 6:15। ये वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों और ईरान युद्ध के मद्देनजर पूरी दुनिया की निगाहें G7 के साथ साथ इस मुलाकात पर होंगी। पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप और मोदी पहली बार आमने सामने होंगे।

0: आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा साफ पानी में। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है, लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छर से बचाकर रखें। और दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मस्कीटो रेपेलेंट्स का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम। एंड विद देयर मोबाइल ऐप, ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज ईजी। However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
5: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.

दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर देर रात एयरपोर्ट से घर लौटना हो, ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज हमारी लाइफ का खास हिस्सा बन चुकी है। आरामदेह सफर और एक क्लिक पर गाड़ी हाजिर होने की सहूलियत ने आम आदमी को इसका आदि बना दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स के नए नियमों की वजह से ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं काफी महंगी होने वाली हैं। दरअसल एक नए सर्वे से जो जानकारी बाहर आई है वो पैसेंजर्स के साथ साथ ड्राइवरों को भी बड़ी टेंशन देने वाली है, जिसके मुताबिक ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर 5% एक्स्ट्रा GST लगाने की तैयारी चल रही है। इस अतिरिक्त टैक्स से पैसेंजर्स पर सीधे किराए का बड़ा बोझ बढ़ने की आशंका है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को डर है कि इस नए बदलाव के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ड्राइवर उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना पसंद करते हैं जहां वो फिक्स चार्ज देकर जुड़ते हैं और पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। नया टैक्स लागू होने के बाद उनका पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सर्वे में दावा किया गया है कि 75% से ज्यादा ड्राइवर्स को डर है कि नए टैक्स की वजह से उनकी कमाई घट जाएगी। कमाई कम होने के डर से कई ड्राइवरों ने कैब एग्रीगेटर के साथ काम छोड़कर दूसरा काम तलाशने की बात कही है। 2/3 से ज्यादा पैसेंजर्स का कहना है कि किराया बढ़ने पर वो ऐप से कैब बुक करना कम कर देंगे। टैक्स के इस नए बोझ के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगे किराए की वजह से बड़ी संख्या में लोग और ड्राइवर दोनों ही दूसरे ऑप्शंस की तलाश में जुट जाएंगे। मौजूदा समय में टैक्स के सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल ओला और उबर जैसी कंपनियां जिस मॉडल पर काम कर रही हैं, उसमें टैक्स का पूरा जिम्मा कंपनियों के पास ही होता है। फिलहाल पैसेंजर्स अपनी कुल राइड वैल्यू पर 5% GST देते हैं। इस स्टैंडर्ड कमीशन बेस्ड मॉडल के तहत कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती और कानूनी तौर पर ऐप एग्रीगेटर कंपनियां ही पैसेंजर्स से ये टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करती हैं। इस पूरे सिस्टम में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर

0: आपकी पॉकेट और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता को राहत देने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बम हुए दुनिया भर के बाजार, कच्चा तेल हुआ सस्ता, शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर दस्तखत, खत्म होंगी हॉर्मुज की सारी बाधाएं।
1: दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया भर की नजर।
0: यूपी में तेज हो गए मुस्लिम वोटों की राजनीति, ओवैसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले, अब बराबर की होगी हिस्सेदारी, दरी नहीं बिछाएंगे मुसलमान।
1: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी, लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, अभिषेक बैनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ाने शुरू, लखनऊ से पहली फ्लाइट, हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर।

0: नमस्कार, खबरों के डबल डोज एक और 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज दस्त से।

0: डोनाल्ड ट्रंप ने किया अमेरिका ईरान समझौते का ऐलान, युद्ध विराम लागू होने की घोषणा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी का दावा, युद्ध में ईरान की जीत के बाद दुश्मन को करनी पड़ी युद्ध विराम की मांग। स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को होगी ऐतिहासिक डील, आज रात से थमेगी जंग की आग और हटेगी अमेरिकी नाकेबंदी। ईरान अमेरिका समझौते की खबर के बाद लेबनान में जश्न, सड़कों पर उतरे लोग। प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते की चर्चाओं के बीच लेबनान में उत्सव का माहौल। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतिम समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी, तब तक अमेरिका के वादों पर रहेगी ईरान की नजर। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में नाकाम रहता है तो वे तेहरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू कर देंगे। ईरान की बेहर पत्रिका ने वॉशिंगटन के साथ हुए समझौते के 14 सूत्रीय मसौदे को जारी किया, 24 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों में से आधी जारी करने का दावा। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर लगे प्रतिबंध समय से पहले ही निलंबित किए जाने का भी दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरानी सुरक्षा नियंत्रण में फिर से खोलने की कही गई बात। कतर ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का किया स्वागत, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने में बताया अहम कदम।
1: ब्रिटेन ने भी दोनों देशों के बीच में हुए समझौते का किया स्वागत, पीएम सावर ने कहा कि मध्यस्थता की भूमिका बनाने वाले सभी देशों को बधाई। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत फोर देशों ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से प्रतिबंध हटाने को तैयार हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी फैसले का किया स्वागत, कहा कि यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में अहम कदम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी फैसले का किया समर्थन, कहा कि मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द इसे पूरी तरह लागू करें। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौते की घोषणा के बाद क्रूड तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। फ्रांस से 2 दिनों के स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, स्लोवाकिया में रक्षा और मोबिलिटी पर घोषणाओं की उम्मीद है। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और 2 दिवसीय पीएम का दौरा शुरू। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्लोवाकिया में स्वागत है, ब्रिट सॉल्ट परंपरा और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने खींचा ध्यान। ब्रातिस्लावा में वंदे मातरम की गूंज, लोकनृत्य से गूंजा पीएम मोदी का स्वागत समारोह। स्लोवाकिया दौरे पर पीएम मोदी लुचनिका एनसेम्बल ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिसाल।
0: राम जन्मभूमि मंदिर में दान हेराफेरी के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र जांच की मांग। राम मंदिर दान राशि विवाद पर एसआईटी की जांच शुरू, ट्रस्ट ने कहा जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी आज अयोध्या पहुंचेगी। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई में एसआईटी करेगी मामले की जांच। आगरा में अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान कर देंगे माफ। बहराइच में नारों के बीच ओवैसी का बड़ा ऐलान, मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली एआईएमआईएम उम्मीदवार घोषित। एआईएमआईएम उम्मीदवार शौकत अली ने आज तक से की बात, कहा हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बहराइच में ओवैसी का सियासी हमला, बोले न बुलडोजर से डर है न एनकाउंटर से, आई लव मोहम्मद कहने से नहीं डरेंगे। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को मिली जमानत, सहरसा में भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। फैजल खान ने प्रिंस यादव की मौत पर जताया दुख, निष्पक्ष जांच की मांग की।
1: दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले टीएमसी के बागी सांसद, दस्तखत वाली चिट्ठी सौंपी, लोकसभा में अलग सीट की मांग। बंगाल में ममता बनर्जी को झटका, टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान, बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का दावा। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के विलय के ऐलान के बाद से बोले सांसद का खुले घोष, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर करेंगे काम। बागियों से पहले ममता बनर्जी के समर्थन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात, कहा ममता बनर्जी की ही पार्टी है, उन्होंने खड़ा किया है वही असली पार्टी है। बंगाल में फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी का एक्शन, अभिषेक बैनर्जी से लगभग 7 घंटे तो कुणाल घोष से 4 घंटे तक पूछताछ। तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय के बयान से सियासी हलचल, एनडीए के साथ जाने की संभावनाएं जताई। दिल्ली से लौटकर कोलकाता पहुंचे शताब्दी रॉय, कहा कि एनडीए के सहयोगी बनेंगे हम। ओवैसी का टीएमसी के बागियों पर हमला, बोले कि ये सभी बीजेपी आरएसएस की कठपुतलियां हैं। कुणाल घोष ने महुआ मोइत्रा का समर्थन करते हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर साधा निशाना, सीबीआई सीआईडी और बीजेपी नेताओं को लेकर दावा किया। टीएमसी में बयानबाजी तेज, कुणाल घोष बोले कि पार्टी घटनाओं और नेताओं की गतिविधियों को लेकर नया विवाद चल रहा है।
0: बंगाल में अफगान रिलीफ फंड में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक केस भी दर्ज हो गया है। डायमंड हार्बर कोर्ट ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस हिरासत 6 दिन के लिए बढ़ाई। चुनाव में धांधली, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे आरोप। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले, घुसपैठियों के 12,000 मामले दर्ज, अब तक 5,000 घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। शिवसेना यूबीटी में ऑपरेशन टाइगर की अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री पर पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक, संजय राउत बोले सभी 9 सांसद रहे मौजूद। बीजेपी पर भड़के सांसद राउत, कहा जिस दिन हमारे हाथ में आएगी सत्ता बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग, यात्रियों ने तालियों के साथ किया स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान, 172 किसानों का पहला सफर। हवाई यात्रा कर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। 172 किसान परियोजना के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी थी। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारी, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर।
1: दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में छाए काले घने बादल, हवा चलने से तापमान में गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी झील में पर्यटकों की भारी भीड़, रविवार को 1500 से ज्यादा पर्यटकों ने बोटिंग और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद उठाया। चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 8वां दिन है। मौसम की मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं की रफ्तार बढ़ रही है, बड़ी संख्या में पहुंचे। चारधाम यात्रा में अब तक लगभग 35,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और जबरदस्त उत्साह दिखा। केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा, 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भी आस्था की भीड़, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बनाया रिकॉर्ड। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों ने टेका माथा। चार धाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। महाराष्ट्र के गोरखपुर में फीफा वर्ल्ड कप का खुमार छाया, पसंदीदा खिलाड़ियों के लोगों ने पोस्टर्स लहराए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फैंस ने आतिशबाजी की, 45 और 60 फीट ऊंचाई पर कटआउट्स लगाए गए। चंडीगढ़ में भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम से मुख्यमंत्री सैनी की मुलाकात, 23 जून को चीन में आयोजित तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जयपुर में कल फ्रांस में जमकर तारीफ एक कला ने बटोरी है। पीएम मोदी और मैक्रो ने की कलाकृतियों की तारीफ, 2 फ्रेंच कलाकारों ने दरअसल तैयार किया। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ब्रिटिश संसद की वेदांत का संदेश देने के बाद आचार्य प्रशांत स्वदेश लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है।
0: करनाल के सेक्टर 7 में बड़ी चोरी, लॉकर तोड़ 35 लाख का सोना और नकदी लेकर फरार चोर। हाजीपुर में 70 लाख का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, गोदाम मालिक पर केस दर्ज। प्रयागराज के पटपड़ वाटरफॉल पर बवाल, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में चले लाठी डंडे। सहारनपुर में पड़ोसियों की कहा सुनी बनी खूनी संघर्ष, गोली लगने से बुजुर्ग की मौत। झज्जर में विजय हत्याकांड का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ से हुई थी भिड़ंत। गिरिडीह में जमीन विवाद और जादू टोना के शक में पति पत्नी की हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। अलीगढ़ में महिला को गोली मारने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, वायरल सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुएं में गिरी पिकअप गाड़ी, 8 लोगों की मौत। मुरैना में ट्रेन की चपेट में आए 4 लोगों की मौत, आग की अफवाह के बाद ट्रैक पर कूद पड़े थे ये सभी। कटनी में बस पलटने से हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल।
1: राजस्थान के दौसा में यूपी रोडवेज बस की टक्कर से 22 लोग घायल। सुपौल में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजगढ़ में पति ने पत्नी को जंजीर से बांधा, खंबे से बांधा, गर्म सरिये से दाफन। धौलपुर में कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी, बाइक सवार एक की मौत, दूसरा जख्मी। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुरी में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 3 नाबालिग पकड़े गए। दरभंगा में बाइक शोरूम मैनेजर हत्याकांड में आरोपी सोनू गिरफ्तार, 24 घंटे के भीतर पुलिस को मिली कामयाबी। कानपुर में मछलियों के मरने से नाराज युवक ने सुसाइड कर लिया, घर में किसी ने बिजली का प्लग बंद कर दिया था। गाजियाबाद में मंदबुद्धि युवक की मौत पर कौशाम्बी थाना पुलिस पर उठे सवाल, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। गुजरात के खेड़ा में अनियंत्रित बस पलट गई, मौके पर एक यात्री की मौत, 35 घायल।
0: विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ भारत की धमाकेदार शुरुआत, अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। एजबिस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया, उन्होंने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम को एक एक की सफलता मिली। भारत की दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। श्री चरणी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला।
1: यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली का एक विवादित बयान सामने आया है। जावेद अली ने बहुसंख्यक समाज को जहर कहा।
0: मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी सांसद हैं जावेद अली। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जहर फैलाया और बहुसंख्यक समाज उसे ले लिया, बहुसंख्यक समाज ने उस जहर को ले लिया। ये जो बयान है ये जावेद अली की तरफ से आया है। सांसद हैं ये समाजवादी पार्टी के और इसकी निंदा अब होना लाजमी है।
2: जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आप उसमें जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास।
1: तो ये बयान आपने सुना। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर पर समाजवादी पार्टी का बयान है। राम गोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो साथ देना चाहे स्वागत।
0: असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो अखिलेश यादव और मायावती से गठबंधन की कोशिश में है ताकि बीजेपी को रोका जा सके। और अब समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है जिन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने वालों का स्वागत है।
1: असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ कल कह रहे थे कि बिहार में हमें हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद भेजे, षड्यंत्र रचा, और अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और बसपा को लेकर जो उनका ऑफर है, सपा की तरफ से भी रामगोपाल यादव आए। अखिलेश यादव का तो बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि जो भी बीजेपी को हराने में साथ आएगा उनका स्वागत है, लेकिन क्या ये मंजूर होगा सपा को आने वाले दिनों में, और ज्यादा इस पर क्लैरिटी मिलेगी।
3: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत, भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत, भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
4: और तीसरी बात यह है कि हम पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
5: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
4: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा।
0: और अब बात अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में धांधली की। गड़बड़ी के आरोप को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है और आज एसआईटी की जांच शुरू होने की संभावना है।
1: अब इस मामले में विपक्षी हमले भी तेज हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच को लेकर भी सवाल उठा दिए। तो अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब जब एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी आज से जांच शुरू करने भी वाली है, तो कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की है वो दान वो पैसा वापस लौटा दे और माफी मांग ले, भगवान माफ कर देंगे।
0: तो बड़ा बयान आ रहा है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अब क्या अधिकारी पूछताछ करेंगे साधु संतों से। उनका कहना है कि आप कैमरा बंद कीजिए और चुपचाप चढ़ावा वापस रख दीजिए।
1: और एक बार फिर से बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एंट्री कर दी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और उनकी ऑफर की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उस ऑफर पर एक रिएक्शन भी आया, रामगोपाल यादव की तरफ से बयान आया, कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो साथ देना चाहे उनका स्वागत है।
0: तो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से बातचीत में कहा था कि वो अखिलेश यादव और मायावती से गठबंधन की कोशिश में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि साफ साफ ओवैसी का कहना है कि वो गठबंधन करेंगे लेकिन बराबरी का, ऐसे में रामगोपाल यादव का जो बयान आया है उसके क्या मायने समझे?
6: देखिए, ये सबसे बड़ा बयान है अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की सियासत के गठबंधन के लिहाज से बात की जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ओवैसी से उसने खास दूरी बना रखी थी कि ओवैसी को भी वो उसी तरीके का समझती है जैसा बीजेपी, लेकिन अब मामला माहौल धीरे धीरे बदल रहा है और पार्टियों को लगने लगा है कि सभी को जब तक एक साथ नहीं लेंगे उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल होगा। और रामगोपाल यादव नंबर टू हैं अखिलेश यादव के बाद, मान लीजिए, और उनका कोई भी बयान एक बहुत बड़ा बयान होता है। जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर, बहराइच के मढेरा में जाकर के उन्होंने अपनी सभा की है और अपना अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया प्रदेश अध्यक्ष के नाम का, इसके बाद से समाजवादी पार्टी को भी लगने लगा है कि अगर 2027 के चुनाव में जाना है तो मुस्लिम वोटों को ही बिखरने से रोकना होगा। मुझे लगता है गठबंधन को लेकर के ये बड़ी बात है जो रामगोपाल यादव की तरफ से आया है और समाजवादी पार्टी के भीतर जो बदलता हुआ गठबंधन को लेकर समीकरण है।
1: नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट।
9: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम, एंड विद देयर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। आउच, हाउएवर यू मेक मनी वर्क, we can work with that.
10: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU सोच बदलो और बैंक भी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा साफ पानी में। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान, साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत करें। अब इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी हुई सही जानकारियां, एक्सपर्ट्स की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम आप उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। कूलर और गमलों का पानी आप नियमित रूप से, खासकर बच्चों और बुजुर्गों, आप उनको मच्छरों से बचा कर रखें। दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, उनका नियंत्रण आप इस्तेमाल करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर सीधा वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ आपका ये साथ लड़ेंगे डेंगू से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
8: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: EU सोच बदलो और बैंक भी।
10: साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में नया ठिकाना मिल गया है। 20 बागी सांसदों ने स्पीकर को अर्जी दी है और कहा अगर स्पीकर तैयार हो जाते हैं तो इनका नया ठिकाना होगा एनसीपीआई। आपने इस पार्टी का नाम पहले कभी शायद नहीं सुना होगा, सुनते भी कहां से, ना तो इस पार्टी के पास अपना कोई सांसद है और ना ही कोई विधायक।
2: अब लेकिन इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रहे हैं। अब स्पीकर अगर मान जाते हैं तो एक झटके में इस पार्टी की झोली में कितने सीधे 20 सांसद आ जाएंगे, यानी कि झोली भर जाएगी। आखिर ये एनसीपीआई पार्टी बला क्या है और बागियों ने एनसीपीआई को ही क्यों चुना है? इनसाइड स्टोरी जो आप जानना चाह रहे हैं आपको दिखाते हैं।
3: स्पीकर ओम बिरला के बंगले 20 अकबर रोड पर कल शाम भारी गहमा गहमी थी। अंदर टीएमसी के सांसदों का जमावड़ा था और बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी थी। निगाहें इस बात पर थी कि टीएमसी से बगावत करके यहां तक पहुंचे इन सांसदों का अगला पड़ाव क्या होगा। इस रात से अब पर्दा हट गया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की है। इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है, साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है।
4: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
5: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए, वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
3: तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है। 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में शून्य सांसद हैं, राज्यसभा में शून्य सांसद हैं, विधायक शून्य हैं। लेकिन एक रात में शून्य सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें तो जो भी हो इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, दो तिहाई बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है। टीएमसी के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है, यानी दो तिहाई के लिए एनडीए अभी 47 पीछे है। लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए दो तिहाई बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं, झारखंड मिजोरम से 3 सीट और आने की उम्मीद है। टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में 3 और सीटें आ सकती हैं। ये संभव हुआ तो एनडीए की सीट बढ़कर 154 पहुंच जाएगी, यानी दो तिहाई के आंकड़े 160 से सिर्फ 6 कम। आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है। इस टूट की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई और इसमें किसने बड़ा किरदार निभाया ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो तिहाई का लक्ष्य हासिल करने में लगी है ताकि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके, वो विधेयक जिसे वो पिछले सत्र में पारित कराने में असफल रही थी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: अब एनसीपीआई का नाम चर्चा में आया तो फिर आज तक ने इस पार्टी की छानबीन भी की। आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता एनसीपीआई के दफ्तर पर जा पहुंचे, आपको उनकी एक रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं।
6: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के साकराइल में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट पे दो नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम ये कमरे हैं पूरी तरीके से अभी बंद है, और शायद ही यहाँ पे आना जाना लोगों का होता था, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि एक एनजीओ के तौर पर एक बच्चों के लिए ये एनजीओ काम करता है, यहाँ पे कभी कभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का बैनर भी अभी तक लटका हुआ है, और 2023 में पंचायत चुनाव में इस पार्टी ने हिस्सा लिया था। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन रातों रात अब सुर्खियों पर आ गया एनसीपीआई ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके साथ पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद मर्जर का ऐलान कर दिए। आपको दिखाते हैं कि यहां पर अभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है, लोकल थाने से पुलिस अधिकारी भी यहां पहुंचे हैं, बीएसएफ को तैनात रखा गया है, लेकिन एनसीपीआई पार्टी के किसी अधिकारी अभी तक यहां नजर नहीं आए हैं, उनका अभी भी कोई बयान नहीं आया इस मर्जर को लेकर। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मर्जर को लेकर शायद कोई बयान एनसीपीआई के ओर से भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के बाकी सारे एमपी एकजुट होकर एनसीपीआई के साथ मर्जर किए हैं, ताकि कोई कानूनी लड़ाई अगर आगे लड़ा जाए तो वो फैसला उनके हक में, उनके पक्ष में हो। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सेनगुप्ता, आज तक, साकराइल, हावड़ा।
1: तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी तपस सेनगुप्ता का। तपस, आप गए, पार्टी का दफ्तर भी आपने दिखाया, लेकिन ये जो पूरा विलय हुआ है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, कैसे फायदा होगा टीएमसी को, टीएमसी के बागी विधायकों को, सांसदों को इससे?
7: देखिए, अगर बागी विधायक सांसदों की बात की जाए तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो असली तृणमूल है और ममता बनर्जी के खेमे से वो अलग हो रहे थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि अगर दो तिहाई बहुमत के बाद भी अगर सवाल उठता है कि अगर महाराष्ट्र में का महाराष्ट्र मॉडल की अगर बात की जाए तो वहां जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी उसे ध्यान में रखते हुए ये जरूरी था कि ये बागी जो सांसद है वो अगर निकलते भी है तो किसी पार्टी में शामिल हो तभी उन्हें मान्यता मिल सकता है। कि हमें पता है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास बागी एमपीओ की तरफ से चिट्ठी भी दी गई है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा के स्पीकर का क्या जवाब रहता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि ये लड़ाई वो कानूनी तौर पे ही लड़ेंगे अगर जरूरत पड़ा तो, लेकिन इतने आसानी से जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि एनसीपी के साथ मर्जर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है,
2: लड़ाई ऐसा लगेगी थोड़ा सा लंबी खींचेगी। बहुत शुक्रिया तापस साहब का इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीएमसी पर आखिरकार किसका वर्चस्व रहेगा, बागियों का या ममता बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी का? इस जंग में अभी और तेजी आने वाली है और ये भी तय है कि लड़ाई अदालत तक पहुंचेगी। खबर है कि बागी जल्द ही पार्टी सिंबल और नाम पर भी दावा ठोकेंगे,
1: लेकिन टीएमसी में बगावत से बीजेपी और एनडीए को क्या फायदा हो सकता है? क्या एनडीए का संख्याबल इतना बढ़ पाएगा कि उसकी दो तिहाई बहुमत की चिंता खत्म हो सके?

0: इन दो तस्वीरों में टीएमसी के बनने, बढ़ने और बिखरने की पूरी कहानी छिपी है। पहली तस्वीर बीते दिनों की है और दूसरी तस्वीर आने वाले दिनों का ट्रेलर है। जरा गौर कीजिए, कल स्पीकर से मिलने वाले नेताओं में कौन कौन थे। कुछ चेहरों पर खास तौर से गौर करने की जरूरत है। संदीप बंदोपाध्याय, जो टीएमसी के संस्थापकों में से हैं। 2004 से 2008 तक वो कांग्रेस में चले गए थे। 2008 से वो लगातार टीएमसी में हैं। 2009 से लगातार लोकसभा सांसद हैं। 1998 से 2024 तक वो 6 बार सांसद रहे। 2011 से 2025 तक टीएमसी संसदीय दल के नेता रहे। दूसरा चेहरा काकोली घोष का है। टीएमसी के गठन के शुरुआती वर्षों में पार्टी से जुड़ी। 2009 से 2024 तक 4 बार लगातार पश्चिम बंगाल की बारासात सीट से लोकसभा सांसद रही। 2009 से टीएमसी की लोकसभा चीफ व्हिप रही। तीसरा चेहरा शताब्दी राय का, जिन्हें ममता सिनेमा से सियासत में लाई। 2009 में टीएमसी के टिकट पर पहली बार लोकसभा सांसद बनी। 2009, 2014, 2019 और 2024 4 बार लगातार सांसद चुनी गई। 2025 में उन्हें लोकसभा चुनाव में टीएमसी का उपनेता बनाया गया।
1: कोई नहीं है बचा, सब खत्म, पूरा खत्म, वह सब हो गया है। इतना घमंड, इतना अत्याचार, पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर ये राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टिकरण, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी एक शक्ति को, बंगाल की जनता को उखाड़ फेंकी है। 7 साल 1 महीने के अंदर उनका पार्टी भी बर्बाद हो गया है।
0: जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर टीएमसी को खड़ा किया, वो अधिकांश चेहरे अब ममता के खिलाफ खड़े हैं और इनकी जंग टीएमसी के नाम और सिंबल पर कब्जा करने की होने वाली है। लेकिन क्या ये संभव होगा? अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधायी दल से ऊपर मूल राजनीतिक दल होता है और वैध विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल भी किसी दूसरे दल में विलय करे। केवल सांसदों के अलग होने से विलय मान्य नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल पार्टी की सहमति के बिना किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकता है।
2: जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं।
3: इसके साथ जो उन्हें जा रहा है वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है।
0: यानी सारा दारोमदार स्पीकर ओम बिरला पर है, लेकिन पर्दे के पीछे एक किरदार बीजेपी भी है जो इन सांसदों के संख्या बल का इस्तेमाल ऐसे करना चाहती है कि फायदा भी हो जाए और फंसना भी ना पड़े। इन सांसदों को बीजेपी में शामिल करने पर पार्टी कैडर के असंतोष का खतरा है, इसलिए कदम फूक फूक कर उठाए जा रहे हैं। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ममता बैनर्जी के नाम और चेहरे पर राजनीति करने और चुनाव जीतने वालों ने क्या धोखाधड़ी की है। बागियों के प्रमुख चेहरों में से एक शताब्दी रॉय का क्या कहना है, सुनिए।
5: अभी तो चलो, अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को
6: जी।
5: तो अभी चलो, नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है।
6: उसको परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने क्या आगे स्टेप लेना है?
5: नहीं, अभी तो चलो, लीडरशिप कौन लीडर कौन डेप्यूटी ये सब ठीक होगा फिर चले।
7: और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। पीयूष, सवाल यह है कि अब टीएमसी का होगा क्या? सवाल एक बहुत ज्यादा यह भी उठाया जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर तो इन सांसदों को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपनी नाराजगी पहले पार्टी के फोरम में तो रखी ही नहीं।
8: जी बिल्कुल राजीव, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने जब सांसदों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि डर इतना था पार्टी के अंदर कि वो अपनी बात कभी भी ममता बनर्जी तक पहुंचा ही नहीं पाया, और इसीलिए वो कई बार अभिषेक बनर्जी पर आरोप मढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। इन सांसदों ने कल एक चिट्ठी भी सौंपी लोकसभा स्पीकर को राजीव, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो अब तृणमूल कांग्रेस के साथ फिलहाल नहीं रहना चाहते, वो एनसीपीआई के साथ अपने आप को कर चुके हैं, और जब सेशन शुरू होगा तब उस वक्त वो लोकसभा स्पीकर से दरख्वास्त भी करेंगे कि उनको बैठने के लिए अलग जगह दी जाए। लेकिन इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने भी ये साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस का विलय या उसके सांसदों का किसी पार्टी में जाना या टूटना तभी संभव हो पाएगा जब पार्टी ओरिजिनल तौर पर यानी मूल तौर पर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है। तो राजनीतिक इसमें छींटाकशियां तो हैं, साथ साथ इसमें जो लीगल प्रॉब्लम्स है वो भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को फेस करनी पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने एनसीपीआई में अपने आप को मर्ज करने की अभी सोची है। लेकिन जब सत्र शुरू होगा तब हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी कवायदें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अगर नंबर की बात करें तो 20 सांसद कल जरूर मौजूद थे भूपेंद्र यादव के घर पर, और वहां पर लंबी चर्चा के बाद वो सीधे पहुंचे लोकसभा स्पीकर के पास, जहां पर जाकर उन्होंने चिट्ठी दे दी है। अब आगे वाले समय में देखना यह होगा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको देखने जा रही है। अभिषेक बनर्जी जो न सिर्फ सबसे बड़ा रिबेलियन फेस कर रहे हैं, वो साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, वो किस तरह से इन सब चीजों को डील करने वाले हैं आगे वाले समय में ये जरूर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।
4: जी शुक्रिया पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब बंगाल की उठापटक से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तैयारियों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है।
7: कल यूपी के बहराइच में मटेरा विधानसभा सीट पर ओवैसी ने अपनी रैली की। इस रैली में ओवैसी ने न केवल AIMIM को बीजेपी के बी टीम बताने वालों को जवाब दिया, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी में मची टूट को लेकर भी सियासी तंज कसा।
9: अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए, और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे हो ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के, एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
13: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
16: राजनीति में नई जगह बनाएंगे क्या? पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी या फिर इसकी पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसे संगठन विस्तार का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुस्लिम वोटों की नई गोलबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यानी मुस्लिम, पिछड़ा और दलित सामाजिक समीकरणों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, जहां प्रतिनिधित्व की भूख बढ़ती है वहां नए दावेदार भी पैदा होते हैं। ओवैसी उसी दावे के साथ मैदान में है।
17: 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है और उसी कड़ी में एआईएमआईएम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बहराइच में रैली है। ये रैली मटेरा विधानसभा, जो बहराइच जिले में पड़ती मटेरा विधानसभा, वहां पर यह रैली आयोजित की गई है। अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसकी धमक यहाँ पर ज्यादा है, जो वोटर है वो ज्यादा है। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी।
16: समाजवादी पार्टी की रणनीति में फिलहाल दम भी दिखता है, क्योंकि अब तक ओवैसी पिछले दो चुनावों में कुछ खास नहीं कर सके। 2017 विधानसभा में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन शून्य पर सिमट गई, वोट सिर्फ 0.24% मिले। इसी तरह 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाई, वोट 0.49% मिला।
18: अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम।
16: उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती, कुछ हारे जमीन तैयार करती है और कुछ जीते सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती है।

घर में रखे सोने की चमक हर भारतीय का दिल खुश कर देती है। शादी ब्याह से लेकर मुसीबत के वक्त यही पीला सोना हमारा सबसे सच्चा साथी बनता है। देश के करोड़ों लोग जरूरत पड़ने पर इसी सोने को गिरवी रखकर बैंक से लोन भी लेते हैं। आम आदमी की इस बड़ी जरूरत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार सोने के बाजार में कुछ बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। इसी वजह से बैंक से गोल्ड लोन का पूरा लेखा जोखा मांगा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक से 2023 से लेकर अब तक के गोल्ड लोन का पूरा डेटा मांगा है। इसमें बैंक को दिए गए लोन की कुल रकम, ग्राहकों और उधारकर्ताओं की संख्या के साथ गिरवी रखे सोने की मात्रा बतानी होगी। इसके साथ ही विदेशी सप्लायर्स से जुड़े गोल्ड मेटल लोन का पूरा पोर्टफोलियो भी सरकार को सौंपना होगा। इस बड़े कदम के पीछे सरकार की सोच गोल्ड लोन और गोल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम की गहराई से समीक्षा करना है। दरअसल देश में सोने की लगातार बढ़ती डिमांड और भारी इंपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाने की हलचल तेज हो गई है। आंकड़ों को देखा जाए तो 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट करीब 24% बढ़कर 71.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान विदेशों से कुल 721 टन सोना आयात किया गया, जिसकी ऊंची कीमतों ने सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया। इसलिए आने वाले दिनों में गोल्ड लोन, गोल्ड ETF और आयात निर्यात से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की संभावना है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार नए रास्ते तलाश रही है। इस पूरे मामले में गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने सरकार और रिजर्व बैंक को कोई सुझाव दिए हैं। इनका कहना है कि विदेशों से पूरी तरह तैयार सोना मांगने की जगह घरेलू रिफाइनरियों में साफ होने वाले कच्चे सोने के बार का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। गोल्ड मेटल लोन के तहत बैंक विदेशी सप्लायर्स से सोना लेकर ज्वेलर्स को गहने बनाने के लिए देते हैं। इंडस्ट्री का सुझाव है कि बैंक और गोल्ड ETF स्कीम को देश में ही रिफाइंड डोरे गोल्ड बार खरीदने की इजाजत मिले। इससे घरेलू सोने का इस्तेमाल बढ़ने से विदेशों पर निर्भरता घटेगी और देश का चालू खाते का घाटा काबू में आ जाएगा। गोल्ड कारोबारियों ने सरकार से निर्यात नीति को भी थोड़ा आसान बनाने की मांग की है। मांग कमजोर होने पर बिना बिके अतिरिक्त सोने को चीन और टर्की जैसे विदेशी बाजारों में बेचने की अनुमति मांगी जा रही है। सरफा बाजार में सुस्ती के सीजन में सरकार पूरी व्यवस्था को सुधारने का खाका तैयार कर रही है, जिससे आम ग्राहकों की जेब और इकोनॉमी को सुरक्षित रखा जा सके। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ईरान अमेरिका में शांति समझौते का ऐलान होते ही बम बम हुई दुनिया भर के बाजार का चतिल सस्ता। शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर दस्तखत, खत्म होंगी होर्मुस की सारी बाधाएं। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। कल G7 की बैठक में शामिल होने के लिए लौटेंगे फ्रांस, ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया की नजर। यूपी में तेज हो गई मुस्लिम वोटों की राजनीति, ओवैसी ने आज तक से कहा गठबंधन का विकल्प खुले, राम गोपाल का जवाब, बीजेपी को हराने वालों का स्वागत। नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी, लोकसभा स्पीकर को सौंपे 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी। अभिषेक बैनर्जी ने भी लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ानें शुरू, लखनऊ से आई पहली फ्लाइट। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं सिलसिले की। सबसे पहले आपको देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हो गया है। ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते का ऐलान भी कर दिया है। ईरान की ओर से भी जानकारी दे दी गई है कि अमेरिका से डील पर सहमति बन गई है। अब 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। तेहरान का कहना है कि लेबनान समेत सभी मिलिट्री ऑपरेशन आज रात से बंद हो जाएंगे। साथ ही दावे के मुताबिक ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी भी तुरंत हटा ली जाएगी।
1: 39 दिनों की जंग और 100 दिनों से ज्यादा लंबे चले तनाव को खत्म करने के लिए आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते पर आखिरी हस्ताक्षर, आखिरी मुहर 19 जून को जिनेवा में लगेगी। यानी अब पश्चिम एशिया में संकट खत्म होने वाला है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुलने वाला है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट भी खत्म हो सकता है। नजर इस बात पर ही है कि क्या इसराइल की ओर से कोई आखिरी अड़ंगा लगाया जाएगा, क्योंकि आखिरकार अमेरिका की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि युद्ध अब खत्म हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो रहे हैं, हॉर्मुज में खड़े जहाज अब अपने इंजन शुरू कर सकते हैं। ईरान ने इसे अपनी जीत बताया और यह भी कह दिया कि हाँ, अब रजामंदी है, युद्ध खत्म करने का समय आ चुका है। अब 19 तारीख को सबकी नजरें जिनेवा में होंगी, जब दोनों देशों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
0: अमेरिका ईरान के बीच में समझौते में 14 अहम मुद्दों का जिक्र है, जिस पर बात बनी है। अमेरिका लगातार इस बात पर अड़ा था कि वो ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, और उस पर भी सहमति बनती दिखी है। 14 पॉइंट्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके जो है शेयर भी लिया है, और ईरान की फीस $24 अरब 60 दिन में जारी भी हो जाएंगे।
2: करीब 107 दिन के बाद ही सही, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में 14 शर्तों के साथ जो युद्ध विराम की शर्तें थी या डील थी, उसको लेकर सहमति बन गई है। हालांकि आधिकारिक डील करीबन 19 जून को साइन की जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 शर्तें ईरान और अमेरिका ने संयुक्त रूप से मान ली है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अब ईरान कभी भी ना तो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और ना ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट को, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट को उस लेवल पर लेके जाएगा जहां पर वो किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन बना सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ना सिर्फ अब ईरान को आर्थिक मदद देने, बल्कि उसके सैंक्शंस को कम करने और धीरे धीरे हॉर्मुज से अपने नेवल ब्लॉकेट को हटाने के लिए भी सहमति बना ली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जरूर ये सहमति बन गई हो, लेकिन देखने वाले कदम इसराइल के होंगे, क्योंकि जैसे ही ये डील लॉक हुई उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि इसराइल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू अपने डोमेस्टिक लोगों को लेकर, प्रेशर को लेकर कोई बड़ा कदम उठा ले और एक बार फिर से ये डील खटाई में ना पड़ जाए।
0: पश्चिम एशिया में समझौते के बाद से तनाव खत्म होने की पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा राहत तेल और गैस की सप्लाई को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि होर्मुस खुलेगा, तेल और गैस के साथ जहाज भी दौड़ेंगे। ट्रंप के दावों के मुताबिक शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुस खुल जाएगा।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के ऐलान का स्वागत पूरी दुनिया ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि अब यहां से अमेरिकी ब्लॉकेड हट सकेगा, यानी तेल और मालवाहक जहाजों की आवाजाही अब एक बार फिर शुरू होगी। यानी सेफ पैसेज के बाद पूरी दुनिया पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा था वो खत्म होगा। तेल और गैस सप्लाई के संकट से जूझ रहे देश अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये सप्लाई सामान्य हो जाएगी। भारत के भी तमाम जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद इन जहाजों को भी भारत लौटने का इंतजार रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और ये 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। यानी कि पूरी दुनिया ने इस फैसले का स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से की जा रही है।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ हुए समझौते को गेम चेंजर बताया है। उनका दावा है कि अगर ये डील पूरी तरह से लागू हुई तो अगले 50 साल के लिए मध्य पूर्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का नक्शा बदल सकता है। दूसरी ओर ईरान ने धमकी भी दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि देश की सेना हमेशा ट्रिगर पर उंगली रखेगी और किसी भी साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगी।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए समझौते को शांति समझौता करार देते हुए यह भी दावा किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मंजूरी भी मिल गई है। इसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति जे डी वांस ने कहा कि ये समझौता ऐतिहासिक समझौता है और अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अगले 50 साल के लिए मध्य पूर्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इन्हीं बयानों के बीच में ईरान का भी एक बड़ा बयान आया है जिसमें ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान की सेना की उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर रहेगी और किसी भी तरह की साजिश का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी।
0: और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, इसराइल ने अमेरिका और ईरान की डील को जो है ठुकरा दिया है, या इसराइल से बड़ी खबर, इसराइल ने इस डील को ठुकरा है। ईरान अमेरिका डील इसराइल को नामंजूर है, ये बहुत बड़ी खबर है। यूं तो सीजफायर भी हुआ था लेकिन लगातार वायलेशन के आरोप इसराइल पर लग रहे थे, लेकिन अब इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, हिजबुल्ला के साथ हम नरमी नहीं बरतेंगे। वो लगातार लेबनान में हिजबुल्ला को टारगेट कर रहा है। हमारी सुरक्षा नीति वॉशिंगटन तय नहीं करता, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सख्त अब इसराइल की तरफ से आ रही है। अमेरिका और ईरान में समझौते का ऐलान होते ही आज तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और काफी अच्छी गिरावट। आंकड़ों की अगर माने तो क्रूड ऑयल का भाव 4% तक गिरा। इधर भारतीय शेयर बाजार ने भी राहत की सांस ली है। आज सेंसेक्स में 1100 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ है। निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में 400 से ज्यादा अंकों का उछाल दर्ज किया गया। लगातार आर्थिक संकट के बीच में डील के होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था अब राहत की सांस ले रही है।
2: मार्केट्स में आज धकाधक तेजी, रुपया मजबूत, तेल में गिरावट और बुल्स सरपट दौड़ते हुए दलाल स्ट्रीट पर। इसके पीछे एक ही कारण, पीस डील जो आपने समझौता होते हुए देखा है जिस पर हस्ताक्षर अब शायद इस हफ्ते के अंत तक हो जाएंगे। यूएस और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ है उस वजह से चौतरफा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी उछाल में 381 अंक ऊपर, लगभग 1200 से ज्यादा अंकों की उछाल आप सेंसेक्स पर देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में तेजी की चहक, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स चहकते हुए और कई सेक्टर अब आपको बुल रन में जबरदस्त दौड़ दिखाते हुए दिखेंगे। कारण सिर्फ एक, डर का माहौल समाप्त और खुशियों की लहर शुरू।
0: 12:12 रिपोर्टों में बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के दौरे की, जहां पर कुछ देर के बाद वो वहां के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। आज ही शाम प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। उससे पहले कल पीएम मोदी ने फ्रांस के दौरे के पहले चरण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच में कई अहम समझौते हुए और उस दौरे को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के बैकग्राउंड में सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के आरी आरी गाने को जो है चलाया गया है, वो सुनाई दे रहा है। वीडियो में यह मोदी और मैक्रों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री भी दिख रही है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी दौरे पर हैं और एम एकदम साफ है, भारत के लिए जितना निवेश हो सके उतना लेके आना। कई सारे एमओयू साइन हो चुके हैं और कई जगह एफटीएस की बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों से अपील करी थी कि हिंदुस्तान कई सारे एफटीएस साइन कर चुका है, आप कोशिश करिए कि आप उनका मैक्सिमम लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेशी दौरे पर जाते हैं एफटीएस पर और एमओयू पर खास बातचीत होती है। कोशिश यही की जाती है कि विदेश जाके लोगों को बताया जा सके कि इस समय कैसे हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट है और हिंदुस्तान में निवेश करना ही सबसे उत्तम ऑप्शन है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।
0: अब खबर टीएमसी की। टीएमसी के बागी सांसदों ने कल दिल्ली में एक बैठक की है और उसके बैठक के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी कह दिया कि वो सभी एनडीए का समर्थन करेंगे। संसद में अलग बैठने की मांग भी स्पीकर से कर दी गई है। अब सभी की नजरें स्पीकर पर टिकी है कि आखिर वो क्या फैसला लेते हैं। तो टीएमसी के बाकी सांसद एनसीपीआई में विलय करेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बकायदा जो पत्र है 20 सांसदों का समर्थन वाला पत्र स्पीकर को सौंपा और कहा कि हमारे लिए अब अलग सी व्यवस्था की जाए।
6: कल टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया कि अब वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी का विलय करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर ये पत्र भी दे दिया कि अब उनका जो विलय है वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में हुआ है, उनको लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह दी जाए और उनको मान्यता दी जाए। अब देखना यह है कि लोकसभा स्पीकर इस पर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि अब सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हुई है। क्या इस गुट को जो है वो जिस पार्टी में उन्होंने विलय किया है एनसीपीआई में, उसमें मान्यता देंगे या एक अलग गुट के रूप में जो है वो मान्यता मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
0: बागी टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय दिल्ली से कोलकाता लौट गए। उन्होंने दोहराया कि सभी बागी सांसद एनडीए के सहयोगी बनेंगे। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी एक अहम बयान दिया। अभिषेक को होशियार और समझदार बताते हुए कहा कि वो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे लेकिन किसी वजह से गुमराह हो गए।
7: আমি এখনো মনে করি অভিষেক খুবই স্মার্ট ছেলে, ইন্টেলিজেন্ট ছেলে, এবং এটাও মনে করি যে মানে অভিষেক অনেক কিছু করতে পারত কিন্তু কোন কারণে মিসগাইডেড হয়ে গেছে, কিন্তু ওর মধ্যে রাজনীতির পোটেনশিয়াল ছিল।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बड़ी खबर। अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी हुई जो आज ईडी के सामने फिर से पेश हुए हैं। अब उनकी ये पेशी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हुई है। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ये सवाल जवाब हो रहे हैं। एक दिन पहले सीआईडी ने लगभग 8 घंटों से ज्यादा समय तक फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बैनर्जी से सवाल जवाब किए थे और अब ईडी सवाल जवाब कर रही है।
8: पिछले हफ्ते लगातार दो बार पश्चिम बंगाल सीआईडी के सवालों के घेरे में आए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी और आज वो ईडी के सवालों के सामने हैं। इस वक्त मेरे पीछे ईडी ऑफिस है कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स और यहीं पे अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद ठीक सुबह 11 बजे अंदर पहुंचे हैं क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पे पूछताछ के लिए उनको आज बुलाया गया था और वो आज पहुंच गए हैं। ये ऐसा एक जांच है जो पिछले कई सालों से चल रही है। इसी केस में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी गिरफ्तार हुए थे, तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो, और इस वक्त उस जांच के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया है। दरअसल ईडी जो ये पूरा घोटाला है इसका मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट को इस वक्त जांच कर रही है, उसका छानबीन कर रही है।
0: और अब बात पटना के ज्ञान बिंदु अकादमी के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद और अब फैसल खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया है। मौत पर दुख जताते हुए मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय मांग की है जांच की। उधर बिहार के सहरसा में आज प्रिंस का अंतिम संस्कार होगा जिसमें उनके भाई रोशन आनंद भी शामिल होंगे, उन्हें जेल से जमानत भी मिल गई। अंतिम संस्कार में रोशन आनंद भी शामिल होंगे। नेपाल ने होटल में उनका शव मिला, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में फैजल खान ने भी वीडियो जारी किया है, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। जो सहायता वो कर सकते हैं वो कहा कि वो भी इसमें सहायता करने के लिए तैयार है।
9: जो प्रोटेस्ट खान के सर के ये पर हुआ उनके इंस्टीट्यूट पर, जबकि उन्होंने छुपा लिया कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने दूसरा एफआईआर लॉन्च किया, उसमें सच्ची कहानी आ गई कि गार्ड्स ने फायरिंग की, उसके चलते ये सब बातें बढ़ गई और कुछ नहीं है, इनको बेल मिल गया।
10: पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच मारपीट की घटना के बाद ज्ञानबिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद जेल में बंद थे, लेकिन अब कोर्ट ने उनको राहत दी है। रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव जो इसी मारपीट के मामले में अभियुक्त बनाए गए थे, उनकी नेपाल में मौत हुई। संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बाद फैजल खान जिनसे ज्ञानबिंदु एकेडमी के रोशन आनंद की वर्चस्व की लड़ाई है, उन फैजल खान ने भी अब जो प्रिंस यादव है उसकी मौत पर अपनी संवेदना प्रकट की है। माना जा रहा है कि बेल मिलने के बाद रोशन आनंद अपने गृह जिले सहरसा रवाना होंगे जहां पर प्रिंस यादव के अंत्येष्टि में वे शामिल होंगे।
0: प्रिंस यादव का नाम फैजल खान के कोचिंग में हुए विवाद मामले में एफआईआर में शामिल था और उस मामले में पटना पुलिस ने फैजल खान के कोचिंग केजीएस से जुड़े हुए तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। कन्हैया कुमार सिंह, अजीत कुमार और अंकित कुमार पांडे को कदमकुआं थाने में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कोचिंग संस्थानों के बीच मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए पटना पुलिस से उनकी तरफ से केजीएस के बाद रविवार को बकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया। 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक स्कूल को चाकू से गोदकर पता चला कि छात्र की हत्या कर दी गई। इस वारदात का जो सीसीटीवी वो भी सामने आया है। चंडीगढ़ के मौली जांगरा में वारदात हुई है। यहां पर 10 से 12 हमलावरों ने एक युवक की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही मौली जांगरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच शुरू कर दी।
11: शुक्रवार को केमिस्ट की दुकान पर काम करने वाले कैशियर की हत्या के बाद 24 घंटे में ही दूसरी हत्या का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ के मौली जागरा में तोता नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। हालांकि मामला आपसी रंजिश का है, लेकिन 10 से ज्यादा बार चाकू को दे जाने के बाद जब हत्या होगी और साथ का एक दोस्त जख्मी हुआ तो शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मामले की सीसीटीवी हो, मौके के एविडेंस हो और आसपास के लोग जिन्होंने ये दृश्य देखा उनसे पूछताछ की जा रही है और मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि ये 24 घंटे में दूसरी हत्या है जो चंडीगढ़ में हुई है। शुक्रवार के दिन इससे पहले केमिस्ट की तीन शूटरों ने आकर हत्या कर दी थी। हालांकि अब इस पर पुलिस क्या करेगी, क्योंकि शुक्रवार और ये शनिवार रात की घटना दोनों में ही कोई लीड पुलिस को अब तक इसमें नहीं मिली है।
0: उत्तराखंड के विकासनगर में हिंदू युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 नामजद आरोपियों रजाक, सलमान, जावेद और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। विकासनगर में बवाल हुआ जहां हिंदू युवक की जो है मौत हो गए, उसके बाद से आरोपियों का घर जला दिया गया था। इस मामले में कार्रवाई भी हुई है और 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए जिनके नाम भी सामने आ गए हैं, सलमान, रजाक, जावेद और शहबाज।
12: हिंसा ने जकड़ लिया और हिंसा के बाद पुलिस ने भी यहां पर लाठीचार्ज किया और इसके बाद पूरा गांव जो है शांति में तब्दील हो गया। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमें सलमान, रजाक, जावेद और एक अन्य शामिल हैं। इसके साथ साथ 30 अन्य जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है सीसीटीवी की मदद से। कुछ जो गवाह हैं उनकी मदद ली जा रही है और लगातार पुलिस दावा कर रही है कि धरपकड़ जारी है और जल्दी जो बाकी जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। एफआईआर में 12 लोगों का नाम था और अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखना होगा कि और नाम जुड़ते हैं कि नहीं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
14: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम। एंड विद देयर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। ओह, आउच। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, we can work with that.
15: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
16: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
17: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
18: Savari.
19: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
21: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
22: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
4: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
5: अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर के अब पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला लिया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। सीजफायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का, बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: अब खबर रीनीट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई। अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 12:12 रिपोर्टर में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: 1 second you're enjoying your first day off in forever, then mid lunch your phone buzzes, a window's been broken at home and you're miles away. In 1 second everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: Right field, and it will...
7: From the first pitch of the season to the stretch run.
8: And that's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हुआ, महीनों से चल रहा जंगी तनाव खत्म हुआ, तो ये सवाल हुआ कि आखिर शांति प्रस्ताव के ड्राफ्ट में क्या है? दोनों देश डील पर मुहर तक कैसे पहुंचे? जिन शर्तों पर ईरान के नेता अड़े हुए थे वो पीछे कैसे हट गए? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान ने यह वादा किया है कि वो न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही किसी अन्य तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। ये अमेरिका ईरान के बीच समझौते का सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस बात पर अड़ा था कि वो ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा।
13: They should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. I don't know what they're doing.
12: ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच यूरेनियम का संवर्धन स्तर भी कम किया जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया कैसे होगी इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अगले 60 दिनों के भीतर इसकी तकनीकी रूपरेखा तय करेंगे। अब बात उन बिंदुओं की करते हैं जो डील में ईरान के पक्ष में गई हैं। ईरानी अधिकारी का दावा है कि अमेरिका करीब $25 अरब फ्रीज किए गए फंड को जारी करने पर सहमत हो गया है, जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, क्षेत्रीय देशों के सहयोग और वित्तीय क्रेडिट लाइन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही अमेरिका कुछ समय के लिए ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों में भी छूट देगा, जिसके बाद ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोबारा तेल बेच सकेगा। डील में हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी शामिल है। प्रस्तावित समझौतों के तहत ईरान सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल देगा, जो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट के बीच सबसे राहत भरा होगा। आज तक ब्यूरो।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स की रजिस्ट्री की आस लगाए बैठे लोगों के लिए राहत की किरण नजर आने लगी है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आने वाले कुछ हफ्तों में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसमें एक नई वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस को लागू किया जाएगा। ओटीएस का मकसद बिल्डर्स से हजारों करोड़ रुपए का बकाया वसूलना है। प्रस्ताव लागू होने पर करीब 2.12 लाख फ्लैट से जुड़े रजिस्ट्री मामलों को राहत मिल सकती है। फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 57 डिफॉल्टर प्रोजेक्ट्स पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ओटीएस के तहत अथॉरिटी ब्याज या जुर्माने के कुछ हिस्से में छूट देकर बिल्डर्स को एक मुश्त भुगतान का मौका देगी। इससे सरकार और बिल्डर के बीच फंसा वित्तीय विवाद सुलझ सकेगा। लेकिन ओटीएस आने के बाद भी उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू हो पाएगी जहां बिल्डर के पास भुगतान जुटाने के पर्याप्त संसाधन मौजूद है। ओटीएस का फायदा वही बिल्डर्स उठा पाएंगे जिनके पास पर्याप्त कैश फ्लो मौजूद है, यानी जिनके पास बेचने के लिए अनसोल्ड फ्लैट्स या कमर्शियल स्पेस बचा हुआ है, या ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें गिरवी रखकर या बेचकर वो अथॉरिटी का बकाया चुका सकते हैं। इसके उलट जिन बिल्डर्स की माली हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही बेचने लायक इन्वेंट्री, वहाँ इस स्कीम के बाद भी खरीदारों को मालिकाना हक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने समीक्षा बैठक में डिफॉल्टर बिल्डरों पर सीधी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साफ है कि जो बिल्डर्स इस आखिरी मौके के बाद भी बकाए का भुगतान नहीं करेंगे, उन पर सख्त कानूनी हंटर चलना तय है। मौजूद विकल्पों के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट यानी RC जारी करके प्रशासन के जरिए सरकारी वसूली की जाएगी। डिफॉल्टर बिल्डर्स की जमीन, दफ्तर और दूसरी संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है। रेवेन्यू रिकवरी की तरह बैंक खाते और प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। गंभीर मामलों में बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट करके भविष्य के प्रोजेक्ट से बाहर किया जाएगा। यूपी रेरा के तहत भारी जुर्माना, मुकदमा और दिवाला प्रक्रिया यानी IBC के तहत प्रोजेक्ट नए डेवलपर को सौंपा जा सकता है। लाखों फ्लैट खरीदारों के लिए ओटीएस उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। साफ है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए बिल्डर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फिलहाल हर किसी की नजर अथॉरिटी के अगले कदम पर टिकी है। आदित्य के राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

यूपी में मुस्लिम वोटों की राजनीति शुरू। यूपी में ओवैसी ने चुनावी ऐलान किया तो सियासत गरमाई। आज तक से बोले गठबंधन के विकल्प खुले। ओवैसी के बयान पर बोले रामगोपाल यादव, कहा कि बीजेपी को हराने वालों का स्वागत करेंगे। महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी सरकार को घेरा। बहराइच में नारों के बीच में ओवैसी का बड़ा ऐलान। मडेरा विधानसभा सीट से शौकत अली AIIMM के उम्मीदवार घोषित। बहराइच में बोले ओवैसी न बुलडोजर से डर न एनकाउंटर से डरेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग। यात्रियों ने तालियों से किया स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों से मुख्यमंत्री का संवाद। पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे अन्नदाताओं का स्वागत। राम जन्मभूमि मंदिर दान मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद। कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर SIT ने जांच की शुरू। ट्रस्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग दिया जाएगा, पारदर्शिता रखी जाएगी। लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई में 3 सदस्यीय SIT आज अयोध्या पहुंचेगी। चढ़ावा मामले की जांच करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR और गिरफ्तारी की कार्रवाई SIT रिपोर्ट के आधार पर तय होगी। कई सवालों की पड़ताल। आगरा में अखिलेश यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला। बोले कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान माफ कर देंगे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। बोले कि राम मंदिर चंदे पर सवाल करने वाले पहले बाबरी मस्जिद का हिसाब दें। यूपी में गठबंधन के नए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे कांग्रेस। इमरान मसूद बोले कि अखिलेश को राहुल गांधी का साथ लेना होगा। इमरान का बड़ा बयान। कांग्रेस ने 170 सीटों की एक कैटेगरी तय की है। ओवैसी और चंद्रशेखर को बताया भाई। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने योगी सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। बोले 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनेगी सरकार। उन्नाव में साधु की हत्या का मुख्य आरोपी इसराइल पुलिस एनकाउंटर में ढेर। 9 जून को साधु की हत्या करके फरार था, पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। प्रयागराज के पटपड़ वाटरफॉल में जमकर बवाल। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। जालौन में निजी अस्पताल की घोर लापरवाही। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप। परिजनों का आरोप बिना डॉक्टर नर्स ने डिलीवरी करवाई। देवरिया के रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर हंगामा। लाइन में खड़े युवक को दलालों ने पीटा। GRP सिपाही से भी भिड़ंत। कानपुर में गौ तस्करी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। 4 गिरफ्तार। 2 सगे भाइयों को लगी गोली। अवैध तमंचा, गौवंश भी बरामद।

0: यूपी की सियासत में कांग्रेस बनाम समाजवादी जो दरार है वो सामने आने लगी है। सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब एक दूसरे दल के नेताओं के बयानों को लेकर शुरू हो गई है और जंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर हम आपको देते हैं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली के बयान का विरोध किया है। इमरान मसूद ने कहा कि जावेद अली के बयान से वो असहमत हैं। जावेद अली ने कहा था कि देश में आज बहुसंख्यक समाज में जो जहर बन चुका है।
1: देखिए बहुत गलत बयान है, बहुसंख्यक लोगों के अंदर बहुसंख्यक लोग बेहद प्रेम और मीठे हैं और बड़े दिल के लोग हैं, तो ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और ये बहुत गलत बात है।
2: नहीं, आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जाहिर है ऐसे बयानों से आपकी जो सियासी मैथ्स है उसको नुकसान हो सकता है। बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी जरूर और आपको नुकसान करेगी।
1: मैं कह रहा हूं कि देखिए, फायदा और नुकसान देश के लिए नहीं सोचा जाता, देश के लिए देश की बात सोची जाती है और देश की बात यह है कि देश के अंदर भाईचारा और प्रेम बना रहे, तो ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जब आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात करते हो तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप केवल एक सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ बोलो, जो भी सांप्रदायिक है चाहे वो इधर से बोले या इधर से बोले, हम दोनों के खिलाफ हैं।
0: मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध में कांग्रेस की ओर से यह बयान आया और सामान्य विरोध वाला बयान नहीं है, इसकी वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जावेद अली का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने बहुसंख्यक समाज को जहर बता दिया था।
3: मैं मुरादाबाद में संबंधी में जब बात करता हूँ तो लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर वो लोग होते हैं हमारे सामने बैठे हुए जो एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सदून रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं, नेताजी के जमाने से बुलाए थे जी के जमाने से, इसलिए यहाँ बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ता। लेकिन उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहाँ बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निकलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था वो विश्वास धर्म के आधार पर है।
0: उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में तेज हो गए, लेकिन बड़े दलों ने भी उनमें भी कोई आपको बता दें कि कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रार भी जरूर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में खुद को बड़ा भाई मानती है और पिछले ही हफ्ते अखिलेश यादव दिल्ली में सुनाकर भी आए हैं कि कांग्रेस यूपी के मुगालते में ना रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदुस्तान में किसी भी दल को कांग्रेस का ही हाथ थामना पड़ेगा, कांग्रेस का ही। इमरान मसूद ने ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी को सलाह दी है कि बिना कांग्रेस का हाथ थामे बीजेपी को हराना नामुमकिन है।

0: विकल्प कांग्रेस है, बहुत स्पष्ट कह दूं। राहुल गांधी है जिसके अंदर दम है, जो लड़ सकता है, राहुल गांधी का हाथ जो नहीं थामेगा। तो या तो इधर थाम लीजिए हाथ या इधर थाम लीजिए, बीच का कोई रास्ता नहीं बच रहा है अब देश में, बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमों के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए। नहीं नहीं, राहुल जी का हाथ थामना होगा, ये उल्टा मत करिए। अखिलेश जी, राहुल जी का ही हाथ थामना होगा। अब क्या हो रहा बंगाल में? अगर बंगाल में थामा लिया होता हाथ तो यह हाल ना होता जो हुआ है, कि ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा साम्राज्य ही ढा दिया।
1: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते हैं, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में जो कांग्रेस को नसीहतें दी थी उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां रखी हैं। इमरान बताते हैं कि कांग्रेस ने तीन कैटेगरीज में सीटों को बांटा है। पहली कैटेगरी में उसके 170 सीटें हैं। तो इमरान मसूद जो कैटेगरी से उसकी बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को संकेत भी अब दिए जाने लगे हैं कि आप अपने मन मुताबिक गठबंधन नहीं कर सकते हैं, आपको कांग्रेस की जो है बात सुननी पड़ेगी, और सीटें नहीं मिली तो फिर चिंता वाली बात भी है।
0: मेरी 170 सीट हमने एक कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, तो बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर, तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं,
2: समाजवादी पार्टी देगी?
0: नहीं नहीं, देगी। हम मांग कब रहे हैं? यही तो दिक्कत है ना, कि ये नैरेटिव कल भी एक अखबार में खबर चल रही थी। अरे आप क्या नैरेटिव बना रहे हैं, हम मांग कब रहे हैं आपसे? भाई कुछ नहीं मांग रहे हम, टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? हाँ तो आपसे ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले? भाई कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए, हम अपने आपस में तय कर लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, मैं तब भी कहा था कि मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं, पूछ लीजिए आप पार्टी में। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन 6 से ज्यादा एमपी होते हम।
1: तो आप देने वाले कौन है ये कहा गया है। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ, सीटें नहीं मिली, तो दल तो और भी हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। वैसे उत्तर प्रदेश में जब से चुनावी सरगर्मी शुरू हुई तब से ऐसे तीन दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें से एक है बीएसपी, जिसके साथ ओवैसी से लेकर कई दल गठबंधन की हसरत पाले बैठे हैं। दूसरे हैं ओवैसी, जो दलित और पिछड़े दलों को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी तक जो भी बीजेपी को हरा सके उन सभी दलों से गठबंधन को तैयार दिख रहे हैं। और तीसरे दलित वोट की राजनीति शुरू कर रहे चंद्रशेखर हैं, जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ओवैसी से भी गठबंधन कर सकती है? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे खारिज नहीं किया है।
0: नहीं देखिए, हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। कॉमन एजेंडा होता है कि भाई आपका फोकस टारगेट ही है तो इसको अचीव करना है, तो ठीक है बात करते हैं, ये वो एक तरीका है, वही प्रोसेस है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। व्यक्तिगत तो सबके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, सबके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं।
3: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
1: उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिरकार धर्म, मजहब, जाति बिरादर पर घूमकर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते की सियासी गतिविधियों पर अगर गौर करें तो एक तरफ यूपी की राजनीति में किसी ना किसी तरह राम नाम की चंदा चर्चा चल रही है। तो दूसरी तरफ यूपी के चुनावी सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने एक बार फिर मजहबी तार छेड़ दिए हैं। रविवार को यूपी के बहराइच में ओवैसी की रैली हुई। इस रैली में ओवैसी ने बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर और बीफ एक्सपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक की बात कर दी। यूपी के चुनावी बिसात पर क्या है इस बार ओवैसी का दांव, आपको दिखाते हैं।
2: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
4: हम अपने जहाज की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
2: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके।
5: मान्यवर कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
2: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
5: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
2: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2,00,000 यानी 2-4%। फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5-5%। और फिर 2024 में लड़े, 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70,000-80,000 यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
5: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर, आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते,
1: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सोकुडो
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details. Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
10: टीएमसी के बागी सांसदों ने रविवार को दिल्ली में बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और फिर इस गुट ने एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सांसदों के लिए पाला बदलना इतना आसान नहीं था। अगर टीएमसी के बागी सांसद सीधे एनडीए के साथ जाते तो उनकी लोकसभा की सीट जा सकती थी। इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। इन्होंने एक ऐसी छोटी सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में खुद को मिला लिया, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। दरअसल दल बदल कानून के तहत आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद या विधानसभा पहुंचे हैं और फिर उसे बाद में छोड़ देते हैं तो आपकी सीट जा सकती है। तो इन सभी टीएमसी सांसदों के सामने एक बड़ी मुश्किल थी, ममता बनर्जी को छोड़ना था लेकिन अपनी सांसदी भी बचानी थी। इस कानून से बचाव का एक और तरीका था कि अगर किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लें तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। टीएमसी के बागी गुट के लीडर काकोली घोष दस्तीदार ने साफ कहा कि उनके पास टीएमसी के कुल सांसदों में से दो तिहाई से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए वो ये कदम उठा सकते हैं।
11: देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व।
10: टीएमसी के बागी सांसदों ने पहले ममता को झटका दिया और अब दूसरी पार्टी में विलय कर लिया है, जिसे लेकर अब कानूनी लड़ाई शीर्ष अदालत तक पहुंचती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: ये दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देर शाम पीएम मोदी और इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने वार्षिक व्यापार को मौजूदा 16 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करने का 5 वर्षीय लक्ष्य रखा। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे सहयोग, गोपनीय डेटा के लिए सुरक्षा समझौता, पेरिस नीस हवाई अड्डों तक भारत के यूपीआई पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा और मोबिलिटी जैसे अहम समझौते शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया है। फ्रांस के बाद अब पीएम मोदी स्लोवाकिया की ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पर है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक क्षेत्रों में नए मौकों की तलाश करने पर केंद्रित होगी। स्लोवाकिया के बाद सबकी नजरें G7 समिट पर होंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं से मिलेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

इसराइल ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की दो टूक, नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा वॉशिंगटन तय नहीं कर सकता हमारी सुरक्षा नीति, हिजबुल्ला पर हमले का करारा जवाब देते रहेंगे। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, फ्रांस में मैक्रों ने शेयर किया दोस्ती का वीडियो, G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है मुस्लिम वोटों की राजनीति, ओबीसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले, रामगोपाल यादव का बयान बीजेपी को हराने वालों का है स्वागत। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे टीएमसी के बागी विधायक, बागी नेता लोकसभा स्पीकर को सौंपी 20 सांसदों ने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, अभिषेक बैनर्जी ने लिखा खत, विलय को बताया असंवैधानिक।

जंग खत्म दुनिया बम बम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बजे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ी खबर आई है जहां पर मध्य पूर्व में जारी जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते की जानकारी दी, फिर ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी समझौते की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव पर असर पूरी दुनिया पर पड़ा था, तमाम देशों के ऊर्जा संकट झेलना पड़ा, लेकिन अब माना जा रहा है कि इससे लोगों ने, खासतौर पर देशों ने, राहत की सांस ली है। सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हो गई थी, अब इसी समझौते से हालातों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

0: अमेरिका इसराइल के बीच करीब 68 दिन भीषण जंग चली। ईरान के कई शहरों समेत पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची। मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ। ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल गया। यहां तक कि सीज फायर के बाद भी दोनों ओर जंगी तनाव बना रहा। अमेरिका ईरान के बीच डील की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत बेपटरी होती दिखी, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं, उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है।
1: بسیار طولانی شاید بیش از 14-15 ساعت صورت گرفت که ما آخرین اصلاحات جمهوری اسلامی ایران نسبت به متن رو مطرح کردیم و طبیعتاً این اصلاحات هم مورد پذیرش قرار گرفت و متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی شد. این نکته اول هست راجع به این فرایند. نکته دوم خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده. امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح هست و این هم نکته دوم راجبی.
0: उधर ट्रंप अपने जन्मदिन के मौके पर किए इस अहम ऐलान को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर ट्रंप पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
2: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
0: सीज फायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें भी हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का। बातचीत बिपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।
3: और देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़े होंगे, राजनयिक हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि संजीव एस अहलूवालिया, आर्थिक मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आर्थिक मामलों के बारे में इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस डील के बाद आर्थिक चीजों के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसके साथ ही मेजर जनरल एके सिवाज रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े होंगे। रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, ऑपरेशंस को लेकर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन तमाम बड़े अपने एक्सपर्ट का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस डील को लेकर पोस्ट किया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील पर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि उम्मीद है कि इस डील से शांति स्थापित होगी, साथ ही मिडल ईस्ट संकट की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, अब उम्मीद है कि शांति बहाली से चीजें सुधरेगी। देखिए तमाम देशों के साथ साथ भारत ने भी और खासतौर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर, इस डील को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि डील से स्थिरता आएगी और जिस तरीके का भारी नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है उससे शांति बहाली के बाद चीजें सुधरेंगी। चलिए हम अपने गेस्ट का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचल मल्होत्रा सर, डील तो सील हो गई है। देखिए 14 सूत्री जो बातचीत थी, समझौते थे या फिर जो शर्तें थी उनको भी मान लिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के अंदर ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे लॉ क्लॉज हैं जो दिखाते हैं कि ये पीस लंबी चलती हुई नहीं दिख रही है।
4: नमस्कार सुमित, एंड मेरे को पहले लिस्टों को भी नमस्कार। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ा इंट्रीगिंग तो यह है, अनाउंसमेंट आज हुआ है और डील आज से 4 या 5 दिन बाद होने वाली है। आपने कहावत सुनी है, मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, उम्मीद करते हैं कि प्याला होट तक आते आते छलक नहीं जाएगा
3: जी,
4: और ये बात दिल्ली दूर है, अभी ये नहीं बन के रह जाएगी। दूसरी बात ये कि इसकी जो गॉड इज इन डिटेल्स, तो डिटेल्स अभी खुल के बाहर नहीं आई। दोनों साइड ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है। ईरान की तरफ से जो खबर आ रही है वो सब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि उनकी जो एसेट्स है उसे डीफ्रीज कर दिया जाएगा, और हॉर्मुज के बारे में भी यही हो रहा है कि उनकी मैनेजमेंट चलेगी कुछ समय तक। अमेरिका अपनी तरफ से प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा स्पॉयलर इसराइल के अंदर ऑलरेडी इसको लेके अफरा तफरी मची हुई है, वो खुश नहीं है इस बात को लेके। लेबनान का क्या होगा, वो जो इनकी वो है एक्सेस जो इनके वो है अपना हिजबुल्ला, हूतीज, हमास, उसके बारे में इसमें कुछ बात होगी या नहीं होगी, और न्यूक्लियर पे क्या फाइनल हुआ है। तो जब तक डिटेल सामने नहीं आ जाती, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, ये एक अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में लग रहा है कि शांति स्थापित होगी, कम से कम 60 दिन के लिए और राहत मिलेगी, और इन 60 दिनों में निटिग्रिटीज पे बात होगी। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो MOU या जो भी एग्रीमेंट ये साइन करने वाले हैं फ्राइडे को, ये एक फ्रेमवर्क रहेगा और जिसमें इन सभी मुद्दों के ऊपर मोटे मोटे तौर से सहमति जताई जाएगी, और फिर वो 60 दिनों में देखा जाएगा कि आगे इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए।
3: बिल्कुल,
4: और उम्मीद करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज दोनों को एक्सेप्टेबल होंगे, और बाकी फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाई, सप्लाई चेन, बहुत बड़ा पूरी दुनिया को जो है इसका फायदा।
3: सर, हमारे साथ जनरल सिवाज भी है। जनरल सिवाज, एक बात बताइए, जब आप लेबनन की बात करते हैं, जब आप इसराइल की बात करते हैं, इसराइल ने तो डील के अनाउंस होने के कुछ ही घंटे में अनाउंस कर दिया कि हम तो इसको मानने वाले नहीं है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ एक तरीके का ये फेस सेविंग थी जहां पर उन्होंने बात कर ली?
5: और देखो, सच्चाई ये है सुमित, ये लड़ाई जो अमेरिका की कभी नहीं थी, ये लड़ाई इसराइल की थी, और ये नेतन्याहू ने किसी तरीके से,
3: माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपका रुख करूंगा। आपको बता दें कि इसराइल ने डील का विरोध किया है। हम अपने दर्शकों को जिस तरीके से हम जिस पर चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए अमेरिका ईरान की डील को लेकर इसराइल ने इसका विरोध किया, इसराइल डील मानने को बाध्य नहीं है, अमेरिका ईरान डील का इसराइल की तरफ से विरोध किया गया है, उनके जो वॉर आप कह सकते हैं मंत्री हैं उनकी तरफ से, बैन गिवियर की तरफ से कहा गया कि देखिए हम इस डील को नहीं मानते, और अमेरिका ईरान डील का इसराइल ने विरोध भी किया है। आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए हम इस डील को मानने से इंकार करते हैं, और इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि IDF लेबनन, सीरिया और गाजा के सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हम तमाम दबावों के बावजूद भी लेबनन से IDF की वापसी का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्री की माने तो इसराइल सुरक्षा क्षेत्रों के पीछे नहीं हटेगा। देखिए जनरल सिवाज, हम जो बात कर रहे थे उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि देखिए इसराइल को मनाना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है।
5: हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है, और जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई ये लड़ाई तो कभी अमेरिका की थी नहीं, अमेरिका तो इसराइल के कहने पे इस लड़ाई पे आया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप को लगा था ये दलदल में फंस गए और उनका निकलना बहुत जरूरी था। उनकी खुद की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन है, 14 जुलाई को 250 की इनकी एक प्रकार से इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन है। अब बात ऐसी है, क्या इसराइल इस चीज को मानेगा जो डील हुई है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मुझे लगता नहीं इसराइल कभी मानेगा। इसराइल का मानना यह है कि जो हिजबुल्ला है लबनान के अंदर, वो नदन इसराइल पे हमले करता है, 1 से 1.5 लाख के करीब लोग पलायन कर गए हैं, और अब जो इसराइल की फोर्स जो लिटानी नदी है जो 30 किलोमीटर दूर है, उससे आगे जाके जहरानी जो नदी है वहां तक पहुंच गए, और वो ये कह रहे हैं कि जो हिजबुल्ला है वो अभी भी हमला कर रहा है, और हिजबुल्ला की ताकत और काबिलियत अभी भी बरकरार है, और इसराइल इसका हिस्सा नहीं है डील का, इसराइल हिजबुल्ला पे हमले करता रहेगा। तो अब ये बात आ रही, क्या ये डील फिर चल पाएगी अगर इजराइल इसका हिस्सा नहीं है और इजराइल इस डील को नहीं मानता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है क्या अमेरिका कितना प्रेशराइज कर सकता है नेतन्याहू को इस डील को माने, हमले ना करे, ये एक म्यूट क्वेश्चन है। क्योंकि ये भी समझना पड़े इसराइल की ताकत इसलिए है क्योंकि उसको हथियार मिलते हैं अमेरिका से। अगर अमेरिका के हथियार नहीं होते क्या इसराइल अकेला ईरान से लड़ पाएगा, ये मुझे लगता है बहुत एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। मगर एक बात है सुमित कि इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही डील में है, इसमें गिव एंड टेक है। मुझे लगता है ज्यादातर ईरान को फायदा है मगर इसके अंदर एक कड़ी है जो कि कमजोर है, वो है इसराइल की। क्या नेतन्याहू इस डील को मानने के लिए तैयार है? अगर वो नहीं मानते,
3: जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं, उससे तो नहीं लग रहा कि इसराइल मानेगा। और अगर मान भी गया तो एक फौरी तौर पर या कुछ टेम्पररी फेज के लिए जरूर मानेगा, लेकिन बाद में फिर अपने ऑपरेशंस की शुरुआत ना कर दे। संजीव सर, इस 107 दिनों के अंदर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक हालातों को घुटने पे ला दिया। अभी की जो डील बनी है, अभी जो 60 दिन का पॉज कह सकते हैं इसको, क्या आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के हाथ में कैसा प्रेशर पॉइंट आ गया है, ईरान जब चाहे पूरी दुनिया को दोबारा से घुटने पर ला सकता है? देखिए, क्योंकि अभी भी ईरान ने हॉर्मूज को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं दी है।
6: इसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका स्वागत किया है पीस डील का, मैं उससे सहमत हूं। क्योंकि देखिए, ईरान की तरफ से क्या उनका इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट ये है, ये नहीं कि वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि उनके खुद के लोग लेबनान में लड़ रहे हैं। इसराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है वॉर खत्म करने में। जो वॉर हम खत्म करना चाह रहे हैं वो है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। तो अगर ये हो सकता है कि अमेरिका इस वॉर को छोड़ दे तो इसराइल और ईरान का तो पुराना मसला है, वो चलता रहेगा। बट उस वो इतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें रहा वो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, जहां तक अर्थव्यवस्था को खराब करने का सवाल है, तेल की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। परंतु एक चीज नोट करिए कि जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, लगभग 4 बिलियन बैरल रिजर्व्स हैं पूरे ग्लोबल, और उसमें से जो अभी यूज हुए हैं वो केवल 400 मिलियन बैरल यूज हुए हैं। तो काफी हद तक दुनिया के पास अभी भी रिजर्व कायम है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
3: खाली हो चुका,
6: आखिरी करण पे हम पहुंच चुके हैं। जहां तक हॉर्मूज का सवाल है, हॉर्मूज तो सभी लोग चाह रहे हैं कि खुल जाए। हॉर्मूज जब खुला था तब भी इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर चलती थी, और वो प्रॉक्सी वॉर चलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो विशाल इसराइल का सपना है, जब तक वो खत्म नहीं होता है ये वॉर खत्म नहीं।
3: शायद मुझे लगता है कि संजीव सर, अभी एक नया न्यू नॉर्मल बन गया है कि देखिए अब ये युद्ध चलता रहेगा, परिस्थितियां ऐसी बनी रहेंगी, क्योंकि ये परिस्थितियां बदलती हुई बहुत जल्दी से एक परमानेंट सोल्यूशन इसका निकलता हुआ नहीं लग रहा है। हम अपने आपका रुख करूंगा सर दोबारा से, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिरकार वो 14 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बनी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देखें कि ये वो 14 पॉइंट है जिनको लेकर ये सहमति बनी है। दरअसल आप अगर इन पॉइंट्स को देखें, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात की गई है और कैसे आगे बढ़ेगा ये भी आपको बताएंगे कि कैसे इस तमाम चीजों के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि ये टेम्पररी फेज जो है एक बड़े कंफ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी अब आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
8: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
9: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
8: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper.
10: It's a Pepper Thing.
11: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
12: Oh, ouch.
11: However you make money work, we can work with that.
13: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
15: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
6: बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी के चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और इनके बीच अपनी सियासी जमीन तलाश थी AIMIM।
7: हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं, पूरी पार्टी तैयार है। और देखिए, गठबंधन भी होगा इंशाल्लाह, बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है।
6: ऐसे में सवाल है कि क्या वो वैसे मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी, या फिर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
8: उत्तर प्रदेश में करने वाले की राजनीति करने वाले थे, धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने वाले थे, उनके दल करने वाले थे भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
6: उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए तो 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 फीसदी से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में हैं। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: आपको बता दें कि ईरान अमेरिका में शांति समझौते का ऐलान होते ही, आपको बता दें कि इसके बाद से ही लगातार कहा जा रहा था कि हॉर्मुज कब खुलेगा, लेकिन अभी माना जा रहा है कि शुक्रवार को अब हॉर्मुज खुल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ऐलान किया है और आपको बता दें कि किस तरीके से शांति समझौते के बाद से ही एक अटकलें लगाई जा रही थी कि हॉर्मुज को कब खोला जाएगा और अब अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से हटेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा शुक्रवार को हॉर्मुज खुलेगा और टोल नहीं लगेगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। शुक्रवार को हॉर्मुज को खोलने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इस बड़ी कवरेज पर हमारी नजर रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: In association with
5: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
6: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
4: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: ये दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देर शाम पीएम मोदी और इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने वार्षिक व्यापार को मौजूदा 16 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करने का 5 वर्षीय लक्ष्य रखा। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे सहयोग, गोपनीय डेटा के लिए सुरक्षा समझौता, पेरिस नीस हवाई अड्डों तक भारत के यूपीआई पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा और मोबिलिटी जैसे अहम समझौते शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया है। फ्रांस के बाद अब पीएम मोदी स्लोवाकिया की ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पर है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक क्षेत्रों में नए मौकों की तलाश करने पर केंद्रित होगी। स्लोवाकिया के बाद सबकी नजरें G7 समिट पर होंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं से मिलेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
8: बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें देहरादून के बैरागी वाला गांव की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, पथराव हुआ, आगजनी हुई, हंगामा बढ़ा तो प्रशासन एक्शन में आया। पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर एक आरोपी के घर को ढहा दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। SSP ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।
9: 12 नवंबर और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही।
8: बैरागी वाला गांव में खेत में पानी चलाने को लेकर 2 समुदायों के लोगों के बीच विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे पर हमला किया, जिसमें विनोद कुमार नाम का युवक मारा गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
10: साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है, और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

शांति समझौते का ऐलान होते ही बम बम हुए दुनिया भर के बाजार। कच्चा तेल हुआ सस्ता। शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर हस्ताक्षर। खत्म होगी हॉर्मूज की सारी बाधाएं। ईरान अमेरिका डील पर इजराइल की दो टूक। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा वॉशिंगटन तय नहीं कर सकता हमारी सुरक्षा नीति। हिजबुल्ला पर हमला करने का करारा जवाब देते रहेंगे। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। मैक्रो ने शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती का वीडियो। यूपी में तेज हो गई है मुस्लिम वोटों की राजनीति। ओबीसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले। रामगोपाल यादव का जवाब बीजेपी को हराने वालों का है स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर। योगी ने कहा कि जेवर हुआ का मेकओवर, वहां आना चाहता है हर बड़ा आदमी।

0: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे जंग की तमाम बड़ी खबरें और युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच में कैसे चलती बने। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं स्लोवाकिया में, जहां पर की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय यूरोप के दौरे पर है और आज स्लोवाकिया में, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि स्लोवाकिया के साथ टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। आपको बता दें कि रक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी, AI कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर लगातार स्लोवाकिया के साथ भारत की कई सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस भी वो जाएंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1993 के बाद जब स्लोवाकिया की आजादी हुई थी, उसके बाद किसी प्रधानमंत्री का, भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा जब वो स्लोवाकिया गए होंगे। और आज स्लोवाकिया को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तस्वीर, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है और उसके अलावा जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप देख सकते हैं उनका स्वागत करते हुए। आपको बता दें कि स्लोवाकिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से फ्रांस जाएंगे, जहां पर G7 की समिट होनी है और वहां पर उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होनी है। लेकिन यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि AI और बाकी क्षेत्रों के अंदर कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का आपको याद होगा, इससे पहले भी फ्रांस के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग पार्टनरशिप कॉपरेशन चाहते हैं और शायद इसी वजह से स्लोवाकिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता पूरी दुनिया के लिए राहत भरा है। इस डील से भारत को भी कई चुनौतियों से राहत मिलेगी। करीब 4 महीने से मध्य पूर्व में तनाव के चलते भारत में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो गई थी। पूरी सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ा था। अब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से भारत की आर्थिक मुश्किलें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर पिछले 4 महीनों से बारूद की गर्मी महसूस की जा रही थी। समुद्र से लेकर आसमान तक तनाव की लकीरें खींची थी और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि अगला धमाका कहां होगा। लेकिन लंबे टकराव के बाद कूटनीति ने हथियारों पर बढ़त बना ली है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जता दी है, जिसके बाद 4 महीनों से जारी संघर्ष को विराम देने पर सहमति हो गई है और 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर के बाद ये समझौता अमल में लाया जाएगा। इस समझौते के बाद दुनिया की एनर्जी सप्लाई से जुड़े हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी। इस समझौते में परमाणु गतिविधियों पर निगरानी और संवेदनशील परमाणु सामग्री को लेकर नई व्यवस्था बनाने की बात शामिल है। लेकिन अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भविष्य को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं और तकनीकी स्तर पर की बातचीत इस हफ्ते के आखिर तक पूरी होने की संभावना है। फिलहाल ये अंतिम शांति संधि नहीं है और इसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी, जिसमें ईरान ने अमेरिकी वादों के पालन को बातचीत की शर्त बताया है और सैन्य कार्रवाई रोकने के साथ प्रतिबंधों में राहत जैसी डिमांड रखी है। मिडिल ईस्ट में तनाव घटने से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। समझौते की खबर आते ही ग्लोबल मार्केट तो राहत की सांस ले भी चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। वहीं देश और दुनिया के ग्लोबल शेयर बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। सेफ हेवन डिमांड बने रहने से सोना ऊंचे स्तर पर टिका हुआ है और हॉर्मुज रूट पर खतरा कम होने से सप्लाई चेन को राहत की उम्मीद बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में हालात स्थिर रहते हैं तो इसका फायदा कई स्तर पर दिखाई दे सकता है और कमजोर क्रूड से भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा, पेट्रोल डीजल की लागत पर दबाव कम होगा, महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी और रुपए पर दबाव घट सकता है। इस समझौते की असली परीक्षा अगले 60 दिन में है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित हस्ताक्षर और उसके बाद की बातचीत तय करेगी कि ये विराम स्थिति शांति में बदलता है या फिर तनाव लौटने का खतरा बरकरार रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए, लगातार इस डील के बाद से या फिर इन ऐलान के बाद से पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से जब बात करते हैं तो आखिरकार भारत को इसका फायदा कैसे मिलेगा। हम आपको 5 बड़े आपको संकेत या फायदे बताते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि आखिरकार भारत को इसके कैसे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या फायदे इसके मिल सकते हैं आपको। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं, 5 बड़े फायदों का जिक्र हम कर रहे हैं। सबसे पहला, तेल और गैस संकट से राहत मिलेगी। सबसे बड़ा संकट जिसने पूरे देश को आप कह सकते हैं परेशान कर रखा है, खाड़ी देशों से रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कंसर्न था। लागत घटेगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी। सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, ना सिर्फ गैस और तेल को लेकर बाकी चीजों को लेकर। समुद्री व्यापार में इससे फायदा मिलेगा और समुद्री व्यापार में जोखिम में राहत मिलेगी। शायद इसी वजह से शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। हम आपको तमाम बड़े ये 5 बड़े फायदे बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार फौरी तौर पर भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। संजीव सर, आप इन मामलों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या आप मानते हैं कि देखिए भले ही एक बड़ा सेटबैक था लेकिन इसने भारत को एक बड़ा मौका भी दिया आत्मनिर्भर बनने के लिए या फिर आप कर सकते हैं नए ऑप्शन तलाशने के लिए भी?
2: हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि जब संकट करीब आता है तभी रिफॉर्म होता है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिफॉर्म जो जरूरी है तेल के संबंध में, दो चीजें मैं कहूंगा केवल, वैसे तो बहुत से हैं। एक ये है कि हमको अपना जो स्टोरेज है, अगर आप कहें स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसे अमेरिका में कहा जाता है, उसको बढ़ाना है। वो हमने बहुत कम रखा है क्योंकि हम लोग हमेशा कम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, तो उस वजह से हमारा रिजर्व काफी कम है बनिस्पत इसके के बाकी देशों में 3-4 महीने का रहता है, हमारा लगभग 1 महीने का ही रहता है। तो 1-2 महीने और उसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बट मैं ये भी कहूंगा कि दूसरी चीज जो थोड़ा सा मध्यकालीन दृष्टिकोण से अगर आप देखें, तो जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ तेल की बात नहीं है, तेल के वो जो बाकी पदार्थ हैं खास करके गैस, तो गैस पे बड़ा कड़ा संकट आया है। एक तो जो आपकी पेट्रोलियम गैस है और दूसरा जो पाइप गैस है उस पर भी संकट है। इसके लिए हम लोगों को अपना मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही कोल का गैसिफिकेशन और कोल के गैसिफिकेशन से गैस बनाने की प्रक्रिया, ये हमको आरंभ करना बहुत ही जरूरी है। तो ये दो एक रिफॉर्म के मेजर्स हैं एनर्जी इकोनॉमी में, और तीसरा ये है कि हमको दरअसल पेट्रोल वगैरह डीजल से हटके बिजली की ओर जाना है। वो हो ही रहा है, सोलर बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, सोलर की उपभोक्ता भी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी की उपभोक्ता भी बढ़ रही, उपयोग भी बढ़ रहा है। तो मतलब वो सब तो चालू है, बट जो अभी चालू नहीं है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाए जाए ताकि आगे पुनः फिर अगर लड़ाई छिड़कती है तो हमारे ऊपर इतना कुप्रभाव ना पड़े। और दूसरा ये है कोल गैसिफिकेशन, ताकि हमारे पास,
0: सर बिल्कुल आपका रुख दोबारा से करूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को गैस और ऑयल का सप्लाई पर कैसे इसका इससे दाम घटेंगे ये भी समझाना जरूरी है। दाम में गिरावट का भारत पर असर पड़ेगा और कच्चे तेल का आयात बिल घटेगा, यानी लोगों की जेब पर जो इसका असर पड़ रहा था उससे उसको फायदा है। आने वाले दिनों में कम होगी महंगाई, यानी जो महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा था उससे इसको फायदा मिलेगा। दाम में गिरावट का भारत को भी फायदा मिलेगा। देखिए करीबन बताया जा रहा था $70 के करीब प्रति बैरल था और अब इससे ज्यादा 120 के करीब पहुंच चुका था, उससे फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में कम होगी महंगाई और दाम में गिरावट का भारत पर भी फायदा मिलेगा। लोगों की जेब पर इससे असर पड़ रहा था, लगातार कहा जा रहा था कि देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज के दाम बढ़ गए थे और यही ये नुकसान था जो लगातार हर अर्थव्यवस्था पर इसका पड़ा है। अचल मल्होत्रा सर आप ये बताइए, एक ऑयल डिप्लोमेसी थी जो इस समय मिडिल ईस्ट के देशों में चलती थी, लगातार एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो संबंध बनते थे वो ऑयल ट्रेड को लेकर ही बनते थे, लेकिन अब इस करीबन 40 दिन के युद्ध ने वो सारे समीकरण बिगाड़ दिए।
3: नहीं सुमित, वो आप जो कह रहे हैं ठीक है, ऑयल डिप्लोमेसी जो है हमारा वेस्ट एशिया के साथ जितने भी संबंध में उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने ऑलरेडी जो है दो चीज की है। एक तो जो हमारी बास्केट है, हमारे जो रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह के साथ, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, तो अब एम्फेसिस बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिसपे इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे क्षेत्रों में हम उन्हें इंगेज कर रहे हैं, और इंडियन डायस्पोरा तो है ही है जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ। और हमने अपनी जो प्रोक्योरमेंट है, जो सप्लाई सप्लाईज हैं, ऑयल सप्लाईज वगैरह, उनको भी हमने काफी डाइवर्सिफाई किया है, वो इस क्राइसिस से पहले ही शुरू कर दिया था। और ऐसे ऐसे अभी संजीव साहब ने तो बहुत डिटेल में बताया कि इससे हमने क्या लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं इस क्राइसिस से, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को लेके कर लो, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर लो, और मूविंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ये सबसे बड़ा एक लेसन हमें मिला है। पहले से हम इसे कोशिश कर रहे
0: बिल्कुल
3: हैं कि अपनी डिपेंडेंस कम करें उसके ऊपर। तो ऑयल वेस्ट एशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं, मेरे असेसमेंट ये है कि ऑयल डिप्लोमेसी से ऑलरेडी हमने डिपार्चर कर लिया था, लेकिन अब बाकी क्षेत्रों में हम उसे आगे बढ़ाएंगे, और ऑयल डिप्लोमेसी या ऑयल की
0: सर,
3: जो हमारा वो
0: आप क्योंकि
3: इकलौता
0: दूसरे
3: फैक्टर
0: क्षेत्रों
3: नहीं
0: की
3: रहा।
0: बात कर रहे हैं, हमारे साथ जनरल सिवाज। जनरल सिवाज, एक जो सिक्योरिटी सेफ्टी की जो डिपेंडेंसी थी इन तमाम देशों की अमेरिका पे, उसने पूरी तरीके से अमेरिका के उन सारे सिक्योर मेजर्स को खारिज कर दिया। भारत के लिए, भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए, डिफेंस सेक्टर्स के लिए क्या एक नया ऑप्शन होगा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ? क्योंकि हमने कई देखा कई देश जो है मिसाइलों को लेकर, खासतौर पर हमारे हेलीकॉप्टर्स को लेकर, एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जता चुके थे।
4: हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली सुमित। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, जिसको वो सोचते थे कि एक प्रकार से प्रोटेक्शन देगा उनको, आज उनके लिए एक लेबरेटरी बन गया कि जहां पर भी हमले ईरान ने किए उस जगह किए जहां पर मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की। तो ये सच्चाई है कि वहां पर जिस प्रकार से अब हालात हैं, भारत के लिए बहुत चांस है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात हो रही थी वहां पर, हमारे जो एक प्रकार से ये तेजस Mk-1A है इसकी भी बातचीत चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर चिप्स, UAE जो है हमारे को 30 बिलियन जो बैरल है यहां पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखेगा। तो मुझे लगता है एक प्रकार से डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से और बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, और अब वो जो वैक्यूम क्रिएट होगी उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। दूसरा बात जब आती है कि अब फर्क क्या पड़ेगा भारत को, देखो ईरान से हम 28% ऑयल लेते थे, जब JCPO से निकला था अमेरिका 2018 में, हमको 0% करना पड़ा, क्योंकि ईरान का ऑयल का दो बड़े फायदे हैं, एक तो नजदीक है और एक
0: बिल्कुल
4: इंश्योरेंस बिल्ट थी। अब ये क्योंकि ईरान से
0: सर,
4: अभी
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
4: इंफेक्शन
0: सर,
4: हट
0: माफ
4: जाएगी।
0: कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि देखिए इस युद्ध के रुकर जाने के बाद, इस संघर्ष के खत्म हो जाने के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस जरूर लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

टीएमसी में बगावत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एक क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के 19 बागी लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, एनसीपीआई में शामिल होने के लिए विलय का दावा पेश किया। सांसदों ने 20 हस्ताक्षरों वाला पत्र स्पीकर को सौंपा। वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हमारे साथ 20 सांसद हैं जो संसदीय दल की 2/3 संख्या बनाते हैं। अभी पार्टी के नाम पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसून सत्र के दौरान अदालत में असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा पेश किया जा सकता है। इस बार टीएमसी ममता गुट भी बागियों के सामने आ खड़ा हुआ है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधायी दल से ऊपर मूल राजनीतिक दल होता है और वैध विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल भी किसी दूसरे दल में विलय करे। केवल सांसदों के अलग होने से विलय मान्य नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल पार्टी की सहमति के बिना किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकता है। अब पूरे घटनाक्रम पर नजरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को ही हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, यह गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द और प्लेटलेट्स में गिरावट के साथ साथ कई मामलों में जान के खतरे तक ले जाता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घर के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहें जमा साफ पानी में, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही शुरू होगी। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरुआत की है। साथ लड़ेंगे डेंगू से,

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
11: यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन का जिक्र कर रहे ये ओवैसी का ऐलान जंग है। 2027 के चुनावों के लिए ओवैसी का अभियान शुरू हो चुका है। वो अभी से चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं, नए सहयोगियों की तलाश में हैं, भरोसेमंद सहयोगी का हाथ थामकर यूपी में अपना असर छोड़ने की तैयारी में हैं। बहराइच के मटेरा में रविवार को ओवैसी ने रैली की। ये यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और अब इनके बीच अपनी सियासी जमीन तलाशती AIMIM। ओवैसी ने अपनी रैली को संबोधित किया और यूपी के सियासी संग्राम की रूपरेखा खींची। उन्होंने कहा कि वो गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन गठबंधन सम्मानजनक होना चाहिए। लगे हाथ उन्होंने अपनी लीडरशिप बनाने का भी ऐलान कर दिया। रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड चला, अपील की यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, इसके लिए कोशिश की जाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो लगे हाथ यूपी सरकार पर भी सवाल उठाए।
12: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सबकी होती है, चाहे किसी समाजवादी पार्टी के नेता की क्यों ना हो। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं, तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे।
11: तेज होती सियासी लड़ाई के बीच ओवैसी की ये रैली कई मायनों में अहम है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे, क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी, या फिर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए तो 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 फीसदी के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 फीसदी से ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में हैं। 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा जैसे छोटे दलों से गठबंधन किया था। 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। इस बार ओवैसी की कोशिश है कि यूपी में अपनी सियासी मौजूदगी पक्की की जा सके। बहराइच से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।

ईरान अमेरिका में शांति समझौते का ऐलान होते ही बम बम हुए दुनिया भर के बाजार। कच्चा तेल हुआ सस्ता। शुक्रवार को दोनों करेंगे इस मसौदे पर हस्ताक्षर। खत्म होगी हॉर्मुज की सारी बाधाएं। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की दो टूक। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा, वॉशिंगटन तय नहीं कर सकता हमारी सुरक्षा नीति। हिजबुल्ला पर हमले का करारा जवाब देते रहेंगे। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। मैक्रों ने शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती का अपना वीडियो। यूपी में तेज हो गई है मुस्लिम वोटों की राजनीति। ओबीसी ने आज तक से कहा, गठबंधन के विकल्प खुले। राम गोपाल यादव का जवाब, बीजेपी को हराने वालों का स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू। हवाई अड्डे में से जमीन देने वाले किसानों का ने सबसे पहले किया सफर। योगी ने कहा कि जेवर का हुआ मेकओवर, वहां आना चाहता है हर बड़ा आदमी।

0: नमस्कार, 2 बजे की इस खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी और न्यूज रूम लाइव में हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन जिन खबरों पर हमारी सबसे ज्यादा नजर रहेगी आपको विश्लेषण करके बताएंगे वो बड़ी खबरें कौन सी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर होगी जो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यूपी की राजनीति में ओबीसी की एंट्री हो गई है और लगातार उसके बाद समीकरण कैसे बदलते जा रहे हैं और खासतौर पर बहुसंख्यक समाज को लेकर क्यों आपस में लोग या पार्टियों में थनने लग गई है। इसके बाद आप बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर, गठबंधन को लेकर क्या खींचतान है, इसको लेकर भी आपको खबरें बताएंगे। और उसके बाद बात करेंगे टीएमसी के बागी सांसदों के बारे में, जिन्होंने अपने नए घर की तलाश पूरी कर ली, नया ठिकाना ढूंढ लिया, आखिरकार वो नया ठिकाना कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद 2:30 बजे आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस डील हुई है उसको लेकर कैसे अड़ंगा अब इसराइल ने डालना शुरू कर दिया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर उस बड़ी खबर पर जो इस समय महाराष्ट्र यानी मुंबई से आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर टीवी एक्ट्रेस के सुसाइड की को लेकर एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि एक बड़ी खबर आ रही है कि टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के सुसाइड की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 22 साल की संचिता ने साजन घर और कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे कई सीरियलों में काम किया था और इसी बीच उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके सुसाइड की खबर भी लगातार मिल रही है। रविवार को मुंबई में संचिता उगले ने सुसाइड कर लिया। कुमकुम भाग्य और समेत कई महत्वपूर्ण या कई बड़े सीरियल्स में वो काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि सबसे चौंकाने वाली बात ये कि संचिता का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी खुदकशी से 19 घंटे पहले ही आया था, जिसमें उन्होंने एक रील शेयर की थी जिसमें वो बेहद खुश नजर आ रही थी। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल उपाध्याय हमारे साथ। कुणाल, क्या कुछ कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से, कि आखिरकार उनकी वजह क्या थी सुसाइड की?
1: हालांकि इस समय ये काफी मुश्किल वक्त है क्योंकि किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि काफी यंग एज थी, अभी 22 इयर्स ऑफ एज, जहां की वो 2 शोज कर चुकी थी एज अ लीड और उसके पहले कुमकुम भाग्य में सपोर्टिंग रोल में थी। तो कहीं से भी किसी को ये नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई कदम वो उठा सकती हैं। मैंने उनके बहुत ही करीबी दोस्त मीनाक्षी कश्यप जी हैं, उनसे मैंने बात की सुबह, मुझे जब ये पता चला तो मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया ये कंफर्मेशन के लिए। उन्होंने ये बताया कि ये रात में हुआ, दरअसल रात में सब कुछ नॉर्मल था। अगर आप उनकी इंस्टा आईडी भी चेक करें तो इंस्टा आईडी पे उन्होंने एक जल्दी अभी पोस्ट किया है, 24 घंटे भी नहीं हुए, एक स्टोरी डाली है। तो कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ कदम वो उठा सकती है। हालांकि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे अपने में, लेकिन उस पर अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है। लेकिन ऐसा कुछ रात में ही हुआ है जिसके बाद उन्होंने रात में ही फांसी लगा ली अपने कमरे में और ये कदम उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन पूरी जानकारी इस पर नहीं आई है। जो उनकी दोस्त है वो भी काफी मुश्किल वक्त में थी, तो जितना मैं उनसे जानकारी ले पाया उतनी ली है मैंने। और फिलहाल उस सभी के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है, उनके दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा एक फेज चल रहा था, अगर आप भाई जैसे मैं कह रहा हूँ आज सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग सारी चीजें अपनी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, वैसे ही उन्होंने अभी जल्दी ही पोस्ट किया था। तो एज अ व्यूअर और एज अ फैंस भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, सबके लिए एक शॉकर है बहुत बड़ा।
0: निश्चित तौर पर कुणाल, इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा शॉकर है कि आखिरकार इतनी युवा एक्ट्रेस जो थी उनका सुसाइड आखिरकार उन्होंने क्यों कर लिया। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कैसे गठबंधन की राजनीति या उसको लेकर बयानबाजियां तेज हो गई है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गठबंधन की राह कितने बंधन होंगे। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, जहां पर बीजेपी को हराने वालों का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है। इसके बाद इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी को हराने की क्षमता या उसमें काबिलियत सिर्फ राहुल गांधी में है, ये इमरान मसूद की तरफ से कहा गया। फिर ओबीसी की तरफ से कहा गया कि गठबंधन उसी से करेंगे जहां पर इज्जत मिलेगी या फिर इज्जत होगी। ये तीन बड़े बयान या तीन आप कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि समीकरण बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं।
2: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। आज विकल्प कांग्रेस है, बहुत स्पष्ट कह दूं। राहुल गांधी है जिसके अंदर दम है, जो लड़ सकता है, राहुल गांधी का हाथ जो नहीं थामेगा। तो या तो इधर थाम लीजिए हाथ या इधर थाम लीजिए, बीच का कोई रास्ता नहीं बच रहा है अब देश में।
3: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनवाओ के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए। नहीं नहीं, राहुल जी का हाथ थामना होगा, ये उल्टा मत करिए। अखिलेश जी, राहुल जी का ही हाथ थामना होगा। अब क्या हो रहा बंगाल में? अगर बंगाल में थामा लिया होता हाथ तो ये हाल ना होता जो हुआ है कि ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा साम्राज्य ही ढा दिया।
4: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
5: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
4: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा, किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताए।
0: और देखिए अभी चुनावों की तैयारियां शुरू होनी बाकी है, लेकिन अभी से पार्टियों के कई नेता जो है बयानबाजी भी करें। इमरान मसूद ने कहा है कि देखिए अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उसी को सीटें मिलेंगी या जिसकी संभावना जीतने की ज्यादा होगी, लेकिन इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है।
3: मेरी 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, तो बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं।
6: समाजवादी पार्टी देगी?
3: नहीं नहीं, दे सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं।
6: समाजवादी पार्टी देगी?
3: नहीं नहीं, दे सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं।
6: समाजवादी पार्टी देगी?
3: नहीं नहीं, देगी। हम मांग कब रहे हैं, हम मांग कब रहे हैं, यही तो दिक्कत है ना, कि ये नैरेटिव कल भी एक अखबार में खबर चल रही थी। अरे आप क्या नैरेटिव बना रहे हैं, मांग कब रहे हैं आपसे भाई, कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा, हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी।
6: टेबल पे ही तो हर बार डिस्कशन होता
3: है। हाँ तो आपसे ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई, कौन है देने वाले, हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए नो, हम अपने आपस में तय कर लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा, आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, मैं तब भी कहा था कि मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं, पूछ लीजिए आप पार्टी में, और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन 6 से ज्यादा एमपी होते हम।
0: और देखिए यूपी की राजधानी एक राजनीति एक बार फिर से धर्म जाति और इन तमाम चीजों के ऊपर आके इर्द गिर्द घूमने लग गई। इसी बीच ओबीसी की एंट्री भी हुई है, उन्होंने बहराइच में संबोधित करते हुए ना सिर्फ बुलडोजर एक्शन पर बल्कि सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
7: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
8: हम अपने जहां की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
7: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके
9: हैं। और कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
7: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
9: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
7: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2 लाख यानी 2 से 4%, फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5 से 5%, और फिर 2024 में लड़े, 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70 से 80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
9: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है।
0: और देखिए लगातार यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर तो खींचतान चल ही रही है, लेकिन अब बयानबाजी की तलवार भी निकलने लगी। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली के उस बयान का खंडन किया और उससे असहमति जताई जिसमें जावेद अली ने ये कहा था कि बहुसंख्यक समाज ही समाज के अंदर जहर घोल रहा है। इसको लेकर इमरान मसूद ने उनके बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
10: जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहाँ बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निकलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है।
11: देखिए बहुत गलत बयान है। बहुसंख्यक लोगों के अंदर बहुसंख्यक लोग बेहद प्रेम और मीठे हैं और बड़े दिल के लोग हैं, तो ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और ये बहुत गलत बात है।
12: नहीं, आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जाहिर है ऐसे बयानों से आपकी जो सियासी मैथ है उसको नुकसान हो सकता है। बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी ज़रूर और आपको नुकसान करेगी।
11: मैं कह रहा हूँ कि देखिए फ़ायदा और नुकसान देश के लिए नहीं सोचा जाता, देश के लिए देश की बात सोची जाती है, और देश की बात यह है कि देश के अंदर भाईचारा और प्रेम बना रहे, तो ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जब आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात करते हो तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप केवल एक सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ बोलो, जो भी सांप्रदायिक है चाहे वो इधर से बोले या इधर से बोले, हम दोनों के खिलाफ हैं।
0: और चलिए उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर टीएमसी के सांसदों ने अपना नया ठिकाना, अपना नया घर ढूंढ लिया। दरअसल कहा जा रहा है कि बाकी सांसद जो है वो पार्टी में रहेंगे, नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि एनसीपीआई नाम के एक नई पार्टी के अंदर इनका विलय हो सकता है, ये शामिल हो सकता है। आखिरकार ये पार्टी है कौन सी, कहां से आई, क्या है इसका बैकग्राउंड, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में।
13: स्पीकर ओम बिरला के बंगले 20 अकबर रोड पर कल शाम भारी गहमा गहमी थी। अंदर टीएमसी के सांसदों का जमावड़ा था और बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी थी। निगाहें इस बात पर थी कि टीएमसी से बगावत करके यहां तक पहुंचे इन सांसदों का अगला पड़ाव क्या होगा। इस राज से अब पर्दा हट गया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की है। इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है, साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है।
14: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
15: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी देके आ गए, वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
13: तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है। 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में 0 सांसद हैं, राज्यसभा में 0 सांसद हैं, विधायक 0 हैं। लेकिन एक रात में 0 सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें, तो जो भी हो इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, दो तिहाई बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है। टीएमसी के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है, यानी दो तिहाई के लिए एनडीए अभी 47 पीछे है। लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए दो तिहाई बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं, झारखंड मिजोरम से 3 सीट और आने की उम्मीद है। टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में 3 और सीटें आ सकती हैं। ये संभव हुआ तो एनडीए की सीट बढ़कर 154 पहुंच जाएगी, यानी दो तिहाई के आंकड़े 160 से सिर्फ 6 कम। आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है। इस टूट की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई और इसमें किसने बड़ा किरदार निभाया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो तिहाई का लक्ष्य हासिल करने में लगी है ताकि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके, वो विधेयक जिसे वो पिछले सत्र में पारित कराने में असफल रही थी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चले न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: अगर देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल मैंने, आपने भी साथ बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा होगा जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। अब भी नहीं समझा देश, तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे। युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए युवा पीढ़ी जिम्मेदार ज्यादा है, इतना उनको माफ नहीं करेगा। आप क्या करें तो युवा थे तुम, इनकी सूर्य देश कमजोर हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझ करके। अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। अरे इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना, तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब अगली खबर बिहार से, जहां पर मुजफ्फरपुर से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर एक ट्रक आमों से भरा हुआ ट्रक पलट गया और उसके बाद वहां की तस्वीर अनोखी थी। तस्वीर आप देखिए कि कैसे वहां पर आम इकट्ठा करते हुए ले जाते हुए लोग आपको नजर आएंगे। ट्रक पलटा, हालांकि लोगों ने ड्राइवर को बचाने की जगह वहां पर आम लूटते हुए, आम इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। चले वक्त एक बार फिर से छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
11: अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए है, क्योंकि आप देखें अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जाति समीकरण की बात करें, उसके हिसाब से
12: वो तो नाकाम साबित हो रहे हैं। 2014 से हर चुनाव हार रहे हैं और फिर हमारी पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने खुद बैठकर बिहार में कैंपेन चलाया, उनके कितने 5 या 7 सांसद को वहां पर उतार दिया हमारे सीमांचल में, और बड़ा ही नेगेटिव और झूठा कैंपेन चलाया हमारे खिलाफ उन्होंने। उसका असर कुछ नहीं हुआ, हमारे MLA तो जीत गए, अच्छे खासे वोट भी मिले हमको जहां पर हम नहीं जीत पाए। तो अब नहीं मालूम, अब जाहिर चुनाव जब लड़ेंगे तो जाहिर है हम अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते।
13: आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी, और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है, और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम ज्वाइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए।
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान अमेरिका में शांति समझौते का ऐलान होते ही बम बम हुए दुनिया भर के बाजार। कच्चा तेल हुआ सस्ता, शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर हस्ताक्षर। खत्म होगी हॉर्मूज की सारी बाधाएं। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की दो टूक। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा, वॉशिंगटन तय नहीं कर सकता हमारी सुरक्षा नीति। हिजबुल्ला पर हमले का करारा जवाब देते रहेंगे। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। मैक्रों ने शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती का वीडियो। यूपी में तेज हुई मुस्लिम वोटों की राजनीति। ओबीसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले। राम गोपाल यादव का जवाब, बीजेपी को हराने वालों का है स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर। योगी ने कहा जेवर का हुआ मेकओवर, वहां आना चाहता है हर बड़ा आदमी।

और चले 2:30 बजे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील को लेकर। दरअसल अमेरिका और ईरान ने तो इसकी घोषणा कर दी कि उन्होंने डील लॉक कर दिया और जल्दी इसको साइन कर दिया जाए, लेकिन अब इस डील के अंदर रोड़ा बन गया है इसराइल। इसराइल ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस डील को नहीं मानता। अब डील में की राह में इसराइल का रोड़ा क्या है, ये आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान में डील हो गई है, दोनों के बीच में सहमति बन गई, 14 पॉइंट्स के इन प्रस्ताव को लेकर सहमति बनी है। आज से ही हमले बंद कर दिए गए हैं और हॉर्मुज को खोलने की तैयारियां भी चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने इस डील को लेकर मानने से इंकार कर दिया। इसराइल ने कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस डील को नहीं मानेगा, अपनी सुरक्षा को लेकर वही अपने कायदे कानून या फिर डील तय करेगा। अब ये बात एक बड़े आप कह सकते हैं चुनौती के तौर पर आ गई है। और अगर आप देखें, ये तीन तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया, 19 जून को इसके हस्ताक्षर या फिर इसकी डील को लेकर साइन किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से लेबनन पर अब भी हमले जारी है। दरअसल लेबनन पर हमले करना यानी ईरान का यह मानना था कि ये प्री कंडीशन होगी जो इसराइल को भी माननी होगी, जिसे इसराइल ने मानने से साफ मना कर दिया है। और देखिए, इस डील के ऐलान के बाद से जैसे अमेरिका और ईरान में खुशी थी या फिर कोशिश की जा रही थी कि इस डील को आगे बढ़ाया जाए, उसी बीच इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस डील को नहीं मानते हैं, इसराइल इस डील को नहीं मान्यता देता है, और ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरीके से अपनी सीमा सुरक्षा के लिए हमले नहीं करेगा और हिजबुल्ला पर इसी तरीके से वार करता रहेगा। आपको बता दें कि IDF की तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, IDF लेबनन, सीरिया और गाजा में सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम तमाम दावों के बावजूद और दबावों के बावजूद IDF वापसी नहीं करेगी। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा क्षेत्रों के पीछे हम नहीं हटेंगे।

0: डील भले हो जाए। इसराइल कह रहा है हमले नहीं रुकेंगे, लेबनान को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान से डील हो गई है। ईरान ने भले ही कह दिया है कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के दोस्त इसराइल ने अपना खौफनाक इरादा बता दिया है। अमेरिका ईरान कहते रहे कि उन्हें डील पर भरोसा है और इसी भरोसे के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसराइल को इस समझौते पर कतई भरोसा नहीं। उधर अमेरिका और ईरान में डील हुई। ट्रंप ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दुनिया से साझा की और उसके करीब 9 घंटे बाद ही उनके दोस्त देश इसराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैं एक स्पष्ट नीति का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके तहत ITF लेबनान, सीरिया और गाजा में सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम दबावों के बाद भी लेबनान से ITF की वापसी का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्री की माने तो इसराइल सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा, और ये भी कि अगर लेबनान में हुई घटनाओं की वजह से ईरान इसराइल पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। बात यही नहीं रुकी, इसराइली रक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया कि ट्रंप और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रक्षा मंत्री से पहले इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने भी कह दिया कि अमेरिका और ट्रंप की डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने ट्रंप की तारीफ कहते हुए कह दिया है कि इसराइल की सुरक्षा नीति वॉशिंगटन नहीं यरूशलम तय करेगा।
1: अमेरिका और ईरान के शांति समझौते के बीच इसराइल ने अपना रुख साफ कर दिया है। इसराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और अगर हिजबुल्ला की तरफ से उसके ऊपर हमला होता है तो वो उसका कड़ा जवाब देगा। इसके अलावा इसराइल का ये भी कहना है कि गाजा, सीरिया और लेबनन में जिन जगहों पर उसकी सेना का नियंत्रण है वहां से IDF पीछे नहीं हटेगी और अगर उस पर कोई भी हमला होता है तो उसके ऑपरेशंस लगातार जारी रहेंगे। यानी इस पूरे शांति समझौते के बीच इसराइल ने अपना रुख साफ कर दिया है।
0: डील पर सवाल उठाते इसराइल के रुख से दुविधा और आशंकाएं कम होती नजर नहीं आ रही। आशंका और सवाल ये कि क्या 4 महीनों से जारी तनाव कम हो पाएगा, क्या होर्मुज में संकट पूरी तरह खत्म हो पाएगा। सवाल ये भी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बरकरार रहेगा। इसराइल के कड़े रुख पर अब अमेरिका क्या करेगा, क्या ट्रंप ईरान को भरोसा दे पाएंगे कि लेबनान या कहीं भी हमले नहीं होंगे। ऐसे सवालों और शंकाओं की ठोस वजह है। पहले अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के कुछ अहम शर्तों को जान लीजिए। ये डील इसी शर्त के साथ हुई है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध हमेशा के लिए बंद रहेगा। अमेरिका से बातचीत की पहल के शुरुआती दौर से ही ईरान इस शर्त के साथ आगे बढ़ा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि लेबनान या अन्य मोर्चों पर हमले नहीं रुके तो वो दुश्मन देश के खिलाफ जोरदार वार करेगा। ऐसे में अगर अमेरिका हमले ना भी करे और ऐसी सूरत में इसराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो ईरान बदले वाली कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब साफ है, अमेरिका की डील मानने के लिए इसराइल तैयार नहीं, वो अभी भी हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में अमन शांति पर ग्रहण लगा हुआ है। अब इसराइल की धमकी पर अमेरिका और ईरान के रुख का इंतजार है।
2: और देखिए, इसराइल ने खासतौर पर ना सिर्फ इसे मानने से इंकार कर दिया बल्कि उसी वक्त लेबनन पर बड़े हमले भी शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि साउथ लेबनन के कई इलाकों में इस तरीके के अटैक किए गए, जिसमें नेबतिया का इलाका है, कफर का इलाका है। ये वो इलाके हैं जहां पर इसराइल पहले भी अटैक करता आया और दहाइए के अंदर भले ही अटैक ना किया हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कफर और नेबतिया के इलाकों में एक बार फिर से अटैक किए गए। यहां तक कि लेबनन के सरकारी मीडिया का दावा है कि वहां पर कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें लगातार मिल रही हैं। और देखिए, करीबन 107 दिन के बाद अमेरिका और ईरान में सहमति तो बन गई, लेकिन ईरान ये पूरी कोशिश कर रहा है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इस समय अमेरिका पे डाला जाए। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए, हमने मजबूर कर दिया दुश्मन को कि वो डील के लिए आए और हमने अपनी ताकत को भी दिखा दिया। आपको बताते कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दावा है कि देखिए, विरोधियों को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी ईरान अब कोशिश ये कर रहा है कि वो दिखाए कि भले ही उसको नुकसान पहुंचा हो आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से, लेकिन फिर भी वो एक विजेता के तौर पर इस युद्ध से बाहर निकला। और शायद इसी वजह से ईरान की तरफ से कहा गया है कि महीनों की बातचीत के बाद भी लगातार अब नहीं माने और अब और देखिए लगातार अब इस डील को लेकर कई जगहों से इसको लेकर इसके समर्थन में या फिर इसके एक्सेप्टेंस को लेकर कई बातें कही जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक एक्स के ऊपर एक जानकारी दी गई, उन्होंने कहा है कि इस डील का स्वागत करते हैं। और देखिए आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ईरान के बीच सहमति का स्वागत करते हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से यह कहा गया है।
3: सोलह दिन की बेपना आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी माहदे की बाजाबता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की होगी।
2: देखिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो इस डील का क्रेडिट अपने पाले में ले। हालांकि देखिए आपको बता दें कि जब ये डील हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर ऐलान किया गया। वहीं पहली मौका था जब इतनी जल्दी ईरान की तरफ से भी इसको लेकर रिस्पॉन्ड किया गया और ये कहा गया कि हाँ डील लॉक कर दी गई। 14 सूत्री इस समझौते के अंदर क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं।
4: अमेरिका इसराइल के बीच करीब 68 दिन भीषण जंग चली। ईरान के कई शहरों समेत पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची, मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ। ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल गया, यहां तक कि सीजफायर के बाद भी दोनों ओर जंगी तनाव बना रहा। अमेरिका ईरान के बीच डील की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत बेपटरी होती दिखी, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है।
5: बेबसियार थुलानी शायद बीस से 14-15 साल सूरत गिरफ्त के आखिरी اصلاحات جمهوری اسلامی ایران نسبت به متن رو مطرح کردیم و طبیعتاً این اصلاحات هم مورد پذیرش قرار گرفت و متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی شد. این نکته اول هست راجع به این فرایند. نکته دوم خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده. امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح هست و این هم نکته دوم راجع به
4: उधर ट्रंप अपने जन्मदिन के मौके पर किए इस अहम ऐलान को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर ट्रंप पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
2: चलिए उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये डील कोई टेम्पररी डील ना हो बल्कि एक परमानेंट सलूशन हो। न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में आम से लदी एक पिकअप वैन पलट गई। यह हादसा गायघाट थाना क्षेत्र में हुआ और हनुमान नगर के पास हुआ। हादसे में वाहन पर सवार आम कारोबारी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय मौके पर मौजूद लोग सड़क पर बिखरे आम लूटते हुए नजर आए। वैन सवार घायल अवस्था में तड़पते रहे और लोग आम लूटते रहे। मृतक का नाम निर्मल पासवान था। वो अपनी आम का कारोबार ही करते हैं। अपनी पत्नी के साथ बंगाल से आम खरीद कर बिहार के मधुबनी जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
4: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
5: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.

0: तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद बांकुरा से आते हैं अरूप चक्रवर्ती, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपको बागी कहूं या एनपीसीआई का सांसद कहूं, क्या अब आप क्या हैं?
1: हम सांसद है भाई, पब्लिक हमको चुनाव में लाया काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है। हमको अफसोस है कि ज्योति बसु बामफ्रंट का जो चीफ मिनिस्टर था 35 साल बर्बाद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में। दिल्ली नहीं देता है, बंगाल को नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है, स्टेट को नहीं मिलता है। वो 35 साल चिल्लाया और ममता दी 15 साल चिल्लाया, 50 साल बंगाल की स्टेट या सेंट्रल पीछे हट रहा है।
0: आपके लिए
1: इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दो सरकार को एक साथ चलाने का कोशिश करता है।
0: आपके लिए भी बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि जब ये आपको काकुली घोष जी की तरफ से फोन आया होगा या बाकी सांसदों की तरफ से फोन आया होगा कि आप हमारे साथ है, ये 20 सांसद हम लोग एक साथ जाते हैं, टीएमसी से अलग होते हैं, एनडीए को सपोर्ट करते हैं, वो फैसला लेने में आपको मन में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, डर नहीं हुआ, मन में तकलीफ नहीं होगी? काफी लंबे समय
1: काकुली घोष हमको फर्स्ट टाइम फोन किया था, तो हम काकुली जी को बोला ये तुमको याद है आज से 30 साल पहले, तो आप जब रात को मुंह आप निकलता था गाड़ी लेके छुप छुप के, स्टेथो लेके कांची लेके, वर्कर लोग को खून बंद करना है, गोली निकालना है, पुलिस पकड़ लेगा, आप रात को मुकुल राय को साथ में घूमता था गांव में, याद है आपको? तो बड़ा नहीं याद पड़ गया, अब तो इतना पुराना नेत्री है आप, आपको पार्टी बनाया, आपको हटाया कौन? आप क्यों हटेगा? आप चलिए काम कीजिए हम लोग साथ में।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को ही हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, यह गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द और प्लेटलेट्स में गिरावट के साथ साथ कई मामलों में जान के खतरे तक ले जाता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घर के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहें जमा साफ पानी में, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही शुरू होगी। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरुआत की है। साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की गई। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी हर सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दीजिए। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदले और खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को मच्छर से बचा कर रखें। और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रिप्लाइंट का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। अब हर घर, जब आप बात करते हैं कि जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending,

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
6: विलय की घोषणा की है इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है
7: ये हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
8: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी देके आ गए वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मर्ज हो गया हम लोग मर्ज कर लिया फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है
6: तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में शून्य सांसद हैं, राज्यसभा में शून्य सांसद हैं, विधायक शून्य हैं। लेकिन एक रात में शून्य सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें तो जो भी हो इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, दो तिहाई बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है टीएमसी के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है यानी दो तिहाई के लिए एनडीए अभी 47 पीछे है लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए दो तिहाई बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं, झारखंड मिजोरम से 3 सीट और आने की उम्मीद है टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में 3 और सीटें आ सकती हैं। ये संभव हुआ तो एनडीए की सीट बढ़कर 154 पहुंच जाएगी यानी दो तिहाई के आंकड़े 160 से सिर्फ 6 कम आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है इस टूट की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई और इसमें किसने बड़ा किरदार निभाया ये भी किसी से छिपा नहीं है बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो तिहाई का लक्ष्य हासिल करने में लगी है ताकि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके वो विधेयक जिसे वो पिछले सत्र में पारित कराने में असफल रही थी हिमांशु मिश्रा दिल्ली आज तक
9: हाँ वी वांट टू सी इंदिरा गांधी के टाइम से ज्योति बोसु तक ममता बनर्जी तक जो आवाज उठाया था दिल्ली नहीं देता है सेंट्रल नहीं देता है गरीब को कुछ पैसा नहीं मिलता है 50 साल एक करके निकाल दिया फायदा कुछ नहीं मिला वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है जी हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मींस हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करना चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद वो हमको उसका मदद जरूर पड़े हम लेगा एक साथ करेगा खून खराबी बंद गांव में झामेला बंद चोरी डकैती बंद पॉलिटिकल न्यूसेंस बंद

0: सबको एक साथ मिलकर काम करने होगा।
1: जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

कच्चे तेल हुआ सस्ता। शुक्रवार को दोनों करेंगे मसौदे पर दस्तखत। खत्म होगी हॉर्मूज की सारी बाधाएं। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की दो टूक। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा, वॉशिंगटन तय नहीं कर सकता हमारी सुरक्षा नीति। हिजबुल्ला पर हमले का करारा जवाब देते रहेंगे। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौते। G7 की बैठक में होंगे, ट्रंप से भी करेंगे मुलाकात। मैक्रों ने शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती का वीडियो। उत्तर प्रदेश में तेज हुई मुस्लिम वोटों की राजनीति। ओबीसी ने आज तक से कहा, गठबंधन के विकल्प खुले। रामगोपाल यादव का भी जवाब, बीजेपी को हराने वालों का स्वागत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू। हवाई अड्डे में जमीन देने वाले किसानों ने किया सफर। योगी ने कहा, जेवर का हुआ मेकओवर, वहां आना चाहता है हर बड़ा आदमी।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और आपको सीधे लिए चलते हैं भारत और स्लोवाकिया के बीच, जहां पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं।
1: 600 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन स्लोवाकिया। Our relationships are developing when it comes to the culture. So we care about these topics, about these things, because since we have no political obstacles, we have common opinions of various issues, and at the same time, it's important to focus on mutually beneficial cooperation. Our trade, mutual trade, is increasing. It's actually 5 times higher compared to the situation from a few years ago, but there's still more options, more possibilities for Slovak economy, and obviously the huge potential of your country. Distinguished Prime Minister, from my heart, I thank you not only on behalf of Slovak delegation, but I thank you on behalf of the whole Slovak Republic, that with the demanding agenda which you have as the Prime Minister of a country which 1.5 billion citizens. Thank you for coming to Slovakia and honoring a small country like Slovakia with your visit. We're a proud country. We're a sovereign country. And in spite of the fact that we're a small country, I believe that we can give something to the world. And I'll do everything that the mission which I am the head of as the Prime Minister of a small sovereign country, that this mission is fulfilled. Welcome to Bratislava. Welcome to Slovakia, distinguished Prime Minister.
2: Predseda vlády Indické republiky.
1: Now the Narendra Modi.
3: Your Excellency, Prime Minister Fico, dono desho ke delegates, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरी दिन। हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर फिचो का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला है। मेरी यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं। इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इंडिया ईयू एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सके। फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। हमारे बीच स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहां की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे। एक्सलेंसी, आज की अत्यंत सार्थक चर्चा और भारत के लिए आपकी सकारात्मक सोच के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मुझे खुशी है कि आपने सार्वजनिक रूप से भी इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हम आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मुझे विश्वास है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में नए अवसरों, साझा समृद्धि और हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: और देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनके साथ जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट फिको वो भी मौजूद थे। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। आपको बता दें कि आत्मीय स्वागत के लिए स्लोवाकिया का आभार प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा। और इसके अलावा उन्होंने रॉबर्ट फिको जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है उनको भारत आने का न्योता भी दिया है। और उन्होंने कहा कि भारत और स्लोवाकिया मित्र है, साझा विश्वास और साझा भविष्य का प्रतीक है। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय शांति को लेकर भी की। उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा, नई दिशा, नए सहयोग पर चर्चा की गई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी स्लोवाकिया के साथ एक नए आयाम की शुरुआत की बात भी उन्होंने कही। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से स्लोवाकिया गए और यहां से वो फिर से फ्रांस जाएंगे। कल जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे तो वहां पर भी कई अहम बैठकें हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बैकग्राउंड में सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के आरी आरी गाना सुनाई देता है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी दिखाई दी।
1: Ha ha ha.

0: और कल प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के दौरे के पहले चरण में राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनका स्वागत वंदे मातरम के साथ किया गया।
1: ये दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस और भारत के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देर शाम पीएम मोदी और इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने वार्षिक व्यापार को मौजूदा 16 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करने का 5 वर्षीय लक्ष्य रखा। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे सहयोग, गोपनीय डेटा के लिए सुरक्षा समझौता, पेरिस नीस हवाई अड्डों तक भारत के यूपीआई पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा और मोबिलिटी जैसे अहम समझौते शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया है। फ्रांस के बाद अब पीएम मोदी स्लोवाकिया की ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पर हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक क्षेत्रों में नए मौकों की तलाश करने पर केंद्रित होगी। स्लोवाकिया के बाद सबकी नजरें G7 समिट पर होंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं से मिलेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: यानी प्रधानमंत्री मोदी अब स्लोवाकिया के बाद दोबारा से फ्रांस जाएंगे। 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेटर्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। वहां राष्ट्रपति मैक्रों भी मौजूद थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
2: ये दो शक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं दुनिया भर में भारत के दम को। फ्रांस के नीस में जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात हुई तो नजारा ऐसा था। मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत बाहें फैला कर किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले लगे। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर दोनों ने भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है।
3: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है।
0: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी
6: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
5: How they looked after game one.
9: I mean, they were frustrated.
8: The Daily.
10: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
8: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with
11: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: अमेरिका इसराइल के बीच करीब 68 दिन भीषण जंग चली। ईरान के कई शहरों समेत पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची, मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ। ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल गया, यहां तक कि सीजफायर के बाद भी दोनों ओर जंगी तनाव बना रहा। अमेरिका ईरान के बीच डील की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत बेपटरी होती दिखी, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं, उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है। उधर ट्रंप अपने जन्मदिन के मौके पर किए इस अहम ऐलान को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर ट्रंप पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
1: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
0: सीज़फ़ायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें भी हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का, बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: ईरान अमेरिका शांति समझौते से वैश्विक बाजारों में भारी उछाल, कच्चा तेल हुआ सस्ता, शुक्रवार को होगा हस्ताक्षर, खत्म होंगी हॉर्मूज की बाधाएं। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की दो टूक, हमारी सुरक्षा नीति नहीं तय कर सकता वॉशिंगटन, हिजबुल्ला पर हमले रहेंगे जारी। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, कई अहम समझौतों पर मोहर, G7 में ट्रंप से होगी मुलाकात, मैक्रॉन ने शेयर किया पीएम के साथ दोस्ती वाला वीडियो। यूपी में तेज हो गई मुस्लिम वोटों की राजनीति, ओवैसी ने आज तक से कहा गठबंधन के विकल्प खुले, रामगोपाल का जवाब, बीजेपी को हराने वालों का स्वागत। पटना में जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद का बड़ा बयान, फैसल खान मेरे भाई का हत्यारा, खान सर के गार्ड मुझे जेल में मारने की रच रहे थे साजिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का। यूपी की गठबंधन पॉलिटिक्स में गर्मी आती दिख रही है। आज से लेकर तीन अहम बयान आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है। उधर ओवैसी ने बहराइच से रैली की शुरुआत कर दी है, ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा है कि गठबंधन उसी से होगा जहां उनकी इज्जत रहेगी।
2: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
3: आज विकल्प कांग्रेस है, बहुत स्पष्ट कह दूं, राहुल गांधी है जिसके अंदर दम है, जो लड़ सकता है, राहुल गांधी का हाथ जो नहीं थामेगा, तो या तो इधर थाम लीजिए हाथ या इधर थाम लीजिए, बीच का कोई रास्ता नहीं बच रहा है देश में, बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, DMK, TMC, और गिनमों के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए। नहीं नहीं, राहुल जी का हाथ थामना होगा, ये उल्टा मत कर रही है, राहुल जी का ही हाथ थामना होगा। अब क्या हो रहा बंगाल में? अगर बंगाल में थामा या होता हाथ तो ये हाल ना होता जो हुआ है कि ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा साम्राज्य ही डा दिया।
4: पार्टी हमारी अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
5: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
4: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा, किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताए।
0: यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर मोर्चाबंदी चल रही है। अखिलेश कहते हैं कि संख्या नहीं जीत की संभावना देखी जाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसने सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रखी है।
3: मेरी 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, तो बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर, तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, वीक में कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ वीक में नहीं चाहिए किसी से भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं।
6: समाजवादी पार्टी देगी?
3: नहीं नहीं, देगी। हम मांग कब रहे हैं? यही तो दिक्कत है ना, कि ये नैरेटिव कल भी एक अखबार में खबर चल रही थी, अरे आप क्या नैरेटिव बना रहे हैं, मांग कब रहे हैं आपसे भाई, कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा, हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी। हाँ तो आपसे ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई, कौन है देने वाले, हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए, नो हम अपने आपस में तय कर लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा, आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, मैं तब भी कहा था कि मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं, पूछ लीजिए आप पार्टी में। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन 6 से ज्यादा एमपी होते हम।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिरकार धर्म जाति बिरादरी पर घूम कर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते की सियासी गतिविधियों पर गौर करें तो एक तरफ यूपी की राजनीति में किसी न किसी तरह राम नाम की चंदा चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ यूपी की चुनावी सियासत में ओवैसी की एंट्री ने एक बार फिर मजहबी तार छेड़ दिए हैं। रविवार को यूपी के बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई। इस रैली में ओवैसी ने बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक और बीफ एक्सपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक की बात की। यूपी की चुनावी बिसात पर क्या है इस बार ओवैसी का दांव, आइए देखते हैं।
6: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
7: हम अपने जहाज की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
6: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके
8: हैं। मनोहर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
6: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
8: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
6: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2,00,000 यानी 2-4%, फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5-5%, और फिर 2024 में लड़े 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70-80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
8: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है।
0: टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में नया ठिकाना मिल गया है। 20 बागी सांसदों ने स्पीकर को अर्जी दी और अगर स्पीकर तैयार हो जाते हैं तो इनका नया ठिकाना होगा एनसीपीआई। आपने इस पार्टी का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। इस पार्टी के पास न अपना कोई सांसद है न विधायक है, लेकिन स्पीकर मान जाते हैं तो एक झटके में इस पार्टी की झोली 20 सांसदों से भर जाएगी। आखिर एनसीपीआई पार्टी क्या है और बागियों ने एनसीपीआई को ही क्यों चुना है, आइए देखिए इसकी इनसाइड स्टोरी।
9: स्पीकर ओम बिरला के बंगले 20 अकबर रोड पर कल शाम भारी गहमा गहमी थी। अंदर टीएमसी के सांसदों का जमावड़ा था और बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी थी। निगाहें इस बात पर थी कि टीएमसी से बगावत करके यहां तक पहुंचे इन सांसदों का अगला पड़ाव क्या होगा। इस रात से अब पर्दा हट गया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की है। इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है, साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है।
10: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व।
11: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए, वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
9: तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है। 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में शून्य सांसद हैं, राज्यसभा में शून्य सांसद हैं, विधायक शून्य हैं। लेकिन एक रात में शून्य सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें, तो जो भी हो इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, दो तिहाई बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है। टीएमसी के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है, यानी दो तिहाई के लिए एनडीए अभी 47 पीछे है। लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए दो तिहाई बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं, झारखंड मिजोरम से 3 सीट और आने की उम्मीद है। टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में 3 और सीटें आ सकती हैं। ये संभव हुआ तो एनडीए की सीट बढ़कर 154 पहुंच जाएगी, यानी दो तिहाई के आंकड़े 160 से सिर्फ 6 कम। आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है। इस टूट की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई और इसमें किसने बड़ा किरदार निभाया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो तिहाई का लक्ष्य हासिल करने में लगी है ताकि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके, वो विधेयक जिसे वो पिछले सत्र में पारित कराने में असफल रही थी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी के नाम और चेहरे पर राजनीति करने और चुनाव जीतने वालों ने क्या निष्ठा के साथ धोखाधड़ी की। बागियों के प्रमुख चेहरों में से एक शताब्दी रॉय का क्या कहना है, सुनिए।
12: अभी तो चलो, अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को
13: जी।
12: तो अभी चलो, नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है।
13: कुछ तो परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने, क्या आगे स्टेप लेना है
12: नेक्स्ट? नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डिप्टी, ये सब ठीक होगा फिर चले।
0: टीएमसी पर आखिरकार किसका वर्चस्व रहेगा, बागियों का या ममता अभिषेक का, इस जंग में अभी और तेजी आने वाली है और यह भी तय है कि यह लड़ाई अदालत तक पहुंचेगी। खबर है कि बागी जल्द ही पार्टी सिंबल और पार्टी के नाम पर दावा ठोकेंगे, लेकिन टीएमसी में बगावत से बीजेपी और एनडीए को क्या फायदा हो सकता है? क्या एनडीए का संख्या बल इतना बढ़ पाएगा कि उसकी दो तिहाई बहुमत की चिंता खत्म हो सके?

0: इन दो तस्वीरों में टीएमसी के बनने, बढ़ने और बिखरने की पूरी कहानी छिपी है। पहली तस्वीर बीते दिनों की है और दूसरी तस्वीर आने वाले दिनों का ट्रेलर है। जरा गौर कीजिए, कल स्पीकर से मिलने वाले नेताओं में कौन कौन थे। कुछ चेहरों पर खास तौर से गौर करने की जरूरत है। संदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के संस्थापकों में से हैं, 2004 से 2008 तक वो कांग्रेस में चले गए थे। 2008 से वो लगातार टीएमसी में है। 2009 से लगातार लोकसभा सांसद है। 1998 से 2024 तक वो 6 बार सांसद रहे। 2011 से 2025 तक टीएमसी संसदीय दल के नेता रहे। दूसरा चेहरा काकोली घोष का है। टीएमसी के गठन के शुरुआती वर्षों में पार्टी से जुड़ी। 2009 से 2024 तक 4 बार लगातार पश्चिम बंगाल की बारासात सीट से लोकसभा सांसद रही। 2009 से टीएमसी की लोकसभा चीफ व्हिप रही। तीसरा चेहरा शताब्दी रायवार, जिन्हें ममता सिनेमा से सियासत मिलाई। 2009 में टीएमसी के टिकट पर पहली बार लोकसभा सांसद बनी। 2009, 2014, 2019 और 2024 4 बार लगातार सांसद चुनी गई। 2025 में उन्हें लोकसभा चुनाव में टीएमसी का उपनेता बनाया गया।
1: कोई नहीं है बचा, सब खत्म, पूरा खत्म, वह सब हो गया है। इतना घमंड, इतना अत्याचार, पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर ये राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टिकरण, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी एक शक्ति को, बंगाल की जनता को उखाड़ फेंकी है। 7 साल 1 महीने के अंदर उनका पार्टी भी बर्बाद हो गया है।
0: जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर टीएमसी को खड़ा किया, वो अधिकांश चेहरे अब ममता के खिलाफ खड़े हैं और इनकी जंग टीएमसी के नाम और सिंबल पर कब्जा करने की होने वाली है। लेकिन क्या ये संभव होगा? अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधायी दल से ऊपर मूल राजनीतिक दल होता है और वैध विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल भी किसी दूसरे दल में विलय करे। केवल सांसदों के अलग होने से विलय मान्य नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल पार्टी की सहमति के बिना किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकता है।
2: जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं।
3: इसके साथ जुड़ने जा रहा है वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है।
4: अब बात पटना के कोचिंग संचालक रोशन आनंद की, जिन्होंने जेल से बाहर आने के बाद खानसर पर भाई की हत्या का आरोप लगाया है। रोशन आनंद ने कहा है कि खानसर और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मिलकर उनके भाई की हत्या करवाई।
5: अपनी पूरी बात नहीं रख सकते हैं क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई है, हमें उसके दाह संस्कार में जाना है। देखिए, जहाँ तक घटना का सवाल है, इसमें साजिश हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ है। साजिश करके जो है हमको जेल में डाला गया और मेरे भाई की हत्या करवाई गई है।
6: कौन लोग
5: साजिश के तहत? इसमें देखिए, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर आर एस प्रसाद दोनों ने षड्यंत्र के तहत जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
1: हम अपने जिहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
0: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके
2: हैं। और कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
0: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
2: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
0: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2 लाख यानी 2 से 4%। फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5 से 5%। और फिर 2024 में लड़े, 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70 से 80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
2: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किस किस किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं, हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में, कहीं भी जमा साफ पानी में। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें। दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मस्कीटो रेपेलेंट का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American Zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by

अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने पर राजी होने के बाद दुनिया ने ली राहत की सांस। शुक्रवार को होगा दस्तखत, हॉर्मुज फिर खुलेगा, भारतीय बाजार बना रॉकेट।

ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की दो टूक, हमारी सुरक्षा नीति नहीं तय कर सकता वॉशिंगटन डीसी, हिजबुल्ला पर हमले जारी रहेंगे। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, रक्षा निवेश पर होंगे कई समझौते, इमैनुअल मैक्रोन ने शेयर किया दोस्ती का खास वीडियो, G7 में ट्रंप से भी होगी मुलाकात। श्रीराम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू, अयोध्या पहुंची SIT की 3 सदस्यीय समिति, ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। पटना में जेल से रिहा होते ही ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद का बड़ा दावा, कहा फैजल खान ने कराई मेरे भाई की हत्या, रची गई थी बड़ी साजिश।

0: ट्रंप का ऐलान, ईरान से डील, खत्म संग्राम। ईरान भी राजी, बोला युद्ध में पलटी बाजी।
1: We are equally ready to pursue and defend diplomacy.
0: शुक्रवार को दस्तखत, धमकी, धोखे का शोर। इसराइल का इनकार, खारिज किया करार। चार जुलाई का सस्पेंस क्या, टूट जाएगी डील।
2: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। रविवार को

0: अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता होने का दावा किया गया, ऐसा समझौता जिसने महीनों से चल रही भीषण जंग के बीच अचानक बातचीत का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हुंकार भरी, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। उधर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी मान लिया कि बेहद मुश्किल बातचीत के बाद उन्होंने इस प्रारूप को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, अंतिम रूप दे दिया है। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में होने वाले इस महासमझौते पर अमेरिका की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दस्तखत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार का इंतजार भी नहीं किया, उन्होंने ईरान के बंदरगाहों से अमेरिका की नौसेना की जो नाकेबंदी है तुरंत हटाने को मंजूरी दे दी और लिखा, दुनिया के जहाज अब तुम सब अपना इंजन चालू कर दो, तेल को अब बहने दो। दावा यह कि इस डील में पहले 60 दिनों का युद्ध विराम होगा, जिसके दौरान जो बेहद पेचीदा परमाणु मुद्दा है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्ष इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन रणभूमि में आज हम इस डील के पीछे छिपे उस बारूद का विश्लेषण करेंगे जिससे यह डील साइन होने से पहले ही संकट के भंवर में फंस रही है। जी हां, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से बेहद नाराज हैं। उनके रक्षा और आंतरिक सुरक्षा मंत्री इस डील को सिरे से खारिज कर चुके हैं। इसराइल लेबनान से अपनी फौज वापस बुलाने के खिलाफ है। दूसरी तरफ ईरान के जनरल ये कह रहे हैं कि ईरान की जो सेना है वो तो यरूशलम को फतेह करने का पवित्र संकल्प अपना कभी नहीं भूलेगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कर दिया है कि ईरान का जो नजरिया है और अमेरिका की टीम के जो दावे हैं वो बिल्कुल अलग है। ऐसे में डील के ध्वस्त होने का खतरा बहुत जबरदस्त है। लेकिन सबसे पहले जो सस्पेंस है वो 4 जुलाई का है। क्या है 4 जुलाई का सस्पेंस और 4 जुलाई का महत्व, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। बड़ी खबर ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील का स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही आजादी के साथ हो सकेगी। यही नहीं, उन्होंने बाकी मुद्दों के भी सुलझने की उम्मीद जताई है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल हुई है और कई देशों में जानमाल का नुकसान हुआ है। भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक टिकाऊ और अंतिम समझौता हो सकेगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। वहीं से उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, गर्मजोशी से स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस बीच ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने वाले समझौते का ऐलान किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के समझौते की घोषणा अब हो गई है। बयान में दावा यह किया गया कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता के नेतृत्व और अपनी जनता के साथ ही सशस्त्र बलों के समर्थन से अपने विरोधियों को युद्ध विराम मानने के लिए मजबूर किया। ईरान का दावा यह है कि इस व्यवस्था के तहत देश के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी और सैन्य दबाव भी खत्म हो जाएगा। ईरान ने कहा कि समझौते का लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरा पक्ष यानी अमेरिका अपने वादों को निभाता है या नहीं। ईरान की इस पर पैनी निगाह रहेगी। अच्छा, अब तक अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट वाला जो ड्राफ्ट है उसे औपचारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। कुछ जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि दरअसल ये जानकारी है क्या। 14 बिंदु ऐसे हैं जिन पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं या सहमति की बात इस समय की जा रही है। क्या है ये बिंदु, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो ड्राफ्ट है ये अभी तक जारी नहीं हुआ है। ईरान का मानना यह है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत स्थायी युद्ध विराम हो। यह ईरान बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि सभी मुद्दों पर तुरंत डील होगी। डील के तुरंत बाद होर्मुज के लिए सभी के लिए खोला जाएगा। अच्छा, इसमें ईरान यह साफ कर चुका है, इसमें कि जब सभी के लिए खोला जाएगा होर्मुज, अमेरिका का कहना है कि ईरान पैसा नहीं लेगा। डील पर मोहर लगते ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज व्यापार के लिए खुल जाएगा। तीसरी बार अमेरिका तुरंत कदम उठाते हुए होर्मुज से अपनी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी को खत्म कर देगा। वैसे हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका आदेश पहले ही दे दिया है कि नाकेबंदी बंद कर दी जाए। चौथा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो आर्थिक पहलू है। ईरान का यह दावा है कि उसकी जब्त की गई $24 बिलियन की जो संपत्ति है उसे रिलीज किया जाएगा। पहले आधी रकम दी जाएगी यानी $12 बिलियन और उसके बाद आखिरी दौर की बातचीत से पहले बकाया यानी बाकी $12 बिलियन कुल मिलाकर $24 बिलियन उसे दे दिया जाएगा। पांचवा बिंदु जो है, ईरान के तेल का जो निर्यात है ऑयल एक्सपोर्ट, उस पर जो कई तरह की पाबंदियां लगी हैं, यूएस की अलग, यूएन की कुछ अलग, अलग अलग जो पिछले 47 वर्षों से पाबंदियां देश में चली आ रही हैं, वो तुरंत हटा ली जाएगी ताकि वो बाजार में अपना तेल बेच सके। यूएस की पाबंदी तेल पर है, अलग अलग पाबंदियां ईरान पर और है। छठी बड़ी शर्त जो है कि अगले 60 दिनों के भीतर जो सबसे पेचीदा परमाणु मुद्दा है, इनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम का जो मामला है, उसे लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर बातचीत शुरू हो जाएगी और लगभग 450 किलोग्राम जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसे ईरान में ही क्या खत्म किया जाएगा या डाउनग्रेड किया जाएगा वेपन्स ग्रेड से केवल एनर्जी के लिए या फिर उसे बाहर ले जाया जाएगा। सातवीं बात, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए ईरान को $300 बिलियन की भारी भरकम राशि अमेरिका और अमेरिका के जो साथी देश हैं वो चुकाएंगे। इस पर अभी अमेरिका का क्या कहना है और ये $300 बिलियन कौन सा देश देगा, ये एक विवाद आ सकता है। आठवीं राहत, अमेरिका भविष्य में ईरान पर कोई नया आर्थिक या राजनीतिक प्रतिबंध या पाबंदी नहीं लगाएगा, यह ईरान का मानना है। नौवीं बड़ी जो सैन्य खबर है, अमेरिका खाड़ी देशों से गल्फ रीजन में कोई अतिरिक्त सेना नहीं तैनात करेगा, अतिरिक्त फौज, एडिशनल फोर्सेस नहीं भेजेगा। और दसवीं और बेहद महत्वपूर्ण शर्त, यह पूरी बातचीत और समझौता तभी आगे बढ़ेगा जब जमीनी स्तर पर इन सभी शर्तों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, यानी नो एक्शन नो टॉक। इस समझौते से जो खाड़ी के देश हैं उनमें शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन देखना यह होगा कि जमीन पर यह शर्तें कितनी जल्दी इन पर काम होता है। एक और बड़ी बात है, बड़ी बात इस समय यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच यह बातचीत तो हो रही है लेकिन इसराइल इसके लिए कतई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसराइल इस युद्ध विराम को अपने विरुद्ध एक कदम मानता है और वो चाहता है कि वो अपने दुश्मनों का नाश करे। इसराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में एक साफ नीति पर काम कर रहे हैं जिसके तहत IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान हो, सीरिया हो, गाजा हो, एक सिक्योरिटी जोन वो बना रहे हैं और वो सिक्योरिटी जोन मौजूद रहेगा। इसराइल कात्स ने कहा है कि मौजूदा और भविष्य के तमाम दबावों के बावजूद इसराइल की सेना लेबनान से IDF नहीं हटाएगी, वो हटाने के खिलाफ है। इसराइल कात्स ने यह भी कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के सामने ये बात साफ तौर पर कह दी थी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि इन इलाकों और सिक्योरिटी जोन पर कब्जा करना इस युद्ध की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है और इसराइल उसे अपने हाथ से नहीं जाने देगा। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगा और अगर लेबनान में हुई घटनाओं की वजह से ईरान इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल अपनी पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। तो जैसा हमने आपको बताया, शुक्रवार को होने वाली डील पर नाकामी के जो बादल हैं वो अभी से नाकामी के खतरे के बादल अभी से मंडरा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसराइल से आ रही है जहां के कट्टरपंथी यहूदी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री बेन गवीर ने भी डोनाल्ड ट्रंप की डील को ठुकरा दिया है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कराई किसी भी डील इसराइल के लिए बाध्य नहीं है, यानी इसराइल अमेरिका की किसी डील से बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल एक स्वतंत्र देश है, एक संप्रभु देश है और इसराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, इसराइल अपने फैसले खुद लेगा। बेन गवीर ने हिजबुल्ला के साथ किसी भी नरमी का विरोध किया और कहा कि पूरा का पूरा ढांचा जो हिजबुल्ला का है लेबनान में उसे खत्म किया जाएगा। उन्होंने कब्जे के लिए जो इलाके कब्जे में लिए हैं उससे पीछे हटने का भी विरोध किया और यहीं पर सबसे बड़ा विवाद आता है क्योंकि इसराइल ये साफ कर चुका है कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा। अगर हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ तो इसराइल पलटवार करेगा, लेकिन ईरान का कहना है कि हर मोर्चे पर युद्ध विराम होना चाहिए। तो इसराइल कह रहा है कि युद्ध विराम उसे तभी मंजूर होगा अगर लेबनान की तरफ से या हिजबुल्ला की तरफ से उस पर वार नहीं हो। वो अपनी शक्ति लगातार दिखा भी रहा है। बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से आ रही है जहां इसराइल पर नए हमलों का आरोप अभी अभी लगा है। ईरान की मीडिया चैनल IRIB ने लेबनानी सूत्रों के हवाले से दक्षिणी लेबनान में इसराइल के नए हवाई और आर्टिलरी हमले की अभी खबर दी है। इसराइल ने ज़वतार, मरकबा और खयाम शहरों पर बमबारी की है, ऐसी खबर लेबनान से आ रही है। लेबनान के अधिकारियों ने इसराइल पर हमला करने का आरोप लगाया है। बताए गए हमलों में हवाई हमले और आर्टिलरी से लंबी दूरी के तोपखाने से वार करने का भी आरोप लग रहा है। कल भी इसराइल ने न केवल दक्षिणी लेबनान बल्कि बेरूत के दक्षिणी भाग में दाहिये पर बड़ा हमला किया था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। यह हिजबुल्ला का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे खासा नाराज थे। सुमित मेरे सहयोगी सुमित चौधरी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, शांति की एक पहल तो हो रही है, दुनिया ने राहत की सांस भी यहां ली है, लेकिन क्या स्थायी शांति संभव है? अगर हिजबुल्ला इसराइल पर वार करता है और इसराइल पलटवार करता है तो फिर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे इस डील पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन इस पूरे विवाद को या फिर इस संघर्ष विराम का नहीं निकलता रहा। ये टेम्पररी चीजें हैं, लेकिन टेम्पररी आप कह सकते हैं कि नेगोशिएशंस में या बातचीत में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी परिस्थितियों को बिगाड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लेबनान के मुद्दे को लेकर आज ही देखिए पीस डील के बारे में अनाउंसमेंट किया गया, कुछ ही घंटों के अंदर इसराइल ने स्पष्ट कर दिया कि IDF जो है वो ऑपरेशन चाहे वो साउथ लेबनान का इलाका हो, सीरिया का इलाका हो, गाजा का इलाका हो, तमाम जगहों पर जारी रखेगा। वहीं ईरान ये कहता है कि जो सीज फायर होगा सभी जगहों पर सभी फ्रंट पर लागू होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण यह था कि इस डील के अंदर यह भी पॉइंट है कि अगर किसी भी तरीके से यह साबित होता है कि ईरान जो है वो लगातार अपने प्रॉक्सीज को मदद कर रहा है, अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर फिर दोबारा से अमेरिका कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी शर्तें हैं जो दिखाती है कि कभी भी ये चीजें जो है इतनी फ्रजाइल है, इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कमजोर है कि कभी भी टूट सकती है।
0: जी,
1: और इसी वजह से माना जा रहा है कि सिर्फ 4 जुलाई तक, यानी जब 250 साल पूरे होंगे अमेरिका के, तब उस इवेंट तक एक फेस सेविंग के तौर पर इस डील को किया जा रहा है। उसके बाद इसका क्या भविष्य होगा, क्या इसकी आगे लंबा, आप कह सकते
0: ये बड़ी बात आपने की सुमित, और यही सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है भी, 4 जुलाई, 4th of July का महत्व क्या है? 4 जुलाई यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, और इसी 4 जुलाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का जो महायुद्ध है 4 जुलाई के बाद एक बार फिर भड़क सकता है। दरअसल आने वाली 4 जुलाई को अमेरिका अपने इतिहास के, अपनी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे करने जा रहा है, इसीलिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन अमेरिका में उसका आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक दिन वॉशिंगटन से फिलेडेल्फिया तक जबरदस्त परेड होगी, आतिशबाजी की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप इस मौके पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका शांति से ताकतवर बनने की नीति पर आगे चल रहा है। शांति ही डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है। हालांकि उन्होंने दावा जरूर किया था चुनाव से पहले कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो केवल शांति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कराया और फिर ईरान पर बमबारी भी शुरू कर दी। अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये जानते भी हैं कि अमेरिका के लोग मानते हैं कि ये मजबूरी का समझौता है इस समय ईरान के साथ। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिर भी आग बबूला है। लिहाजा 4 जुलाई के बाद आशंका इस बात की है कि अगर स्थायी शांति नहीं आती तो फिर यह युद्ध एक बार फिर भड़क सकता है। और सुमित, यही कहा भी जा रहा है कि अगर 4 जुलाई तक शांति पर बात आगे नहीं बढ़ी, अगर हिजबुल्ला पर अंकुश नहीं लगा, अगर ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आए, तो फिर यह युद्ध फिर भड़क सकता है।
1: देखिए बिल्कुल गौरव, देखिए कहा यही जा रहा है कि ये तो बात दर्ज जाहिर है कि कैसे अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे युद्ध से, इस पूरे संघर्ष से बाहर निकलना चाह रहे थे, डेस्परेट थे, लेकिन अब जो शर्तें ईरान ने रखी थी वो संभवतः अमेरिका के लिए भी पूरी तरीके से लागू करना संभव नहीं था। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बराक ओबामा की उनकी नीतियों को जाहिर करते आए हैं, कहते आए हैं कि देखिए बराक ओबामा के समय में जो ढिलाई दी गई थी, जो सैंक्शन लिफ्ट किए गए थे, उसी के बदौलत ईरान जो है 60% यूरेनियम को एनरिच कर लिया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप
0: इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जिस महासमझौते का दावा किया जा रहा है उसमें कई पेच भी हैं और उसी पेच पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। 2 taps later, क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: To right field, and it will leave.
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

ये दो शक्तियों के मिलन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं दुनिया भर में भारत के दम को। फ्रांस के नीस में जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई तो नजारा ऐसा था। मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत बाहें फैलाकर किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले लगे। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर दोनों ने भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय निवेश को जोड़ने वाला मंच है। इससे भारतीय स्टार्टअप्स, युवा उद्यमियों और नए आइडिया को दुनिया के बड़े निवेशकों और विशेषज्ञों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर नई पहल शुरू किए हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी भारत की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र है। भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स भारत के साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में भी योगदान दे रहे हैं। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हर चुनौती नए मौके लेकर भी आती है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक जैसी कई नई तकनीकें आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगी। भारत में स्टार्टअप क्रांति चल रही है और देश के युवा नई सोच के साथ लोगों की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: अमेरिका इसराइल के बीच करीब 68 दिन भीषण जंग चली। ईरान के कई शहरों समेत पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची। मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ। ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल गया। यहां तक कि सीजफायर के बाद भी दोनों ओर जंगी तनाव बना रहा। अमेरिका ईरान के बीच डील की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत बेपटरी होती दिखी, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं, उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है। उधर ट्रंप अपने जन्मदिन के मौके पर किए इस अहम ऐलान को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर ट्रंप पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
1: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
0: सीज़फ़ायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें भी हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का। बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अमेरिका ईरान जंग खत्म करने पर राजी होने के बाद दुनिया ने ली राहत की सांस। शुक्रवार को होंगे दस्तखत, हॉर्मूज फिर खुलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, रक्षा और निवेश पर कई समझौते। इमानुएल मैक्रॉन ने शेयर किया भारत फ्रांस दोस्ती का खास वीडियो। G7 में ट्रंप से भी होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। युवाओं के हक में राहुल गांधी की हुंकार, 17 जून को कोटा से अभियान शुरू करने से पहले बोले हर पेपर लीक लाखों सपनों पर वार, ये आपके भविष्य की लड़ाई, मैं आपके साथ हूं।

समिति ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और राजस्थान के चूरू में रेतीले तूफान ने मचाया हड़कंप, तेज धूल भरी आंधी ने दिन को रात में बदला, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाएं।

यूरोप में बढ़ रहा भारत का मान, फ्रांस के साथ दोस्ती को मिले नए आयाम, बेहतर भविष्य के लिए हुए कई ऐलान, कारोबार से लेकर तकनीक पर साफ करेंगे काम, अब स्लोवाकिया में रचा इतिहास, रिश्तों को मजबूती की आस, फिर होगी G7 की तैयारी, बड़े इम्तिहान पास करने की बारी, 17 जून को मोदी ट्रंप मुलाकात, कई मुद्दों पर दो टूक बात, हालात के साथ साथ दुनिया तेजी से बदल रही है, साथ ही बदल रही है कूटनीति, सैन्य नीति और अर्थनीति, बदलाव की इस बयार में अरमानों को आसमान तक ले जाने की कवायद में भारत को मिल रही है हर देश में कामयाबी।

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप की यात्रा पर है और बहुत महत्वपूर्ण है यह यात्रा। फ्रांस के नीस शहर में उनके दौरे का आगाज हुआ। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, स्पेस से लेकर समंदर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रक्षा तक। कई मोर्चों पर साथ काम करने पर सहमति भी हुई। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री इस समय पहुंचे हैं स्लोवाकिया। यहां पहुंचकर उन्होंने इतिहास, 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यहां पहली यात्रा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी 17 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली उनकी मुलाकात, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात में ईरान युद्ध के बाद के हालात जो है, सीजफायर होने के बाद के हालात, फिर ट्रेड डील से जुड़े कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। पिछले वर्ष फरवरी में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद 16 महीनों बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों एक बार फिर आमने सामने होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और किन मुद्दों पर दोनों देशों की बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिका और भारत विश्व के दो सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। ऐसे में जब दोनों देश एक साथ आएंगे किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ट्रेड डील। जी हां, पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के समय के बिल्कुल बाद, जनवरी में इनॉग्रेशन हुआ था, फरवरी में प्रधानमंत्री गए थे, उम्मीद थी कुछ महीनों में हो जाएगा। मार्च 2026 में व्यापार अधिनियम के तहत भारत के खिलाफ जांच के फैसले पर इस पर भी बातचीत होगी। ट्रेड डील पर उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के अंत तक उसकी पहली खेप पर हस्ताक्षर हो सकेंगे। जो अतिरिक्त 25% टैरिफ है, इससे व्यापारिक रिश्तों में जो आई खटास है उसको दूर करना है। वो अतिरिक्त कर तो हट गया है, फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश भी आ चुका है। उसके बाद नए जो कर होंगे नए ट्रेड डील के तहत, उसमें क्या बातचीत होगी, जो बाधित शिपिंग मार्ग से बढ़ रही मुश्किलें दूर करना, साथ ही भारतीयों पर अमेरिका में जो हमले भी हो रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी। हालांकि एक बात मैं आपको और बताता हूं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जुलाई के अंत तक ट्रेड डील हो सकती है, भारत के हित में होगी, कृषि के क्षेत्र में अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी कृषि उत्पादन की भारत में आयात नहीं होगा, चाहे सीधे तौर पर या छद्म तौर पर बिल्कुल नहीं होगा, और जो भारत की पीयर कंट्रीज हैं उनके साथ साथ जो भी डील होगी भारत को उसमें फायदा ही होगा। मौजूदा हालात में रूस के तेल की खरीद की बात हो, हथियारों की खरीद हो, जैवलिन मिसाइलें जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, न्यू जनरेशन मिसाइल्स, उन पर खरीदने के, और भारत केवल खरीदना नहीं चाहता, भारत अमेरिका के साथ भी कोई समझौता होता है तो भारत की बात होती है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी होगी। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में चर्चा होगी, एक इस पर एक संधि भी है क्रिटिकल मिनरल्स पर, कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से पहली मुलाकात है, पाकिस्तान की हरकतों पर अमेरिकी नजरिया भारत जानेगा। अच्छा, पिछले एक साल में पाकिस्तान के साथ अमेरिका की जो नजदीकियां बढ़ी हैं, इससे अमेरिका की भले ही नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़े लेकिन भारत पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर क्या प्रहार होगा यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस बीच दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो लगी हुई हैं किस पर, 17 जून की इस मुलाकात पर, जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होगी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और बेहतर करने के लिए इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

0: 17 जून को होगी मोदी ट्रंप मुलाकात। सुधरेंगे तल्ख रिश्ते, कई मुद्दों पर होगी बात। टेक्नोलॉजी से ट्रेड तक बातों से बनेगी बात। करीब 48 घंटे बाद दुनिया की दो ताकतों का मिलन होगा। पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। G7 समिट के बाद जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर न सिर्फ अहम चर्चा होगी बल्कि रिश्तों की मजबूती के लिए फैसले भी लेने होंगे। वैसे भी दोनों नेता पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद से नहीं मिल पाए हैं। तब से दुनिया दो अहम पड़ावों से होकर गुजर चुकी है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा ईरान युद्ध। इन दोनों पड़ावों की वजह से कई मोर्चों पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ट्रंप की बयानबाजी की वजह से कई बार कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों में खटास भी पैदा हुई। अब जब भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूती की ओर लौट रहे हैं, दोस्ती की परिभाषाएं फिर से गढ़ी जाने लगी हैं। हाल ही में ट्रंप ने संकेत दिए कि वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए जल्दी ही ट्रेड डील करने वाले हैं।
1: But we'll get to a deal because I like, you know, I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship.
0: मोदी इन दिनों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं, जहां राष्ट्र प्रमुखों के साथ कई मुद्दों पर बात हो रही है। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में भी शिरकत करेंगे। पिछले दो दिनों में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और निवेश को लेकर भारत इनोवेट्स में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है और कन्विक्शन भी।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है।
3: महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, किस तरह से दुनिया जो तेजी से बदल रही है, भारत एक कदम कैसे आगे रहने का प्रयास निरंतर कर रहा है। तो 13-14 जून नीस में प्रधानमंत्री थे, यहां पर वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात भी हुई। भारत इनोवेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कितना कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किस तरह से आगे बढ़ रही है, उस पर बातचीत। फिर इस समय स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है 1993 में स्लोवाकिया के बनने से बाद। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री वापस अब इवियान जाएंगे, वहां 16-17 जून को G7 में भाग लेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होगी, ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण। अच्छा, उसके बाद 18 जून को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, भारतीयों को संबोधित करेंगे, वीवाटेक समिट में भाग लेंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में पिछली बार उन्होंने भाग लिया था, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी तेज दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, और कोई एक देश किसी देश पर अंकुश ना लगाए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो, उस मुद्दे पर भी, ऐसे मुद्दों पर बातचीत रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए।

हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।

मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर पिछले 4 महीनों से बारूद की गर्मी महसूस की जा रही थी। समुद्र से लेकर आसमान तक तनाव की लकीरें खींची थी और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि अगला धमाका कहां होगा। लेकिन लंबे टकराव के बाद कूटनीति ने हथियारों पर बढ़त बना ली है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जता दी है, जिसके बाद 4 महीनों से जारी संघर्ष को विराम देने पर सहमति हो गई है और 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर के बाद ये समझौता अमल में लाया जाएगा। इस समझौते के बाद दुनिया की एनर्जी सप्लाई से जुड़े हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी। इस समझौते में परमाणु गतिविधियों पर निगरानी और संवेदनशील परमाणु सामग्री को लेकर नई व्यवस्था बनाने की बात शामिल है। लेकिन अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भविष्य को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं और तकनीकी स्तर पर की बातचीत इस हफ्ते के आखिर तक पूरी होने की संभावना है। फिलहाल ये अंतिम शांति संधि नहीं है और इसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी, जिसमें ईरान ने अमेरिकी वादों के पालन को बातचीत की शर्त बताया है और सैन्य कार्रवाई रोकने के साथ प्रतिबंधों में राहत जैसी डिमांड रखी है। मिडिल ईस्ट में तनाव घटने से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। समझौते की खबर आते ही ग्लोबल मार्केट तो राहत की सांस ले भी चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। वहीं देश और दुनिया के ग्लोबल शेयर बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। सेफ हेवन डिमांड बने रहने से सोना ऊंचे स्तर पर टिका हुआ है और हॉर्मुज रूट पर खतरा कम होने से सप्लाई चेन को राहत की उम्मीद बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में हालात स्थिर रहते हैं तो इसका फायदा कई स्तर पर दिखाई दे सकता है और कमजोर क्रूड से भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा, पेट्रोल डीजल की लागत पर दबाव कम होगा, महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी और रुपए पर दबाव घट सकता है। इस समझौते की असली परीक्षा अगले 60 दिन में है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित हस्ताक्षर और उसके बाद की बातचीत तय करेगी कि ये विराम स्थिति शांति में बदलता है या फिर तनाव लौटने का खतरा बरकरार रहेगा। आज तक पेरोल।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक बात आ सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे बड़ी चिंता यह कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि आपके हमारे घरों के आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या फिर कहीं जमा साफ पानी में भी। यानी डेंगू से जो जंग है उसकी शुरुआत भी आपके हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार या एक संस्था उसकी अकेली नहीं है और ना ही वो अकेले जीत सकते हैं। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी कदम उठाइए। घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर हो, गमला हो, पानी नियमित रूप से बदलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स का नियमित इस्तेमाल करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, हम लड़ेंगे डेंगू से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम। And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: अमेरिका ईरान कहते रहे कि उन्हें डील पर भरोसा है और इसी भरोसे के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन इजराइल को इस समझौते पर कतई भरोसा नहीं। उधर अमेरिका और ईरान में डील हुई, ट्रंप ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दुनिया से साझा की और उसके करीब 9 घंटे बाद ही उनके दोस्त देश इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैं एक स्पष्ट नीति का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके तहत ITF लेबनान, सीरिया और गाजा में सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम दबावों के बाद भी लेबनान से ITF की वापसी का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्री की माने तो इसराइल सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा और ये भी कि अगर लेबनान में हुई घटनाओं की वजह से ईरान इसराइल पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। बात यही नहीं रुकी, इजरायली रक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया कि ट्रंप और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रक्षा मंत्री से पहले इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने भी कह दिया कि अमेरिका और ट्रंप की डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने ट्रंप की तारीफ कहते हुए कह दिया है कि इजरायल की सुरक्षा नीति वॉशिंगटन नहीं यरूशलम तय करेगा। डील पर सवाल उठाते इजरायल के रूख से दुविधा और आशंकाएं कम होती नजर नहीं आ रही। आशंका और सवाल ये कि क्या 4 महीनों से जारी तनाव कम हो पाएगा, क्या होर्मुज में संकट पूरी तरह खत्म हो पाएगा? सवाल ये भी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बरकरार रहेगा? इसराइल के कड़े रुख पर अब अमेरिका क्या करेगा? क्या ट्रंप ईरान को भरोसा दे पाएंगे कि लेबनान या कहीं भी हमले नहीं होंगे? ऐसे सवालों और शंकाओं की ठोस वजह है। पहले अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के कुछ अहम शर्तों को जान लीजिए। ये डील इसी शर्त के साथ हुई है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध हमेशा के लिए बंद रहेगा। अमेरिका से बातचीत की पहल के शुरुआती दौर से ही ईरान इस शर्त के साथ आगे बढ़ा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि लेबनान या अन्य मोर्चों पर हमले नहीं रुके तो वो दुश्मन देश के खिलाफ जोरदार वार करेगा। ऐसे में अगर अमेरिका हमले ना भी करे और ऐसी सूरत में इसराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो ईरान बदले वाली कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब साफ है, अमेरिका की डील मानने के लिए इसराइल तैयार नहीं, वो अभी भी हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में अमन शांति पर ग्रहण लगा हुआ है। अब इसराइल की धमकी पर अमेरिका और ईरान के रुख का इंतजार है।

दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर देर रात एयरपोर्ट से घर लौटना हो, ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज हमारी लाइफ का खास हिस्सा बन चुकी हैं। आरामदेह सफर और एक क्लिक पर गाड़ी हाजिर होने की सहूलियत ने आम आदमी को इसका आदि बना दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स के नए नियमों की वजह से ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं काफी महंगी होने वाली हैं। दरअसल एक नए सर्वे से जो जानकारी बाहर आई है वो पैसेंजर्स के साथ साथ ड्राइवरों को भी बड़ी टेंशन देने वाली है, जिसके मुताबिक ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर 5% एक्स्ट्रा GST लगाने की तैयारी चल रही है। इस अतिरिक्त टैक्स से पैसेंजर्स पर सीधे किराए का बड़ा बोझ बढ़ने की आशंका है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को डर है कि इस नए बदलाव के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ड्राइवर उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना पसंद करते हैं जहां वो फिक्स चार्ज देकर जुड़ते हैं और पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। नया टैक्स लागू होने के बाद उनका पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सर्वे में दावा किया गया है कि 75% से ज्यादा ड्राइवर्स को डर है कि नए टैक्स की वजह से उनकी कमाई घट जाएगी। कमाई कम होने के डर से कई ड्राइवरों ने कैब एग्रीगेटर के साथ काम छोड़कर दूसरा काम तलाशने की बात कही है। 2/3 से ज्यादा पैसेंजर्स का कहना है कि किराया बढ़ने पर वो ऐप से कैब बुक करना कम कर देंगे। टैक्स के इस नए बोझ के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगे किराए की वजह से बड़ी संख्या में लोग और ड्राइवर दोनों ही दूसरे ऑप्शंस की तलाश में जुट जाएंगे। मौजूदा समय में टैक्स के सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल ओला और उबर

0: तृणमूल के आमूल चूल बदलाव और एनडीए के बढ़ते कुनबे को लेकर होगा, क्योंकि टीएमसी तीन जगह टूट गई है। लोकसभा में 28 में से 20 टूटकर अलग हो गए हैं, राज्यसभा में 13 में से 3 लोगों का इस्तीफा हो चुका है और बाकी कतार में बताए जा रहे हैं। विधानसभा के भीतर 80 में से 64 विधायक टूट चुके हैं। हालांकि विधानसभा की टूट के बावजूद बागी धड़ा विपक्ष में ही है और उसे विधानसभा स्पीकर से मान्यता भी मिल चुकी है। लेकिन उधर दिल्ली में बात कुछ अलग ही चल रही है, क्योंकि टीएमसी के लोकसभा के 28 में से 20 सांसद अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया उसमें शामिल हो गए। लोकसभा अध्यक्ष को 20 सांसदों की चिट्ठी दे दी गई है और स्पीकर ने जांच पड़ताल करके इनके विलय की सहमति देने की बात कही है, यानी जांच पड़ताल के बिना इनकी सहमति नहीं मिल सकती। हालांकि इससे पहले ही टीएमसी के कीर्ति झा और सागरिका घोष जैसे सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि टीएमसी अभी भी अटूट है और किसी बागी गुट को मान्यता नहीं दी जाए। अब लोकसभा स्पीकर के पास दो दो चिट्ठियां पड़ी हैं। इन चिट्ठियों पर उन्हें अब फैसला लेना होगा। पहले वो चिट्ठी जो 20 सांसदों की तरफ से लिखी गई है, उसकी असलियत का पता लगाया जाएगा। दस्तखत असली है या नकली, ये सब भी पता चला जाएगा। सबने सहमति से किए हैं, ये भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि एक सांसद रचना बैनर्जी का नाम भी इसमें शामिल है, जो फिलहाल मलेशिया में बैठी हुई है। इसीलिए ये जरूरी है। और उसके बाद 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल यानी दल बदल कानून की कसौटी पर इनके दावे का परीक्षण भी किया जाएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की सहमति के दावे की भी जांच की जाएगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि सहमति पत्र पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है या नहीं है, क्योंकि पार्टी के संगठन सचिव ने कहा है कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर भी टीएमसी ने स्पीकर को चिट्ठी देकर दूसरे गुट को मान्यता नहीं देने की मांग की है। उनके दावे की कानूनी परख भी की जाएगी, क्योंकि अब मामला एनसीपीआई के एक पदाधिकारी के बयान से भी उलझ गया है। हावड़ा के संक्रेल थाना इलाके में जिस जागो बिस्वा की इमारत के अंदर एनसीपीआई का दफ्तर है, वहां आसपास के लोगों को भी इस पार्टी के नाम और प्रभाव का कुछ भी पता नहीं है। जिस नाम और पते पर पार्टी रजिस्टर्ड है, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव शांतनु डे ने साफ कहा है कि टीएमसी के बागी सांसदों के विलय का फैसला पार्टी की बैठक में नहीं हुआ है।
1: सोशल मीडिया और मेरे जो लीगल सेल का दल का जो लीगल सेल और दूसरे नेता है, उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। आप मुझे पूछो, मैं फाउंडर हूँ, मुझे पूछा ही नहीं। उनको मैंने बनाया था प्रेसिडेंट, उन्होंने तो अपने अपने डिसीजन ले रहा है।
2: कौन प्रेसिडेंट? कौन है?
1: शिवली कुंडू। अच्छा। उनको ही बनाया था और ट्रेजरर बनाया था उनका हस्बैंड को। अच्छा। तो वो दोनों मिलके क्या कर रहा है? तो हम लोगों के दल का किसी के साथ भी बातचीत नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, जो लीगल सेल के लोग है, जो स्पोक्स पर्सन है, जो स्टेट सेक्रेटरी है, किसी से बात नहीं हुआ।
0: ये शांतनु डे है, ये इस नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सचिव है और ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि आखिरकार इतने सारे सांसद मेरे पार्टी में कहां से और कब और कैसे आ गए, कौन फैसला ले रहा है। हालांकि शांतनु बाद में कहते हैं कि एनडीए से जुड़कर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे वो सिर्फ एनसीपीआई के संगठन सचिव है और ये पार्टी उत्तीय कुंडू नाम के एक पते पर रजिस्टर्ड की गई है। उनका दरअसल उनके घर पर ये रजिस्टर्ड की गई पार्टी है। पहले इस पार्टी के अध्यक्ष वकील और उनकी पत्नी शिवली कुंडू थी, जिनका दावा है कि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया।
3: एनसीपीआई पार्टी का उस लिहाज से हमने बंगाल में नाम नहीं सुना था। ये जो मर्जर की बात तृणमूल कांग्रेस के बागी एमपीज कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानती हैं?
4: देखिए, मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
3: अभी कौन प्रेसिडेंट?
4: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए। अभी अब हम नहीं बोलेंगे, अभी कुछ टाइम वेट करिए, पता चले जाएगा। ठीक है, अभी तो हम नहीं थे, कुछ ही दिन पहले हम पहले फाउंडर प्रेसिडेंट तो था, लेकिन कुछ दिन पहले हमने रिजाइन दे दिया।
3: इस मर्जर के बारे में क्या जानती
4: हैं? हम लोग एनडीए के साथ पहले से ही जुड़ा था।
3: एनडीए के साथ?
4: हाँ।
3: अच्छा, तो कभी आप लोग तृणमूल के खिलाफ हमेशा खड़े रहे?
4: हाँ हाँ, उस टाइम तो हम लोग था।
0: तो एनसीपीआई के सचिव कहते हैं कि उन्हें मर्जर के बारे में पता नहीं है। अध्यक्ष कहती है कि मैं तो इस्तीफा दे चुकी हूँ, नया अध्यक्ष कौन है उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। लेकिन खबर है कि एनसीपीआई की ओर से बतौर अध्यक्ष उत्तीय कुंडू ने 20

0: सदनों के विलय को मंजूरी वाली चिट्ठी स्पीकर को दे दी। स्पीकर ओम बिरला संविधान और कानून की कसौटी पर इन तमाम पहलुओं की जांच परख के बाद ही 20 सांसदों को एनसीपीआई में विलय की मंजूरी दे सकते हैं। तब तक बागी गुट ने संसद में अलग अलग बैठने की मांग की है, यानी वो विपक्षी पार्टियों के साथ टीएमसी के साथ नहीं बैठना चाहते और उस पर भी विचार किया जा रहा है। यह तो हुई टीएमसी की बात, लेकिन हमारे देश में विरोधी दलों के टुकड़े बंटने में सिलसिला सिर्फ बंगाल में नहीं तो महाराष्ट्र के भीतर भी चल रहा है। यहाँ शिवसेना और एनसीपी पहले ही दो टुकड़े हो चुकी है। अब ऐसी सुगबुगाहट है कि शिवसेना के दूसरे टुकड़े के भी टुकड़े हो सकते हैं, यानी शिवसेना उद्धव गुट के कुछ सांसद अब शिंदे गुट के साथ जाने को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि उद्धव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बचे कुचे सांसद नहीं टूटे, 9 सांसद है शिवसेना यूबीटी के। उधर विपक्ष कह रहा है कि उद्धव की पार्टी खुद ही बिखर रही है, बैठक तक में भी सभी नेता सभी सांसद मौजूद नहीं रह पाते और वर्चुअल बैठकें हो रही है, उसमें भी संजय जाधव, भाऊ साहेब बागचौरे, ओम राजे निम्बालकर, ये 4 सांसद इस मीटिंग में आए ही नहीं।
1: पार्टी का वजूद अब खत्म होते जा रहा है, इनको किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही टूटे हुए हैं। ये जो बिखर रहे हैं उनसे जो टूट रहे हैं, मुझे लगता है अब उद्धव साहब को वो संभालना मुश्किल होता जा रहा है। कल की उनकी जो लैंग्वेज अगर देखेंगे तो उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे अपन साथ में रहेंगे आओ।
0: तो पूरब में बंगाल और पश्चिम में महाराष्ट्र तक विपक्षी दल टूट रहे हैं, तो चर्चा तेज होने लगी है कि अब हिंदुस्तान के बाकी हिस्से इसमें ना छूट जाए, यानी हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में भी ये बारी कभी ना कभी तो आएगी। क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी पूरे देश में छोटे दलों के खिलाफ ऑपरेशन कमल चलाकर पार्टियां तोड़ रही है, क्योंकि लोकसभा में जरूरी कानून बनाने के लिए उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। और ये कानून क्या है यह अभी सभी को पता है। अब जरा आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि लोकसभा के भीतर 543 सांसद हैं जिसमें 3 सीट खाली है, तो 2/3 बहुमत के लिए 360 नंबर चाहिए। बीजेपी के पास 240 अपने सांसद हैं, उसके साथ उनके पास टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7, एलजेपी के 5, जेडीएस के 2, जेएसपी के 2, आरएलडी के 2 और उसके साथ साथ जो बाकी छोटे दल है यानी अपना दल, एजीपी, एजेएसयू, एनसीपी, हम, एसकेएम, कुल मिलाकर 6, उनके भी मिलाकर एक एक सांसद मिलाकर 6, यानी एनडीए के पास 312 सांसदों का बहुमत है। लेकिन 2/3 बहुमत से बीजेपी अभी भी करीब 50 सीट दूर है। उसी तरीके से राज्यसभा में 245 सीटें हैं जिसमें टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे पहले ही हो चुके हैं, यानी 242 बच गया। फिर भी 2/3 के लिए 162 सदस्य चाहिए। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का कुनबा भी बढ़ा है और एनडीए का कुनबा भी बढ़ा है, तो वो 113 से 154 तक अब पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी 9 सांसद अब भी कम यहां पर दिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि मिशन 67% यानी 2/3 के चक्कर में अब क्षेत्रीय दलों के दरकने की बारी उत्तर और दक्षिण में होगी क्या? दक्षिण की बात की जाए तो कांग्रेस की दगाबाजी से डीएमके इतनी नाराज है कि टूट तो नहीं लेकिन संसद में वक्त आने पर एब्सटेंट कर सकती है। लेकिन परिसीमन जैसे मुद्दे पर जहां पर डीएमके ने दक्षिण बनाम उत्तर का मुद्दा उठाया था, यह संभव होगा कि नहीं होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है। इसके बाद वाईएसआरसीपी के 4, बीजेडी के 5, आम आदमी पार्टी के 3 ऐसे तमाम सांसद हैं, तो वोटिंग के वक्त जो गायब भी हो सकते हैं या सरकार की मदद कर सकते हैं या कहीं और कुछ कर सकते हैं। लेकिन उत्तर का क्या होगा, क्योंकि उत्तर भारत के 2 सबसे क्षेत्रीय दलों को भी कुछ खतरा बताया जा रहा है। क्या यूपी बिहार जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल टूट फूट कर उनकी आशंका में मौजूद महफूज है या वो भी टूट फूट सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ में शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता है। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से और शाइना एनसी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से ज्वाइन हो रही है। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल हमेशा की तरह मैं हमारे पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या बिना चुनाव के ही एनडीए का कुनबा संसद में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके खिलाफ आंदोलन पर उतर आए थे। दूसरा सवाल, क्या बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी टूट का खतरा बढ़ गया है? और तीसरा सवाल, क्या दक्षिण और उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों में भी टूट की आशंका पैदा हो सकती है? शहजाद पूनावाला, अब कुछ ही सांसद चाहिए 67% के लिए। आप म्यूट पर है, शहजाद म्यूट पर है।
2: आपको आवाज आ रही क्या?
0: शहजाद आप म्यूट पर है।
2: नहीं, मेरी आवाज फोन से है, मेरी आवाज फोन से है, मैं म्यूट पे नहीं हूँ।
0: हाँ अभी आ रही है, अभी आने लगी है, अभी आने लगी।
2: मैं हाँ, तो मेरी आवाज तो एनीवे, मैं ये कह रहा था कि बच्चा पैदा होने से पहले हम तो मुंडन नहीं करवाते। राहुल गांधी जी तो जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणी राजनीतिक करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हाल ही में एक
3: इंडिया अलायंस की मीटिंग थी, उसमें कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी पोस्ट कर आई कांग्रेस को। रविदास मेहरोत्रा का कहना था कि कांग्रेस सबसे बड़े धोखेबाज पार्टी है। नंबर टू की पार्टी टीएमसी, वो असली टीएमसी तो कहीं और ही दिख रही है। नंबर तीन की पार्टी डीएमके, डीएमके पार्टी मीटिंग में नहीं गई, कांग्रेस धोखेबाज है, ये उनका ऑन रिकॉर्ड है। सबसे नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बोलती है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं चल सकते। सबसे पुरानी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन प्रेटास, चाहे वो बिनॉय विश्वम हो या वृंदा करात हो, वो बोलते हैं राहुल गांधी से ज्यादा दोमुहिया और हिपोक्रेट आदमी कोई नहीं है, हमें ही गाली देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी जेएमएम, जहां पे एक सरकार है, वो बोलती है राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस पूछती नहीं है। तो भाई जिनके यहाँ मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, एम्बिशन फॉर पोजिशन और डिविजन है, तो हमें क्यों बोलते हैं भाई? मुझे तो लगता है कि इनके लिए गाना बड़ा फिट होता है। वो पहले तो गाना गाते थे हम साथ साथ हैं, अब आजकल गाना गाना चाहिए हम आपके है कौन, क्योंकि हर जगह वो बोलते हैं एक दूसरे को हम आपके है कौन। ये इंडिया अलायंस था कहाँ पे? ये बंगाल में था? नहीं। ओडिशा में था? नहीं। पंजाब में? नहीं। हरियाणा में? नहीं। दिल्ली में? नहीं। मध्य प्रदेश में? नहीं। उत्तराखंड में? नहीं। तमिलनाडु में? नहीं। कर्नाटका में? नहीं। तो ये इंडिया अलायंस पहले तो है कहाँ पे? और दूसरा हमारा इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस 2010 में कितनी सीट स्टेट्स में था? 5 अच्छे, आज 26 स्टेट में आ गया। तो ये तो एनडीए की नेचुरल ग्रोथ, नैसर्गिक ग्रोथ है, तो इसमें आप हमें क्यों दोष देते हैं? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी खुद ही बोल रही है कि हम कांग्रेस पार्टी को 403 सीट पे कोई सीट नहीं देंगे। अखिलेश जी का बयान है कि हम जीत की बात करते हैं।
0: जरा एक बात, जरा प्लीज, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। आपको दोष दिया किसने? मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि भाई 3 महीने पहले आप 2/3 तक नहीं पहुंच पाए थे, अभी आप 2/3 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्किल होता है, इस पे दोष देने की बात कहां से आ गई? पॉलिटिकल स्किल नाम की भी चीज होती है और देश में एक्सेप्टेड है पॉलिटिकल स्किल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोष किसने दिया आपको? मैंने तो कहा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने कब कहा ये बात?
3: साहिल जी, आप जो आपकी प्रशंसा में भी जितने तंज छुपे होते हैं ना, क्योंकि मैं आप ही के स्टेट से हूं, तो मैं एकदम माफ करता हूं कि आप जो है मतलब हमें गोल्ड के पेपर में रैप करके आप हमको प्लास्टिक का बॉल देते हो, तो हमको भी समझ में आता है कि आप प्रशंसा कर रहे हो कि आप हमारी हमारे तंज दे रहे हो, पर मैं आपके तंज को स्वीकारते हुए कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल स्किल नहीं, ये जनता के विवेक का कमाल है, क्योंकि जनता का विवेक ऐसा है कि वो लगातार इंडिया अलायंस को बढ़त दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, और इंडिया अलायंस जो अवसरवादियों का अलायंस है उसको लगातार जो है वो खत्म कर रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी 5 राज्यों में चुनाव, 4 राज्य एक यूनिट है, हम जीते बंगाल, हम जीते असम, ठीक है, हमारी तीसरी बार सरकार बनी। कांग्रेस किसके बल पे जीती? कांग्रेस जीती तो उन्होंने लेफ्ट को हरा के केरलम में जीता। कांग्रेस जीतती है तो वो अपने ही अलाय पार्टनर डीएमके को धोखा देकर टीवीके के साथ बात जाकर तमिलनाडु में सरकार बनाती है। तो कांग्रेस का ग्रोथ अपने अलायंस पार्टनर पे होता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, जो बंगाल का विषय आपने उठाया, बंगाल में हमारा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हमारी पार्टी में कोई नहीं आएगा। अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि 60 MLA जो टूट के जा रहे हैं ममता बनर्जी से, वो हमारे पास आ जाए। मर्जर की बात संजय राउत करते हैं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद पार्टी, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग में उन्होंने जो ऑडियो टेप रिलीज किया राहुल गांधी जी ने, तो वो बोलते हैं यूनाइट होकर लड़ना। मैं तो बोलता हूँ राहुल जी, पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस और तेलंगाना कांग्रेस यूनाइट करो, ताकि जो हमारी मीनाक्षी नटराजन जी है वो ना हारे। पहले कांग्रेस पार्टी राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस यूनाइट करे, पहले कांग्रेस पार्टी थोराक कांग्रेस और नाना पटोले,
0: इस पे तो कोई दो राय है नहीं शहजाद।
3: कांग्रेस पार्टी डीके और सिद्धरमैया को यूनाइट करे,
0: जो है दो अलग अलग करे दो नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि ये तो अभी एक्सेप्टेड फैक्ट है ना कि बीजेपी दो अलग अलग लोगों को एक साथ लाकर बिठा सकती है, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साथ में लाकर बिठाया, वो काबिलियत कांग्रेस पार्टी में नहीं है आज की स्थिति में, ये बात तो दिखाई दे रही है। आप दो तिहाई बहुमत की तरफ जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, आखिरकार डिलिमिटेशन का ही तो फैसला होगा ना इसमें। चरण सिंह सप्रा अभी देखिए आपने तीन महीने पहले तो सारे अलायंस पार्टनर्स को साथ में मिलकर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिफीट कर दिया, लेकिन आज की स्थिति में अगर सरकार लेकर आती है तो आपके पास कोई चारा नहीं है। आज डीएम के भी कहेगी कि हम एब्सेंट रह जाएंगे, अब ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 20 लोग वहां पर हो गए, बाकी 6 सांसदों का क्या होगा शिवसेना यूबीटी के वो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन बाकी धीरे धीरे उनका कुनबा बढ़ रहा है, 312 से 360 की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है।
4: देखिए साहिल जी, आपने अभी सब सुना, बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे नैतिकता की बात कर रहे थे, अब नैतिकता का पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिनकी नैतिकता रोज गिरगिट की तरह रंग बदलती है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की, पॉलिटिकल स्किल की आपने बात की, तो पॉलिटिकल स्किल पे मैं बात करना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि पिछले 12 वर्षों में इनकी पॉलिटिकल स्किल की वजह से इनका ऑपरेशन लोटस कितना बखूबी से चल रहा है। ऑपरेशन लोटस का नंगा नाच चल रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और सत्ता का सौदा खुलेआम हो रहा है। ये हमने पहले भी देखा, अरुणाचल में देखा, गोवा में देखा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह में देखा। कहीं पर इन्होंने पार्टी को तोड़ा, कहीं पर इन्होंने सत्ता को तोड़ा, सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने ये सारे काम किए हैं। यानी ये, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी सत्ताधारी नहीं है, ये सट्टाधारी पार्टी है। इन्होंने लोकतंत्र को सट्टे पे लगा दिया है और संविधान को भी सट्टे पर लगा दिया है, संविधान को तार तार कर रहे हैं। इनकी एक ही मंशा है कि जिद पूरी करनी है, हठधर्मी पूरी करनी है, उसके लिए चाहे तानाशाही करनी पड़े, ये शाह और तानाशाह मिल करके डिलिमिटेशन बिल पास कराना है।
0: डीएमके का तो आप ही ने नकेल दिया ना,
4: टीएमसी की तोड़फोड़ या फिर अन्य पार्टियों की तोड़फोड़।
0: आज की स्थिति में शहजाद एक बात तो ठीक कह रहे हैं कि डीएमके का तो आप ही ने नकेल दिया, टीएमसी के सांसद जो अब तक एनडीए के खिलाफ खड़े थे उनको बीजेपी ने थोड़ी कहा कि आप हमारे साथ आइए। भाई उनके उनके अंदरूनी भी कुछ कुछ झगड़े थे, अभी मुझे पता नहीं कि वो एनसीपीआई का मर्जर किस कानून के तहत एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून कुछ और ही कहता है, वो बात अलग से होगी। लेकिन डीएमके के तो आप ही ने ढकेल दिया, आपने कहा कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, आपके सहयोगी दल उस दिन मीटिंग में कहते रहे कि भाई डीएमके को लेकर आइए, अब उसके बाद दो तिहाई बन जाते हैं तो उसमें आपका भी तो आपकी भी तो गलती होगी।
4: नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं। देखिए साहिल जी, जहां तक टीएमसी का सवाल है, आप ही देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है। अरे बीजेपी के सभी सांसद भूपेंद्र यादव के घर जाकर के मीटिंग करते हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ में मीटिंगें हो रही हैं, बीजेपी के तमाम सारे आला नेताओं के साथ मीटिंग हो रही है, तो बीजेपी का कैसे लेन देन नहीं है टीएमसी को तोड़ने के अंदर? और ये सारे टीएमसी के सांसद जीत कर किस वोट पे आए हैं? एंटी बीजेपी की वोट पर जीत करके आए हैं ना, तो ये तो सीधा सीधा मतदाताओं के साथ में धोखा वो भी कर रहे हैं और बीजेपी भी कर रही, यानी लोकतंत्र का जो चीर हरण हो रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है, वो खुलेआम नजर आ रहा है।
0: एक
4: और
0: पार्टी
4: ये, तो ये बहुत बड़ा किस्सा
0: मौका ढूंढ रही है दो तिहाई बहुमत हासिल करने का
4: नहीं हुआ,
0: और दूसरी बड़ी पार्टी मौका ढूंढ रही है राज्य में सरकार बनाने का, जिसके चक्कर में डीएमके वहां से खिसकती जा रही है। तो आपको लगता है कि दो तिहाई तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो पता नहीं कि सरकार दोबारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तीनों बिल लाएंगी नहीं लाएंगी, इसके बारे में तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है, दिल्ली में इसकी चर्चा चल रही है कि शायद इसी सत्र में तीनों बिल दोबारा इंट्रोड्यूस किए जाए, और आज की स्थिति में वो ज्यादा मजबूत है।
5: देखिए साहिल, राज्यसभा के अंदर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जो है वोट दो तिहाई बहुमत पालेगी, क्योंकि उसके पास अभी इस वक्त 154 के आसपास हैं और उनको चाहिए 9 और, यानी 163। अब लोकसभा के अंदर ये आंकड़ा थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि 294 इनके साथ थे, 20 अभी आके जुड़े हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो 314 हो गया है, और इनको दरअसल चाहिए 362, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो कम से कम 48 सांसद इनको चाहिए, तो 48 सांसद इनको एकजुट कहां से मिल सकते हैं? ये अगर आप शिवसेना के 9 में से अगर एक दो तिहाई तोड़ भी ले तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 होते हैं, या फिर एनसीपी के अगर आप 8 में से अगर तोड़ लें 6 या 5 तो भी वो 6-5 11-12 के आसपास पहुंचते हैं। तो ये आंकड़ा थोड़ा लोकसभा के अंदर जरूर दिक्कत है, लेकिन राज्यसभा के अंदर तो आसानी से इनको बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत इस वक्त तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में दिखाई पड़ रही है, लोकसभा में तो दो तिहाई निकल ही गए हैं, तो राज्यसभा से भी निकल जाए तो मुझे कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन लोकसभा में ये बाकी के 48 सांसद कहां से लाएंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह है। अब अगर कांग्रेस ही तोड़ दे दो तिहाई तो बात अलग है। फिर तो
0: अभी तक उत्तर की बारी है, उत्तर बाकी है, पूर्व और पश्चिम हो चुका है, मतलब पश्चिम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, दक्षिण और उत्तर।
5: देखिए अगर देखिए अब इनका निशाना दरअसल समाजवादी पार्टी ही होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में 37 सांसद हैं, 6 कांग्रेस के हैं, तो 37 में से दो तिहाई बनता है तकरीबन 25 सांसद के आसपास। क्या ये इतना बड़ा ऑपरेशन कर पाएंगे? जब से तृणमूल कांग्रेस में किया तब से तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑपरेशन संभव है। और आप तृणमूल, आप समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ते हैं जो 99 कांग्रेस के हैं, उसमें से अगर 66 अपने साथ कर ली तो सारा खेल अपने आप ही हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आसानी से।
0: ठीक है शहजाद इसका जवाब देंगे, लेकिन जरा एक बार हमारे महाराष्ट्र के दोस्तों को भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक इनका चल रहा है कि हमारा भी हिस्सा कुछ होना चाहिए इसमें। शाइना जी, 6 की बात हो चुकी है कि या एक हाथ के लिए रुका हुआ है? 19 तारीख को शिवसेना का जन्मदिन होता है, उस दिन एक तोहफा एनडीए के भीतर 6 सांसदों का, आनंद दुबे भी हंस रहे हैं यहां पर।
6: साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जब कोई भी पार्टी के नेतृत्व में नेतागण ही नहीं समझ पाए कि उनके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं तो इसका दोष हमें मत दीजिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे इज डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन, उनकी लोकप्रियता सभी को
0: मुझे
6: पता
0: एक
6: है।
0: बात समझ में नहीं आ रही,
6: हर दिन पक्ष
0: ना मैंने किसी को दोष दिया,
6: शिवसेना
0: मैंने किसी पर तंज कसा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा। मैंने कब आपको दोष दिया शाइना जी?
6: सुन रही थी
0: आप, अपने राजनीतिक पार्टी का काम कर रही है और ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है कि सांसद यहां से कूदकर दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। मैंने किसी को दोष नहीं दिया, शहजाद भी मुझ पर तंज कस रहे हैं, आप भी मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे दोष दे रहे हैं, मैंने किसी को दोष ही नहीं दिया।
6: आपने बोला वर्धापन दिवस, आपने वर्धापन दिवस का जिक्र किया। देखिए थोड़े लीडर
0: मैं तोहफे की बात कर रहा हूँ,
6: काम करते हैं
0: शिवसेना के वर्धापन दिन पर एनडीए को तोहफा
6: है, जो
0: 6 सांसदों का
6: तोहफा तो हमने तब दिया था 2024 में ही, जब हम 80 सीट लड़ के 60 सीट पे जीत के आए, और उसके बाद स्थानिक स्वराज में जो शिवसेना का परफॉर्मेंस रहा वो अपरंपार रहा है। और आप एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि एकनाथ जी शिंदे की जो लोकप्रियता है, हम किसी को पोच नहीं करते हैं, जो लोग स्वयं जानते हैं कि उनकी नैया डूब चुकी है।
0: अच्छा तो इतना बता दीजिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
6: दम नहीं, वो अपने बल
0: नंबर हो चुका है, जुड़ चुका है कि नहीं जुड़ चुका है?
6: क्यों स्पेकुलेशन?
0: मैं कानूनी पहलू में फिलहाल जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन नंबर जुड़ चुका है कि नहीं जुड़ चुका है?
6: मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहती हूँ वेस्ट बंगाल को लेके, क्योंकि काफी चर्चा हुई है कि टीएमसी की परिस्थिति क्या। देखिए टीएमसी का जो सिंडिकेट राज था, जो ग्रोस भ्रष्टाचार था और जो लॉलेसनेस, वो नौबत आ गई कि जनता रास्ते पे उतर के उनको चोर चोर चोर बुला रही थी। और जहां 20 विधायक
0: नंबर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, 6 सांसदों के,
6: 8 सांसद बटे 28 में से, देखिए ये वस्तु स्थिति जो आप देख रहे हैं,
0: आपके नंबर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े?
6: आज लोग प्रेरित हैं अच्छे नेतृत्व से, एकनाथ जी शिंदे हो या नरेंद्र मोदी जी,
0: आनंद दुबे
6: का जो ट्रैक रिकॉर्ड,
0: अच्छे नेतृत्व से प्रेरित होकर कल मीटिंग बुलाई थी मातोश्री पर।
6: ऑपरेशन प्रगति है, ऑपरेशन प्रगति
0: मतलब कुछ चल रहा है, ऑपरेशन तो चल रहा है, चलिए नाम जो भी आप दे दीजिए उसको, 5 लोग नहीं पहुंचे वहां पर मातोश्री पर बुलाने के बावजूद भी, एक वक्त था
6: हम काम कर रहे हैं,
0: ठीक है ऑपरेशन प्रगति, 5 लोग नहीं गए, कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहे, एक व्यक्ति तो कोई भजन करने चले गए थे, कुछ पता चला आपके एक सांसद है वो भजन प्रोग्राम में चले गए थे, दूसरे दिन आपके एक सांसद दिल्ली पहुंच जाते हैं और यहां पर शिवसेना के जो मंत्री है उनसे मीटिंग कर लेते हैं, ये चल क्या रहा है? मतलब अभी कॉन्फिडेंस है आपके लोग बचेंगे कि आप पकड़ के चल रहे हैं कि जो टीएमसी के साथ हुआ है उसके बाद पकड़ के चल रहे हैं कि हो ही जाएगा 6 वाला खेल?
7: साहिल भाई नमस्ते, अभी आप बात कर रहे थे स्किल की, तो स्किल तो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरी हुई है, पार्टी से पार्टी को लड़ाते रहो, विपक्ष की जड़ों को हिलाते रहो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते रहो। इतनी अच्छी सोच है बीजेपी।
0: अब यही करना पड़ेगा, गाना ही गाते रहना पड़ेगा। जब सब लोग छोड़ के चले जाएंगे अपने आनंद दुबे जी, उसके बाद सिर्फ गाना ही गाते रहना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा आपके पास।
7: सुनिए ना, सलमान खान का एक डायलॉग है कि हम पर एक एहसान करना कि हमारे सांसदों पर कोई एहसान मत करना। आप लोग इतने दरिया दिल बनते क्यों हैं? जब कोई टूटता है, चाहे टीएमसी टूटे, शिवसेना टूटे, राष्ट्रवादी टूटे, आप लोग कहते हैं स्वागत है, आइए हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें नहाइए, इत्र लगाइए और काम पे लग जाइए। ये जो 360 डिग्री के जहाज को घुमाने के चक्कर में पूरे विपक्ष को 400 डिग्री का बुखार करवाते हो ना शहजाद भाई, अब इसको बंद करो यार। अरे इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल कोई चुनाव नहीं है, 2029 में लड़ेंगे मुद्दों पर, लेकिन ऑपरेशन ऐसे ऐसे डॉक्टर लाते हो, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजेक्शन लाते हो,
0: अब बहुमत से नहीं चलेगा। अब मिशन 67% चल रहा है, मिशन 67% चल रहा है, मिशन 67% चल रहा है शहजाद पूनावाला।
7: अरे तो कर दो, एक दिन इसके सारे डॉक्टरों को बुलाओ, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ और इंजेक्शन लगा लगा के कर दो काम तमाम।
3: बोल सकता हूँ साहिल जी,
7: बहुत भयंकर हो गया इसका अंजाम।
3: साहिल जी बोल सकता हूँ,
0: ठीक है शहजाद
3: गाने का जवाब गाने से ही होना चाहिए।
7: मेरे सखे बोलिए,
3: गाने का जवाब गाने से होना चाहिए। तो मैं लिख कर लाया हूँ, दिल्ली 6 का मासूम जोशी द्वारा लिखित गाना है, दरारे दरारे हैं माथे पर मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दे मौला। तो मरम्मत अलायंस की कर दे मौला। ये मौला क्या करेगा अगर सावरकर पे आप एक विचार नहीं रखते, ये मौला क्या करेगा अगर आप राम मंदिर पे एक विचार नहीं रखते। मौला भी इन दरारों को नहीं भर सकता। मैं तो साहिल जी बोलता हूँ कि इंडिया अलायंस को ना फेविकॉल, ना अंबुजा सीमेंट, ना लक्ष्मी सीमेंट, ना जेके सीमेंट कोई नहीं बचा सकता। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, आपने हमारी स्किल की इतनी प्रशंसा की साहिल, हमारी स्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्किल किसकी है। आपने बोला अजीत दादा, एकनाथ जी और ये सब लोग हमारे साथ बैठ जाते हैं, ये इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। ये देख रहे हो आप तस्वीर, ये ममता एंड नहीं जमता, ऐसा ही था शरद पवार जी के यहाँ, वहां पे सुप्रिया से नहीं जमता। फिर वैसा ही था अगर आप देखेंगे आरजेडी में कि तेजस्वी से नहीं जमता। फिर वैसा ही था शिवसेना में आदित्य से नहीं जमता। ये ममता के साथ जो नहीं जमता होता है, इसकी वजह से परिवार से पार्टी अलग होती है। इसको मैं कहता हूं कि जब पार्टी में सनराइज करवाते ना सनराइज, तो पार्टी का सनसेट होता है। उसमें आप हमको बोलते हैं अच्छा नैतिकता का पाठ चरणजीत पढ़ा रहे, ऐसा नैतिकता।
0: लेकिन ये जमता से क्षमता तक पहुंचने की जो तैयारी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि शिवसेना में टूट की अफवाह पर संजय राउत का बयान आ चुका है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च कर रहे हैं। अब ये कौन सा भेड़िया लॉन्च, देखिए उन क्या बोल रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हम भी ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च कर रहे हैं। ऑपरेशन भेड़िया हम लॉन्च कर रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं। अब वो क्या ऑपरेशन करेंगे, हमारा बाघ अभी जिंदा है, संजय राउत यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही बात 2022 के पहले भी संजय राउत बार बार ये कहते आ रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में आशुतोष क्या आपको लगता है कि अब विपक्षी दलों के पास कोई और चारा है, क्योंकि 2/3 बहुमत तो वो पहुंच जाएंगे, नंबर्स अब कोई मायने नहीं रखता है आज की स्थिति में।
7: साहिल जी मेरी बात,
0: हाँ बोलिए बोलिए, चलिए आपकी बात पूरी करिए, आपकी बात पूरी करिए।
3: वैसे भी एनडीए के दो ही
0: प्रतिनिधि, आज आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी शहजाद, इसीलिए
3: बाकी नहीं, मेरी आवाज आपके फोन लाइन से पैच्ड है। ये एक अलग बात है कि आप मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते। अब छोड़ दीजिए इस बात को, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। साहिल जी देखिए ऐसा है कि प्लीज साहिल जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आनंद जी प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। साहिल जी आपने बोला नैतिकता की यहाँ पे बात, चरणजीत सापराली
7: सेकंड चाहिए यार सरकार,
3: साहिल जी प्लीज
7: का गला घोट दोगे।
3: साहिल जी कृपया करके मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। साहिल जी
0: आनंद दुबे जी उनको बात खत्म करने दीजिए, बोलिए बोलिए चलिए।
3: साहिल जी ऐसा है, साहिल जी ऐसा है, नैतिकता का पाठ हमको वो पढ़ा रहे हैं जो 4 तारीख को 2 बजे तक ब्रदर स्टालिन बोल के 5 बजे ब्रदर जोसेफ विजय करने लगे। नैतिकता का पाठ हमको वो पढ़ा रहे हैं जो AIDMK के एमएलए को आज की तारीख में ओपनली पोच कर रहे तमिलनाडु में। साहिल जी हमने तो क्लियर कट स्टैंड लिया, टीएमसी हो या कोई भी सांसद हो, हमने बोला हमारा दरवाजा बंद है, पर यहाँ पर ओपनली पोचिंग हो रही है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी उनका
0: ये, ये तो शहजाद ये तो लड़ाई चलती रहेगी। देखिए ये तो लड़ाई चलती रहेगी, कोई ब्रदर स्टालिन के जगह पे ब्रदर विजय कह रहा है तो यहाँ पर सिस्टर ममता के जगह पे सिस्टर काकोली भी आ गई है, तो वो तो अलग बहस चलती रहेगी। मुझे आपसे पूछना है कि कितनी टेम्पलेट इस्तेमाल होगी। देखिए महाराष्ट्र की टेम्पलेट अलग थी, महाराष्ट्र में सीधा पार्टी ही अपने साथ में थी, यहां पर एक एनसीपीआई नाम की कोई पार्टी है उसमें मर्ज कराया जा रहा है। अब ये और भी कोई टेम्पलेट्स बाकी है क्या? ये भी बड़ा दिलचस्प है, मतलब हर बार हम लोग नए तरीके से राजनीति को देख रहे हैं, हर बार हमें कानूनी पहलुओं के नए सिरे से जांच करनी पड़ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शहजाद।
2: साहिल जी तीनों जगह पे, चाहे आप शिवसेना की बात करो, चाहे आप एनसीपी की बात करो, या चाहे आप अभी ये जो टीएमसी की बात करो, तीनों जगह एक ही टेम्पलेट है कि परिवारवाद को अगर आप पार्टी पर हावी करोगे तो असली पार्टी जो है नकली परिवारवाद से अलग होती है। आज चाइना एनसी इज नॉट शिवसेना की पार्ट, शी इज द ओरिजिनल शिवसेना। आज अजीत पवार इज ओरिजिनल एनसीपी, एंड आज टीएमसी के जो लोग भागी हुए हैं वो पार्टी नहीं है, वो असली टीएमसी है।
0: आनंद दुबे जल्दी से जवाब, ठीक है आनंद दुबे।
7: यही परिवारवाद जब इनको सहायता करती है तो ये गाना गाते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक, और जैसे ही काम खत्म होता है ये गाते हैं तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले पार्टी को तोड़ जाया करो। ये भारतीय जनता पार्टी
0: आनंद दुबे मैं सचमुच में आपको कह रहा हूँ
7: बंद कर
0: अगर ऐसे ही सांसद टूटते रहे ना तो सिर्फ गाना ही गाते रहना पड़ेगा। आप जो हर बार गाना लेकर आ रहे हैं मैं सचमुच में आपको कह रहा हूँ ऐसे ही सांसद विधायक टूटते रहे ना,
7: गुनगुनाता हूँ मैं, अपने मन की बात जनता तक पहुंचाता हूँ मैं।
0: आशुतोष क्या आपको अभी भी मन में कहीं ना कहीं आशंका है कि ये 67% ऑपरेशन नहीं हो पाएगा? मेरे ख्याल से तो हो जाएगा।
6: देखिए
8: नहीं देखिए जिस मैंने कहा ना कि जिस गति से अभी आप देखिए बड़ा अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 MLA हैं, राज्यसभा के 7 सांसद हैं, 2 MLA राज्यसभा के 7 सांसद, और एक पार्टी त्रिपुरा की जिसने पिछले बार सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, 2 विधानसभा सीट पर, उसके पास 20 सांसद है। मतलब ये तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये बिल्कुल सरियल है एकदम अपने आप में।
0: हावड़ा में रजिस्टर्ड है पार्टी, हावड़ा में रजिस्टर्ड है। शहजाद आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास सिर्फ। हाँ जी
2: साहिल जी, कांग्रेस के तमिलनाडु में कितने विधायक? 5, और एक राज्यसभा मिल गई और सरकार में हिस्सेदारी भी मिल गई। आशुतोष जी ये इंडिया अलायंस का चश्मा उतारो भाई, ये इंडिया अलायंस का जो काला चश्मा पहना है ना, फिर काला चश्मा।
0: ठीक है, आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल अब यही रहता है कि जो 67% ऑपरेशन 67% क्या संसद के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल्स जो रिजेक्ट किए गए उसका सबसे बड़ा कारण था कि 2/3 बहुमत सरकार के पास संसद के भीतर नहीं था। अब क्या उस तरफ जाने की कोशिश चल रही है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल अब लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
11: तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डेंगू एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा होने के साथ साथ तेजी से फैलने के लिए भी जानी जाती है। आमतौर पर इसे बारिश के मौसम से जोड़कर देखा जाता है। बारिशों में जहां बरसती बूंदे राहत लेकर आती है, मच्छरों से लेकिन उनकी बढ़ती तादाद डेंगू के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि डेंगू अब सिर्फ एक मौसम या बरसाती मौसम से जुड़ा खतरा नहीं है, बल्कि अब यह सिलसिला पूरे साल जोखिम बनकर हमारे ऊपर मंडराने लगा है। आज पूरे भारत के लगभग हर क्षेत्र में डेंगू अपने पांव पसार रहा है। घरों में, गलियों में, हर कस्बे में, हर शहर में डेंगू की जो उसका विस्तार है वो हो रहा है। हमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को यहीं रोकना होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। और इसीलिए इस मुहिम की शुरुआत, क्योंकि डेंगू की सही समझ, इसके रोकथाम के उपाय और यही मकसद है ऑल आउट की इस मुहिम का, साथ लड़ेंगे डेंगू से इन एसोसिएशन विद आज तक। आज विश्व डेंगू दिवस है और इस पर हम इस बीमारी से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि इस बीमारी को भी कम कर सके और इससे होने वाली मौतें रोक सके। आखिर डेंगू फैलता कैसे है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, मरीज को अस्पताल ले जाना कब जरूरी हो जाता है, इसके असर को भी समझेंगे, डेंगू के बारे में क्या मिथक फैला दिए जाते हैं और सबसे अहम, क्या हम अपने घर अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर डेंगू को रोक सकते हैं, इन तमाम सवालों पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है जिसमें कई शख्सियतें हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर तनु जैन, ये हेड है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल की। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, हेड है डिविजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर संजीव बगई, हमारे साथ चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, पद्मश्री अवार्डी जुड़ रहे हैं। संजय सरीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कॉन्टिनेंटल लीड एशिया एंड साउथ एशिया डायरेक्टर हैं डीएनडीआई के। और खास मेहमान रतनजीत दास जी हमारे साथ हैं, तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, जिनका एक प्रोडक्ट हर घर में मौजूद रहता है, ऑल आउट को वो हेड करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ संजीव बगई जी शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, कि अभी तक हम ये मानते थे कि भाई कुछ महीने आ रहे हैं, है ना, तो उन दिनों सिर्फ हमको बचना है किसी तरह डेंगू से। लेकिन डेंगू के मच्छर ना पनपे ना फैले, क्या क्या प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, ये क्या वाकई एक जानलेवा बीमारी है जिससे हम लोग को अभी से सतर्क होना चाहिए?
12: जो डेंगू अब हम चर्चा कर रहे हैं ये खाली मॉनसून में सीमित नहीं है। जो डेंगू की जो इन्फेक्शन है 12 महीने देखी जाती है, पर मॉनसून में ज्यादा इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, बारिशों के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण। जो इंडिविजुअली हमें करना चाहिए, अपना घर साफ रखना चाहिए, फ्लावर पॉट्स वाटर कूलर्स में पानी नहीं स्टैग्नेट होना चाहिए। जो लोकल आपके घर के आसपास कोई अगर वाटर स्टैग्नेशन है वो प्रिवेंट करें। जो फीवर है उसको ठीक तरह क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी टेस्ट कराना फॉल्स नेगेटिव आता है, अगर आप डिले कर दे तो फॉल्स नेगेटिव आता है। तो जो आपका विंडो पीरियड है ब्लड टेस्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। हर पेशेंट को केयरफुली एग्जामिन करें, स्पेशली स्किन, क्योंकि उसमें लक्षण देखे जाते हैं। डेंगू जानलेवा हो सकता है, स्पेशली बच्चों में, एल्डरली में और जिनमें कोमॉर्बिड हो। अब जो देखा जा रहा है, क्योंकि डेंगू की रिपीट अटैक्स हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ेगा मैं आई विल बी हैप्पी टू शेयर, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, यानी हर सब्सिक्वेंट अटैक डेंगू का। सो आपको चार अटैक पोटेंशियली लग सकते हैं। एक बारी डेंगू हुआ उसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हो, हर सब्सिक्वेंट अटैक मोर सिवियर हो सकता है।
11: डॉक्टर तनु जैन, मुझे पता नहीं उनकी बातों से हिम्मत कितनी बढ़ी और कितना डर और लगा है, बट अब इतने तरह तरह के बुखार, भाई अब वायरल बुखार एक चल पड़ा है जो 6 दिन 8 दिन तक चल रहा है, हाई फीवर, मतलब तरह तरह के वायरल फीवर्स होते हैं जो हम सुनते हैं बहुत सारे। अब कुछ घर में कहते हैं कि भाई 2-3 दिन जुकाम लग गया है आपको, 2-3 दिन का बुखार है फिर ठीक हो जाएंगे, बट क्या डिफ्रेंशिएटर क्या है जब कोई सतर्क हो जाए कि भाई नहीं, दिस इज सीरियस, आपको जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास?
13: ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बुखार तो होता ही है इस सीजन में, जैसा आपने कहा कि बरसात का सीजन आता है तो वायरल इन्फेक्शंस, खांसी जुकाम भी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, और भी कई सारी जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं वो भी बुखार के साथ। तो जैसा फीवर जो होता है वो एक सिंड्रोम है, मतलब इट इज़ नॉट क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपको है क्या। तो अगर नॉर्मल बुखार है, खांसी जुकाम के साथ है, तो आप 1 या 2 दिन उसको आप वेट करके देख सकते हैं, खाली पैरासिटामोल लें। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाली है कि कोई भी और दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि डेंगू में ये स्पेशली खतरनाक हो सकता है। 3 या 4 दिन के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है, और जैसे डेंगू का जो लिटरल मीनिंग है वो ब्रेक बोन फीवर है, यानी बहुत तेज बॉडी एक होता है, दर्द होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, और ये बहुत सिवियर पेन होता है और काफ़ी रैशेज भी आ सकते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो देखना भी जरूरी है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको डेंगू हो सकता है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट कम करें, लेकिन पैनिक ना क्रिएट करें। आप 1st, 2nd और 3rd डे वेट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है या 5 दिन बाद आपका बुखार उतर गया है फिर भी आप ठीक नहीं फील कर रहे, आपको लग रहा है आपको ठीक नहीं लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं या रैशेज नजर आ रहे हैं, ये डेंजर साइंस होते हैं, इस वक्त आपका जाना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि प्लेटलेट्स के लिए कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट तो 10,000 के नीचे जाना शुरू हो या 10,000 के आसपास आता है तभी एक टेंशन की बात होती है। भारत सरकार के द्वारा अभी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं डेंगू मैनेजमेंट की, चिकनगुनिया की, मलेरिया की, ये सारी अभी दोबारा से रिवाइज की गई हैं और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है और केस फेटालिटी रेट बहुत कम हो गया है।
14: डॉक्टर निवेदिता, को मॉर्बिडिटीज की बात करते हैं कि भाई आपको पहले से अन्य बीमारियां कुछ हैं या आजकल डायबिटीज तो वैसे ही एक एपिडेमिक की तरह देश में है, ब्लड प्रेशर से कई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इसमें क्या खास ध्यान रखने की जरूरत है?
15: पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें डेंगू सीवियर क्यों हो सकता है। सो जैसा कि पहले बताया गया कि डेंगू के जितने भी इन्फेक्शन होंगे, चार अलग सीरोटाइप होते हैं डेंगू की और आप अपनी लाइफ में चार बार इन्फेक्ट हो सकते हैं, और ये जो इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज होती हैं ये एक दूसरे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर आप डेंगू वन से इन्फेक्ट हुए तो आप टू के लिए फिर भी ससेप्टेबल हैं, आप टू से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बुजुर्गों में क्या होता है कि ऑलरेडी कई सारे डेंगू इन्फेक्शन हो जाते हैं, और डेंगू जितनी बार होता है, सेकेंडरी टर्शरी डेंगू इन्फेक्शन जब होते हैं तो वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो बनने की स्टेज में होता है, वो वीक इम्यून सिस्टम होता है, इसलिए बच्चों में डेंगू इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो वो ठीक से अपने सिम्टम्स बता भी नहीं पाते हैं, और इसलिए ये कई बार अनदेखा हो जाता है। तो इसमें एक तो इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं बना है, प्लस वो बता भी नहीं पा रहे हैं, तो दिस कैन लीड टू सीवियर इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन। और इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो हॉलमार्क साइंस डॉक्टर तनु ने बताए कि हमें जो है जल्दी देखना है कि वॉमिटिंग ना हो, पेट में दर्द ना हो, बच्चा अननेसेसरी रो ना रहा हो, ये सारे सिम्टम्स, और यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लूइड लीकेज और शॉक हो रहा है सीवियर डेंगू में तो यूरिन आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा।
14: अब आपके पास मैं संजय सरीन जी आना चाहती हूँ, आपकी जो संस्था जिससे आप जुड़े हुए हैं DNDI जैसी संस्थाएं, ये क्या कर रही हैं डेंगू के नियंत्रण के लिए?
16: जैसा कि अभी कहा गया, डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ज्यादातर केसेस में पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर के साथ मैनेज किया जाता है, और यही कारण है कि डेंगू के लिए और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लाना बहुत जरूरी है। सो DNDI या ड्रग्स फॉर निगलेक्टेड डिजीजेज इनिशिएटिव एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फोकस है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, और हम एक डेंगू अलायंस के तहत डेंगू के लिए नई दवाइयाँ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो डेंगू अलायंस के तहत इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील, जहाँ पे डेंगू के काफ़ी केसेस पाए जाते हैं, ये लोग सभी मिलकर रिसर्च कर रहे हैं डेंगू की नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनाने के लिए।
14: अब आते हैं रतन जी दास जी के पास, आप CEO हैं, और इसीलिए आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका ये पूरी मुहिम चलाने के पीछे क्या वजह है और आप इसको कैसे देश तक पहुंचाना चाहते हैं?
17: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डेंगू मच्छरों से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो बढ़ती जा रही है दुनिया में, और इसका असर हम अपने देश में भी बहुत देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके बारे में लोगों को कुछ खास पता नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि ये खतरनाक बीमारी एक मच्छर से कैसे फैलता है और उसके लिए उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है और उससे कैसे वो बच सकते हैं। ऑल आउट ने साथ लड़ेंगे डेंगू से एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम किस तरीके से अवेयरनेस बिल्ड करें, हम लोगों को बताएं कि अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवारों को कैसे बचाएं, और ऐसे क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें मिलकर इस पर बहुत काम करना है।
14: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब कई लोग ये भी मानते हैं कि शहरों के इलाके हैं, साफ हैं बिल्कुल, तो वहां नहीं हो सकता डेंगू का मच्छर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, पानी जमा होगा उसमें डेंगू के मच्छर होंगे। मतलब इस शो का मकसद, इस पूरे एक तरह से आंदोलन का मकसद यही है, भाई डेंगू इतने सालों से हो रहा है उसकी वजह से मौतें ना हो, तो फिर उसमें जिम्मेदारी सबकी होती है कि वो डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोके।
15: ये आपने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, एंड इनफैक्ट ये जो डेंगू की बीमारी है वो सरकार या डॉक्टर से ज्यादा आप सबके हाथ में है इसको कंट्रोल करना। ये एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिटी अगर अपना बिहेवियर चेंज कर ले तो ये बहुत कायदे से कंट्रोल हो सकती है। इंडिया के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको पॉलिथिन बैग्स हर जगह पड़े हुए मिलेंगे। एंड वो सारे के सारे ब्रीडिंग स्पॉट्स होते हैं, जैसे ही बारिश आती है या पानी कलेक्ट होता है उसमें ब्रीडिंग होती है, उसमें मच्छर पनपता है। एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है सिंगापुर का। सिंगापुर में बहुत सारे इम्पोर्टेड केसेस डेंगी के आते हैं, लेकिन उनके वेक्टर कंट्रोल मेजर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और वहाँ कम्युनिटी इतनी सेंसिटाइज्ड है कि वो लोग कभी भी डेंगी को पनपने नहीं देते, वो उसी स्टेज पे उसको रोक देते हैं। हमें सबको मिलजुल कर साफ सफाई रखकर ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करना होगा, तभी डेंगी हमारे देश से कम होगा।
14: डॉक्टर बागई, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बॉडी पर क्या होते हैं?
12: ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने सब देखा है, सब लोगों ने देखा है द इफेक्ट ऑफ कोविड एज लॉन्ग कोविड, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम और पोस्ट कोविड कंडीशन। 10-15% पूरे वर्ल्ड में लोगों को पोस्ट कोविड हो रहा है। एक एंटिटी अब कॉइन होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेंगी सिंड्रोम। 19% ऑफ डेंगी पेशेंट्स आफ्टर 300 डेज ऑफ इन्फेक्शन, ये कोलैबोरेटिव स्टडी है, 19%, दैट इज इवन हायर देन पोस्ट कोविड, कंटिन्यू टू हैव मल्टी ऑर्गन सिम्टम्स, जिसमें से कार्डियक, जिसमें से पैल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर चेंजेस, ऑटोनॉमिक फंक्शन चेंजेस, हार्ट रेट एबनॉर्मैलिटीज, किडनी का डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन, ब्रेन का डिसफंक्शन, इन चीज़ों के साथ ये लॉन्ग टर्म डैमेज या इफेक्ट रहता है। ये ऑल्सो ये देखा गया है कि क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पर भी इम्पैक्ट करता है। तो इसका लॉन्ग टर्म मल्टी ऑर्गन का डिजीज का इसका बहुत ज्यादा असर रहता है, इसलिए द बेस्ट वे टू मैनेज दिस इज टू प्रिवेंट इट।
14: मिस्टर दास, आप किसको किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्योंकि साल दर साल ये होता है और ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ये शो कर रहे हैं ताकि लोग भी समझे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, बट थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है कि भाई हर साल यही होता है।
17: जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये अब एक घर या एक परिवार का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है पूरे समाज का। जब तक हम एक साथ मिलके सारे स्टेक होल्डर साथ में आके नहीं काम करेंगे, इसका हल हम नहीं निकाल पाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो ये साथ लड़ेंगे डेंगू से का अभियान है, इससे हमारी ये कोशिश है कि हम किस तरीके से बाकी स्टेक होल्डर से मिल के काम करें। हमारा एक मॉडल है जो हम काम कर रहे हैं, वाराणसी में एक छोटा सा गांव है, पंडितपुर नाम है उसका, वहाँ पे हम गांव वालों के साथ अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिखाएं कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए। और हमें बहुत सपोर्ट मिला है गांव वालों से, लोकल बॉडीज से, सपोर्ट से। हम इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और बाकी और भी तरीके हैं, जैसे हमारे कंटेंट है, हमारे डिजिटल कंटेंट के द्वारा माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं। हम मीडिया पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हम आपके साथ मिलके ये काम करना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम घर तक पहुंचना चाहते हैं, हर घर में ये अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हैं कि कैसे वो ये बीमारी क्या है और कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं।
14: अच्छा है, और इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ रिसर्च के से भी लोग जुड़े हुए हैं और डॉक्टर्स भी हैं और मीडिया भी चाह रहा है कि ये घर तक, हर घर तक जानकारी पहुंचे। कम से कम हम इतना तो कर सकें कि डेंगू की वजह से मौतें ना हो, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। डॉक्टर जैन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब इस डेंगू वायरस के बारे में जरा समझना चाहते हैं कि इस वायरस के कितने सीरोटाइप हैं और क्या उसके आधार पर डिपेंड करता है कि उस आपको जो अटैक हुआ या जिसको भी हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितना गंभीर होगा।
13: वायरस एक वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो वेक्टर जिसको हम टाइगर मस्किटो कहते हैं, एडीज एजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस होता है। इसका बहुत ही टिपिकल बिहेवियर है जो बाकी लोगों ने भी बताया, बट बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कहीं भी ब्रीड कर सकता है और एक हफ्ते तक अगर क्लीन वाटर कहीं भी स्टैग्नेट कर गया तो वहां पे ब्रीडिंग हो सकती है। ये इंडोर भी हो सकती है और पेरिडोमेस्टिक में आउटडोर भी हो सकती है। इसका जो एग होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो एक साल तक ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। तो जो हम कहते हैं स्क्रब करना है, तो अगर आपने ड्राई कर दिया और अच्छे से स्क्रब क्लीन नहीं किया और उसमें जब आप पानी डालेंगे तो 1 वीक के अंदर वो फिर से
15: एग जो है लार्वा में बन के एडल्ट बनने का पोटेंशियल रखता है विद इन 7 to 10 days. सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हैं, जो इंटरसेक्टोरल अप्रोच की बात हो रही है, तो ये किसी एक जने का काम नहीं है, ये सबको मिलजुल के करना है. उसमें सबसे बड़ा रोल कम्युनिटी प्ले करता है. तो एक ड्राइंग डे, बहुत से स्टेट्स हैं हमारे जो एक वन डे को ड्राइंग डे मनाते हैं, मतलब हर हफ्ते में एक बार आपको अपने घर के चारों तरफ चेक करना है कि कोई ब्रीडिंग प्लेसेस तो नहीं है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी. और चार तरह के वायरस, जैसे कि अंजना जी ने मुझे पूछा है, ये डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 होता है. डेन 2 बहुत विरुलेंट होता है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रेन से पहले हो चुका है तो उसके बाद किसी भी सब्सिक्वेंट स्ट्रेन से जब आपको दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है.
14: डॉक्टर, आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें. इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी कि उसके जो एग्स हैं वो सर्वाइव करते हैं ड्राई कंडीशंस में भी अप टू अ ईयर, यू सेड एक साल तक. तो भाई हमने तो पानी पलटा और उसको समझ लिया कि अब तो हमने मच्छर भगा दिया है, फिर उसमें पानी डल गया, बाद में वो फिर से हो गया. तो ये तो मतलब ये एक नया एस्पेक्ट है जो हम सबको समझना पड़ेगा.
15: यस, तो एडिंग ऑन टू जो डॉक्टर तनु ने कहा, ICMR ने एक स्टडी करी थी, दिल्ली में ही करी थी, जिसमें लोकल RWS के साथ एंगेज करके जो नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है, ये जो पोस्ट मानसून दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के जो मंथ्स होते हैं, वो हर घर में सेलेक्टेड RWS के थ्रू हम लोगों ने हर घर में जाके हर एक ब्रीडिंग साइट चेक करी थी, पानी की टंकियां चेक करी थी, सारे गमले और जो भी पॉसिबल ब्रीडिंग साइट्स हो सकती थी. और हमें नॉन जैसे कहते हैं ना आउटब्रेक सीजन में काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्रीडिंग मिली थी, और हम लोगों ने सारे पॉट, सारे टायर्स, टंकियां नॉन ब्रीडिंग दिसंबर जनवरी के मंथ्स में क्लीन करवाई थी. और वैसे ही जैसे ये रेकमेंड कर रही हैं कि प्रॉपर स्क्रब करके क्लीन करा के, एंड देन जब नेक्स्ट डेंगी सीजन आया एंड वी कंपेयर्ड कि लास्ट सीजन के कंपैरिजन में इस सीजन में कितने केसेस हैं, तो देयर वाज अ ड्रास्टिक रिडक्शन.
14: और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2024 में दुनिया ने डेंगू का अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप देखा है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप तैयार होकर इन आने वाले महीनों में सावधानी के साथ बढ़े. एक साल में दुनिया भर में 1,44,00,000 से अधिक मामले, 11,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई. आप सोचिए कि डेंगू की वजह से इतने दशकों के बाद भी अगर 11,000 लोग मर रहे हैं तो कुछ तो हमें करना होगा. साल 2025 में ये बीमारी दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच गई. सवाल यह है कि क्या डेंगू अब एक मौसमी बीमारी ना रहकर वैश्विक स्वास्थ्य चैलेंज बन गया है. अब हम जैसे ही इस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके साथ शुरू करना चाहती हूं, और दो या तीन चीजें जो आप सोचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेंगू आया तो यहां पर दिमाग सबसे ज्यादा जाना चाहिए, आपसे शुरू करते हैं.
16: जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है जिसके अंदर प्रिवेंशन भी रहे, डायग्नोस्टिक्स भी रहे, और रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर भी सरकार को एफर्ट रखनी चाहिए ताकि भीषण केसेस में या गंभीर केसेस के अंदर हम पेशेंट्स को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मुहैया करा सके.
12: ये हमने बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि अगर पहला फीवर कम हो वो पूरी तरह बीमारी नहीं गई है, इट इज कैन कम बैक अगेन, एंड उस टाइम प्लेटलेट्स गिरते हैं. प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा आप फिक्र मत करिए. बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्लेटलेट्स फॉलिंग इज टेक लॉट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आपको हाइड्रेट रखना है.
14: डॉक्टर तनु जैन, और भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिसमें बच्चे अगर शाम में खेलने वेले जा रहे हैं तो आप कैसे कवर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस मच्छर को कैसे पहचान सकते हैं, ये कब निकलता है, वो आप जल्दी से बता दें.
15: बच्चों का खास करके है, या बच्चे हों या बड़े हों, पर्सनल प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये डे बाइटर है और दिन के टाइम पे काटता है, इंडोर रेस्टिंग है. तो यानी दिन में घर के अंदर है या स्कूल्स के अंदर है, जब बच्चे होते हैं स्कर्ट्स पहने हैं या शॉर्ट्स पहने हैं, तो वो टेबल के नीचे डार्क ह्यूमिड प्लेसेस वो प्रेफर करता है. मॉर्निंग आवर्स से लेके इवनिंग आवर्स तक वो काट सकता है. और एक मच्छर 100 to 300 meters ही इसकी फ्लाइट रेंज है, पर एक मच्छर 10 से 15 लोगों के काटने के बाद अपना ब्लड मील खत्म करता है. दैट मीन्स इट कैन इन्फेक्ट, वन मस्किटो कैन इन्फेक्ट अप टू 10 to 15. दीज आर द रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल.
14: डॉक्टर निवेदिता गुप्ता,
15: तो हमें ये साइंस जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सिवियर बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, लिथार्जी हो रही है और उसके बाद वॉमिटिंग्स हो रही हैं, ये सब साइंस हैं कि बॉडी में फ्लूइड लीकेज शुरू हो गया है. तो ये साइंस जैसे ही डेवलप होते हैं हमें तुरंत मेडिकल केयर सीक करनी चाहिए, चाहे हमारे प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल रेंज में भी हो. तो
14: साथ लड़ेंगे डेंगू से, जान बचाएंगे डेंगू से. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. आप लोगों का भी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.
18: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक भी ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा साफ पानी में, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें। और दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का नियमित इस्तेमाल भी जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से। एक परत कर
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: यूरोपीय देश स्लोवाकिया ने भी किया भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया धन्यवाद। रक्षा निवेश समेत कई समझौतों पर लगी मुहर। अमेरिका ईरान जंग खत्म करने पर राजी होने के बाद दुनिया ने ली राहत की सांस। शुक्रवार को होगी दस्तखत। हॉर्मुज फिर खुलेगा, पीएम मोदी ने स्वागत किया। युवाओं के हक में राहुल गांधी की हुंकार। 17 जून को कोटा से अभियान शुरू करने से पहले बोले, हर पेपर लीक लाखों सपनों पर वार, या आपके भविष्य की लड़ाई मैं आपके साथ। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्य कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच। अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और पटना में जेल से रिहा होते ही ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद का बड़ा दावा। कहा, फैजल खान ने कराई मेरे भाई की हत्या। सेंटर के बाहर फैजल खान के विरोध में नारेबाजी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: अब दरी नहीं बिछाई जाएगी।
3: अगर उत्तर प्रदेश में आकर के कोई समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो कौन है, जिसको हम भाजपा माने या भाजपा की बी टीम माने।
4: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
5: 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है।
6: समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है, और देखिए मजाक मजाक में कितना सीरियस हो गया मामला। बताओ, बीजेपी कॉकरोच से डर गई।
7: ग्रेटर नोएडा में कहा था, हम आपको आपका हक

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। 2027 में होने जा रही उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में एक ओर योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। वैसे तो अखिलेश यादव ने योगी के खिलाफ पीडीए के फॉर्मूले को ही आजमाने का साफ संकेत दिया है, वो अब भी पीडीए की ही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, कहीं पीडीए के अखिलेश के समीकरण में सेंध तो नहीं लग जाएगी? असदुद्दीन ओवैसी ने कल बहराइच से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। बड़ी मुस्लिम आबादी वाली उस मटेरा सीट पर अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है जिस पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी। मतलब ऐसी सीट पर पहला उम्मीदवार नहीं उतारा जो पिछली बार बीजेपी ने जीती हो या एनडीए के किसी उम्मीदवार ने जीती हो, सीधा ऐसी सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है, मटेरा सीट पर, जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती। हालांकि ओवैसी मुसलमानों की हिस्सेदारी के नाम पर बीजेपी को हराने वाले किसी भी दल से गठबंधन करने को भी तैयार बताए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस की 170 सीटों की डिमांड सामने आ गई। सवाल है कि सियासी समीकरणों के पेच में अखिलेश किस तरह योगी का मुकाबला करेंगे? क्या अखिलेश अकेले होंगे या गठबंधन के दम से बीजेपी से लड़ेंगे? यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश, यह पिक्चर अभी बाकी है। अल्लाह बोल में आ जाइए चर्चा, पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की जंग में पहला दांव असदुद्दीन ओवैसी ने चल दिया है। ओवैसी ने बहराइच की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली मटेरा सीट पर शौकत अली को AIMIM उम्मीदवार घोषित तो किया ही, मुस्लिम वोटों की दावेदारी का दावा करने वाले विपक्षी दलों से ये साफ कह दिया कि या तो हमें साथ लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहो।
1: अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी।
0: ओवैसी अभी बीजेपी पर जितने हमलावर हैं, उतना ही आक्रामक अखिलेश यादव पर भी है। साथ ही जब ओवैसी सीधे सीधे मुस्लिम वोटों पर दावा कर रहे हैं तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ओवैसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो इसलिए समाजवादी पार्टी अभी किसी संभावना को नकार भी नहीं रही।
2: ओवैसी ने कहा है कि भाजपा मुश्किल है, हम भाजपा को हराने वाले दल का समर्थन करेंगे।
3: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
0: इस बीच समाजवादी पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी सीटों को लेकर अपनी मांगे अभी से रखने लगी है। सांसद इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए 170 सीटों की बात कर रहे हैं।
4: 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है। बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ वीक में नहीं चाहिए किसी से भी। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती।
0: यूपी चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए तालमेल का मसला तो हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि इस सबसे इतर उन्हें सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से लड़नी है। लिहाजा अखिलेश न सिर्फ 9 साल के योगी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि उनकी छवि पर प्रहार भी कर रहे हैं।
5: 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई।
0: चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जोर अपनी सख्त प्रशासक की छवि और यूपी को विकास के मैप पर ले आने की कोशिशों पर रह सकता है। सोमवार से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुई। इस मौके पर योगी एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से मिले। उधर 2 दिनों पहले उन्होंने अखिलेश की बेटी पर सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी थी।
6: बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
0: ये सारे बयान जाहिर करते हैं कि 2027

0: कि यूपी चुनाव में बड़े नेता कैंपेन को किधर मोड़ सकते हैं। योगी अखिलेश, कांग्रेस और ओवैसी के संकेतों से साफ है कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा।
1: सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, बोलने से नहीं डरने वाले।
0: प्रेम शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक सीधे सवाल के साथ मैं शुरुआत आज आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि अगर विपक्ष को लड़ना है बीजेपी से तो एकजुटता भी एक जरूरी चीज होती है। ऐसे में सीधा कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी को ओवैसी साहब कबूल हैं या नहीं है?
2: देखिए, हम लोग तो प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर में राम राजलानिक स्थापना करेंगे और जो जिताऊ सीट होगी वो मेरा फॉर्मूला होगा। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो नेता चुनाव के समय क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, किनके कहने पे आते हैं, वो सभी जानते हैं। और उनके जो ईंधन जो मिलता है उनके जहाज़ों में, ये भी सभी जानते हैं। इसलिए उन नेताओं को जनता भी जानती है, इसलिए जनता भी उनको बहुत महत्व नहीं देती है। हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश और देश कैसे विकास के रास्ते पे जाए।
0: उनके विमान का ईंधन कौन दे रहा है?
2: सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कहाँ से मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसीलिए उनको हर प्रदेश में ऐसे लोगों को जनता नकार देती है, क्योंकि जब चुनाव के समय जब ऐसे लोग आते हैं, रैली करते हैं, मीटिंगें करना शुरू करते हैं, तो सब समझ जाते हैं कि इनका मकसद क्या है। क्योंकि जनता है ना, सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, कहाँ मिले हैं, किधर नहीं मिले हैं। ये विकास की राजनीति करेंगे कि नफरत की बात करेंगे, ये जोड़ने की बात करेंगे कि तोड़ने की बात करेंगे, किसी को फायदा पहुंचाने की बात करेंगे। इसलिए जनता है, सब जानती है, और वो भी देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता।
0: रामगोपाल जी कह रहे थे कि जो भी बीजेपी को हराएगा वो सब हमको कबूल है। वैसी साहब पर ही सवाल था, इसलिए हमको लगा कि कुछ दिल विल बदला है क्या।
2: देखिए, नहीं नहीं, वो मैंने कहा ना, जो बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी को जिताएगा नहीं। अच्छा। आप ठीक से सुनिए, जिताने वाले को नहीं। कुछ लोग बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं ना, ये भी तो आप जानते हैं ना,
0: शुक्ला जी
2: जानते हैं, सब पूरा देश जानता है कि कौन बीजेपी को जिताने के लिए लड़ता है।
0: शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप को जिताने के लिए लड़ते हैं, वो
3: बिहार में हमको जिता रहे थे, वो तेलंगाना में हमको जिता रहे थे। तेलंगाना में तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो रेवंत रेड्डी को अत्यंत प्रिय है, और रेवंत रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। और रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना में जो कंधे से कंधा मिला के पहले वो जो है हमारे कहने पे जिताते हराते, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्यों रहते हैं? 2004 से 2014 तक कांग्रेस की केंद्र की सरकार को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने समर्थन दे रखा था। आंध्र प्रदेश जब संयुक्त आंध्र प्रदेश की सरकार थी उसको एआईएमआईएम का समर्थन था। अभी इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र आते हैं, उनको वोट तो एमआईएम ने किया था। तो जो एमआईएम जो है कांग्रेस समेत सेकुलर दलों के समर्थन में मतदान करती है तो हमको जिताती हराती है। अरे हमको जनता जिताती हराती है जी, हम जनता के भरोसे है। और जनता का प्रचंड, अभी बंगाल में एमएम ने हमको जिताया, जनता ने जिताया बंगाल में, बिहार में जनता ने जिताया। आज 22 राज्यों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार। तो वो इसको
0: अखिलेश जी एक बार बोलने, उसके बाद से मैं आ रही हूं आपके पास। अखिलेश जी, ये बात में तो दम है जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, क्योंकि गाहे बगाहे रेवंत रेड्डी जी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बड़े भाई हैं उनके बीच में बड़ाई करते रहते हैं, तो कहते हैं फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है?
4: अनजाना देखे, जब चुनाव होगा ना तो मुद्दों पे चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। आज मुद्दा क्या है देश में? मुद्दा यही है कि बीजेपी न राम भक्त है, न राष्ट्रभक्त है, न गौ भक्त है। राम भक्त होते अयोध्या में हजारों करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच बिठाते, पारदर्शिता से न्यायालय के देखरेख में, सब जगह से अब सूचनाएं आ रही हैं, रिकवरी हो रही है, चढ़ावा हिंदू सनातनी राम भक्तों के चढ़ावे का पैसा और क्या क्या चीजें गायब हो गया है। खामोश है भाजपाई, ये कोई राम भक्त इस तरह से खामोश नहीं रह सकता। दूसरी बात, ये गौ भक्त भी नहीं है। सनातनी कह रहे हैं कि गौ हत्या पे बंद हो जाए, गौ को राष्ट्रमाता राज्य माता घोषित किया जाए, दूसरे धर्म वाले भी कह रहे हैं, लेकिन ये खामोश हैं। ये उसको मांस का एक्सपोर्ट कराने में लगे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं। मुद्दों पे चुना होगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हर तरह के क्राइम में नंबर वन आ चुका है उत्तर प्रदेश। महिलाओं के साथ नौजवानों का भविष्य उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बर्बाद कर रखी है बीजेपी ने। दर्जनों परीक्षाएं यूपी में लीक हुई। ये भूल रहे हैं कि जिस देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद होता है, उस देश का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, नौजवानों के साथ उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बताएंगे कि हमारे दुनिया में हम विश्व गुरु हैं, परीक्षा तक नहीं ठीक ठाक करा पा रहे हैं। देखिए अंजना जी, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, खतरे में इस प्रदेश और देश में नौजवान खतरे में है। अब रही आपकी बात राजनीतिक, 24 में बीजेपी हाफ थी, 27 में बीजेपी साफ हो जाएगी। और अभी आप जिसकी बात कर रहे थी, वैसे छोटे रिचार्ज हैदराबाद वाले भाई साहब की, हिंदुस्तान में हमारे लोकतंत्र को रौंदा लूटा जा रहा है मोदी जी की बीजेपी के द्वारा, उस पर हमला क्यों नहीं करते हो वैसे साहब? यहां आके जो बीजेपी के ऊपर नकेल लगता है या बीजेपी को से जो लड़ रहा है उस पर हमला करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है बंगाल में? और जो जो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका हमारे देश के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, हमारे नाविकों को मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारी इकोनॉमी डुबो रहा है, उस पे ओबैसी साहब मोदी जी की निंदा क्यों नहीं करते?
0: ठीक है,
4: जो मोदी बीजेपी से लड़ता है उस पे ओबैसी साहब लड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें कुछ समझाने की जरूरत है क्या?
0: तो रेवंत रेड्डी उनको गरीबों का मसीहा क्यों बता रहे हैं अखिलेश जी?
4: कौन
0: आपके मुख्यमंत्री है ना रेवंत रेड्डी?
4: कौन बताया, किसने बताया, कब बताया, क्या बताया? हम जो बता रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये सत्य ना हो तो बताइए।
0: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ना है आपके?
4: अरे आप पता नहीं किस कौन बताया, किसने बताया, कब बताया, हमें क्या पता?
0: अनुराग जी,
4: आप लोगों के कहने पे हम कैसे मान लें? हम जो कह रहे हैं उस पे कुछ कमी हो तो बताइए। अभी बंगाल में
0: जवाब देंगे शुक्ला जी, उसका जवाब शुक्ला जी देंगे। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, जल्दी से एक बार ये बताइए, ये आप, हाँ अनुराग जी जरा ये बताइए, जरा ये, और जैसे ही वारिस पठान जुड़ते हैं हमें बताइएगा, उसके बाद मुझे सतीश जी के पास भी जाना है। एक बात बताइए अनुराग जी, क्या आपके जो सांसद है जावेद अली, वो क्या बोल रहे हैं? अभी आप लोग हमेशा कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, अब ये जावेद अली क्या कह रहे हैं? पहले सुना देते ना दर्शकों को, सुनाई सुनाई, फिर अनुराग जी हम लोग को समझाएंगे कि वो दरअसल क्या कह रहे हैं।
5: जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है।
0: आप ही के सांसद हैं अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि आप जहरीले हो गए हैं।
2: मैंने पूरा देखिए, मैंने पूरा सुना, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नफरत की राजनीति की जाती है, इसलिए नफरत की बात होने लगी है। थोड़ा शब्दों का फेर है, बस वो शब्द ऐसे हो गए तो उसको आपने पकड़ लिया। सिर्फ भारतीय जनता द्वारा, भारतीय पार्टी जो फैलाती नफरत की आग, जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से रमेश द्विवेदी की जो भाषा शैली थी, कौन सी भाषा शैली थी, या जिस तरह से आपने भाषा शैली देखी होगी जब हमारे 26 बहनों का सिंदूर जड़ा था, या राजा सिंह जो भाषा शैली के इस्तेमाल करते हैं वहां पे आंध्रा में, तो जो भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है आपस में नफरत की। और मैंने आपको बोला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी राम राज लाएगी 2027 में, उसका रीजन क्या है? हम छात्रों का सम्मान होगा वहां पे, वहां नीट का पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा, पर्चे जिस तरह से लीक होते हैं, धर्म का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, वहां पर नफरत की बात नहीं होगी, नफरत की कोई जगह नहीं होगी, और हर व्यक्ति का सम्मान होगा, जो पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा। यह हमारा लक्ष्य है, जो हम चाहते उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। इसलिए मैंने बोला कि 2027 में समाजवादी पार्टी राम राज की स्थापना करेगी, हर व्यक्ति, हर धर्म सुरक्षित होगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, चाहे कोई हो, चाहे शंकराचार्य जी हो या जिस तरह से हमारे प्रभु राम के, हमने तो कहा ना प्रभु राम के आदर्श शासन को अपनाने वाले लोग हैं, जिसे प्रभु राम के वहां पर आपने देखा वहां पर दान पात्र में जिस तरह की घटना, चोरी की घटना सामने आ रही है, इसकी आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। जब वहां पे नहीं सुनिए, उसकी आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई। किसने उठाई? जब यहां पे अत्याचार हो रहा था शंकराचार्य के ऊपर में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। जब बटकों को यहां पे चोटी पर सिखा का अपमान हुआ, तो समाज आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जब जमीन पे दिक्कतें हो रही थी, घोटाला हो रहा था 2 करोड़ की 18 करोड़, तब भी आवाज किसने उठाई थी? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श, बार बार मैं कह रहा हूं, आदर्श आचरण को अपनाती है, उनके नाम, वो मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी प्रभु के नाम पे।
0: तब तो आज आप अनुराग जी का कई बार भगवान राम का नाम ले लिए, आपके लिए निजी आस्था का विषय है, फिर भी अब टीवी पर आप लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है, ये भी राजनीति है जिसको सब देख रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, इसी चुनाव में जनता ये भी तो पूछेगी ना कि भाई एग्जाम ही नहीं करा सकते हो आप लोग, तो यही जनता पूछेगी ना, उन बच्चों के माता पिता पूछेंगे ना कि एग्जाम का है बार बार पेपर लीक होता है,
3: उसका जवाब भी देंगे, पेपर लीक पे कार्रवाई भी करते हैं। अशोक गहलोत तो पेपर लीक वालों को संरक्षण देते थे, और अखिलेश यादव की सरकार में तो TCS की परीक्षा में एक ही जात के लोग सारे से सारे पास होते थे। यादव समाज की मेधा बढ़ गई थी, TCS की परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रतिशत में यादव पास होते, तो पेपर लीक नहीं होता था जी, और पेपर सीधा जो है हल करके कॉपी उड़ती जो है सबमिट कर दी जाती। तो जो लोग बाबर की वल्दियत लगाते रहे, आज प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, यही बहुत परिवर्तन है। यही कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को होए। तो जब सत्ता में बैठे थे तब राम भक्तों पर गोलियां चलाकर मां सरयू के जल को लाल करने का कुकर्म करते थे, और सत्ता में जब थे तो 2016 में भाषण दिया करते थे, मुसलमानों आपके लिए हमने 16 हिंदुओं की अयोध्या में हत्या करवा दी, और क्या करते 4 सेवकों की, और तब जो है अफजल अंसारी आपराधिक माफिया का जो है कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, तब नोएडा के सीईओ के घर में जो है अफजल अंसारी घुस कर जो है उसका उसको उसके हाथों जो उसको प्लॉट पसंद आता है वो लिखवा लेता है, कहते नहीं अफजल अंसारी के साथ कार्रवाई नहीं करनी है, मुख्तार अंसारी की कब्र में जाकर जो है पाटिया पढ़ना है, रामलला के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाने हैं, और राम भक्तों पर गोलियां चलवानी है। आज इनको राम याद तो आ रहे हैं ना, यही बहुत अच्छी बात है। और रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री की कौन है, क्या है, कहाँ के है, ये पूछ रहे हैं कांग्रेस के कौन। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री इतना भी याद नहीं है क्या? इनकी स्मरण शक्ति जो है क्षीण हो गई है क्या?
0: उसका जवाब देंगे अखिलेश। अनुराग जी जल्दी से कमेंट, जल्दी से एक कमेंट, वो कह रहे हैं कि इसी बात से खुश हैं कि आपको भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है, राम राज्य आप लाना चाहते हैं, अयोध्या जाने से बचते हैं।
2: बिल्कुल, मैंने कहा ना अयोध्या, मैंने कहा ना प्रभु के सम्मान पे जब भी बात होती है तो समाजवादी खड़े होते हैं, इसलिए मैं प्रभु राम से आग्रह करता हूं इनको माफ करना, शुक्ला जी को, इनसे मैंने आवाज उठाई छात्रों की, प्रभु आपके बच्चों की आवाज उठाई, हमने किसानों की आवाज उठाई, महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाई, उस पर प्रभु ये नहीं बोल पाए। प्रभु इनको किस पे याद है? बाबर याद है इनको, इनको वो याद है 2014 के पहले कोई भी घटना उसको बड़ा चढ़ा के प्रभु ये बोलेंगे, प्रभु इनको माफ करना, ये प्रभु वो लोग हैं जो आपके नाम पे प्रभु राजनीति करते हैं, ये प्रभु आस्था का विषय, आस्था मानते हैं आपकी, आपके वहां दान पात्र में चोरी की बात उठाई हमने, तो उस पर बोलने को नहीं तैयार है प्रभु, हमने चोरी पे उठा कि आपके दान पात्र में चोरी हो, चोरी हो, इस पे आवाज उठाई है प्रभु, ये बोलने को नहीं तैयार है, इनको माफ करना प्रभु, ये लोग नादान हैं, हैं तो हमारे भाई आखिर, हमारे हिंदुस्तानी है प्रभु, इनको माफ कीजिएगा, ये नहीं आवाज उठाएंगे, ये नहीं बोलेंगे
0: फुल थिएट्रिक्स के लिए, फुल थिएट्रिक्स के लिए। आज अनुराग भदौरिया जी आपको 100 out of 100 का मार्क्स दिया जाता है। वारिस पठान आ गए, उसके बाद अखिलेश जी तुरंत आ रही। वारिस पठान जी अपना स्कोर कार्ड देखिए, इस स्कोर कार्ड से आप किसको धमका रहे हैं? अखिलेश जी को पिछली बार अगर बीजेपी के सामने कोई खड़ा हुआ वो हुआ 95 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी आपकी, 95 सीट्स पर, इतने पे ही लड़े थे आप बाय द वे, ये भी याद दिला दें आपको, 95 पर लड़े 95, वोट 0.49%, आधा फीसदी भी वोट नहीं मिला। और ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि सम्मान के साथ बुलाएंगे तो जाएंगे, क्या चल कह रहा है?
6: देखिए अंजना जी, कल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने बहराइच किया मटेरा के अंदर, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में ओपन स्टेज से उन्होंने कहा है कि हमारी मंशा एक ही है, हमारा इंटेंशन इरादा एक ही है कि हमको बीजेपी को हराना है और यह इंश्योर करना है कि बीजेपी वापस सत्ता में न आए। इसके लिए अगर हमको अलायंस करना पड़ा तो हम अलायंस करने के लिए तैयार है, मगर बाशर्त यह है कि इज्जत के साथ आए और बराबरी की बात हो। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हिस्सेदारी की बात करो, सामने से आएंगे, इज्जत के साथ बैठेंगे, कांधे से कांधा मिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। क्योंकि होता क्या, हम फिर बाद में चुनाव लड़ते हैं ना, बिहार में भी आपने देखा, पहले इनको ऑफर दिया नहीं है, फिर हम जब चुनाव लड़ने के लिए गए, ये सब कैसे हुआ, गए बीटी में, डीटी में, सीटी में, हालांकि हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने पहले से बोल दिया हमने, और आज देश देख रहा है बीटी में, डीटी में, सीटी में जो बोलते थे हमको, आज कहां जा रहे हैं सबके सब, कहां जा रहे हैं बीजेपी की गोद में, आंखों में काबा, दिल में मदीना लेके जो बैठे थे वो भी जा रहे हैं बीजेपी के साथ चाय पी रहे हैं। ये पूरा के पूरा सर उद्धव ठाकरे वाले वहां पे पहुंच गए, एनसीपी वाले पहुंच गए, हमको बीजेपी की बी टीम बोलते बोलते सबके सब जाके ए टीम के अंदर गोद में बैठ गए, यही डरा डरा के। और देखिए इस तरफ बीजेपी है, बीजेपी तो नफरत से भरी हुई है मुसलमानों के लिए, उनको मस्जिद से नफरत, मदरसे से नफरत, खाने से नफरत, हमारे हिजाब से नफरत,
0: आप उनको
6: नफरत है।
0: अखिलेश जी तरफ ये सॉफ्ट, अखिलेश जी कह रहे हैं, अरे वारिस वारिस भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप उनको जिताने के लिए आते हैं चुनाव में। वारिस जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनको जिताने के लिए,
6: अरे यही डरा डरा के वहां की पब्लिक का गलत, टोटल गलत है अंजना जी, कहां जिताने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या इन लोगों ने, चलिए ये हराई क्या बीजेपी को, पिछली मरतबा बीजेपी क्या बोलता है, हिंदू को डराता है, हिंदुत्व खतरे में, उनको वोट ले लेते हैं, एसपी क्या करता है, अरे इनको वोट देगा बीजेपी जीत जाएगा, वोट लेते हरा नहीं सकते जाके वहां पे भी, और इल्जाम हमारे ऊपर ढकेलते हैं, वोट लेते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, और सबके सब जाके डाल देते हैं बीजेपी की गोद के अंदर, सबके सब यही निकले,
7: कितनी बार लोगों के आंसू पहुंचने आए,
6: अरे जनता की आवाज उठाते थे, उठाते उठाते रहेंगे,
7: चुनाव होते याद आ गई जनता, उत्तर प्रदेश की
6: चुनाव होता है, वहां पे हमारी पार्टी ने मेहनत की है, अरे मेहनत की है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो मेहनत हुई है, और
7: दर्द में जनता को छोड़ के भाग जाते हो हैदराबाद, अरे हैदराबाद
6: नफरत फैला रहा है, कौन नफरत फैला रहा है,
7: हैदराबाद में आराम करते रहते हो, और जैसे चुनाव आता है वैसे ही इंधन पता नहीं कहां से लाते हो,
6: अरे सुनिए अंजना जी का आवाज,
0: ठीक है अनुराग जी अब जवाब सुन लीजिए फिर मुझे जाना है सतीश जी के पास,
6: पार्टनर है ना आपके, सुनिए सुनिए सुनिए अनुराग जी, सुनिए सुनिए मेरे दोस्त, आपके जो अलायंस पार्टनर थे ना उद्धव ठाकरे, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद प्रेस को कहा है पूरा कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से बीजेपी की मदद की थी समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी की असली बी टीम समाजवादी पार्टी है, और आपके बीजेपी के जो समाजवादी के जो अध्यक्ष थे ये लखनऊ से क्यों आए औरंगाबाद, हमारा जो वहां का एक्स एमपी था इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए, कोई इनका ग्रास रूट पे काम नहीं था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट वहां खड़ा किया जिसने सिर्फ 4,000 वोट लिया, मगर आपने हराया हमारे आदमी को, बीजेपी को वहां से जिता दिया, अब कौन बी टीम है, कौन नफरत फैलाने आ रहा है, कौन किसको जिताने आ रहा है, पूरा देश दुनिया देख रहा है अनुराग जी, आप मानो या नहीं मानो, आप हंस के टाल देंगे क्योंकि आप क्या कर सकते, आपको तो फंसा दिया अखिलेश ने ना, अनजाने जी के शो में आप आके बैठ गए, आप बोल नहीं सकते, जवाब दो मेरी बात का, चलो क्या था आपका औरंगाबाद में, क्यों हराया एमपीएम को आपने, वहां पे आके 4,000 वोट लेके क्यों जिताया बीजेपी को आपने, जवाब दो अनजाना जी को, जवाब दो, पूरा देश जवाब जानना चाहता है, जवाब दे दो हमारे को,
7: हम तो बोला भी नहीं,
6: अरे जीतेंगे, अरे इस मरतबा देख लीजिए जनता हमको मोहब्बत से, दुआओं से, इतने भरपूर वोट से नवाजेगी, अच्छी रीत से कामयाब
7: होगी
6: आप हो
0: अखिलेश, अखिलेश,
6: अरे बी टीम
0: अखिलेश, उसके बाद मुझे सतीश जी के पास जाना है थोड़ा सा, बहुत देर से आप हाथ उठाए इसलिए मैं रही हूँ, लेकिन लेकिन एक सेकंड अखिलेश जी, ऐसा कोई नियम कानून तो है नहीं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जी नहीं लड़ सकते हैं, इन्होंने बिहार में लड़कर सबको, देखिए ना आपकी पार्टी के बराबर लगभग सीटें ले आए अगर बिहार में, तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि क्यों लड़ेंगे, ये क्यों आएंगे लड़ने के लिए,
4: अरे कौन कह रहा ना लड़े, बात यहां पे हो ये हो रही है आपके द्वारा या इनके द्वारा कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, अब यहीं पे देख लीजिए, अभी ओवैसी साहब बोले बीजेपी खिलाफ एक लफ्ज बोले अभी तक, यहीं बैठ करके सिर्फ लड़कियां हराने की बात करते हो भाई, जो पूरे साल पांचों साल इस देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके जो ऐसे ऐसे कृत्य हैं देश जिसे बर्बाद हो रहा, नौजवानों का भविष्य खतरे में जा रहा है, सब महंगाई से लेकर हर फ्रंट पे, उस मोदी जी को से कब लड़ोगे? चुनाव में लड़के जीतने की या मदद बीजेपी को हराने के लिए आते हो, लेकिन मुद्दों पर कब बीजेपी को हराओगे? यहां पर भी नहीं बोल रहे हो, तो लोग समझते नहीं है क्या? और देखिए जहां तक भाई बीजेपी की, ये मैंने कहा ना सुविधा के राम भक्त हैं, चढ़ावा खाते हैं, बनेंगे राम भक्त, ये सिर्फ नाथू राम भक्त हैं, ये सिर्फ नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं है। अगर ये जिस प्रकार से लाखों करोड़ों भक्तों राम भक्तों के श्रद्धा का चंदा ये वर्षों से लूट रहे हैं, चढ़ावा लूट रहे हैं, जमीन में घोटाला किए हैं, पूरी की पूरी शिला पूजन से लेकर अब तक इस सबकी सीबीआई ईडी से और अदालत के नेतृत्व में जांच नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि बीजेपी ही तो लिप्त है उसमें, और कौन लिप्त है?
0: तीसरी बात,
4: ठीक अदालतें उत्तर प्रदेश की सरकार को कोस रही है, रोजाना हर हफ्ते दो तीन फैसले आ रहे हैं, अभी आया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पे काम करती है, न कि कानून व्यवस्था और संविधान के विरुद्ध हिसाब से काम करती है। यहाँ के गृह प्रमुख सचिव, गृह या मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया। यहाँ पे पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानून बनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है इतने अपराधी हैं जो इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इनको असलाह कैसे मिले, इसकी सूची हमको दो।
0: ठीक है सतीश जी,
4: फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है जो सत्ता के साथ
0: है। अखिलेश जी थोड़ा सतीश जी को भी बोले दीजिए, शुरू से बैठे हुए बेचारे। सतीश जी आज बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई तो 2027 की सबसे बड़ी होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अब एक तो मायावती फैक्टर भी इसमें रहेगा, क्योंकि ये इतना तो तय ही है कि वो अखिलेश या फिलहाल अखिलेश यादव या कांग्रेस के साथ जाती हुई दिख नहीं रही हैं। अब ओवैसी फैक्टर क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ होगा, जिस तरह से वो सुर बांध रहे और मटेरा में पहला उम्मीदवार उतारे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की सीट है?
8: नहीं देखिए अंजना जी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है। देखिए मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुस्लिम नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तमाम दलों को यह बात माननी चाहिए कि अगर वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, उत्तर प्रदेश में बाईपोलर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बीजेपी बाईपोलर इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में बदल देगी, कहीं ना कहीं अलग अलग दल अलग अलग मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े। बाबर अगर मुद्दा होगा, औरंगजेब अगर मुद्दा होगा, या जो दल उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनको, अपने लीडर्स को तमाम, चाहे उनका विधायक हो चाहे उनका एमपी हो, उनको कहीं ना कहीं व्हिप जारी करनी चाहिए कि आप ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर नहीं बोलेंगे कि जहां जनमानस के मुद्दे चले जाएं। देखिए उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। पिछले 8.5 साल से योगी जी ने, पहले 5 साल में तो कोई वैकेंसी नहीं निकल पाई, अभी इस महीने में अगर आप देखेंगे योगी जी चुनाव को देख करके कहीं ना कहीं रोज का रोज एग्जाम करा रहे हैं। अभी कल जो है जो एग्जाम हुआ है, 70% लोगों ने एग्जाम छोड़ा है। वो 70% लोगों ने बेरोजगारी होने के बाद इसलिए एग्जाम छोड़ा है कि उनको सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है, वो लोग इधर उधर कहीं ना कहीं दूसरे जगह में चले गए। दूसरी बात एक और कहता हूं, एक एक एक एक घोटाला और भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के युवा के साथ। एक तो वो बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है। एक आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए पेपर आउट सेंटर से नहीं हो रहा है, पेपर आउट प्रिंटिंग प्रेस से हो रहा है। आप क्या लगा रहे हैं कि आजमगढ़ के आदमी को मेरठ में पेपर देने के लिए बुलाओगे? आपको मालूम है कितने पैसे खर्च होते हैं? 10,000 रुपए। अगर एक बेटी आजमगढ़ से आकर के गाजियाबाद में अगर एग्जाम देगी तो उसके साथ उसका पिता भी आएगा, उसको बाकायदा होटल में भी रहना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए कहां से आएंगे? दूसरी बात, मेरा एक स्पष्ट मानना है कि योगी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का। 17,500 एनकाउंटर करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा तो आपकी सरकार नाकाम है।
0: शुक्ला जी,
8: उत्तर प्रदेश के अंदर बहु बेटा, जी जी जी जी
0: शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए, सीधा डायरेक्ट सवाल है उनका। तो इतना एनकाउंटर करके
3: अब बेरोजगारी दर से शुरू करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर थी
8: 5%,
3: आज 3.1% खाली पड़े हैं। तो बेरोजगारी दर को 2.7% नीचे लाने में सफलता अगर किसी को मिली है तो आदरणीय योगी आदित्य नेतृत्व वाली सरकार को, और तब से अधिक पारदर्शी पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो, नहीं तो जो है पुलिस की भर्तियां हुई थी अखिलेश यादव के कार्यकाल में, हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उसमें जो है एक चार जिलों के एक जाति विशेष के लोगों के अलावा
0: बारी बारी बारी भर्ती ही नहीं थी, बारी बारी से
3: जाति विशेष के लोगों को भर्ती के लिए देखिए बीच में लगातार बोले,
0: बीच में नहीं सतीश जी, फिर आवाज नहीं आती, आप दोनों जूम पे है ना, उनका भी ऑडियो नहीं आ रहा, आपका भी ठीक से नहीं आ रहा, रुक जाइए सतीश जी, आपने अच्छा बोला, आप जवाब सुनिए उसका, शुक्ला जी, शुक्ला जी,
3: चार चार जिलों के एक जात विशेष के लोगों के अलावा अखिलेश यादव के कार्यकाल में पुलिस की भर्ती में और कोई प्रत्याशी पास ही नहीं हो रहे थे, और उन चार जिलों के उस जात विशेष के लोगों से भी चचा भतीजे जो है वसूली कर रहे थे, ये सबके सामने आई हुई तथ्य है, इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पर नहीं हो। तो हमने बेरोजगारी को भी दूर किया है, महंगाई भी, और जब जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी 12% महंगाई तक हुआ करती थी, आज भी 4% के नीचे महंगाई दर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, हमने महंगाई भी नियंत्रित की, हमने बेरोजगारी भी नियंत्रित की, और बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की, कौन अत्याचार थी, अरे भाई जिसका जो है सबसे बड़ा नेता श्रीमती सोनिया गांधी 420 की अभियुक्त, जिसके नेता राहुल गांधी नेशनल हैरान, जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाई गई संपत्ति थी उसने गबन कर लिया, और जिसने जो मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त हो, ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार किया हो, जिनके कार्यकाल में यहाँ से जो है तो रुपए चुरा कर इतने भेजे जाते थे, ये सबके सामने हो, सीबीआई को जिसके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट तोता कहता रहा हो, भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं, गजब हो गया भाई, नेशनल हेराल्ड के चोर, नेशनल हेराल्ड के गबन करने वाले, नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्डरर, और 420 के अभियुक्त जो 420 के केस में आज भी बेल पर है, ये बेशर्मी की हद है कि जहां पर भी होता था जमीन घोटाला, जीजा जी का नाम उसमें से हमेशा निकलता था, तो जीजा जी जो है जब से उनकी सासू जी जो है सरकार से बाहर गई है, तब से उनका जो है रियल एस्टेट का कारोबार ठप क्यों पड़ गया, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां वहां रियल एस्टेट के कारोबारी जीजा जी हो जाया करते थे,
0: ठीक है,
3: तो जीजा जी का
0: जी जवाब दीजिए, उसके बाद आऊंगी अनुराग जी, क्योंकि सीधा अटैक है ये गांधी फैमिली पर।
4: अंजना जी, चंडीगढ़ और दिल्ली की अदालतों ने यह फैसला सुना दिया है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी राहुल जी के लोगों ऊपर जो भी मुकदमे फर्जी लगाए थे उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। इस व्यक्ति ने जो झूठ बैठ के यहाँ बोल रहा है अब खारिज कर दिया और कहा कि कोई उसमें बीच में मैंने नहीं बोला, अंजना जी
0: इनको शुक्ला, शुक्ला जी, शुक्ला
4: जब ये झूठ बोले तो मैं इनके बीच में नहीं बोला, आप इनको हटवाइए,
0: आप
4: इनको दूर हटाइए इनको पहले, ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है।
0: अच्छा,
4: आपको भी अंजना जी याद है कि दिल्ली की कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकारा कि तुम झूठे आरोप लगाओ, तुम्हारे पास कोई तथ्य सबूत नहीं है। चंडीगढ़ के कोर्ट ने फैसला सुनाया 12 साल से झूठे मुकदमे हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ये बीजेपी और मोदी जी लगाते रहे।
0: शुक्ला जी, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए।
4: लेस मात्र भी किसी भी प्रकार की, अंजना जी आप खुद जानती हैं इस बात को कि दिल्ली की अदालत ने जांच एजेंसियों तक को कहा कि लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का तथ्य सबूत नहीं है, मुकदमा बनता ही नहीं है, यही बात चंडीगढ़ की अदालत ने कहा है। और यहां बैठ करके सिर्फ जो विपक्ष में है उसका जो है चरित्र हनन करने, उस पर झूठे आरोप लगाने की ये बात करते रहते हैं। 15.5 लाख करोड़ रुपए की घोटाले की सूचना और जानकारी इन्हीं भारत सरकार के सेबी ने दी है, कहाँ गया पैसा,
0: मिलके लड़िएगा अखिलेश जी,
4: कहाँ गया पैसा,
0: यहाँ तो 170 हम लोग इमरान मसूद जी का पॉडकास्ट देख रहे थे हम लोग, उसमें वो बता रहे हैं यूपी तक पे उन्होंने दिया 170, हम ए लिस्ट की ए ग्रेड की सीट्स अलग कर रहे हैं, सब अपना अपना ऐसा डिमांड कर रहे हैं, उधर अलग तेवर दिख रहे हैं, मिलके लड़िएगा ना,
4: एकदम मिलकर लड़ेंगे अंजना जी। लेकिन जो झूठ फैला रहे थे, जिसको आपको भी पता है कि अदालत के फैसले दोनों जगह से आ चुके हैं, सबको पता है, लेकिन देश को आपका गुमराह करने के लिए आपके चैनल का उपयोग करता है, इसलिए बात कहनी जरूरी थी।
0: ठीक है शुक्ला जी, छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब,
3: नहीं मैं फैक्ट चेक करने के लिए आज तक जवाब दूं, फैक्ट चेक करें क्या श्रीमती सोनिया गांधी आज भी 420 के मुकदमे की अक्यूज है जी, आज भी नेशनल हेराल्ड का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है कि नहीं, आज तक तो मैं चुनौती देता हूँ कि अखिलेश सिंह इस चैनल पे बैठकर जो सफेद झूठ बोल रहे हैं इसका फैक्ट चेक किया जाए कि श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, मैं जब इस बैच को हिस्सा ले रहा हूँ उस समय तक 420 केस के अभियुक्त और जमानत पर रिहा अभियुक्त है कि नहीं, किसी भी की मेरी बात है इसमें क्या है, ये तो आज तक कोई फैक्ट चेक करके बता सकता है? अंजना जी कृपा करके फैक्ट चेक कर दे,
0: ये बात तो है ना अखिलेश जी की वो बेल पे है, हाँ, क्योंकि जो जानकारी इस केस के बारे में जी
3: बिल्कुल नहीं खारिज हुआ है, बेल पर है,
9: कोर्ट ने कहा है को कहा है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये बैठे ये आज झूठे आरोप लगा रहा है, 12 साल से झूठे आरोप लगा रहा है, क्या प्रूफ किए हो तुम?
0: अच्छा ठीक है, एक दिन अलग से इस पर केस, इस केस पर अलग से बहस कर लेंगे। वापस आते हैं यूपी पर शुक्ला जी दिखा दीजिए, इन दोनों को दिखा दीजिए भाई एक बार
3: जी, अंजना जी
9: का जवाब देने दीजिए, बारह साल में क्या प्रूफ कर पाया इनकी जब जांच होगी अंजना जी ने तो 15 साल लगेंगे, सिख से नख तक भ्रष्टाचार किए हैं इस देश को, इस देश का जर्रा जर्रा बेचा है इस व्यक्ति ने, अपने मित्रों के लिए पूरा देश बेचा, सरेंडर प्रधानमंत्री, एफटीन फाइलों वाला प्रधानमंत्री, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, हमारे सैनिकों पे हमला हो जा रहा है, 3-3 सैनिक मारे जा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ जवान तक नहीं निकल रही है।
0: ठीक है, आप दोनों की तू तू मैं हो गई है, वापस आज के विषय पर आते हैं और अनुराग भदौरिया जी सवाल यह है कि अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो सबके फायदे के लिए होगा, अगर आपको बीजेपी को वाकई शिकस्त देनी है तो, हालांकि एक बार तो बुआ भतीजा का भी जोड़ी काफी पॉपुलर हुआ था, क्या सोच रहे हैं अखिलेश जी गठबंधन को लेकर?
2: देखिए भारत, देखिए अभी एक बात आई थी सफेद झूठ, अब सफेद झूठ किसको कहते हैं पता है अंजना जी, कह रहे बेरोजगारी दर गिना रहे हैं और बेरोजगारी कितनी है बता दो, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने 80 करोड़ लोगों को जीने पे मजबूर कर दिया है और कहते हैं रोजगार सबके पास हो गया है, कमाल की बात करते हैं, महंगाई डीजल पेट्रोल 100 के पार है और कह रहे महंगाई है ही नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं, कभी बाजार जाके देखो रुपया तो बहुत ही मजबूत हो गया है, पहले जब 60-65 था तो बहुत कमजोर था, अब 95-96 हो गया तो बहुत मजबूत हो गया आपके हिसाब से, भ्रष्टाचार की बात करते थे सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सबको ले आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनडीए में शामिल कर ले, तो चाहे टीएमसी पे जिन पे आरोप लगाते थे शिवसेना हो एनसीपी हो सबको आपने शामिल कर लिया ना अपने पास, तो आप क्या बात कर, पार्टी तोड़ने का काम तो आपके पास है, सारी पार्टियां आपने तोड़ डाली, लोकतंत्र में पार्टियां
0: तोड़ना मतलब आपका अंतिम जवाब इसका, दो लाइन का जल्दी से जवाब आपने, तोतंत्र शुक्ला जी
3: देखिए महंगाई भी नियंत्रित हुई और 135% से महंगाई हुई थी और सीबीआई का डंडा दिखाकर मुलायम सिंह यादव को जो समर्थन दिया जा रहा था, जब मुलायम सिंह यादव जो है दुम दबाकर सीबीआई का डंडा देखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब 153% जो है पेट्रोल के भाव में,
0: चलिए ठीक
3: 113% जो है,
0: अभी तो 27 के चुनाव में कितना टाइम है, लेकिन आप देख रहे हैं तापमान कैसे ही चुनाव की चर्चा होते ही गर्म हो जाता है। बहरहाल आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में हाहाकार मचाने के बाद ट्रंप को ईरान के साथ डील से बर्थडे गिफ्ट मिल पाया, इसके बाद आपको बदले हालात में G7 समिट में होने जा रही मोदी ट्रंप मुलाकात के बारे में बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे बागियों की क्षमता के आगे बेबस हो गई है ममता बनर्जी, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
16: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें

0: तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
1: हम अपनी इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
0: और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके

0: मान्यवर कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती हैं, मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
1: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए।
0: अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी।
1: मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2 लाख यानी 2 से 4%, फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3.5 लाख यानी 2.5 से 5%, और फिर 2024 में लड़े 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70 से 80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे।
0: चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं, ये गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने, कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, बुजुर्गों को है, कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में, कहीं भी जमा साफ पानी में, प्लास्टिक आपने छोड़ दिया उसमें जरा सा पानी जमा रह गया, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह, बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर आसपास पानी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमलों का पानी नियमित रूप से बदले। खासकर बच्चों, बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें। दिन हो रात हो, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रिपेलेंस का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: Beautiful.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की जंग में पहला दांव असदुद्दीन ओवैसी ने चल दिया है। ओवैसी ने बहराइच की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली मटेरा सीट पर शौकत अली को AIMIM उम्मीदवार घोषित तो किया ही, मुस्लिम वोटों की दावेदारी का दावा करने वाले विपक्षी दलों से ये साफ कह दिया कि या तो हमें साथ लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहो।
2: अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है, मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी।
1: ओवैसी अभी बीजेपी पर जितने हमलावर हैं, उतना ही आक्रामक अखिलेश यादव पर भी है। साथ ही जब ओवैसी सीधे सीधे मुस्लिम वोटों पर दावा कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ओवैसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो इसलिए समाजवादी पार्टी अभी किसी संभावना को नकार भी नहीं रही।
3: ओवैसी ने कहा है कि भाजपा मुश्किल है, हम भाजपा को हराने वाले दल का समर्थन करेंगे।
4: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
1: इस बीच समाजवादी पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी सीटों को लेकर अपनी मांगे अभी से रखने लगी है। सांसद इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए 170 सीटों की बात कर रहे हैं।
5: 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा MP होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती।
1: यूपी चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए तालमेल का मसला तो हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सबसे इतर उन्हें सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से लड़नी है। लिहाजा अखिलेश न सिर्फ 9 साल के योगी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि उनकी छवि पर प्रहार भी कर रहे हैं।
6: 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं, तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई।
1: चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जोर अपनी सख्त प्रशासक की छवि और यूपी को विकास के मैप पर ले आने की कोशिशों पर रह सकता है। सोमवार से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुई। इस मौके पर योगी एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से मिले। उधर 2 दिनों पहले उन्होंने अखिलेश की बेटी पर सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी थी।
7: बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
1: ये सारे बयान जाहिर करते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव में बड़े नेता कैंपेन को किधर मोड़ सकते हैं। योगी अखिलेश, कांग्रेस और ओवैसी के संकेतों से साफ है कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा।
8: सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले,
5: मेरी 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, तो बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं।
9: समाजवादी पार्टी
5: नहीं नहीं देगी, हम मांग कब रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना कि ये नैरेटिव, कल भी एक अखबार में खबर चल रही थी, अरे आप क्या नैरेटिव बना रहे हैं, मांग कब रहे हैं आपसे भाई, कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा, हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी।
9: टेबल पे ही तो हर बार डिस्कशन होता
5: है। हाँ तो आपसे ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई, कौन है देने वाले, हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए, नो हम अपने आपस में तय कर लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, मैं तब भी कहा था कि मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं, पूछ लीजिए आप पार्टी में। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम। देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, मैं तब भी कहा था कि मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं, पूछ लीजिए आप पार्टी में। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम। हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन 6 से ज्यादा एमपी होते हम।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: इसी के साथ हल्ला बोल में आप देख रहे थे आज उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों पर चर्चा। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए 7 तक मारिया के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: मैं पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
1: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
0: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
2: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करती है।
0: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
3: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
0: अब ओवैसी ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
4: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
0: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
5: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में तेज हो गई है, लेकिन बड़े दलों में भी कम रार नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का समीकरण कैसे सधेगा?
0: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
6: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनवों के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
0: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते। पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
6: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
0: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
6: हमारी तो केमिस्ट्री पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
0: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में धांधली की जांच के लिए बनी एसआईटी ने आज से जांच शुरू कर दिया है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो समाजवादी पार्टी पहले दिन से आवाज उठा रही थी वो अब जांच को लेकर भी सवाल उठा रही है।
0: एसआईटी की टीम है जो चंदा चोरी मामले की जांच के लिए अयोध्या में सीधे ट्रस्ट के ऑफिस पहुंची है।
7: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है, इसी से एसआईटी की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये तीन सदस्य कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को मैनेज करने वालों में प्रमुख तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इन सब के बयान एसआईटी दर्ज करेगी। यानी जांच तेज हो गई है और जांच के साथ सियासत भी।

0: स्पीड पकड़ रही है। चंदा चोरी का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी अब जांच पर भी सवाल उठा रही है।
1: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे।
0: पता नहीं अखिलेश किस धुन में थे जो जांच पर ऐसा सवाल उठा रहे थे, लेकिन विनय कटियार जमानों बाद प्रकट हुए। उन्होंने तो सीधे सीधे चंपत राय को निशाना बनाया।
2: क्यों ले गए पैसा वहां से?
3: कौन ले गया?
2: जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओ?
0: अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जांच का शोर है। देखना होगा कि चढ़ावे की चोरी का सच क्या है। अयोध्या से संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
4: नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं। आज जेवर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंची। ये वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
5: इन किसानों के चेहरे पर खुशियां खिली हुई, ललक की लहक है। जिस जमीन पर चलाते थे हल, आज वहीं से इन्होंने उड़ान भरी लखनऊ के लिए। और लखनऊ में किसानों का सीएम योगी ने इस तरह स्वागत किया।
6: जिस जमीन पर कभी किसानी की खेती की, शायद ही किसानों ने सोचा होगा कि उस जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा, और उस जमीन से उड़कर वो आज राजधानी पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही नजारा आपको आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 170 के ऊपर किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
5: ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
7: बहुत अच्छा लगा आज,
8: अति सुंदर, बहुत बढ़िया लगा।
9: जो कार्य योगी जी ने किया है वो किसी सरकार पर नहीं हुआ।
10: देखो उन्होंने बहुत बढ़िया करवा माल दिया और कहा प्लांट बैठ गए हम तो।
5: अब सीएम योगी इन किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं।
11: और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
5: जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी। दूसरी फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब वक्त इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, शिव प्रकाश और अरुण कुमार मौजूद हैं। मीटिंग में नितिन नवीन की नई टीम को लेकर चर्चा होने की खबर है। तो बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की चर्चा हो रही है इस अहम बैठक में जो रक्षा मंत्री के घर पर चल रही है। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ये नई टीम का अनाउंसमेंट कब होगा हिमांशु?
12: देखिए आज जैसे ही ये बैठक हो जाएगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आला कमान जो है वो जल्द से जल्द जो है नितिन नवीन की नई टीम जो है मारिया वो आ जाएगी, क्योंकि नितिन नवीन 20 जनवरी 2026 को जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अब सबको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जिस तरीके से युवा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कमान संभाली है 45 साल की उम्र में, तो अब सबको इस चीज की उम्मीद ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो नितिन नवीन की टीम में हो, और उसके साथ साथ जो है अनुभवी नेताओं को भी जो है वो नितिन नवीन की जगह टीम में जगह मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि कौन टीम के अंदर रहेगा, कौन टीम के बाहर जाएगा, कौन सरकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आएगा और कौन संगठन से सरकार में जाएगा, ये जो है इसको लेकर पूरी मुहिम चल रही है। और उसी कड़ी के अंदर जो है ये एक बड़ी बैठक जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह है, नितिन नवीन है, बीएल संतोष हैं, जेपी नड्डा हैं, शिव प्रकाश हैं, और संघ की तरफ से अरुण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता जो हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर।
4: हिमांशु ये भी माना जाए कि एक तरफ नई टीम का अनाउंसमेंट होगा तो दूसरी तरफ कैबिनेट रीशफल भी होगा।
12: देखिए बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कैबिनेट रीशफल होना है। 2 साल से ज्यादा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 3.0 सरकार है उसको बने हुए हो चुके हैं, और ये मानकर चला जाता है किसी भी सरकार के अंदर 2 साल के अंदर जो है वो कैबिनेट रीशफल होना होता है। और अब क्योंकि नितिन नवीन की जब नई टीम बनेगी तो कुछ लोगों को संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, और कुछ नए चेहरे जो है सरकार के अंदर लाए जाएंगे। जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, और फिर 2027 के अंत में जो है गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव है। तो इन सबको देखते हुए जो है एक नई तरीके की सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को रखते हुए, और साथ ही साथ जो है वो बाकी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नई टीम में भी होगा।
4: हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही थी कि एक अहम मीटिंग चल रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में नया ठिकाना मिल गया है। 20 बागी सांसदों ने स्पीकर को अर्जी दी थी, और अगर स्पीकर तैयार हो जाते हैं तो उनका नया ठिकाना होगा NCPI। आपने इस पार्टी का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, सुनते भी कैसे, ना इस पार्टी का अपना कोई सांसद है और ना ही विधायक, लेकिन स्पीकर मान जाते हैं तो एक झटके में इस पार्टी की झोली में 20 सांसदों से भर जाएगी।
3: स्पीकर ओम बिरला के बंगले 20 अकबर रोड पर कल शाम भारी गहमा गहमी थी। अंदर टीएमसी के सांसदों का जमावड़ा था और बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी थी। निगाहें इस बात पर थी कि टीएमसी से बगावत करके यहां तक पहुंचे इन सांसदों का अगला पड़ाव क्या होगा। इस राज से अब पर्दा हट गया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की है। इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है, साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है।
13: अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व।
14: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी देके आ गए, वो NCPI पार्टी से हम लोग का मर्ज हो गया, हम लोग मर्ज कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
3: तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है। 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में 0 सांसद हैं, राज्यसभा में 0 सांसद हैं, विधायक 0 हैं। लेकिन एक रात में 0 सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें तो जो भी हो, इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, दो तिहाई बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है। टीएमसी के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है, यानी दो तिहाई के लिए एनडीए अभी 47 पीछे है। आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: NCPI का नाम चर्चा में आया तो आज तक ने इस पार्टी की छानबीन की। आज तक संवाददाता तापस सेन NCPI के दफ्तर पहुंचे, देखिए उनकी रिपोर्ट।
15: यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के साकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन साकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के साकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे दो नाम लिखा हुआ है, तो उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो तमाम ये कमरे हैं पूरी तरीके से अभी बंद है, और शायद ही यहां पे आना जाना लोगों का होता था, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि एक एनजीओ के तौर पर, एक बच्चों के लिए ये एनजीओ काम करता है, यहां पे कभी कभी बच्चे यहां पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का बैनर भी अभी तक लटका हुआ है, और 2023 में पंचायत चुनाव में इस पार्टी ने हिस्सा लिया था। हालांकि
4: बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए हैं। बताया जाता है कि ममता बनर्जी के घर से जब कुणाल घोष निकले तो उन पर अंडे से हमला किया गया है। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से निकल रहे थे और उसके बाद उनके ऊपर अंडे फेंके गए।
16: नहीं नहीं नहीं

0: रुक करते हैं बिहार का। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन इन सवालों के बीच आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक फैजल खान है।
1: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
2: फैजल खान है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
1: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
3: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
0: अब बात शेयर बाजार की।
4: कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 736 अंक मजबूत होकर 76,264 और निफ्टी 231 अंक चढ़कर 23,854 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 41 पैसे मजबूत होकर 94.71 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में भी आज तेजी का रुख रहा और सोना 2,369 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,50,169 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 8,429 रुपए बढ़कर 2,51,011 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। आज तक ब्यूरो।
0: मध्य पूर्व में जारी जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते की जानकारी दी, फिर ईरान के उप विदेश मंत्री ने समझौते पर मोहर लगा दी।

0: अमेरिका ईरान के बीच करीब 68 दिन तक भीषण जंग चली, मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर अब पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं, उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है। इसके पहले कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का, बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है।
1: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Chogan Perfumes, the French edition.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
9: For him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
5: भाव भगवान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लाइन पॉपुलर हो गई, भाई भगवान ही भगवान है, भगवान के बाद शेयर बाजार में भाव प्रधान।
6: ऐसा कौन सा क्रैश था जिसने आपको भी एक बार इमोशनली हिट किया था?
5: Y2K की तेजी में लगा था कि मेरे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए। जब बादलों के ऊपर सर पहुंच जाता है तभी लट पड़ता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली अंटिल इट एंड्स और इट बेंड्स। देखिए, बांगड़ू जवान बुल मार्केट में कमाएगा और बूढ़े हाड़ जो है ना बेयर मार्केट में कमाएगा।
7: हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।

0: 17 जून को होगी मोदी ट्रंप मुलाकात। सुधरेंगे तल्ख रिश्ते, कई मुद्दों पर होगी बात। टेक्नोलॉजी से ट्रेड तक बातों से बनेगी बात। पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। G7 समिट के बाद जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर न सिर्फ अहम चर्चा होगी बल्कि रिश्तों की मजबूती के लिए फैसले भी लेने होंगे। वैसे भी दोनों नेता पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद से नहीं मिल पाए हैं। तब से दुनिया दो अहम पड़ावों से होकर गुजर चुकी है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा ईरान युद्ध। इन दोनों पड़ावों की वजह से कई मोर्चों पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ट्रंप की बयानबाजी की वजह से कई बार कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों में खटास भी पैदा हुई। अब जब भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूती की ओर लौट रहे हैं, दोस्ती की परिभाषाएं फिर से गढ़ी जाने लगी हैं। हाल ही में ट्रंप ने संकेत दिए कि वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए जल्दी ही ट्रेड डील करने वाले हैं। मोदी इन दिनों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं, जहां राष्ट्र प्रमुखों के साथ कई मुद्दों पर बात हो रही है। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में भी शिरकत करेंगे। पिछले दो दिनों में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और निवेश को लेकर भारत इनोवेट्स में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है और कन्विक्शन भी। भारत इनोवेट्स 2026 को लेकर भी मोदी खासे उत्साहित दिखे। नई पीढ़ी के नए विचारों और नए निवेश से सुनहरे भविष्य की इबारत लिखने पर उन्होंने जोर दिया।
1: इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं।
0: स्लोवाकिया की यात्रा के बाद मोदी फ्रांस लौटेंगे, जहां उन्हें G7 समिट में शिरकत करनी है। लेकिन हर किसी की निगाह होगी ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात पर, क्योंकि ईरान के साथ घमासान ने तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। ऐसे में सवाल ये भी है कि ट्रेड डील पर सिर्फ बात होगी या फिर बड़े समाधान के साथ कोई ऐलान भी सुनने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
2: ये बताइए कि चल क्या रहा है इस वक्त मंदिर में, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में अचानक से ये मामला आ गया।
3: मंदिर का अचानक नहीं, कुछ है वहां से ले जाने का है। क्यों ले गए पैसा वहां से?
2: कौन ले गया?
3: जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? वहां पर सब तय है, सिस्टम तय है।
2: सिस्टम क्या है और चंपत राय ने क्या किया है?
3: अरे भाई, कुछ ले नहीं गए, ऐसा तो था नहीं। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना। तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
2: कहाँ लेकर के गए चंपत राय?
3: वो जहां रहते हैं
2: कारसेवपुरम,
3: कारसेवपुरम जो हमारी कोठरी कभी हुआ करती थी।
2: तो एक दिन का है, एक दिन कोई लेकर के वहां गया या
3: एक दिन का भी अगर कोई लेकर चला जाएगा तो लंबी रकम जाएगी। एक दिन का लंबी रकम लेकर जाएगा वो। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच शुरू हो गई।
2: नहीं, लेकिन आपके जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। आप कह रहे हैं कि चंपत राय जी मंदिर से चढ़ावे को लेकर के कार सेवकपुरम गए।
3: हाँ, नहीं जाना चाहिए था, पैसा पैसा उनको वहीं पर देना चाहिए था, वहीं गिनवा देना चाहिए था।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मारिया शकील। आने वाली 19 जून की तारीख दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाली है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होगा और पिछले 108 दिनों से चल रहे तनाव का अंत हो जाएगा। अब हमने सब कुछ ठीक रहा इसलिए कहा क्योंकि 19 जून तक बहुत कुछ हो सकता है। इस डील को लेकर इजराइल बहुत नाराज चल रहा है, तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इस डील का हिस्सा नहीं है, वो इस डील को नहीं मानेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये पीस डील डिरेल हो जाएगी? विशेष की पहली रिपोर्ट देखिए।

0: ईरान और अमेरिका की डील फाइनल हुई, क्या इजराइल मानेगा? क्या ईरान और अमेरिका के शांति समझौते में इजराइल अड़ंगा लगाएगा? 3.5 महीने के बाद होने जा रही डील से अमेरिका को क्या मिला? इस युद्ध में अमेरिका जीता या ईरान के आगे अमेरिका झुका है? 28 फरवरी 2026 यानी वो तारीख जिस दिन अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला किया था। युद्ध शुरू होने के 108 दिनों के बाद यह खबर आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक शांति समझौता होने वाला है। ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने लिखा है कि टोल फ्री होकर हॉर्मुज खुलेगा, अमेरिकी नेवी का ब्लॉकेड हटेगा, दुनिया के जहाजों अपना इंजन चालू करो, तेल को बहने दो। लेकिन क्या यह इतना आसान होने वाला है? क्या इजराइल और ईरान इस समझौते को मानेंगे? यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि इस वीकेंड पर ये डील हो जाएगी और ऐसा ही हुआ।
1: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
2: it'll be soon, maybe this weekend.
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes, that's true. That's part of the deal.
1: Oil
2: prices dropping like a rock.
0: आने वाले शुक्रवार यानी 19 जून को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच डील साइन होगी। बताया जा रहा है कि ये एक 14 बिंदुओं का समझौता है। अभी तक दोनों ही देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया है कि समझौता किन बिंदुओं पर हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो ईरानी मीडिया का दावा है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान की शर्तों पर सहमति जताकर ये डील की है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस शांति समझौते के प्रमुख बिंदु ये हैं: लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम, अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता, 30 दिनों के भीतर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, 30 दिनों के भीतर ईरानी व्यवस्थाओं के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब देने की योजना, ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध समाप्त करना, परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता, अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाने और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता।
3: बिसियार थूलानी शायद 14-15 साल सूरत गिरफ्त के मा आखरीन اصلاحات جمهوری اسلامی ایران نسبت به متن مطرح کردیم و طبیعتاً این اصلاحات هم مورد تجدیدش قرار گرفت و متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی شد. این نکته اول هست راجع به این فرایند. نکته دوم خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده. امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح هست و این هم نکته دوم راجع به
0: ایران کی سماچار ایجنسیاں یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس سمجھوتے پر تب تک دستخط نہیں ہوں گے جب تک امریکہ کچھ پرمک قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ پرمک قدم ہے کہ جب تک ایران کی فریز کی ہوئی سمپتیوں کا کم سے کم آدھا حصہ جاری نہیں کر دیا جاتا، ایران پر لگے پرتبندھ نلمبت نہیں کر دیے جاتے اور نوسینک ناکے بندی سماپت نہیں کر دی جاتی، تب تک یہ ڈیل سائن نہیں ہوگی۔ یعنی فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ ایران کی شرطوں کے آگے جھک رہا ہے۔ अमेरिका और ईरान शुक्रवार तक का इंतजार कर रहे हैं और उसमें भी अभी 4 दिन बाकी हैं। तब तक कुछ भी हो सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। समझौते का पहला पॉइंट ही ये है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा। इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं और इजराइल धमकी भी दे रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि वो इस डील के बावजूद दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने लेबनान की जिस जमीन पर कब्जा किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे और अगर ईरान ने हमला किया तो फिर से जवाब दिया जाएगा। इजराइल के एक और मंत्री हैं बेन ग्वीर, इजराइल के गृह मंत्री हैं, बहुत कट्टर माने जाते हैं। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप के इस समझौते से हम बंधे हुए नहीं हैं। बेन ग्वीर का कहना है कि इजराइल अमेरिका के अंडर काम नहीं करता। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। हम इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं, जो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता। इस पीस डील में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ट्रंप के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इससे पहले भी जब सीजफायर की डील हुई थी, तब भी इजराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे। इजराइल का मानना है कि जब तक वो हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, तब तक वो रुकेगा नहीं, और इस पीस डील में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ट्रंप तो अमेरिकी मीडिया के सामने नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें परिस्थितियों का अंदाजा नहीं है, उनके पास कोई जजमेंट नहीं है। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो परिवार हैं जो 3 महीने पहले युद्ध शुरू होने के बाद लबनान में अपना घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब से ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की खबर आई है, दक्षिणी लबनान में लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। लेकिन अब इजराइल क्या करेगा? क्या वो इन लोगों को अपने घरों में रहने देगा, या फिर वो फिर से हमले शुरू करेगा? इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि अगले 4 दिनों में इस पीस डील पर कुछ भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
4: अब तो ये कंफर्म है कि डील होने जा रही है और युद्ध का दी एंड हो जाएगा। अमेरिका और ईरान दोनों जिनीवा में ये MOU साइन करेंगे, लेकिन इस डील से किसे क्या मिला? दोनों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन क्या वाकई अमेरिका जीता है या फिर अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है? क्योंकि दुनिया तो इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को ऐसे ही देख रही है।
5: They want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal.
6: They want to make a deal so badly.
7: I do see a deal in Iran.
8: We were very close to a deal.
0: जब से युद्ध शुरू हुआ था, ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ईरान डील करना चाहता है। ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो डील के बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, लेकिन डील हो ही नहीं रही थी। लगातार अड़ंगे आ रहे थे, और अब डील हो गई है तो भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शुक्रवार 19 जून तक सब कुछ ठीक रहेगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये डील साइन हो पाएगी? और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल पाएगा? वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जिसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की किल्लत पैदा हो गई, तेल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, दुनिया भर का स्टॉक मार्केट गिर गए, दुनिया के कई देशों की करेंसी गिर गई। अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हॉर्मूज खुलने वाला है। अमेरिकी सेना को निर्देश मिला है कि अगर शुक्रवार को ईरान के साथ पीस डील पर साइन हो जाते हैं, तो उसी दिन हॉर्मूज स्ट्रेट में जारी अमेरिकी नाकेबंदी हटा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका ने डील साइन की और उधर हॉर्मूज खुल जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की तरफ से बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। जानकारों का मानना है कि हॉर्मूज को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने में कई हफ्तों से लेकर कई महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि हॉर्मूज के खुलते ही सबसे पहले वहां संभावित बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। जानकारों के मुताबिक जहाजों की आवाजाही शुरू होने के बाद तेल बाजार को पूरी राहत मिलने में करीब 2 महीने लग सकते हैं, हालांकि शुरुआती असर और कुछ राहत 1 हफ्ते के भीतर दिखाई दे सकती है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन शुक्रवार तक कुछ भी हो सकता है। हालात बदल सकते हैं, क्योंकि ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका को इस युद्ध से और फिर इस डील से क्या मिला? क्या अमेरिका ईरान के आगे झुकता नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ट्रंप के तेवर तो ऐसे थे कि वो ईरान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, दुनिया के नक्शे पर ईरान का नामोनिशान तक नहीं रहेगा। ट्रंप तो कुछ ऐसा ही कहते थे। अब दुनिया पूछ रही है कि क्या हुआ?
9: We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, the leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that,
2: we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces.
4: विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

डील भले हो जाए, इसराइल कह रहा है हमले नहीं रुकेंगे, लेबनान को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान से डील हो गई है। ईरान ने भले ही कह दिया है कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के दोस्त इसराइल ने अपना खौफनाक इरादा बता दिया है। अमेरिका ईरान कहते रहे कि उन्हें डील पर भरोसा है और इसी भरोसे के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसराइल को इस समझौते पर कतई भरोसा नहीं। उधर अमेरिका और ईरान में डील हुई, ट्रंप ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दुनिया से साझा की और उसके करीब 9 घंटे बाद ही उनके दोस्त देश इसराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैं एक स्पष्ट नीति का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके तहत ITF लेबनान, सीरिया और गाजा में सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम दबावों के बाद भी लेबनान से ITF की वापसी का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्री की माने तो इसराइल सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा और ये भी कि अगर लेबनान में हुई घटनाओं की वजह से ईरान इसराइल पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। बात यही नहीं रुकी, इसराइली रक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया कि ट्रंप और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रक्षा मंत्री से पहले इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने भी कह दिया कि अमेरिका और ट्रंप की डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने ट्रंप की तारीफ कहते हुए कह दिया है कि इसराइल की सुरक्षा नीति वॉशिंगटन नहीं यरूशलम तय करेगा। डील पर सवाल उठाते इसराइल के रुख से दुविधा और आशंकाएं कम होती नजर नहीं आ रही। आशंका और सवाल ये कि क्या 4 महीनों से जारी तनाव कम हो पाएगा, क्या होर्मुज में संकट पूरी तरह खत्म हो पाएगा। सवाल ये भी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बरकरार रहेगा। इसराइल के कड़े रुख पर अब अमेरिका क्या करेगा, क्या ट्रंप ईरान को भरोसा दे पाएंगे, क्या 4 महीनों से जारी तनाव कम हो पाएगा, क्या होर्मुज में संकट पूरी तरह खत्म हो पाएगा। सवाल ये भी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बरकरार रहेगा। इसराइल के कड़े रुख पर अब अमेरिका क्या करेगा, क्या ट्रंप ईरान को भरोसा दे पाएंगे कि लेबनान या कहीं भी हमले नहीं होंगे। ऐसे सवालों और शंकाओं की ठोस वजह है। पहले अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के कुछ अहम शर्तों को जान लीजिए। ये डील इसी शर्त के साथ हुई है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध हमेशा के लिए बंद रहेगा। अमेरिका से बातचीत की पहल के शुरुआती दौर से ही ईरान इस शर्त के साथ आगे बढ़ा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि लेबनान या अन्य मोर्चों पर हमले नहीं रुके तो वो दुश्मन देश के खिलाफ जोरदार वार करेगा। ऐसे में अगर अमेरिका हमले ना भी करे और ऐसी सूरत में इसराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो ईरान बदले वाली कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब साफ है, अमेरिका की डील मानने के लिए इसराइल तैयार नहीं, वो अभी भी हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में अमन शांति पर ग्रहण लगा हुआ है। अब इसराइल की धमकी पर अमेरिका और ईरान के रुख का इंतजार है। इसराइल तैयार नहीं, वो अभी भी हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में अमन शांति पर ग्रहण लगा हुआ है। अब इसराइल की धमकी पर अमेरिका और ईरान के रुख का इंतजार है।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं. एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है. डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है. सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को हो सकता है. सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है. कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा साफ पानी में. यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है. लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती. डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा. इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान, साथ लड़ेंगे डेंगू से, की शुरुआत की है. इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सारी जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के सामान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे. डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन ज़रूरी कदम उठाइए. घर के आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें. कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें. जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा. ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
6: University. So where are you?

0: अमेरिका इसराइल के बीच करीब 68 दिन भीषण जंग चली। ईरान के कई शहरों समेत पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची। मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ। ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल गया। यहां तक कि सीजफायर के बाद भी दोनों ओर जंगी तनाव बना रहा। अमेरिका ईरान के बीच डील की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत बेपटरी होती दिखी, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं, उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है। उधर ट्रंप अपने जन्मदिन के मौके पर किए इस अहम ऐलान को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर ट्रंप पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
1: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
0: सीज़फ़ायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें भी हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का। बातचीत बिपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।

0: मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर पिछले 4 महीनों से बारूद की गर्मी महसूस की जा रही थी। समुद्र से लेकर आसमान तक तनाव की लकीरें खींची थी और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि अगला धमाका कहां होगा। लेकिन लंबे टकराव के बाद कूटनीति ने हथियारों पर बढ़त बना ली है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जता दी है, जिसके बाद 4 महीनों से जारी संघर्ष को विराम देने पर सहमति हो गई है और 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर के बाद ये समझौता अमल में लाया जाएगा। इस समझौते के बाद दुनिया की एनर्जी सप्लाई से जुड़े हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी। इस समझौते में परमाणु गतिविधियों पर निगरानी और संवेदनशील परमाणु सामग्री को लेकर नई व्यवस्था बनाने की बात शामिल है। लेकिन अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भविष्य को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं और तकनीकी स्तर पर की बातचीत इस हफ्ते के आखिर तक पूरी होने की संभावना है। फिलहाल ये अंतिम शांति संधि नहीं है और इसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी, जिसमें ईरान ने अमेरिकी वादों के पालन को बातचीत की शर्त बताया है और सैन्य कार्रवाई रोकने के साथ प्रतिबंधों में राहत जैसी डिमांड रखी है। मिडिल ईस्ट में तनाव घटने से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। समझौते की खबर आते ही ग्लोबल मार्केट तो राहत की सांस ले भी चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। वहीं देश और दुनिया के ग्लोबल शेयर बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। सेफ हेवन डिमांड बने रहने से सोना ऊंचे स्तर पर टिका हुआ है और हॉर्मुज रूट पर खतरा कम होने से सप्लाई चेन को राहत की उम्मीद बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में हालात स्थिर रहते हैं तो इसका फायदा कई स्तर पर दिखाई दे सकता है और कमजोर क्रूड से भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा, पेट्रोल डीजल की लागत पर दबाव कम होगा, महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी और रुपए पर दबाव घट सकता है। इस समझौते की असली परीक्षा अगले 60 दिन में है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित हस्ताक्षर और उसके बाद की बातचीत तय करेगी कि ये विराम स्थिति शांति में बदलता है या फिर तनाव लौटने का खतरा बरकरार रहेगा। आज तक ब्यूरो।
1: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।

0: आपको हम खबरदार करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर NCPI यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, ISO ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां TMC के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कॉन्ट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: यूं तो राजनीति का रिवाज है कि कोई छोटा बड़ा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन TMC के बागी 20 सांसद एक झटके में NCPI में शामिल हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी पदाधिकारी को हवा तक नहीं होती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बन गई है।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब NCPI में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं, वहाँ मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो MPs हैं, वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल

0: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई की हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
2: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
0: अभी कौन प्रेसिडेंट?
2: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
0: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
2: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
0: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
2: वो भी बदला होगा, बदला जाएगा सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
0: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
2: मेरे हस्बैंड था।
0: मजर के बारे में कुछ भी नहीं?
1: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
3: मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो हैं,
4: अभी तो
3: वो हमारे साथ मर्जर कर
4: ना, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का है, जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
3: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
4: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
5: अब सूत्र बताते हैं कि बागी सांसद जिस पार्टी में सब ज्वाइन किए हैं, वहां की पार्टी की अध्यक्ष शिवली कुंडू ने 28 मई 2026 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जबकि 18 मई 2026 को काकोली घोष ने टीएमसी में विभाजन किया था। इसके बाद दावा है कि एनसीपीआई की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी ने 31 मई को पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अब टीएमसी के बचे हुए सांसद और नेता कहते हैं कि बीजेपी ने दरवाजा नहीं खोला, तो बागी सांसद दूसरी पार्टी की खिड़की से एंट्री लेना चाहते हैं।
6: हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारा कोई शिकायत था, आप जानते हैं कि यहाँ का जो माहौल था उसके खिलाफ जो शिकायत, ये शिकायत लेके हम लोग जा रहे हैं। हमारा डिमांड क्या होगा? डिमांड देश का अच्छा करना, देश के लिए काम करना ही है।
7: असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा, वो जा रहा बोल रहा है, बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद, ऐसे मेहमान है आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है।
5: आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एनसीपीआई जैसे दल में बागियों ने क्यों विलय किया। जानकार कहते हैं कि पार्टी से अलग होते ही पहले दिन मूल पार्टी के नाम

0: नाम और सिंबल पर कानूनी दावा कर नहीं सकते। बीजेपी सीधे इन्हें एंट्री देना नहीं चाहती, वरना उसकी पार्टी में भी सवाल हो सकता है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत बागियों को पहले खुद को एक वैध और सुरक्षित राजनीतिक समूह के रूप में स्थापित करना था, इसीलिए उन्होंने अस्थायी तौर पर नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का रास्ता चुना, ताकि दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सांसदी रद्द न हो।
1: इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि एमपी अकेले मर्ज नहीं कर सकते। जो मर्ज होता है पार्टीज के बीच में, ओरिजिनल पार्टीज, मतलब इनके केस में जो तृणमूल कांग्रेस लेड बाय ममता बनर्जी, वो ही है ओरिजिनल पार्टी, वो पार्टी मर्ज करेगा, तब जाके ये लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा, ये जो असली पार्टी होने का जो दावा है वो तो इन्होंने किया नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके करना है इनको, क्योंकि वो जो चीज है उस पर डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का, स्पीकर का थोड़ी होता है उसमें। इन्होंने सिर्फ स्पीकर के पास जाके कहा कि हम अलग हो गए हैं तो हमें अलग से अलग गुट के रूप में हमें बिठाया जाए हाउस में, लेकिन उसके लिए तो ऑप्शन स्पीकर के पास नहीं है। स्पीकर ही इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते अंडर द लॉ। जो भी अलग होता है उसको इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, अभी वही है, चाहे वो 20 हो या 30 हो या जो भी हो।
2: अब मर्जर के लिए जो हम मैंने पहली बात कही थी कि लेजिस्लेचर पार्टी और ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ दो तिहाई सांसदों या विधायकों का एक नई पार्टी बना लेना या किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाना, वो मर्जर नहीं होता। मर्जर तब होता है जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी आपकी, यानी जो तृणमूल कांग्रेस है, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए और उसके अतिरिक्त, उसके अलावा दो तिहाई सांसद या दो तिहाई विधायक जो सदन में है वो जाके भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए। ये दोनों ट्विन कंडीशंस हैं, सिर्फ एक से नहीं होता, सिर्फ दो तिहाई सांसदों के या दो तिहाई विधायकों के जाने से नहीं होता। कानून विधानसभा और संसद के लिए एक ही है, डिफेक्शन लॉ एक ही है, इलेक्शन कमीशन एक ही है, सिंबल्स ऑर्डर एक ही है, 10th शेड्यूल एक ही है। महाराष्ट्र के उदाहरण का उदाहरण हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में ये क्लेम कि मैं ही शिवसेना हूं वो क्यों किया गया था, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, तब तक आप मर्जर नहीं क्लेम कर सकते। तो इसलिए अब आप तृणमूल को देखें कि अगर यहां पे 20 सांसद 28 में से कह रहे हैं कि हम मर्जर क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कहना पड़ेगा कि हम ही ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो यानी बात फिर वही आएगी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो किसके नियंत्रण में है, उसको आज ममता बनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं या रिबेल ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं, और जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक वो मर्जर क्लेम ही नहीं कर सकते। तो दरअसल ये कानून है कि आप सिर्फ दो तिहाई आंकड़े से मर्जर नहीं क्लेम कर सकते। मैंने बताया ना, दो ट्विन कंडीशन है, दो तिहाई आंकड़ा हो और उसके साथ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो। तो जब तक वो ये नहीं कहते कि तृणमूल कांग्रेस हमारे नियंत्रण में है और हम तृणमूल कांग्रेस हैं, तब तक वो मर्जर नहीं क्लेम कर सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा, तब तक कोई ये जितने जो हम बातें कर रहे हैं कि वो मर्जर है या नहीं है, वो डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो सब हवा में है, क्योंकि क्योंकि स्पीकर उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो जितने डिस्क्वालिफाई होके भी वो मेंबर है।
0: अब आपको हम संसद का नंबर गेम याद करा देते हैं। लोकसभा में एनडीए का नंबर अब बढ़कर 312 हो गया है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 154 पहुंच चुकी है। लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का नंबर 360 है, वहीं राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत 163 सांसदों पर। ऐसी सियासी स्थिति में केवल लोकसभा को आधार बनाकर देखें तो दो तिहाई के नंबर से बीजेपी 48 सांसद दूर है, जबकि अब इंडिया गठबंधन का नंबर 182 है और अन्य 36 है। जबकि राज्यसभा में देखें तो एनडीए के कुल सांसद 154 हो चुके हैं और दो तिहाई के नंबर से 9 सांसद की दूरी है। सवाल है कि क्या यह दूरी वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के सांसदों से अहम मुद्दों पर पूरी की जा सकती है? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबरदार हो जाइए, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम आज अयोध्या पहुंच गई है। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई।
3: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
4: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
3: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
4: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
5: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो VVIP गेट है, इसी से SIT की टीम, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, ये SIT गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
6: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
7: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर। अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
4: राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में आरोप है। चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि रामशंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो रामशंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते हैं चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
5: रामशंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, VHP से जुड़े हैं, ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
8: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
9: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हल्ला करने के लिए और लोगों को घबराते हो आप। राम के तड़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
4: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
7: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
4: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
0: इस मामले में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने जब सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब राम भक्ति की बात वो भी कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर कभी गोलियां चलवाई थी, अब उन्हें साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है।
10: अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं, अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है, अच्छी दिशा में चल रहा है।
0: अब आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर से खबरदार करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से दुनिया ने राहत की सांस ली है। 14 पॉइंट के एमओयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खोलने का जिक्र है। 30 दिनों के अंदर हॉर्मूज से कारोबार पहले की तरह करने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल से लदे कई जहाज चलने लगे हैं। वो हॉर्मूज के दक्षिणी रास्ते से जा रहे हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। अमेरिका ईरान डील के बाद भारतीय जहाज दिशा हॉर्मूज पार करने वाला पहला जहाज हो गया है जो एक एलएनजी टैंकर है। लेकिन सवाल अब भी यह है कि अमेरिका को इस जंग से क्या मिला, क्योंकि 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब हॉर्मूज खुला हुआ था, लेकिन युद्ध के बावजूद ट्रंप को इस रास्ते को खुलवाने में नाको चने चबाने पड़े।
4: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
11: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
4: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी न ही वो किसी और देश को ये देगा, बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
11: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.
4: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
11: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
4: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
12: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
4: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने के लिए उतावले थे, इसी का फायदा ईरान ने उठाया। लेकिन ट्रंप का यह फैसला इसराइल को रास नहीं आ रहा। उसका कहना है कि ईरान में न तो सत्ता परिवर्तन हुआ, न उसका संवर्धित यूरेनियम नष्ट हुआ, मतलब ईरान की तरफ से हमले का डर इसराइल पर कम होने के बजाय बढ़ गया है। इसीलिए इसराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका का गुलाम नहीं है और लेबनन में हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इसराइल के इन्हीं तेवरों से इस समझौते पर सवाल उठ रहे हैं। इसराइल के ड्रोन हमले में लेबनन में एक कार ड्राइवर की मौत हो गई है। इसराइल समझौते के बावजूद रुकने को तैयार नहीं है। अब बात पाकिस्तान को लगे झटके की। पाकिस्तान के मुकाबले क्षेत्रफल में काफी छोटे कतर ने कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को पछाड़ दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता करवाने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ट्रंप से लेकर ईरान की खूब जी हुजूरी की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर कतर ने एंट्री मारी और अमेरिका ईरान में समझौता हो गया। सबसे बड़ी बात, ये डील इस्लामाबाद में न होकर जिनीवा में साइन होगी।
11: इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप एंड इज जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक दैट पाकिस्तान एंड इंडिया आर गोना live very nicely together, right? Jeez, that's not a very, that's, they are.
13: डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी करने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को होने वाला समझौता पाकिस्तान के बजाय अब यूरोप में होगा। शहबाज और मुनीर के लिए इससे भी बुरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से होने वाले समझौते का सारा श्रेय कतर को दे दिया।
14: And the Emir is an amazing man who really helped us. You have to understand, his country is right in the middle of everything, more so than any other country.
13: अमेरिकी राष्ट्रपति के एक एक शब्द पाकिस्तान में बम की तरह गिरे, क्योंकि शहबाज और मुनीर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी मेहनत इतनी जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन ट्रंप भी क्या करें, ईरान को समझाने का जो काम पाकिस्तान महीनों में नहीं कर पाया, उसे कतर ने चंद दिनों में कर दिखाया। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कतर तारीफ का हकदार है और उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए। इस समझौते में कतर ने हमारी बहुत मदद की। हमें यह समझना होगा कि कतर किसी भी दूसरे देश, यहां तक कि यूएई से भी ज्यादा हर चीज के केंद्र में है। तो कतर ने ट्रंप को जंग से निकलवाकर उनका दिल जीत लिया। एक बार फिर समझौते के लिए उसे ही आगे आना पड़ा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसकी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन ईरान नहीं माना। इसकी वजह एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना दम या भरोसा नहीं था कि वो दोनों पक्षों को किसी समझौते के करीब ला सके। और ये समझौता जिनेवा में होगा शायद इसलिए क्योंकि आखिर में यूरोपीय देशों ने भी दखल दिया और ईरान को कुछ ठोस देने का वायदा किया गया। तो ईरान ने देखा कि भले ही पाकिस्तान ने शांति समझौता करवाने के लिए उसको इस्लामाबाद बुलवाकर बढ़िया आदर सत्कार किया, लेकिन उसकी बाद में कोई दम नहीं। वो खुद इधर से उधर कर्जा लेकर अपना देश चला रहा है, ऐसे में उससे कुछ मिलने की तो संभावना ही नहीं थी। इसके अलावा ईरान को भी पता था कि पाकिस्तान ट्रंप के इशारे पर काम कर रहा है। ट्रंप के एक इशारे पर शहबाज शरीफ को खड़ा होता देख दुनिया पहले ही देख चुकी थी। तो पाकिस्तान की हैसियत और उसकी नीयत पहले दिन से सवालों में थी। इस बात पर शहबाज शरीफ ने खुद मुहर लगाई जब उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की अपील करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को व्हाइट हाउस से मंजूरी मिलने के बाद पोस्ट किया। शहबाज शरीफ की इस गलती ने ईरान की आंखें खोल दी और वो पाकिस्तान की बातों में नहीं आया। वो समझ गया कि पाकिस्तान ट्रंप की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, इसलिए ईरान के नेता पाकिस्तान बात करने जरूर आए, लेकिन उन्होंने समझौता करने को लेकर उसकी एक नहीं सुनी। जब बात बनती नहीं दिखी तो कतर ने ईरान को मनाने के लिए मोर्चा संभाला और जो काम पाकिस्तान महीनों में नहीं कर पाया वो उसने कुछ ही दिनों में करके दिखाया। बता दिया कि मध्यस्थता की बात तब कोई मानता है जब बात में दम और जेब में रकम हो। ये पाकिस्तान ही था जो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने का ख्वाब देख रहा था। उसे लग रहा था कि ऐसा करके एक तरफ पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में उसकी धाक जम जाएगी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के काम आकर अमेरिका को खुश किया जा सकेगा। लेकिन ट्रंप ने भी कतर की दिल खोलकर तारीफ करके दिखा दिया कि अमेरिका के लिए दोस्त वही है जो काम आए। इसीलिए ट्रंप ने दुनिया में अपनी साख बढ़ाने में जुटे शहबाज और मुनीर के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
15: तारीखी माहदे की बाजाबता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की होगी।
13: शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुसीबत यह है कि उनके राज में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता जेल में है। शहबाज और मुनीर जनता की नजरों से गिरे हुए हैं। इसीलिए दोनों को लगा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद वो अमेरिका के काम आ गए तो न सिर्फ उनकी कुर्सी बच जाएगी बल्कि अमेरिका से करीबी भी बढ़ जाएगी। लेकिन कतर इस मामले में पाकिस्तान पर भारी पड़ा।
15: यहाँ पर मैं मुज़ाकरात के इस नाजक कठिन और सब्र आजमा अमल में अपने बरादर मुल्क कतर के अमीर मेरे भाई शेख तमीम बिन हमद सानी के भरपूर ताबुन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ।
13: कतर से कूटनीति में हारने के बाद अब पाकिस्तान का सारा जोर इस बात पर है कि वो जिनेवा में इस शांति समझौते की मेजबानी कर ले। इसे शहबाज और मुनीर की तरफ से श्रेय लूटने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि कल को जनता ये पूछते हुए सड़कों पर ना उतर आए कि उसकी गाड़ी कमाई खर्च करके आखिर उन्हें मिला क्या।
0: तो पाकिस्तान इस बात से खुश है कि भले ही समझौता इस्लामाबाद में न हो, लेकिन जेनीवा में इस समझौते की मेजबानी वो करेगा। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करवाने के लिए खूब पैसा लुटाया, इस्लामाबाद टॉक का खूब प्रचार किया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने विदेश यात्राएं की। 22-23 मई आसिम मुनीर इस्लामाबाद से तेहरान की यात्रा करते हैं। इससे पहले भी 15-16 अप्रैल को आसिम मुनीर ईरान गए। इससे पहले 7 मार्च को मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए। मुनीर की तरह शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता के नाम पर कई विदेशी दौरे किए। शहबाज 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की गए। इसके बाद 16 से 23 मई के बीच शहबाज शरीफ ने चीन की यात्रा की। कहा गया कि पाकिस्तान और चीन के बीच इस मामले में गंभीर बातचीत हुई, लेकिन बाजी फिर भी कतर मार ले गया। पाकिस्तान में सवाल न उठे तो इसी के लिए शहबाज शरीफ को खुद की इस समझौते का श्रेय दिया जा रहा है, जबकि ट्रंप के मुंह से एक शब्द पाकिस्तान के लिए नहीं निकला। और अब आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर लगे करीब 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया। नौकरी जाने से दुखी एक बेरोजगार ने जान दे दी। इसके बाद राजस्थान भर के अस्पतालों में प्रदर्शन चल रहा है।
16: अचानक एक झटके में नौकरी चली जाए, आम आदमी टूट जाता है। प्रदर्शन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। यही जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर हो रहा है। वर्षों से नौकरी करते संविदा वाले नर्सिंग कर्मचारी हटा दिए गए। दुखी होकर एक नर्सिंग कर्मी ने जहर खाकर जान दे दी।
17: संविदा पर नौकरी दी गई थी अस्पतालों में, और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्लेसमेंट एजेंसी ने जो संविदा कर्मी थे उन्हें हटा दिया। उसके बाद यहां पर संविदा कर्मी ने सुसाइड कर लिया है। दौसा का रहने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं साथी उनके।
16: नौकरी गई तो दौसा का 30 साल का दीपक चरवाल टूट गया, जो जयपुर की महिला चिकित्सालय में पिछले 3 सालों से काम करता रहा। शुक्रवार सुबह अस्पताल पहुंचा, गार्ड बोले नौकरी तुम्हारी खत्म हो गई, हाजिरी रजिस्टर पर साइन मत करना। बाकी लोग प्रदर्शन करने लगे। एक बच्चे के पिता दीपक ने नौकरी अचानक खत्म हो जाने पर खुद को खत्म कर लिया।
18: सरकार द्वारा उठाए जाने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब उनकी कमी मेरे जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता।
16: साथ में काम करने वाली महिमा और सुनीता जैसी हर नर्सिंग कर्मचारी का बुरा हाल है।
19: हटाने के लिए कुछ बोला, क्यों हटाया?
20: अचानक से आदेश निकाल दिए कि अब आपको ड्यूटी पर नहीं आना, कोई आदेश नहीं था।
16: जिस दीपक ने बेरोजगारी का आसमान टूटने पर जान दी, उनकी पत्नी गर्भवती, घर में कमाने वाला कोई नहीं।
21: परेशान था, अब उनको कल ही हटा दिया गया है। नहीं से बिल्कुल सही था वो, अब उनके छोटा सा बच्चा है, अब वो कैसे पालन पोषण करेगी मेरी बिटिया, वो भी मर जाएगी सुनकर।
16: गहलोत राज में 2022 में नौकरी देने के बजाय सभी सरकारी अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मियों को गुजरात की एक निजी कंपनी के जरिए संविदा पर रखा गया। अब इनकी संख्या 6,500 हो गई थी। इनको 7,000 की तनख्वाह में रखा गया, बाद में 9,185 रुपए महीने दिए जाने लगे। मौजूदा सरकार ने इन्हें हटाकर परीक्षा के जरिए 5 साल के संविदा पर रखने का फैसला किया। मांग यह है कि नौकरी से हटाने की जरूरत क्या है? जब नई भर्ती करनी है तो क्या कई वर्षों से काम करते इन्हीं लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती? इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? क्यों मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: आज वर्ल्ड डेंगू डे है, और ऐसे में हम आपको खबरदार करना चाहते हैं एक आंकड़े से। और वो आंकड़ा यह है कि हर साल भारत में एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं।
16: एक मच्छर कितना बड़ा खतरा होता है, ये वो समझते हैं जो डेंगू की बीमारी झेलते हैं। एक मच्छर जीवन के लिए कितना बड़ा संकट बन जाता है, ये वो समझते हैं जिन्होंने डेंगू का दर्द झेला है। डेंगू से बचना है तो सावधानी और सफाई जरूरी है। विश्व डेंगू दिवस पर यह बात आज तक के जरिए करोड़ों लोग समझे, इसलिए आपको प्रयागराज स्वाति के घर तक चलना जरूरी है। वो स्वाति जिसे परिवार ने 4 साल पहले डेंगू की वजह से खो दिया। माँ अनीता और पिता मेवालाल आज भी डेंगू वाले मच्छर की वजह से जान गंवाने वाली अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर टूट जाते हैं।
1: यहाँ की गंदगी के जरिया से मच्छर आए हुए थे, मच्छर ने काट लिया, रात में फीवर इसको आया। फीवर आने के बाद मैं यहीं पे नजदीकी हॉस्पिटल आई, फिर मैं वहाँ ले गई भैया को अपने। जब वहाँ ले गई तो जांच कराई तो उसमें पता चला कि डेंगू है और थोड़ा बहुत प्लेटलेट भी कम हो गया था। फिर उसके बाद जांच कराने के बाद मेरे बच्चे को अस्पताल ले गई, ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर वहाँ पे डॉक्टर नहीं समझ पाया तो उन्होंने रिफर कर दिया। जाते जाते मेरी बेटी का वही बछरावा में ही उसका डेथ हो गया। मेरा भैया दुनिया छोड़ के चली गई, मेरी प्यारी से गुड़िया। डेंगू बहुत खतरनाक हुआ था कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
16: भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों को डेंगू हर साल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने को मजबूर कर देता है। वर्ल्ड डेंगू डे पर इसीलिए जरूरी है कि आपको हम खबरदार करें, क्योंकि एक चूक आर्थिक रूप से भी पूरी तरह परिवार को तोड़ देती है। जहां लोग इलाज कराने के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ को डेंगू बचने नहीं देता।
2: करीब 32-33 साल की थी, डेंगू हो गया था और उसका फिटनेस भी खत्म हो गया था। वो हम लोग मेडिकल ले गए थे, वहाँ खत्म हो गई बेटी बेटी। मच्छर भी काटते हैं और ये पानी भर जाता है नाली का, इसी कारण से ये हो रहा है। जब
22: कितना मच्छर लगता है?
2: मच्छर तो बहुत लगते हैं, मच्छर तो सोने नहीं पाते। हम लोग पंखा नहीं चालू करे तो सो नहीं पाए।
16: इसीलिए जरूरी है कि आसपास घर बाहर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। डेंगू फैलाने वाले उन मच्छरों को किसी भी मौसम में न पनपने दिया जाए जो आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए।
0: डेंगू केवल एक मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा तो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी साफ पानी जहां जमा हो, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें। और दिन हो या रात हो, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मस्कीटो रेपेलेंट का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: Cool fans ke stylish design se घर की शान बढ़ाएं।
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
8: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
9: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स टीएमटी बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU!
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गैस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की जंग में पहला दांव असदुद्दीन ओवैसी ने चल दिया है। ओवैसी ने बहराइच की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली मटेरा सीट पर शौकत अली को AIMIM उम्मीदवार घोषित तो किया ही, मुस्लिम वोटों की दावेदारी का दावा करने वाले विपक्षी दलों से ये साफ कह दिया कि या तो हमें साथ लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहो।
3: अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है, मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी।
2: ओवैसी अभी बीजेपी पर जितने हमलावर हैं, उतना ही आक्रामक अखिलेश यादव पर भी है। साथ ही जब ओवैसी सीधे सीधे मुस्लिम वोटों पर दावा कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ओवैसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी अभी किसी संभावना को नकार भी नहीं रही।
4: ओवैसी ने कहा है कि भाजपा मुश्किल है, हम भाजपा को हराने वाले दल का समर्थन करेंगे।
5: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
2: इस बीच समाजवादी पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी सीटों को लेकर अपनी मांगे अभी से रखने लगी है। सांसद इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए 170 सीटों की बात कर रहे हैं।
6: 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ वीक में नहीं चाहिए किसी से भी। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा MP होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती।
2: यूपी चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए तालमेल का मसला तो हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सबसे इतर उन्हें सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से लड़नी है। लिहाजा अखिलेश न सिर्फ 9 साल के योगी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनकी छवि पर प्रहार भी कर रहे हैं।
7: 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं, तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई।
2: चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जोर अपनी सख्त प्रशासक की छवि और यूपी को विकास के मैप पर ले आने की कोशिशों पर रह सकता है। सोमवार से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुई। इस मौके पर योगी एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से मिले। उधर 2 दिनों पहले उन्होंने अखिलेश की बेटी पर सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी थी।
8: बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
2: ये सारे बयान जाहिर करते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव में बड़े नेता कैंपेन को किधर मोड़ सकते हैं। योगी अखिलेश, कांग्रेस और ओवैसी के संकेतों से साफ है कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा।
9: सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, से नहीं डरने वाले।

0: तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। 3.5 महीने से दुनिया जिस महायुद्ध के साए में जी रही थी, वो अमेरिका ईरान युद्ध पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वो एक ऐतिहासिक समझौते पर राजी हो गए हैं। इस एक फैसले ने दुनिया के बाजारों में बड़ी हलचल मचा दी है। कच्चा तेल धड़ाम से गिरकर $83 आ गया है, $83 पर, जिसे भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन इस महासमझौते के पीछे की इनसाइड स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन के गिफ्ट के चक्कर में ईरान की हर शर्त के आगे घुटने टेक दिए? क्योंकि इस डील में अमेरिका को सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि ईरान को उसके फ्रीज हुए $24 बिलियन और तबाही के मुआवजे के तौर पर $300 बिलियन का पैकेज मिलने जा रहा है। आखिर इस डील से अमेरिका को क्या मिला और क्यों इसराइल इस समझौते को ठुकरा कर अब भी लेबनान और गाजा पर बारूद बरसा रहा है? ईरान की वो 14 शर्तें आखिर क्या हैं जिन्होंने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया, आज आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बारे में बताएंगे। फ्रांस में G7 समिट के दौरान दोनों की मुलाकात संभावित है। ये मुलाकात बहुत संवेदनशील मोड़ पर हो रही है। 13 फरवरी 2025 के बाद दोनों नेता पहली बार आमने सामने होंगे, वो भी तब जब हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी।

2 रुपए की मामूली गिरावट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन हाँ, गिरते रुपए को युद्ध समाप्ति की घोषणा ने थोड़ा सा संभाला है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सोना चांदी महंगा हो सकता है। जब डॉलर की मांग बढ़ रही थी, निवेश सोने चांदी की जगह डॉलर में निवेश कर रहे थे, तब इनकी कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब डॉलर का मूल्य जब घट रहा है तो सोने में निवेश बढ़ सकता है। सोने के दाम आज से ही बढ़ने लगे हैं। आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,50,000 रुपए का हो गया, सिर्फ 10 ग्राम, और इसमें कल के मुकाबले 2,846 रुपए की तेजी आई। जबकि इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,51,000 रुपए हो गई, और सिर्फ आज में 1 किलो चांदी लगभग 9,000 रुपए महंगी हुई। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान ने कुछ शर्तों पर सहमति बना ली है, और अब 19 जून को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इससे ये सवाल भी उठता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध से क्या हासिल हुआ। ये तस्वीर तुर्की में ईरान के दूतावास ने साझा की है, जिसमें यह लिखा है कि नए युग के मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे ईरान का एक ऐलान मान रहा है, ऐसा ऐलान जिसमें ईरान यह बता रहा है कि अब वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो सुपर पावर जिसे अमेरिका और इसराइल मिलकर भी हरा नहीं पाए, और अमेरिका को ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका पर किस हद तक दबाव बनाकर रखा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद राष्ट्रपति ट्रंप है। आज सुबह डील का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को 2 बार अपना बयान बदलना पड़ा। पहले बयान में उन्होंने यह कहा कि डील के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने वाला है, जबकि इसके 1 घंटे बाद फिर पोस्ट आया और यह कहा कि हॉर्मुज को इस शुक्रवार तब खोला जाएगा जब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाए कि क्या अब भी इस डील को लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, वरना 1 घंटे में ये बात पलटी कैसे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी जिन शर्तों पर अमेरिका और ईरान ने सहमति बनाई है वो शर्तें किसी डील का रूप नहीं लेंगी। इसकी जगह दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जो अगले 2 महीने के लिए लागू होगा। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 पक्षों के बीच आपसी समझ का एक दस्तावेज। एमओयू किसी भी डील या एग्रीमेंट से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता है। अगर कल को राष्ट्रपति ट्रंप का मूड बदल जाए, वो अपनी ही कही बातों से पलट जाए, तो इसके लिए कानूनी रूप से उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, और इसीलिए दुनिया कह रही है कि यह डील का पहला चरण है, लेकिन डील नहीं है। दूसरा, अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक रूप से एमओयू की शर्तों को तो सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन दोनों देशों ने यह तो माना है कि वो एक दस्तावेज पर बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में कौन सी शर्तें शामिल हैं, इस पर आधिकारिक जानकारी ना तो अमेरिका ने दी है और ना ही ईरान ने दी है। हालांकि इसके बावजूद एक एमओयू अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है, जिसे ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। ये एजेंसी ईरान के तेहरान टाइम्स का हिस्सा है, जो उन 14 शर्तों के बारे में बताती है जिन पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। इनमें पहली शर्त यह है कि ईरान के कच्चे तेल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें निलंबित किया जाएगा। 23 मई 2026 को फॉर्च्यून मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले 8 साल में ईरान पर 2000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं, जिनमें ज्यादातर प्रतिबंध ऐसे हैं जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बेचने से रोकते हैं। अब अगर ये प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। कारण यह है कि वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, ईरान के पास है, जो 209 बिलियन बैरल का माना जाता है। दूसरा, 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, और अभी राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि सच यह है कि इस युद्ध से पहले हॉर्मुज खुला ही हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन इस दावे को लेकर भी अभी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। और एक बार कोई डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला दे कि इस युद्ध से पहले सारे जहाज निकल रहे थे और कोई वसूली वहां पर नहीं हो रही थी, ये तो आपने ऐसे हालात पैदा किए कि हॉर्मुज भी ब्लॉक कर दिया गया और पैसे भी वसूले जाने लगे। ईरान की ही मेहर न्यूज एजेंसी ये तो नहीं कहती कि ईरान हॉर्मुज में टैक्स वसूलेगा या नहीं, लेकिन वो ये जरूर लिखती है कि हॉर्मुज को ईरानी व्यवस्था के साथ खोला जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि जो हॉर्मुज अब तक पूरी दुनिया की संपत्ति था वो अब ईरान

व्यवस्था वहां पर होगी। हॉर्मूज के खुलने से दुनिया में तेल गैस का संकट कम होगा। इस युद्ध से पहले हॉर्मूज से हर दिन औसतन 138 जहाज 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था जो युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन अब यह आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकती है। तीसरी शर्त यह है कि अमेरिकी नौसेना 30 दिनों के अंदर अपने नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाएगी। ये वही नेवल ब्लॉकेड है जिसके तहत ईरान के 116 जहाजों को अमेरिका वापस भेज चुका था, उनकी नाकेबंदी कर दी गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे आकर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से ईरान के भी जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और चौथी शर्त यह है कि ईरान के आसपास अमेरिका ने अपने सैन्य बलों की जो तैनाती की है उन्हें वापस बुलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास कई समुद्री जहाज सैनिकों को तैनात रखता था, लेकिन अब उसे यह तैनाती हटानी होगी, जिसे कई विश्लेषक अमेरिका के लिए झटका मान रहे हैं। पांचवी शर्त, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। यानी ईरान में अगर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां लोगों को फांसी होती है, वहां का कोई भी आंतरिक मामला होता है, तो उसमें अमेरिकी ठेकेदारी नहीं चलेगी, अमेरिका ठेकेदार नहीं बन पाएगा और उसे ईरान से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं छठी शर्त। तो छठी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान पर ना तो कोई नया प्रतिबंध लगाएगा और ना ही मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाएगा। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, विदेशों में ईरान के जो $100 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज किए हैं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उनमें से $24 बिलियन उसे वापस देने होंगे। सोचिए, मतलब इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया। ईरान तो बहुत कुछ हासिल करता हुआ दिख रहा है। ये वही पैसा है जो ईरान ने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन डॉलर में व्यापार के कारण अमेरिका ने यह पैसा एक तरह से जब्त कर लिया था। अब $24 बिलियन भारतीय रुपयों में 2,27,000 करोड़ रुपए होते हैं और यह पैसा अगले 60 दिनों में जारी होगा, जिनमें से $12 बिलियन बातचीत से पहले जारी होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे कि मैं ईरान को बिना एक पैसा दिए डील करके दिखाऊंगा, लेकिन इस दस्तावेज से ऐसा लगता है कि ईरान उन पर भारी पड़ा है। ईरान ने ना सिर्फ ये शर्त मनवाई बल्कि अमेरिका ये वादा भी ले लिया है कि इससे ये वादा भी ले लिया है कि वो ईरान के पुनः निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन की योजनाएं पेश करेगा। यानी ईरान को अपने पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही युद्ध में हुए नुकसान के लिए अलग से पैसा मिलेगा। और $300 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। मिडल ईस्ट में ओमान, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था ही $300 बिलियन से कम की है। नौवीं शर्त यह है कि ईरान भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके लिए ईरान को ट्रीटी और द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर दोबारा अपनी पुष्टि देनी होगी। और दसवीं शर्त यह है कि परमाणु मुद्दों सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर अंतिम समझौता करने के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू होगी। ग्यारहवीं शर्त यह है कि अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी। यानी जब यह बातचीत सफल होगी तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में फाइनल डील पर दोनों ही पक्ष दस्तखत करेंगे। हालांकि इसी में 12वीं शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह लिखा है कि अंतिम समझौते के लिए तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी जब तक ईरान के कुल $12 बिलियन जारी नहीं होते, ईरान के कच्चे तेल से प्रतिबंध नहीं हटते और अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से जब तक वापस नहीं होती। 13वीं शर्त, समझौते का पालन कराने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष इन शर्तों का पालन करें। और 14वीं और आखिरी शर्त यह होगी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी शांति स्थापित की जाएगी। यानी लेबनान में अगर इजराइल ने बमबारी की, जो वो लगातार कर रहा है, तो ईरान इस शांति समझौते से पीछे हट जाएगा और इसे उसका उल्लंघन मानेगा और अब ये सारा पेच फंस रहा है। डील का ऐलान होने के बाद भी इसराइल ने लेबनान और गाजा पर अपने हमले नहीं रोके। गाजा पर इसराइल के नए हमलों में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान पर भी इसराइल ने बारूद बरसाना जारी रखा। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका का समझौता उन पर लागू नहीं होता। इसराइल अब भी लेबनान और गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा। सुनिए,

0: इसराइल इस डील को इसलिए भी नहीं अपनाएगा क्योंकि इससे ईरान को फायदा ज्यादा है। अमेरिका मिडल ईस्ट का देश नहीं है। अगर कल को ईरान एक बड़ी सुपर पावर बनता है तो इससे अमेरिका को सीधे कोई बड़ा खतरा भी नहीं होगा, लेकिन ईरान का मजबूत होना इसराइल के लिए चैलेंज है, चुनौती बन जाएगा। और जो इसराइल अब तक मिडल ईस्ट के क्षेत्र को डोमिनेट करता आया है, वहां आने वाले दिनों में ईरान का प्रभाव उसे टक्कर देगा। और यही कारण है कि इसराइल न सिर्फ इस डील के खिलाफ है बल्कि वो लेबनान और गाजा में सैन्य संघर्ष जारी रखकर इस डील को तुड़वा भी सकता है और कम से कम कमजोर तो कर ही सकता है। यहां यह भी समझना होगा कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बर्थडे गिफ्ट के चक्कर में ईरान की ज्यादातर शर्तों पर अपनी सहमति दे दी, और क्यों ईरान ने फिर भी ऐसा होने नहीं दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उसे नाम ना छापने की शर्त पर ईरान के दो बड़े अधिकारियों ने यह बताया कि ईरान की इस्लामिक सरकार ने जानबूझकर इस एमओयू को तब अपनी मंजूरी दी जब रविवार बीत चुका था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप का 80वां जन्मदिन था, यानी बीते दिन, और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे थे कि यह डील उनके जन्मदिन पर ही होगी, जबकि ईरान नहीं चाहता था कि दुनिया में यह संदेश जाए कि इतना बड़ा समझौता राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर हुआ और इसका राजनीतिक श्रेय उन्हें दिया जाए। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपने जन्मदिन पर इस एमओयू को मंजूरी दे दी, लेकिन ईरान ने इस पर सहमति देने में वक्त लिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान ने रात को 12 बजने का इंतजार किया और उस वक्त इस डील की घोषणा की जब वो ये कह सके कि ये डील 15 जून को हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर यह समझौता नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के ऐसा करने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप कह सकते हैं कि इस एमओयू की घोषणा उन्हीं के जन्मदिन पर हुई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के टाइम में 7 घंटे का अंतर है और इस हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान दोनों अपनी अपनी सुविधा से इस डील की तारीख को लेकर दावे कर सकते हैं। यहां यह भी समझना होगा कि क्या इस युद्ध के लिए दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप की विवेचना करेगी। आज से 11 साल पहले साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की थी जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इसके तहत यह तय हुआ था कि ईरान अभी भी यूरेनियम के 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा, अपने यूरेनियम भंडार में कटौती करेगा, इसे सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या 2/3 घटानी होगी। यही नहीं, अमेरिका ने कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रहेगा और प्लूटोनियम बनाने की भी कभी कोशिश नहीं करेगा। बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया था और कुछ लोग दावा करते हैं कि तब अमेरिका की तरफ से ईरान को $150 बिलियन अलग से दिए गए थे और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं। लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक उस वक्त ईरान को अलग से एक भी पैसा नहीं दिया गया था। ईरान को वही पैसे मिले थे जो अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए थे और जो उसी के पैसे थे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगता है कि उन्होंने गलत दावा करके साल 2018 में इस डील को रद्द करा दिया किया और आज 2026 में वो 3 महीने का युद्ध लड़कर ईरान से ऐसी डील करने जा रहे हैं जो डील 2015 की डील से कमजोर मानी जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप फिर भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। हकीकत में जीत तो ईरान की हुई है जिससे अपने निष्क्रिय फंड से कुल $24 बिलियन भी मिलने वाला है, उसके परमाणु पुनर्निर्माण के लिए अलग से $300 बिलियन की एक नई योजना पेश होने वाली है। देखिए,
1: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
2: it'll be soon, maybe this weekend.
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes, that's true. That's part of the deal. Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. That with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people.
0: इस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि अंतिम समझौते पर इसके 60 दिनों बाद दस्तखत होंगे. और ऐसे में पूरी दुनिया के लिए और आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कब से तेल, गैस ये सप्लाई सामान्य हो पाएगी, और यहां बिछाए गए समुद्री बारूद को हटाएगा कौन? युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया समुद्री नक्शा जारी किया था, जिसमें यह बताने की कोशिश हुई थी कि हॉर्मूज में जहाजों के गुजरने वाले रास्ते पर सी माइंस बिछाई गई हैं. अनुमान है कि ईरान के पास 2000 से 6000 तक समुद्री माइंस हो सकती हैं, जिनमें से काफी ईरान ने खुद बनाई है. लेकिन अभी यह स्पष्ट ही नहीं है कि ईरान ने इनमें से कितनी माइंस को समुद्र में बिछाया है, वो अभी कहां पर है. इससे भी बड़ी बात यह है कि माइंस को हटाना बहुत आसान नहीं होता. इस प्रक्रिया को माइन काउंटर मेजर्स यानी MCM कहते हैं. इसमें दो मुख्य काम होता है. पहला है माइन हंटिंग यानी खोजना, सोनार की मदद से माइंस को ढूंढा जाता है, और दूसरा है माइन स्वीपिंग, जिसमें माइंस मिलने के बाद उन्हें निष्क्रिय करना है, इनएक्टिव करना है, नियंत्रित विस्फोट करके उड़ाया जाता है. अब बड़ी समस्या ये है कि अगर ईरान ने 500 माइंस भी हॉर्मूज में बिछाई होंगी, 500 सिर्फ, तो इन्हें हटाने में बहुत समय लगेगा. एक सी माइन को ढूंढकर उसे नष्ट करने में औसतन 5 घंटे लगते हैं. इस हिसाब से 500 माइंस को हटाने में 2500 घंटे लगेंगे. 2500 घंटों का मतलब हुआ 104 दिन या 3 महीने 14 दिन. अगर अमेरिका ईरान के साथ मिलकर एक साथ 20 टीमें भी इन सी माइंस को ढूंढकर उन्हें नष्ट करने में लगाता है, तब भी ऐसा करने में 3 महीने चाहिए. हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी. हालांकि इससे कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी और धीरे धीरे तेल और गैस का संकट जरूर खत्म होगा. मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि हॉर्मूज के खुलने से किन देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. तो यहां आप देख सकते हैं कि युद्ध से पहले हॉर्मूज से किन देशों का कितना कच्चा तेल जो है वो निर्यात होता था. तो हॉर्मूज से जो कच्चा तेल है उसमें सबसे पहले आप देखिए इराक बसरा, जहां 18% जाता था. कुवैत से आप देख लीजिए, कुवैत से 11%. उसके बाद आप आ जाइए ईरान, ईरान 11%. और यहां से ये आगे बढ़ता था ऐसे ही. जब आप देखेंगे सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में भी 28%. अब इसको एक सेकेंड में डिलीट कर दूं यहां. अब आपको दिखाते हैं कि ये कहां से आता है. और यहां से जब सऊदी अरब से ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी कुछ 3 जगह है, जिसमें एक बहरीन हो गया, एक कतर हो गया और एक UAE, जहां पे दुबई और अबू धाबी ये सब है. तो यहां से भी 14% यहां से, 28% सऊदी अरब है. यहां से ये तेल, कच्चा तेल जो है वो आगे बढ़ता है और निर्यात के लिए आगे बढ़ता है. जाता कहां है सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये एशिया, जिसमें 80% मुझे लगता है ये देखिए एशिया का 80%. ये जो 80% है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाता है. और यहीं पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको अन्य जगह भी दिखा देते हैं, जिसमें यूरोप और अन्य देशों में 13% है. ये एशिया में जैसे हमने आपको दिखाया 18% है. उसके बाद अमेरिका में देखिए 7%, भारत में 13% और 25% जाता है चाइना में, जो कि इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहां कहां पर पहुंचता है. तो दक्षिण कोरिया में 10% पहुंचता है ये कच्चा तेल और गैस. उसके बाद से कच्चा तेल और गैस जापान में 9%, दक्षिण पूर्व एशिया में ये लगभग 11% है जो आप देख रहे हैं, और अन्य एशियाई देशों में ये जाता है 10%. तो इससे आपको समझ में आ गया कहां कहां पर ये कितना तेल जाता है, कितना तेल मौजूद है, किन देशों में कितना पहुंचता है, किन देशों से निकलता है. तो ये जो पूरा रास्ता है तेल और गैस की सप्लाई का, वो बाधित हुआ है. और सभी को इसी बात का इंतजार है कि वो एक बार वापस हो जाए ताकि कीमतें कंट्रोल में आए. और अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये डील पाकिस्तान ने कराई या ये डील कतर ने कराई है. सार्वजनिक रूप से इस डील का पहला ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ. शहबाज शरीफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को इस डील के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि पहली सूचना शहबाज शरीफ की तरफ से आई थी, इसीलिए अभी कई लोग पाकिस्तान को इस डील का श्रेय दे रहे हैं. लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है. पिछले महीने ईरान के सरकारी मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हुई कि पाकिस्तान मध्यस्थता में गड़बड़ी कर रहा है. वो राष्ट्रपति ट्रंप की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस तरह से काम करता रहा जो अमेरिकी हितों के अनुकूल था, और चापलूसी करने में इतना उस्ताद कि ईरान की तरफ से हमेशा गलत संदेश अमेरिका को पहुंचाया जा रहा था। जी हजूरी वाली तबीयत और मिजाज पाकिस्तान की छूट नहीं रही थी, लेकिन बाद में ईरान ने पाकिस्तान के डबल गेम पर चिंता जताते हुए उसकी मध्यस्थता को संदेह के दायरे में रख दिया, और जब मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका सीमित हो गई तो कतर आगे आया। पिछले महीने 25 मई को ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुंचा। इनमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची शामिल थे। इसी दौरान कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच चर्चा की, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच एक भरोसेमंद संपर्क शुरू हुआ। ईरान ने कतर को जब यह बताया कि वो अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को मुक्त कराना चाहता है, तब कतर ने ईमानदारी से ये बात अमेरिका तक पहुंचाई कि हमारी जो संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज की हुई है, हमें वो संपत्ति चाहिए। अमेरिका के लिए कतर पर भरोसा करना इसलिए भी आसान था क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका की डील भी कतर ने ही कराई थी, और कतर की खासियत यह है कि वो ऐसे विरोधी पक्षों से भी बातचीत बनाए रखता है जो आपस में सीधे बात नहीं करते, और यहां भी ऐसा ही हुआ। जब ईरान और अमेरिका ने कतर को बीच में रखकर बातचीत शुरू की तो धीरे धीरे दोनों देश सहमति के केंद्र बिंदु पर पहुंचने भी लगे। पाकिस्तान बार हुआ नहीं कि समझौता होने लगा। इनमें भी 12 जून का दिन सबसे महत्वपूर्ण था, जब कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने राष्ट्रपति ट्रंप से खुद बात की। दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता तैयार करवाया जो अंतिम समझौते का आधार बने। जब ईरान ने कतर को अपना जवाब भेजा तो उसके बाद इस डील का ऐलान हुआ, और कतर ने खुद कहा कि इस मध्यस्थता में कई सहयोगियों ने भूमिका निभाई लेकिन केंद्र भूमिका में वही रहा। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म कि उसने यहां इस समझौते का श्रेय लेने की कोशिश की, और आप खुद देखिए कि पाकिस्तान की संसद में कैसे शहबाज शरीफ इसका ऐलान करके वाहवाही भी लूट रहे हैं। पीओके में लगातार आम लोगों का खून बह रहा है, अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है पाकिस्तान, और जो बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना भी कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकवा दिया। देखिए,
3: मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पजश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। वायदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी, और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी।
0: खैर, आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, और ये मुलाकात अहम क्यों मानी जा रही है। पिछले साल जब कनाडा में G7 समिट का आयोजन हुआ था और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध के कारण समय से पहले वॉशिंगटन डीसी, अगर आपको याद हो तो वो अचानक वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गए थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे और लौटते वक्त उनसे मिलने के लिए व्हाइट हाउस आए, मतलब वो वहां से निकलकर पहले व्हाइट हाउस जाएं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और फिर भारत आए। लेकिन ओडिशा में एक कार्यक्रम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के निवेदन को अस्वीकार कर दिया था, और उस वक्त ये खबर इसलिए भी बड़ी बनी थी क्योंकि तब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था और भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अब इस साल फ्रांस में G7 समिट का आयोजन होने वाला है और उम्मीद है कि इस बार इस समिट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मुमकिन है। 13 फरवरी 2025 के बाद इन दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी, और ऐसे वक्त में होगी जब हॉर्मूज में अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमला किया है। इनमें एक हमले में हमारे 3 नाविकों की जान चली गई है। हालांकि इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से उनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच नई डिफेंस और ट्रेड डील का ऐलान हुआ है। देखिए,

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात हुई है। और बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात में भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसलिए आज हम ये भी समझेंगे कि एआई के क्षेत्र में भारत फ्रांस से क्या चाहता है और फ्रांस भारत से क्या चाहता है।

0: रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब फरवरी महीने में भारत आए थे, तब उन्होंने भारत में आयोजित इंटरनेशनल एआई समिट में हिस्सा लिया था। और ऐसा नहीं है कि एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की ये नजदीकी सिर्फ कुछ समझौते और कुछ निवेश के कारण है, असल में खेल इससे भी बड़ा है। आप रोज सुनते होंगे कि एआई इज द न्यू ऑयल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एआई पूरी दुनिया के बाजार को बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे अब तक कच्चे तेल और गैस पर दुनिया के ज्यादातर देशों की निर्भरता रही, वैसी ही निर्भरता अब एआई पर भी बन रही है। एआई इस वक्त हर जगह है, आपके फोन पर, आपके टेलीविजन में, आपकी गाड़ी में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, यहां तक कि आपकी नौकरी में भी एआई है ज्यादातर जगहों पर। अब समस्या यह है कि अब तक एआई पर जिस तरह का नियंत्रण अमेरिका, चाइना ने स्थापित किया, वैसा नियंत्रण दूसरे देश हासिल नहीं कर पाए। आज भी एआई कंप्यूटिंग पावर में अमेरिका और चाइना की हिस्सेदारी जानते हैं 90% है, जबकि एआई निवेश में हिस्सेदारी 70-80%, यानी पैसा भी उन्हीं का लगा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि अगर दुनिया का 90% कच्चा तेल सिर्फ दो देशों के पास हो तो दुनिया कैसे उन देशों पर निर्भर हो जाएगी और उससे अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। अब एआई के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। उदाहरण के लिए एआई चिप्स में अमेरिकी कंपनी एनविडिया की सबसे बड़ी 90% हिस्सेदारी है। इसके अलावा आप जो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी अमेरिका के हैं। एआई रोबोट के मामले में चाइना बहुत आगे है। अब ये दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से दुनिया इनकी ग्राहक बनकर रहे और इसी मोनोपोली यानी एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत और फ्रांस ने हाथ मिलाया है। जैसे भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि हम मिलकर एआई मॉडल्स बनाएंगे, एआई साझेदारी में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और अमेरिका और चाइना जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और फ्रांस ऐसा कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत दुनिया में 30वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत में एआई कौशल का प्रसार दुनिया के औसत से 2.5 गुना ज्यादा है, यानी हमारे देश में एआई टैलेंट की कमी नहीं है। और ऐसे में हमारे देश में भी 87% कंपनियां जो है उसमें आगे बढ़ रही है। इसे भारत के एआई क्षेत्र में निवेश भी बढ़ रहा है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो एआई में निवेश के मामले में भारत अब 8वें स्थान पर है जबकि फ्रांस 7वें स्थान पर। तो अगर 7वें और 8वें नंबर पर दोनों हैं और हाथ मिला लें तो बड़ी ताकत बनेंगे। भारत के पास एक और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास एआई टैलेंट की कमी नहीं। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके बाजार में आते हैं और एआई ऑथर्स और इन्वेंटर्स के मामले में भारत अमेरिका के बाद आता है और हम जर्मनी जैसे देशों से भी आगे हैं। अब भारत को अगर बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है तो हमें फ्रांस का साथ चाहिए होगा, जहां हम एआई टैलेंट दे सकेंगे और फ्रांस हमें अपना अनुभव दे सकेगा। और यही वजह है कि एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की मित्रता बड़ी मानी जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। कल तक माना जा रहा था कि केंद्र की एनडीए सरकार सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के भरोसे टिकी है, लेकिन अब इस कहानी में अहम किरदार बनकर उभरी है ममता बनर्जी से बगावत करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तेदार। काकोली घोष दस्तेदार और उनके साथ आने वाले टीएमसी के बाकी 19 बागी सांसदों ने ऐसा दांव चला है कि वो दल बदल कानून के पेच से बच जाए। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने खुद के एनसीपीआई में विलय हो जाने की घोषणा की और स्पीकर ओम बिरला से संसद में अलग मान्यता की मांग की है और कहा है कि हम एनडीए का समर्थन करेंगे, यानी ये सांसद भी आ गए बीजेपी के खेमे में, मोदी के खेमे में। एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, अगर मैं कल से पहले पूछती तो आप में से कितने लोग, हम लोग भी शायद एकदम से नाम ना आए कि कौन सी पार्टी है, कहां की पार्टी है। आम लोग तो छोड़िए, नेता भी शायद और जो राजनीतिक पंडित हैं, पत्रकार हैं, वो भी ना बता पाते कि कौन है ये पार्टी। कल रात को जब टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई का नाम लिया, उससे पहले एनसीपीआई के फेसबुक पेज पर सिर्फ 75 फॉलोअर्स थे, अब 4800 हो गए हैं फॉलोअर्स। एक राजनीतिक दल के तौर पर एनसीपीआई का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2023 को हुआ था। एनसीपीआई ने अपना पहला चुनाव बंगाल के बजाय त्रिपुरा में लड़ा था। 2023 के चुनाव में त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर एनसीपीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इसके बाद एनसीपीआई ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। छवामनु सीट पर पार्टी उम्मीदवार को 536 और कैलाश शहर सीट पर 286, कुल 286 वोट मिले, यानी एनसीपीआई को टोटल वोट कितने मिले, 822। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई के इस त्रिपुरा चुनाव का नारा था रिजेक्ट पॉलिटिकल टर्न कोड्स, यानी दल बदलुओं को नकारो। अब पश्चिम बंगाल में हावड़ा के सकराइल के पते पर पार्टी का एक रजिस्टर्ड दफ्तर है। इस बिल्डिंग के गेट पर एक पत्रकार के तौर पर उत्तिया कुंडू और कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील के तौर पर शिवली कुंडू के नाम है। बिल्डिंग में एनसीपीआई का बैनर टंगा हुआ है। 2023 के बंगाल पंचायत चुनाव में भी एनसीपीआई ने उम्मीदवार उतारे थे और अब ये सभी के सभी सांसद इसी पार्टी में मिल गए। साल 1970 में एक फिल्म आई थी, नाम था सफर। इस फिल्म का एक गीत है जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। प्रेम गीतों में भले ही इस तरह की बातें कही जाती हों, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन को रात कह देने से रात नहीं हो जाएगी। गाने का उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन वो कह देती हैं, स्टैंप लगा देती हैं और उन्हें लगता है कि जैसा वो कहते हैं लोग उसे मान भी लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की शायद ही ऐसी कोई चीज बची हो जिसमें मिलावटखोरी की खबरें ना आई हो। त्योहारों का समय होगा तो दूध, दही, घी, मक्खन, मावे, मिलावट ही मिलावट। नवरात्र होंगे तो कट्टू के आटे में मिलावट शुरू हो जाएगी। और तो और, जब ये मिलावटी चीजें खाकर बीमार होने लगेंगे लोग तो एक्सपायर्ड या मिलावटी दवाइयों का शिकार बन जाएंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उसकी शुद्धता की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। इसी डर की वजह से लोग बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा करते हैं। वो मानकर चलते हैं कि इन कंपनियों की कोई चीज अगर खरीदी तो शुद्ध ही मिलेगी। ये कंपनियां भी टेलीविजन, अखबार या प्रोडक्ट की पैकेजिंग में उनसे इसी तरह का दावा भी करती हैं। जैसे एक कंपनी है वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक, नाम से लगता है कि ये कंपनी ऑर्गेनिक सामान बेचती है। यानी ये कंपनी जो भी बेच रही है उसका दावा है इसकी उसकी जो खेती है प्राकृतिक रूप से हुई है और उसमें किसी तरह की कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कम से कम कंपनी का लेबल तो यही कहता है, नाम भी ऐसा रख दिया। आप में से कई लोग घर में द हेल्थ फैक्ट्री का जीरो मैदा ब्रेड भी, जो है ना जीरो मैदा ब्रेड, वो इस्तेमाल करते होंगे। नाम से लगता है कि ये कंपनी कंज्यूमर्स की सेहत का बड़ा ख्याल रखती है, तभी से नाम हेल्थ फैक्ट्री रखा है। इमामी कंपनी के आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो बनाती है, इसमें इसके अलावा खाने का तेल जैसे सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड राइस ब्रांड भी बेचती है। अपनी कंपनी के खाने के तेल को वो हेल्दी एंड टेस्टी बताकर बेचती है। मतलब कंपनी का दावा है कि उनका तेल हेल्दी है, कम से कम पैकेजिंग देखकर तो यही लगता है। लेकिन इन कंपनी से जुड़ा सच कड़वा है। सच ये है कि देश की कई बड़ी कंपनियां आजकल हेल्दी, ऑर्गेनिक और वीगन के नाम पर झूठ बोल रही हैं। ये कंपनियां मिलावटखोरी को लेकर आपके डर का फायदा उठाती हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14 कंपनियों को देश की जनता में भ्रम फैलाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FSSAI का कहना है कि इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट पर भ्रामक दावे करके जनता को गुमराह किया। संस्था के मुताबिक इन कंपनियों ने हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन के नाम पर झूठ फैलाया, जबकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत अपने प्रोडक्ट का भ्रामक नाम रखना प्रतिबंधित है। आजकल लोग अपने परिवार के लिए शुद्ध सामान खरीदना चाहते हैं। कस्टमर्स की इच्छा को कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का ट्रेड नेम बना लिया, जैसे वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक, नाम से लगता है ऑर्गेनिक सामान ही मिलेगा। लेकिन FSSAI का कहना है कि इस कंपनी के पास ऑर्गेनिक सामान बेचने का सर्टिफिकेट ही नहीं है, यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये ऑर्गेनिक सामान बेचती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स नाम की कंपनियों ने भी यही सर्टिफिकेट नहीं लिया और ऑर्गेनिक पर अपना सामान कंपनी का ही नाम रखकर बेचने लगे। स्टोरिया नाम की एक कंपनी अनार का जूस बेच रही है। इसकी पैकेजिंग देखकर लगता है कि इसमें अनार का शुद्ध जूस होगा, लेकिन सच ये है कि इसकी एक बॉटल में केवल 4% अनार का जूस है। आयोटा नाम की कंपनी पानी की बॉटल्स बेचती है, दावा है कि इसमें अलग से मिनरल्स मिलाए जाते हैं। अब FSSAI का कहना है कि यह दावा नियमों का उल्लंघन है, पानी की बॉटल में अलग से मिनरल्स मिलाने का दावा बिल्कुल गलत है। ये मामला केवल ऑर्गेनिक सामान तक सीमित नहीं है, कई कंपनीज तो अलग लेवल पर ही झूठ बोल रही है। तो सुनिए, देश में द हेल्थ फैक्ट्री, हेल्दी चॉइस, हेल्दी मास्टर्स, हेल्थ एड नाम की कंपनियां जिन्होंने सामान बेचने के लिए अपने नाम में ही हेल्दी शब्द जोड़ लिया है ताकि लोगों को लगे कि उनका प्रोडक्ट सेहत के लिए बड़ा बढ़िया है। इमामी ने भी ऐसे ही खाद्य तेल की ब्रांडिंग हेल्दी एंड टेस्टी कर दी, जैसे बहुत सेहतमंद है, और वो भी तेल। FSSAI का कहना है कि कोई भी अपनी कंपनी जो है वो अपने ट्रेड नेम में हेल्दी होने का दावा नहीं कर सकती, ये भ्रामक है, नियमों का उल्लंघन है। इसी तरह एक कंपनी है ट्रूवी, नमकीन बनाती है, अपनी नमकीन की ब्रांडिंग है द हेल्दी चिप्स। अब हेल्दी चिप्स कहके वो अपनी ब्रांडिंग करती है और इसी नाम से बेचती है, यानी इसका दावा है कि इसके चिप्स और नमकीन सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। आजकल कुछ लोग वीगन डाइट लेते हैं, यानी उनका खाना, उनका जो खान पान है पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होता है, कुछ भी मांसाहारी नहीं। देश में कंपनी है प्लान बी, इसका दावा है कि ये प्लांट बेस्ड वीगन बेचती है, जबकि FSSAI के मुताबिक इस कंपनी के पास वीगन प्रोडक्ट बेचने का लाइसेंस ही नहीं है। मतलब वीगन सामान कितना वीगन है कोई गारंटी नहीं है। जिन कंपनीज को FSSAI ने झूठी ब्रांडिंग को लेकर नोटिस भेजा है उनसे पूछा गया है कि क्या उनके पास ऑर्गेनिक या वीगन सामान बेचने का लाइसेंस है। कंपनीज को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जैसे सर्टिफिकेट लेने होते हैं। ये सर्टिफिकेट तब मिलते हैं जब एजेंसी ऑर्गेनिक खेती उत्पादन से जुड़ी पूरी जांच को सही पाती है। इसी तरह से वीगन सामान बेचने के लिए वीगन फूड सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। जहां तक प्रोडक्ट्स को हेल्दी बताने की बात है तो इसके लिए कंपनीज को वैज्ञानिक प्रमाण देना होता है जिसके कारण से उनका प्रोडक्ट हेल्दी माना जाए। सच यह है कि कंपनियां ऐसा कोई प्रमाण नहीं देती, और कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस अपने प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक, वीगन, हेल्दी नहीं लिख सकती, नहीं बेच सकती। इसके लिए बाकायदा नियम है। अब समझना यह होगा कि यह तो लोगों को ठगने के बराबर है, सावधान आपको रहना है और झूठे दावों पर भरोसा नहीं करना है। आपको बताएंगे कि आखिर इस बार मॉनसून रूठा रूठा सा क्यों नजर आ रहा है। जून का महीना आधा बीत चुका है, आसमान में बादल भी है लेकिन जमीन राहत की फुहारों को तरस रही है। पूरे देश को बारिश से सराबोर करने वाले जो मॉनसून है वो बीच रास्ते में ही ठिटक गया है। मौसम विभाग यानी IMD के ताजा आंकड़ों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक 4 जून से 14 जून के बीच भारत में सिर्फ 34.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान देश में 47.7 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। इस हिसाब से देश में कुल मिलाकर 28% बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। आखिर बादलों की इस लुका छिपी और मानसून के अचानक थम जाने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल देश के दक्षिण और मध्य हिस्से में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो अचानक एक बड़ी रुकावट का शिकार हो गया है। अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली वेस्टली जेट स्ट्रीम यानी पश्चिमी हवाओं की एक तेज धारा अपने सामान्य रास्ते से खिसक कर काफी दक्षिण में आ गई है। इसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि मॉनसून की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो कमजोर पड़ गई। इसका परिणाम यह रहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो मॉनसूनी सिस्टम बन रहे हैं उन्हें जमीन की तरफ धकेलने के लिए कोई मजबूत सहारा नहीं मिल रहा है। हवा में नमी तो है, बादल भी हैं, लेकिन इस हवा में वो लिफ्ट यानी उठाव नहीं है जो इन बादलों को भारी बारिश करने वाले बादलों में बदल सके। हालांकि अनुमान है कि 20 जून के बाद अपर एटमॉस्फेयर की ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, जिससे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के सफर फिर से मजबूत होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो मॉनसून को फिर से नया जीवन मिल सकता है। मौसम का ये मिजाज देश के करोड़ों किसानों, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मई के महीने में जिन वेदर मॉडल्स ने एक शानदार मॉनसून की भविष्यवाणी की थी उन्हें प्रकृति ने फिलहाल एक बड़ा झटका दिया है। अब देश की नजरें 20 जून के बाद आसमान में होने वाले बदलावों पर टिकी है। क्या रूठा हुआ मॉनसून समय रहते मान जाएगा या देश के सामने पानी का संकट गहरा जाएगा? इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं, एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, बुजुर्गों को है, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में, कहीं भी जमा साफ पानी में, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रीय व्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह, बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी हो, कूलर हो, गमला हो, प्लास्टिक हो, पानी साफ करते रहे, पानी जमा ना होने दें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मस्कीटो रिपेलेंस का नियमित इस्तेमाल जरूर करिए। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड to the bank, and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
6: La Que Buena!
5: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet to
5: have. The Daily.
8: From the New York Times, I'm Katrin Ben Holt, and this is The Daily.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: अमेरिका इसराइल के बीच करीब 68 दिन भीषण जंग चली। ईरान के कई शहरों समेत पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची। मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार हुआ। ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल गया। यहां तक कि सीज फायर के बाद भी दोनों ओर जंगी तनाव बना रहा। अमेरिका ईरान के बीच डील की कई कोशिशें हुई, कई बार बातचीत बेपटरी होती दिखी, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच बारूदी शोर पूरी तरह थमने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के साथ पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता खुल गया है। कई दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक की ओर से ईरान की समुद्री सीमा की नाकेबंदी को फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। उधर ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा है कि अमेरिका से डील को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें लेबनान में चल रही सैन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी डील में अमेरिका ने ईरान की कुछ मांगों पर सहमति जताई और ईरान भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ा। दोनों देशों की डील को लेकर जो अहम बिंदु सामने आए हैं, उनमें ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना, 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, ईरान पर लगी तेल पाबंदियां हटाना, ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करना शामिल है। उधर ट्रंप अपने जन्मदिन के मौके पर किए इस अहम ऐलान को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डील को लेकर ट्रंप पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
1: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
0: सीज़फ़ायर के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच डील को लेकर तमाम कोशिशें भी हो रही थी। कई ऐसे मौके भी आए जब फिर दोनों देशों में तनाव भड़का। बातचीत बेपटरी हुई, लेकिन अब इस ऐलान के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और दूसरों की जिंदगी के स्क्रीनशॉट लेकर घूमने वाले भूल जाते हैं कि ऊपर वाले के पास उनका पूरा बैकअप मौजूद है। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे के ऐलान के बाद बोले ट्रंप, तेहरान के पास नहीं होंगे परमाणु हथियार, शुक्रवार को पूरी तरह से खुल जाएगा हॉर्मुज, पीएम मोदी ने किया स्वागत। पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत स्लोवाकिया रिश्तों को मिली नई उड़ान, रक्षा स्पेस व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन।

0: नीट एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच। अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दिया टेंशन। लंबी दूरी के स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: की जीत है, जिस तरह से ये डील हुई, क्या उससे रोहित आपको ये लगता है कि ट्रंप डील करने के लिए खुद बेताब दिख रहे थे?
1: देखिए सईद, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल अगर हम ये देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं एक डील को लेके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बेताब दिख रहे थे और कोशिश तो उनकी यही थी कि डील जल्दी से जल्दी अनाउंस की जाए। साथ ही साथ उन्होंने दबाव बनाए रखा ईरान के ऊपर, हमेशा कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, यूरेनियम जो है एनरिच किया हुआ है, ईरान ने उसे हैंड ओवर करना होगा। तो आई थिंक एक तरीके से अगर हम इसे देखें, जो अभी अगेन डिटेल्स हमें पता नहीं है, फ्राइडे को हमें डिटेल्स पता चलेगी कि किस तरह की चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, क्या एक्सेप्शंस। लेकिन अगर ईरानियन मीडिया की स्पेसिफिकली हम वहां की रिपोर्ट्स देखें, तो ऐसा जरूर लगता है कि शायद ईरान की तरफ से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें ये जो डील है ये ईरान की एक जीत है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, जेडी
0: जी
1: वैंस ने खुद ये बात कही है कि ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है, और मैं ये नहीं कह सकता कि सारी चीजें रोजी हैं, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन है। इसके आगे जो भी डिस्कशंस होंगे, स्पेसिफिकली उस न्यूक्लियर
0: क्या है
1: वेपन्स को
0: अगली?
1: लेके, उनके
0: बोलिए।
1: डेवलपमेंट को लेके, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके, वो आने वाले समय में निगोशिएट होंगे। तो मुझे लगता है कि विल हैव टू वेट एंड वॉच, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई थिंक एक नैरेटिव जरूर बनाया जा रहा है कि इसमें ईरान की जीत है और अमेरिका जो है कहीं उसका थोड़ा सा पलड़ा जो है अभी हल्का दिख रहा है।
0: बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ट्रंप की तरफ से ये हस्ताक्षर जो हुए हैं वो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किए हैं और ईरान की तरफ से पार्लियामेंट्री उनके सदन के संसद के स्पीकर ने हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा है कि वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर ने हस्ताक्षर किए हैं। हम आपको सीधे इस समय हमारी संवाददाता सुमित चौधरी के पास लिए चलते हैं। सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, लगता है कि क्या आपको लगता है कि अब इस एमओयू के बाद, इस पीस डील के बाद, शुक्रवार से पूरी तरह से हॉर्मुज के खुलने के बाद अब शांति रहेगी या कहीं ना कहीं कुछ शंका अभी भी सुमित आपके मन में है?
2: देखिए बिल्कुल आपने जैसा बताया कि खुद जेडी वेंस की तरफ से भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिकली उनकी तरफ से और ईरान के स्पीकर गालिबाफ की तरफ से इस पे साइन हो चुके हैं और एक जो फॉर्मल सेरेमनी होगी वो शुक्रवार के दिन होगी, लेकिन उससे पहले भी कहा जा रहा है कि कई शिप्स को निकलने के लिए कह दिया गया है। सही, बहुत चीजें जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, नो डाउट इसमें कि पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चीजें कब तक चल पाएंगी? दरअसल ये पूरी की
0: जी
2: पूरी डील एक कमजोर धागे से बंधी हुई है और कमजोर धागा ये है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर अब भी मिसट्रस्ट है, अब भी लगातार ये कहा जा रहा है। देखिए ईरान की तरफ, अमेरिका की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जेडी वेंस की तरफ से कहा गया कि अगर ये सारी की सारी डील या सारे की सारे आप कह सकते रियायतें जो होंगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी, यानी ईरान जैसा जैसा करता रहेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंसली
0: जी
2: अमेरिका जो है उनको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि वैसे हम दोनों के बीच में हिस्ट्री रही है मिस्ट्रस्ट की और हमें बहुत कॉशियस होकर, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब ये मिस्ट्रस्ट है, लेकिन इस मिस्ट्रस्ट का फायदा क्या इसराइल उठा सकता है? क्या इस मिस्ट्रस्ट का फायदा या इस मिस्ट्रस्ट के अपॉर्चुनिटी का फायदा क्या इसराइल उठा सकता है? उसको तो देखा जाए तो वो ऐसा लगता है कि देखिए इसराइल मानने को तैयार नहीं होगा और इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि एक बार फिर से अमेरिका को अपने साथ ले सके और ईरान पर और ज्यादा प्रेशर डालकर उसके खिलाफ सैंक्शंस के साथ साथ उसके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करवा सके। सईद
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित आप, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर आपने इसराइल का भी उठा दिया है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम आपको अमेरिका वॉशिंगटन लिए चलते हैं। हमारे साथ इस समय प्रेसिडेंट ग्लोबल सिटीजन्स फोरम अमेरिका प्रमित माकोड़े जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद प्रमित जी, आज तक से बातचीत, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप, क्या ये
2: नहीं
0: डिग्री
2: आज
0: हासिल है कि आपके चेहरे पर ये खुशी है प्रमित भाई?
2: नहीं पर आज तो मैं देख रहा हूं कि सभी मेरे दूसरे चैनल
0: आप, क्या ये
2: नहीं
0: डिग्री
2: आज
0: हासिल है कि आपके चेहरे पर ये खुशी है प्रमित भाई?
2: नहीं पर आज तो मैं देख रहा हूं कि सभी मेरे दूसरे चैनल में सभी पैनलिस्ट के चेहरों पे कुछ तो आज मुस्कुराहट बड़े दिनों बाद आई है, और हो भी क्यों ना हो, आई थिंक दिस इज अ वेल।
0: आप, क्या ये
2: नहीं
0: डिग्री
2: आज
0: हासिल है कि आपके चेहरे पर ये खुशी है प्रमित भाई?
2: नहीं पर आज तो मैं देख रहा हूं कि सभी मेरे दूसरे चैनल में सभी पैनलिस्ट के चेहरों पे कुछ तो आज मुस्कुराहट बड़े दिनों बाद आई है, और हो भी क्यों ना हो, आई थिंक दिस इज अ वेलकमिंग न्यूज एज हमारे
3: अपने दूसरे हमारे साथी संवाददाताओं ने बताया कि थिंग्स आर स्टिल वेरी फ्रेजाइल, एकदम से सब दूसरे एक दूसरे पे विश्वास करना अभी कठिन है, लेकिन एक दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज, अ पॉजिटिव स्टेप कि आज एक शांति की तरफ या एक सीज फायर की तरफ एक मजबूत कदम उठा है। और इसका अच्छी बात यह है कि नॉट ओनली प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की तरफ से, इस बार कई सारे ईरान के राजनीतिक लोगों ने और उनके ऑफिसर्स ने भी बड़े मजबूती से इस सीज फायर के और इस 60 डेज के एग्रीमेंट या 60 डेज की
0: बीच में रोक के एक बात पूछ रहा हूँ, कहीं आप ट्रंप ट्रंप का जो बिहेवियर रहा है और अपनी बात से पलटने का उनका जो इतिहास रहा है, प्रवीण जी आपको कोई डर तो नहीं लगता कि पलट जाएंगे फिर से कुछ हो जाएगा?
3: देखिए, दैट हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज हिज स्टाइल, ही वांट्स टू कंफ्यूज द अपोनेंट और उससे एक वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। पर अभी इस बार जिस तरह से, इसलिए मैंने कहा कि इस बार जो ईरान के राजनीतिक और ईरान के लॉट ऑफ ऑफिसर्स और मिलिट्री रूलर्स और उनके जो अपने स्पीकर हैं उनकी तरफ से भी जो बयान है, जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर की जो बयान है, इस बार लगता है कि चीजें थोड़ी मजबूती के साथ डिस्कस हुई हैं एंड दिस विल कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट 60 डेज, इट विल बी अ गुड वेलकमिंग न्यूज कि आई थिंक अब ये, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस बार कि बिकॉज मध्यावर्ती चुनाव जो नवम्बर के फर्स्ट वीक रहे हैं, हमारा इन्फ्लेशन कम हो और इसके बाद दैट क्यूबा विल बी आल्सो इन डिस्कशन वेरी सून। सो अभी देखिए किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती है, पर अमेरिका अपनी एक तरह से जीत मान रहा है और हो भी क्यों ना हो, आई थिंक मिलिट्रीली इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली अमेरिका इज प्रोजेक्टिंग एंड इट इज हिज अपर हैंड, और मुझे तो लगता है डेफिनेटली अमेरिका का अपर हैंड है इस डील में।
0: इसमें प्रमेश जी सबसे बड़ी बात यह है कि किससे किसी का भी अपर हैंड हो, लेकिन चूप ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हम देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो कम होगा, उसे फायदा होगा?
3: निश्चित रूप से, देखिए होल वेस्ट एशिया वाज सफरिंग कि एक तरह से जो मैरीटाइम चोक पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का, उसको पहले ईरान ने लिवरेज किया, ईरान ब्लैकमेल करने लगा और युद्ध नीति के अंतर्गत अमेरिका ने उस स्क्रिप्ट को पलट दिया और पूरा ब्लॉकेट लगा के पूरी दुनिया में एक तरह से बड़ी परेशानी हो गई थी। तो आज उससे बहुत बड़ी राहत सबको मिलेगी। ऑयल प्राइसेस हमने देखा है ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन 5% के आसपास, टेक्सास के जो यहाँ का जो मार्केट है उसमें 5% कम हुए, एंड आई विल सी वी विल सी दैट और भी इसमें कम होता हुआ दिखेंगे अपने को अगले कुछ 7 से 10 दिन में। सो दैट विल बी अ वेलकमिंग न्यूज फॉर एवरीबॉडी बिकॉज इन्फ्लेशन से केवल अमेरिका नहीं, भारत, चाइना और पूरा तमाम दुनिया परेशान है।
0: और प्रवीण जी हम ये भी कहेंगे कि इस समय हमें किसे फायदा हुआ और किसने क्यों डील की, उससे ज्यादा ये है कि ये डील चले, ये डील हो जाए, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं और आपने हमने ये भी देखा है कि ईरान ने तो हमेशा मना किया, अमेरिका ही कहता रहा, ट्रंप ही कहते रहे कि डील कर रहे हैं डील कर रहे हैं, और ईरान ने उससे मना किया। हम और बात करेंगे थोड़ी सी ग्लोबल इकोनॉमी पर आपसे प्रवीत जी, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान गयूर मौलाई जी हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं ईरान पर, आप रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। गयूर जी, कैसे लेते हैं आप इस पीस डील को?
4: शुक्रिया,
0: आप मुझे सुन पा रहे हैं?
4: देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक समझौते की तरफ कदम बढ़ रहे हैं दोनों देशों के आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि क्या ये समझौता अगर होता भी है तो टिकता है या नहीं, यहाँ सारी बात आकर फिर टिक जाती है अमेरिका के ऊपर और ट्रंप साहब के ऊपर। क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि इससे पहले भी बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान, अमेरिका और विश्व शक्तियों के दरमियान एक समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका कुछ टाइम तक रहा भी, लेकिन ट्रंप साहब जब अपने पहले कार्यकाल में सत्ता में आए तो वो इस समझौते से निकल गए थे। ईरान अमेरिका के समझौते से निकलने के बाद भी तकरीबन 2 से 2.5 साल इस समझौते में बना रहा कि शायद अमेरिका के अलावा जो समझौते में शामिल पक्ष थे यूरोपीय देश वो अपने वादों पर अमल करे, लेकिन किसी ने भी कोई अमल नहीं किया। वो समझौता जिसे JCPOA कहा जाता था वो भी किसी
0: काम, ये पुरानी बातें हुई और प्रमेश जी से भी हम यही कह रहे थे।
4: ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU साइन हुआ है, ये कितना टिकाऊ होगा, क्या शांति ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, ये भी डिपेंड करता है खुद अमेरिका।
0: आपको कुछ शक है
4: इस समझौते में? दो बात हो रही है, वो ईरान की तरफ से कहा गया है कि
0: हमें लग रहा है हमारी आवाज प्रमेश जी नहीं पहुंच पा रही है। गयूर मौलाई जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रमेश माकोड़े जी बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं 107 दिन बाद के युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया। ड्राफ्ट के अनुसार न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और शुक्रवार से तो पूरी तरह से खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि जहाजों का गुजरना जारी हो चुका है, बल्कि ईरान से तेल प्रतिबंध भी हट जाएंगे जो अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस डील से किसे और किस किस को क्या क्या फायदा होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान इस डील में अपना अपना फायदा तो देख ही रहे हैं, तो कैसे ये डील हमारे लिए, हमारे देश भारत के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं है।

0: ईरान और अमेरिका की डील हो गई, अब हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। ईरान और अमेरिका में जंग रुक गई, अब तेल गैस का संकट खत्म होगा। अमेरिका के साथ डील से कैसे ईरान की लॉटरी लगने जा रही है? ईरान के साथ डील में डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा फायदा दिख रहा है? 19 जून को ईरान अमेरिका में डील साइन होगी, दुनिया बहुत खुश होगी। जैसे ही ये खबरें आती हैं कि अमेरिका और ईरान ने दुश्मनी खत्म करने के लिए डील फाइनल कर ली है और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि दुनिया के जहाजों इंजन चालू करो, तेल को बहने दो, दुनिया के लिए जैसे वो दिन आ गया जिसका 107 दिनों से इंतजार था। अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होते ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि वो अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस मौके का सदुपयोग करने के लिए काम करेंगे और इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी पक्षों को बधाई देते हैं। इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले जाने की तैयारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस सप्ताह फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 नेताओं की बैठक में अमेरिका ईरान समझौते के हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को लंबे समय के लिए खोले रखने पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2026 का G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में 19 जून को अमेरिका और ईरान की डील साइन होने से पहले दुनिया के देशों ने आगे की रणनीति पर चर्चा करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है।
1: दस्तक में एक बहुत छोटी से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे क्या खतरे में पड़ सकता है ईरान और अमेरिका का शांति समझौता, क्या इसराइल बनेगा इस समझौते में रोड़ा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए दस्तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
6: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
11: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam. AU!
4: Soch badlo aur bank bhi.
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: स्पीकर ओम बिरला के बंगले 20 अकबर रोड पर कल शाम भारी गहमा गहमी थी। अंदर TMC के सांसदों का जमावड़ा था और बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी थी। निगाहें इस बात पर थी कि TMC से बगावत करके यहां तक पहुंचे इन सांसदों का अगला पड़ाव क्या होगा। इस राज से अब पर्दा हट गया है। TMC के 20 सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की है। इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है, साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है।
14: ये हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व।
15: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी देके आ गए, वो NCPI पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
14: अमित शाह जी के नेतृत्व।
15: हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी देके आ गए, वो NCPI पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
13: तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है। 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में 0 सांसद हैं, राज्यसभा में 0 सांसद हैं, विधायक 0 हैं। लेकिन एक रात में 0 सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला TMC के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें तो जो भी हो इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, 2/3 बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है। TMC के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है, यानी 2/3 के लिए एनडीए अभी 47 पीछे है। लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए 2/3 बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं, झारखंड मिजोरम से 3 सीट और आने की उम्मीद है। TMC के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में 3 और सीटें आ सकती हैं। ये संभव हुआ तो एनडीए की सीट बढ़कर 154 पहुंच जाएगी, यानी 2/3 के आंकड़े 160 से सिर्फ 6 कम। आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है। इस टूट की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई और इसमें किसने बड़ा किरदार निभाया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो तिहाई का लक्ष्य हासिल करने में लगी है ताकि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके, वो विधेयक जिसे वो पिछले सत्र में पारित कराने में असफल रही थी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
16: तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद बांकुरा से आते हैं अरूप चक्रवर्ती, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं आपको बागी कहूं या एनपीसीआई का सांसद कहूं, क्या अब आप क्या हैं?
17: हम सांसद है भाई, पब्लिक हमको चुनाव में लाया काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है। हमको अफसोस है कि ज्योति बोसु बामफ्रंट का जो चीफ मिनिस्टर था 35 साल बर्बाद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में। दिल्ली नहीं देता है, बंगाल को नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है, स्टेट को नहीं मिलता है। वो 35 साल चिल्लाया और ममता दी 15 साल चिल्लाया, 50 साल बंगाल की स्टेट या सेंट्रल पीछे हट रहा है।
16: आपके लिए
17: इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दो सरकार को एक साथ चलाने का कोशिश करता है।
16: आपके लिए भी बहुत बड़ा फैसला होगा क्योंकि जब ये आपको कागुली घोष जी की तरफ से फोन आया होगा या बाकी सांसदों की तरफ से फोन आया होगा कि आप हमारे साथ है, ये 20 सांसद हम लोग एक साथ जाते हैं, टीएमसी से अलग होते हैं, एनडीए को सपोर्ट करते हैं, वो फैसला लेने में आपको मन में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, डर नहीं हुआ, मन में तकलीफ नहीं होगी? काफी लंबे समय
17: काकोली घोष हमको फर्स्ट टाइम फोन किया था तो हम काकोली जी को बोला ये तुमको याद है आज से 30 साल पहले तो आप जब रात को मुंह आप निकलता था गाड़ी लेके छुप छुप के स्टेथो लेके कांची लेके वर्कर लोग को खून बंद करना है गोली निकालना है पुलिस पकड़ लेगा, आप रात को मुकुल राय को साथ में घूमता था गांव गांव गांव गांव में, याद है आपको? तो बड़ा नहीं याद पड़ गया, अब तो इतना पुराना नेत्री है आप, आपको पार्टी बनाया, आपको हटाया कौन, आप क्यों हटेगा, आप चलिए काम कीजिए हम लोग साथ में। हाँ, वी वांट टू सी इंदिरा गांधी के टाइम से ज्योति बोसु तक ममता बनर्जी तक जो आवाज उठाया था दिल्ली नहीं देता है, सेंट्रल नहीं देता है, गरीब को कुछ पैसा नहीं मिलता, 50 साल एक करके निकाल दिया, फायदा कुछ नहीं मिला। वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है जो हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। बीजेपी हमको मदद मांगेगा, हम देगा मदद। अच्छा। वो हमको उसका मदद जरूर पड़े हम लेगा, एक साथ करेगा, खून खराबी बंद, गाँव में झामेला बंद, चोरी डकैती बंद, पॉलिटिकल न्यूसेंस बंद, सबको एक साथ मिलके काम करने होगा।
18: जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है, ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। 19 जून को पीस डील पर हस्ताक्षर होने हैं, लेकिन पीस डील पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ लेबनान पर इसराइल के हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि पीस डील के तहत ईरान के साथ 60 दिनों तक चर्चा होगी, यानी कि हम बातचीत करेंगे, और इन 60 दिनों में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बनी तो ईरान पर फिर हमला संभव है। अब सवाल यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को लेकर आखिर की सस्पेंस क्यों है?

0: तो हो गई लेकिन खतरे बाकी। शांति समझौते की राह में रोड़े ही रोड़े। क्या इसराइल पीस डील में बनेगा रोड़ा? क्या लेबनन पर हमले से बिगड़ेगी बात? क्या एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप की मानेगा ईरान? शांति समझौते पर सस्पेंस फुल। लेबनन और गाजा में इजरायली हमले से मची तबाही की यही तस्वीरें ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते पर ग्रहण लगा सकती हैं। लेबनन पर इजरायल का ये हमला अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील के चंद घंटों के बाद हुआ है। अगर लेबनन पर इजरायली हमले नहीं रुके तो पीस डील से ईरान पीछे हट सकता है। वहीं पीस डील को लेकर ईरान के ऐलान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धड़कने बढ़ा दी हैं। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गुरियन ने पीस डील पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता। इसराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। जब भी हमने इसराइल की सुरक्षा की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के वक्त भी ऐसा ही हुआ। 2006 के लेबनन समझौते में भी यही हुआ और गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा रहा। इतामार बेन गुरियन यही नहीं रुके, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि लेबनन की तरफ से हमला हुआ तो इसराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। हम जोर देकर कहते हैं कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं, फिर भी इसराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हमेशा ये बातें कहता हूँ और हर अहम ऐतिहासिक मोड़ पर बंद कमरों में भी इन्हें दोहराता हूँ कि ऐतिहासिक पलों में ऐतिहासिक फैसला लेना जरूरी होता है। हमें ये साफ कर देना चाहिए, लेबनन से इसराइल की ओर ड्रोन, यूएवी या मिसाइल का हर हमला इसराइली हमले की वजह बनेगा। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री ने पीस डील को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कार्ट्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस डील के बावजूद उन इलाकों से इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी जहां पर उसका कब्जा है। अमेरिका ईरान सीज फायर समझौते के बावजूद इजरायल डिफेंस फोर्स लेबनन, सीरिया या गाजा में सुरक्षा जोन से पीछे नहीं हटेगी। नेतन्याहू ने ये बात सीधे ट्रंप को साफ तौर पर बता दी है। सुरक्षा जोन से स्थानीय निवासियों को हटा दिया जाएगा और सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट लाइन वाले गांवों के वो घर भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्ला के ठिकानों के तौर पर किया जाता था। इसराइल के आक्रामक तेवर पीस डील पर संकट के बादल से कम नहीं, क्योंकि ईरान का कहना है कि लेबनन शांति समझौते का अहम अंग है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते में लेबनन शब्द का 3 बार इस्तेमाल किया गया है। लेबनन समेत सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना और लेबनन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना समझौते में एकदम स्पष्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर सहमति बनने से चंद घंटे पहले लेबनन पर इसराइल ने हमला किया। हमले के बाद पीस डील से ईरान ने पीछे हटने का फैसला करते हुए इसराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। ईरान ने अपना पैगाम मध्यस्थों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने सीधा दखल दिया और ईरान को भरोसा दिया कि पीस डील पर सहमति के बाद इसराइल लेबनन पर हमले रोक देगा। आनंद फानन में ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें धमकाया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसराइल की भूमिका को लेकर कहा, ये बहुत बुरा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक 1 घंटे पहले ऐसा हुआ। लेबनन की राजधानी बेरूत में हमले करके डील को पटरी से उतार ही दिया था। नेतन्याहू को डील में अड़चन के बजाय हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते तो इस समझौते के बिना इसराइल 2 घंटे भी नहीं टिक पाता। मुझे लगता है कि नेतन्याहू एक मुश्किल इंसान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने माना कि वो नेतन्याहू से बेहद नाराज थे, क्योंकि पीस डील अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी और लेबनन पर हुआ हमला समझौते को पटरी से उतार सकता था। हालांकि पीस डील पर सहमति बने अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसराइल ने लेबनन पर फिर से हमला कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार लेबनन के जबतार, मरकबा और खियाम शहर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने हवाई हमले और आर्टिलरी शेलिंग दोनों किए हैं। अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती लेबनन पर इसराइली हमलों को रुकवाने की है। क्योंकि हमले जारी रहे तो पीस डील से ईरान के पीछे हटने की पूरी संभावना है। आज तक ब्यूरो।
1: एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर दुनिया भर में चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी में जहाजों पर अमेरिकी हमले में मारे गए हमारे 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका को घेरा जा रहा है। और इस बीच 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जिसके बाद मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी यहीं होगी। अब सवाल यह है कि जब मोदी ट्रंप मिलेंगे तो क्या बात होगी।
0: मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी, क्या बात होगी। तीन भारतीयों की मौत पर भारत अमेरिका में टकराव। अमेरिका ने दिखाई अकड़, अब आगे क्या होगा। ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद सुधरेंगे तल्ख रिश्ते। चंद घंटे बाद ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर सबकी निगाहें। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 17 जून को होने जा रही है। इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत बड़ी है क्योंकि दोनों नेता ऐसे समय में मिल रहे हैं जब हाल ही में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस पर विपक्ष मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर रहा है। भारतीय नागरिकों की जान जाने का मामला बेहद गंभीर है जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि अमेरिका होर्मुज में नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब इस तल्ख बातचीत के बाद 17 जून को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में सबकी नजरें इस मुलाकात पर जमी हैं क्योंकि ये मुलाकात G7 समिट के बाद फ्रांस में होगी। अब सवाल ये है कि जब दोनों नेता मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। सूत्रों की माने तो मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर न सिर्फ अहम चर्चा होगी बल्कि रिश्तों की मजबूती के लिए फैसले भी लिए जा सकते हैं। वैसे भी दोनों नेता पिछले साल फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद से नहीं मिले हैं। तब से
1: आइए हम आपको फ्रांस उसी जगह लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी G7 समिट में और प्रणय वहीं पर मौजूद हैं। देखिए एकदम खुश मुस्कुराते हुए प्रणय, खुशी की खबर तो यह है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी वो इस पीस डील के बाद राहत में है और जब मोदी ट्रंप मिलेंगे तो उसके बाद अमेरिका भारत रिश्ते और किस तरह से सुधरेंगे।
2: ये खुशी की खबर कही जा सकती है, दुनिया ने एक राहत की सांस ली है बल्कि दिशा भी साफ हो गई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलते ही सईद जो पहला जहाज निकला वो भारत का था जिसका नाम एमवी दिशा है और इस दिशा के साथ ये साफ हो गया है कि इस तनाव की दिशा जो है वो अब समाधान की तरफ बढ़ रही है। कुछ ही समय बाद जो फॉर्मल एग्रीमेंट है वो भी हो जाना है ईरान और अमेरिका के बीच में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको मंजूरी देने के बाद ही फ्रांस पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनका विमान जो है वो पहुंचा है यहाँ पर और आगवानी यहाँ पर। जी
1: प्रणय, मुलाकात दोनों की जब होगी क्या क्या बात हो सकती है, क्या अंदाजा लगाए हम।
2: देखिए रिश्तों की रीसेट की कोशिश होगी। अगर आप देखें तो बहुत कुछ हुआ है बीते 16 महीनों में, यानी 16 महीने पहले फरवरी 2025 के अंदर जब दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात हुई थी तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ था, पहली मुलाकात थी, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में सही बहुत कुछ हुआ है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ चिढ़ाने वाले बयान हो, रेसिप्रोकल टैरिफ हो, H-1B वीजा का मुद्दा हो और अब के कुछ दिनों पहले जो भारतीय जो नाविकों वाले जो जहाज थे उन पर हुए हमले जैसे कई तल्ख मामले थे। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 16 महीनों के अंदर हर बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी अच्छी बातें कही। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का फैन भी कहा है, लेकिन उम्मीदों के दबाव से अलग कोशिश होगी कि रिश्तों को संभाला जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी।
1: बहुत धन्यवाद प्रणय आपका, प्रणय उपाध्याय हमारी संवाददाता। फ्रांसी जी समिट सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। सबकी निगाहें अब इस मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि बड़ी खबर इस समय की यह है अमेरिका और ये देखिए तो कुछ तस्वीरें हम आपको पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर फाइल तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप खुलकर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं कई बार। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्या टीएमसी में हुई बड़ी टूट का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिख सकता है? क्या ममता बनर्जी के बाद उद्धव ठाकरे को भी बड़ा सियासी झटका लग सकता है? दरअसल इन चर्चाओं को बल तब मिला जब ये बात सामने आई कि शिवसेना उद्धव गुट के कुछ सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। चर्चा इस बात की भी है कि उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद सियासी पाला बदलने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे का यह कदम उस बड़े मिशन का हिस्सा माना जा रहा है जिसका मकसद अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना और संसद में अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा करना है। इन अटकलों को तब और बल मिल गया जब उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने सांसदों की बैठक बुला ली और खबर मिली कि इस बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे। लेकिन बैठक के बाद संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा के सभी 9 सांसद बैठक में थे, 4 खुद आए थे और 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
1: 4 सांसद बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थित रहे और हमारे 5 सांसद है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस मीटिंग में सहभागी हुए।
0: जब महाराष्ट्र की सियासत में यह खबर उड़ी कि शिवसेना यूबीटी में भी टूट हो सकती है तो संजय राउत ने हुंकार भरी।
2: कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
0: टीएमसी में टूट पहले ही ममता और पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई सियासी खेल होता है तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
3: जी साहब, बहराइच को चुना है आपने, चुनावी शंखनाद किया है, कितनी सीट्स पर प्लानिंग है, गठबंधन के लिए भी क्या बातचीत होगी, क्या प्लानिंग है आपकी?
4: देखिए, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग चुनाव में पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे जो स्टेट के अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब और हमारे पूरे पार्टी के पोस्ट होल्डर्स मेंबर्स सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि कल की जो हमारी पब्लिक मीटिंग हुई बहुत कामयाब रही। और तीसरी बात यह है कि हम पार्टी हमारी अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
3: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
4: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा, किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा।
3: अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज आप लोग के लिए है, क्योंकि आप देखें अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जाति समीकरण की बात करें, उसके हिसाब से
4: वो तो नाकाम साबित हो रहे हैं। 2014 से हर चुनाव हार रहे हैं और फिर हमारी पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने खुद बैठकर बिहार में कैंपेन चलाया, उनके कितने 5 या 7 सांसद को वहां पर उतार दिया हमारे सीमांचल में और बड़ा ही नेगेटिव और झूठा कैंपेन चलाया हमारे खिलाफ उन्होंने, उसका असर कुछ नहीं हुआ। हमारे एमएलए तो जीत गए, अच्छे खासे वोट भी मिले हमको जहां पर हम नहीं जीत पाए। तो अब नहीं मालूम, अब जाहिर चुनाव जब लड़ेंगे तो जाहिर हम अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज विश्व डेंगू दिवस है और इस अवसर पर ऑल आउट बनाने वाली कंपनी बिरलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने वाराणसी के पंडितपुर गांव में अपनी मुहिम लड़ेंगे डेंगू से की पहली वर्षगांठ मनाई। वर्ष 2025 में वर्ल्ड डेंगू डे पर ऑल आउट कंपनी ने इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मुहिम की शुरुआत की और अब पंडितपुर गांव में इसका असर भी दिखा। एक साल पूरा होने के अवसर पर ऑल आउट बनाने वाली कंपनी ने साथ लड़ेंगे डेंगू से की इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की, जिसमें वाराणसी के पंडितपुर गांव में डेंगू और मलेरिया के बारे में जागरूकता 97% तक पहुंच गई, जबकि 90.1% परिवारों ने बताया कि वो जमा पानी को रोज बदलते हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि लोग अब तेज बुखार और सरदर्द के जैसे डेंगू के लक्षणों को बेहतर ढंग से पहचानने लगे हैं और बचाव के तरीकों को अधिक अपना रहे।
3: इम्पॉर्टेंट उसमें यह है कि एक तो अवेयरनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, बिहेवियर चेंज के लिए लगातार एक बारी बारी से एक सेम मैसेज को दोबारा देना, लोगों को समझ में आना कि पानी को कैसे हम बदल सकते हैं, ठहरने नहीं देंगे, जिसकी वजह से डेंगू मस्कीटो पनपते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि गाँव वालों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और इसको अडॉप्ट किया और उसकी वजह से एक बदलाव आ रहा है।
4: हमने डेंगू से बचने के लिए साथ लड़ेंगे डेंगू से ये ऑल आउट के साथ प्रोजेक्ट चालू किया। आज उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो हम सब गांव वालों को पूछेंगे कि हमने क्या क्या काम किया। प्रिवेंशन लेके स्वच्छता अभियान, पानी इकट्ठा ना हो, बच्चों को लंबी बाई के शर्ट पहनाए स्कूल में जाए तो, ज़्यादा लाइट में हो तो ये मच्छर लाइट में काटते हैं तो लाइट वाला जो एरिया हो वहाँ कम जाए, 1.5 फीट से ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ सकते तो हम ऊपर बैठे बच्चों को, ये सब प्रिवेंशन के लिए जो जो हो सकता था वो ब्रिलॉन कंपनी ने वॉलंटियर के माध्यम से और सभी एनजीओ मिलके काम किया है।
2: ये आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं, एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरा परिवार उससे हिल जाता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक जा सकता है। सबसे अधिक खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसका होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे के आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जमा पानी में। यानी डेंगू से युद्ध की शुरुआत भी हमारे आपके घर से ही होती है, लेकिन यह युद्ध कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए आपको, हमें, पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के द्वारा हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह, बचाव के आसान उपाय भारत में आप तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा बिल्कुल मत होने दीजिए। कूलर, गमलों का पानी नियमित रूप से बदलिए। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखिए। दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल नियमित जरूर कीजिए। हर घर हर सतर्क तभी होगा और डेंगू पर वार भी तभी होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details. Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.

0: उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की जंग में पहला दांव असदुद्दीन ओवैसी ने चल दिया है। ओवैसी ने बहराइच की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली मटेरा सीट पर शौकत अली को AIMIM उम्मीदवार घोषित तो किया ही, मुस्लिम वोटों की दावेदारी का दावा करने वाले विपक्षी दलों से यह साफ कह दिया कि या तो हमें साथ लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहो।
1: अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है, मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी।
0: ओवैसी अभी बीजेपी पर जितने हमलावर हैं, उतना ही आक्रामक अखिलेश यादव पर भी हैं। साथ ही जब ओवैसी सीधे सीधे मुस्लिम वोटों पर दावा कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ओवैसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी अभी किसी संभावना को नकार भी नहीं रही।
2: ओवैसी ने कहा है कि भाजपा बोलते हैं हम भाजपा को हराने वाले कल का समर्थन करेंगे।
3: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
0: इस बीच समाजवादी पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी सीटों को लेकर अपनी मांगे अभी से रखने लगी है। सांसद इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए 170 सीटों की बात कर रहे हैं।
4: 170 सीट हमने ये कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है। बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा MP होते हम, हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती।
0: यूपी चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए तालमेल का मसला तो हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सबसे इतर उन्हें सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से लड़नी है। लिहाजा अखिलेश न सिर्फ 9 साल के योगी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनकी छवि पर प्रहार भी कर रहे हैं।
5: 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं, तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई।
0: चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जोर अपनी सख्त प्रशासक की छवि और यूपी को विकास के मैप पर ले आने की कोशिशों पर रह सकता है। सोमवार से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुई। इस मौके पर योगी एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से मिले। उधर 2 दिनों पहले उन्होंने अखिलेश की बेटी पर सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी थी।
6: बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
0: ये सारे बयान जाहिर करते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव में बड़े नेता कैंपेन को किधर मोड़ सकते हैं। योगी अखिलेश, कांग्रेस और ओवैसी के संकेतों से साफ है कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा।
7: सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले।
3: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
4: आज विकल्प कांग्रेस है, बहुत स्पष्ट कह दूं। राहुल गांधी है जिसके अंदर दम है, जो लड़ सकता है। राहुल गांधी का हाथ जो नहीं थामेगा, तो या तो इधर थाम लीजिए हाथ या इधर थाम लीजिए। बीच का कोई रास्ता नहीं बच रहा है अब देश में, बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, DMK, TMC और गिनवाओ, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए। नहीं नहीं, राहुल जी का हाथ थामना होगा, ये उल्टा मत कर रही है। राहुल जी का ही हाथ थामना होगा। अब क्या हो रहा बंगाल में? अगर बंगाल में थामा लिया होता हाथ तो यह हाल ना होता जो हुआ है कि ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा साम्राज्य ही डा दिया।
8: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है, बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
9: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
8: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा, किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शादी को कई साल हो चुके थे मगर दोनों माँ बाप नहीं बन पाए थे। तभी किसी ने सलाह दी कि साइंस की मदद से वो अपनी सूनी गोद को आबाद कर सकते हैं। पति पत्नी राजी हो गए, फिर IVF की मदद से दोनों माँ बाप बन गए। अब उनके घर में जुड़वां बेटियों की किलकारियां गूंज रही थी, मगर तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटियों की मासूम किलकारियों में किसी ने मिलावट कर दी है।
1: मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मैंने बच्चों को जन्म दिया है, तो कैसे पॉसिबल है कि उन बच्चों का DNA मुझसे नहीं मिल रहा है, मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रहा है।
2: और DNA टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आई उसमें मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल है सर। अब इनको हमने जन्म दिया है या नहीं दिया ये भी हमें नहीं पता।
1: हम डेली जी रहे हैं, डेली मर रहे हैं।
2: बड़ा बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन छोटा बेबी जो है सर उसके फीचर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे हों।
1: मेरा पूरा परिवार उन बच्चों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारे बच्चे कहाँ हैं सर? वो जो दो मासूम बच्चे हमारे पास है उनकी क्या गलती है? मैं हाथ जोड़ती हूँ कि परमात्मा किसी भी मदर को या किसी भी फादर को ये दिन कभी भी ना देखना पड़े।
0: कहते हैं कि मासूम किलकारियों को मुस्कुराहट देना भी किसी इबादत से कम नहीं। कहते ये भी है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं। इस बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखी इस एक लाइन का हिंदी में सीधा सीधा मतलब यह है कि जिंदगी यहां से शुरू होती है, वेयर लाइफ बिगिंस। अगर सचमुच जिंदगी धोखे फरेब और मिलावटी किलकारियों के साथ शुरू होती है तो सोचिए उसका अंत कैसा होता होगा। हमारे देश में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मिलावट ना होती हो। खाने पीने से लेकर चाहे खूबसूरती के सामान हो, कपड़े हो, दवा दारू हो, यहाँ तक कि देश का इम्तिहान हो, मिलावट खोरों ने हर चीज में मिलावट कर रखी है। बस एक कोक बचा था, अब वो भी नहीं बचा। डॉक्टरों ने उस कोक से बाहर आने वाली किलकारियों तक में मिलावट कर दी। ये मिलावटी कहानी सूनी गोद को आबाद करने की एक ऐसी कहानी है जो इस वक्त अस्पताल से लेकर पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से लेकर अदालत तक में सुनी और सुनाई जा रही है। ये दिल्ली के राहुल हैं और ये राहुल की पत्नी मीनू। दोनों की शादी को एक लंबा वक्त हो चुका था लेकिन औलाद की खुशियां इनके हिस्से नहीं आई थी। जानकारों से पता चला कि अब साइंस इतना तरक्की कर चुका है जो बे औलाद माँ बाप की सूनी गोद को भी आबाद कर सकता है। साइंस के उसी करिश्मे का नाम है IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आम जुबान में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इससे भी आम जुबान में समझना हो तो राहुल और मीनू की कहानी सुनने से पहले खुद डॉक्टर से IVF के बारे में जान लेते हैं।
3: IVF के पूरे प्रोसेस में वो कपल्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई अंडरलाइन कॉज हो और कभी कभी बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन रीजन से सालों निकलते जाते हैं और कंसेप्शन नहीं होता, ऐसे में हम IVF का यूज करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि एक औरत के एग्स अंदर बनते हैं उसकी बॉडी के और वहीं से खत्म हो जाते हैं, पर हम उन एग्स को हार्वेस्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। एक साइकिल में एक के बजाय हम जितनी उसकी क्षमता है ओवरी की 10, 12, 15 एग्स बनाने की उसको एक्सप्लोर करते हैं गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देके। जब वो एग्स सरफेस हो जाते हैं उनको एक नीडल डाल के निकाल लेते हैं। इन सब एग्स को उसके हस्बैंड का इजैक्युलेटेड सैंपल लेके या जिस तरह से भी स्पर्म लेके और उनके साथ फर्टिलाइज कर दिया जाता है। ये अगले ही दिन हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइज हो गए कि नहीं। से फॉर इंस्टेंस 10 एग्स निकले, उसमें से हो सकता है 8 फर्टिलाइज हों, 7 फर्टिलाइज हों, जो भी अच्छे एग्स होते हैं वो सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं। ये बढ़ते रहते हैं लेबोरेटरी में और जनरली लोग तीसरे दिन की उम्र में या पांचवें दिन या

0: छठे दिन वाले एम्ब्रियोज को औरत के भ्रूण में रख देते हैं। आजकल फ्रीजिंग बहुत हो रही है, जैसे एग्स निकले, बहुत सारे एम्ब्रियोज बने, उन सबको फ्रीज करके -197 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत सुरक्षित रूप से विट्रीफाई कर देते हैं। तो जब भी हमें डालना होता है औरत के अंदर इन एम्ब्रियोज को, तो हम एक या दो जो उस लैब का नियम है उस हिसाब से निकाल के वार्म करके देखते हैं कि हाँ, अरे ये अभी भी अलाइव हैं, री एक्सपैंड कर रहे हैं, तब उनको उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये है आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया।
1: तो साइंस के इसी करिश्मे यानी आईवीएफ के जरिए राहुल और मीनू ने माँ बाप बनने का फैसला किया। किसी ने उन्हें सलाह दी तो वो इसी आईवीएफ सेंटर में एक नई उम्मीद के साथ पहुँच गए। वहाँ इन्हें एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।
2: हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट जो शुरू हुआ था एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल में शुरू हुआ था। उससे पहले हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर रितु गर्ग है उनके संपर्क में थे, उन्होंने ही हमें वहां पर रेफर किया था। उनकी एक फ्रेंड है डॉक्टर मनप्रीत कौर, तो वो एससीआई में जॉब करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू हमें शिवानी सचदेव गौर से मिलवाया गया था एससीआई हॉस्पिटल में। वहां पर जाके हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फर्स्ट डे हमारे 9 जनवरी को 2025 को हमारे टेस्ट वगैरह हुए थे। टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, वो कहीं पर भी चेक करवाई जा सकती है। उसके बाद सर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 13 फरवरी को मेरी वाइफ के 8 एग्स पिकअप हुए थे और मेरा सीमेन सैंपल लिया गया था। और उसके बाद हमें बताया गया था कि उन 8 एग्स में से 5 एम्ब्रियोज बनी है, जिसमें से 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर की जाएंगे 14 मई। मैं फिर इस डेट को स्पेशली बोलना चाहता हूं कि 14 मई 2025 को 3 एम्ब्रियोज मेरी वाइफ के वॉर्म में ट्रांसफर की गई और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई, ट्विंस प्रेगनेंसी। हम चाहते ही ट्विंस थे, मतलब हमारी शुरू से ही ये थी कि अच्छा कि ट्विंस हो जाए, तो आप लगा के चलिए ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुई हमारी। उसके बाद सर आप लगा के चलिए नॉर्मल हमारा ट्रीटमेंट दिसंबर तक उनके पास चला। उसके बाद हम लोग वापस डॉक्टर रितु गर्ग के पास आ गए, क्योंकि डिलीवरी जो है गायनाकोलॉजिस्ट वो थे, तो डिलीवरी हमारी मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई है।
1: 5 जनवरी 2026 को राहुल की पत्नी मीनू राठौर ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। राहुल और मीनू के साथ साथ इस खबर ने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। लेकिन ये खुशी बस कुछ दिनों की थी। असल में जब जुड़वां बेटियां माँ बाप की गोद में आई तो उन्होंने एक अजीब चीज महसूस की। उनमें से एक तो ठीक थी पर दूसरे की शक्ल माँ या बाप यानी किसी से नहीं मिल रही थी। हालांकि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा बहुत होता है, लेकिन पता नहीं क्यों राहुल और मीनू को कुछ शक हुआ।
2: जब बच्चों का जन्म हुआ तो बड़ा बेबी तो नॉर्मल है, मतलब वो अगर आप वीडियो वगैरह भी देखा होगा बड़ा बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन छोटा बेबी जो है सर उसके फीचर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे हों। उसी बात पे हमें थोड़ा डाउट हुआ था।
1: इसी के बाद राहुल और मीनू ने बच्चों के डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। दोनों ने एक नहीं दो दो बार दो अलग अलग जगहों से डीएनए टेस्ट कराए, पहला 8 जनवरी को फिर 16 जनवरी को। डीएनए की रिपोर्ट देखकर दोनों माँ बाप सन्न रह गए। असल में डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जुड़वां बेटियों से न राहुल का डीएनए मैच कर पाया न मीनू का, जबकि मीनू ने ही अपनी कोख से दोनों को जन्म दिया था।
2: हम लोग सर डीएनए टेस्ट के लिए गए और डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आई उसमें मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल हैं सर। तो इससे एक चीज क्लियर है कि ये बच्चे बायोलॉजिकली हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है जी। अब इनको हमने जन्म दिया है या नहीं दिया ये भी हमें नहीं पता।
3: मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मैंने बच्चों को जन्म दिया है, तो कैसे पॉसिबल है कि उन बच्चों का डीएनए मुझसे नहीं मिल रहा है, मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रहा है।
1: डीएनए मैच न करना सचमुच हैरान करने वाला था। अब राहुल और मीनू को यकीन हो गया कि उनकी एक बेटी की शक्ल सूरत क्यों अलग है। बेशक राहुल और मीनू आईवीएफ के जरिए माँ बाप बने थे, इसके लिए उन्होंने कोई डोनर भी नहीं लिया था, ये सब कुछ बाकायदा कागजों में दर्ज है, तो फिर जुड़वां बेटियों का डीएनए क्यों मैच नहीं कर रहा।
0: अगर माँ का एग और फादर का स्पर्म यूज हुआ है तो वो एम्ब्रियो 100% मदर और फादर से मैच करेगा, उसके डीएनए से मैच करेगा। खाली अगर स्पर्म किसी और सोर्स से लिया जाए या एग किसी और सोर्स से लिया जाए, जो आईवीएफ में अक्सर करते हैं, लेकिन ये पूरे कंसेंट के साथ किया जाता है, जिसमें मदर और फादर के सिग्नेचर्स होते हैं सारे कागजों पे कि भई हमारा स्पर्म बहुत पुअर है या इससे एम्ब्रियो नहीं बन रहे हैं, तो डोनर स्पर्म लिया जाए और हम दोनों इसकी कंसेंट देते हैं। सेम थिंग इवन मदर के एग्स के साथ में होती है कि अगर एग्स नहीं निकलते हैं, बहुत लो रिजर्व है, क्वालिटी बहुत पुअर है, कई आईवीएफ फेल हुए हैं, तो बहुत से कपल्स आके ये बोलते हैं कि जी हमारे लिए डोनर ले लिया जाए। अगर हम डोनर एग या डोनर स्पर्म कुछ भी यूज करते हैं, उसके पूरे कंसेंट फॉर्म्स उस आईवीएफ लेबोरेटरी में जरूर होते हैं और उस केस में नेचुरली जो डीएनए है वो डोनर से मैच करेगा, जो कपल है उससे नहीं मैच करेगा।
1: डीएनए रिपोर्ट से ये साफ हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब राहुल और मीनू को इस मामले में दो ही गड़बड़ी नजर आ रही थी। एक, या तो आईवीएफ सेंटर में कुछ खेल हुआ या फिर जिस हॉस्पिटल में मीनू ने दोनों बच्चियों को जन्म दिया वहाँ से बच्चे ही बदल दिए गए।
2: या तो एससीआई की तरफ से बच्चे बदल दिए गए हैं, वो एम्ब्रियोस चेंज कर दिए हैं उन्होंने, हमारे एम्ब्रियोस किसी और को दे दिए और किसी और के एम्ब्रियोस हमें दे दिए गए हैं, और या फिर जहां पर जन्म हुआ है वहां पर आप लगा के चलिए हमारे बच्चे बदल दिए गए हैं। अभी मेरी तरफ से मैंने सारी जितनी भी रिक्वेस्ट की है वो सिर्फ यही किया है कि इस केस की कड़ी से कड़ी जांच कर दी जाए। मेरी रिक्वेस्ट ही पिछले 5 महीनों से मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में मैंने रिक्वेस्ट की, हर जगह रिक्वेस्ट की, ठीक है जी, तो आप लगा के चलिए फाइनली कोर्ट में जाके हमें रिलीफ मिला।
1: शक को जैसे ही यकीन का सबूत मिला, राहुल और मीनू सबसे पहले उसी आईवीएफ सेंटर में पहुंचे, लेकिन वहां उनका रवैया कुछ और ही था। वो तो बात करने को भी तैयार नहीं थे। इस आईवीएफ सेंटर से वारदात की टीम ने भी बात करने की कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला।
4: ग्रेटर कैलाश स्थित ये वही आईवीएफ सेंटर है जिस पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। परिवार का ये कहना है कि जब उन्हें पता लगा कि डीएनए मैच नहीं हुआ है तो वो एक बार फिर से इस आईवीएफ सेंटर पर आते हैं, जहां ये आईवीएफ सेंटर उनकी एक नहीं सुनते। पहले उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें लालच देने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं मानते तो उन्हें वापस भेज सकते हैं। आज जब आज तक की टीम एक बार फिर से इस आईवीएफ सेंटर पर पहुंची और यहां के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो हमसे भी किसी ने बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा गया कि आप कुछ हफ्तों बाद आइए, तब कोई आपसे बात कर पाएगा।
1: अस्पताल से हार कर राहुल और मीनू ने दिल्ली पुलिस का रुख किया, ग्रेटर कैलाश थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन अगले 3 महीने तक पुलिस ने एफआईआर ही नहीं लिखी। थक हार कर पति पत्नी कोर्ट पहुंचे। आखिरकार कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में फौरन एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का हुक्म दिया। तब कहीं जाकर मामले में एफआईआर दर्ज हुई।
2: मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि पहले 3 महीने मेरी एफआईआर क्यों नहीं की गई। 3 महीने तक मैं एफआईआर के लिए चक्कर काटता रहा, वहां पर मैंने रिक्वेस्ट भी की, मेरे साथ जो बर्ताव हुआ उसकी मैंने आगे कंप्लेन भी की, लेकिन मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई सर। अभी किस वजह से है सर, ये आगे जो भी एजेंसीज है उनके लिए जांच का विषय है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बस मैं ये कह सकता हूं कि पहले 3 महीने मुझे कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके एफआईआर हुई, और जिस दिन मैं कोर्ट से एफआईआर हुई है 31 मार्च 2026 को मेरी एफआईआर हुई है, और शायद ये हमारा लूप होल है तंत्र का या हमारे लॉ का लूप होल है, 1 अप्रैल को सर मेरी एफआईआर उस पर स्टे लगा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन पे ही स्टे लगा दिया गया। सर 2-3 चीजें क्लियर है सामने कि भाई बच्चों का डीएनए मैच नहीं कर रहा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, मेरी वाइफ ने बच्चों की डिलीवरी की है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे। मैंने किसी हॉस्पिटल पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया आज तक हम लोगों ने, मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरी फैमिली ने किसी हॉस्पिटल पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया है, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी जांच कर दीजिए, लेकिन ये आज जब हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसकी प्रॉपर जांच शुरू नहीं हुई है।
4: जब परिवार की समस्याएं सुनने से आईवीएफ सेंटर मना कर देता है तो आम नागरिकों की तरह वो पुलिस का रुख करते हैं और यहाँ ग्रेटर कैलाश स्थित पुलिस थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। हालांकि दंपति का ये आरोप है कि अगले 3 महीने तक पुलिस ने उनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं की, यहां तक कि इस पूरे मामले में 1 FIR तक दर्ज नहीं हुई। FIR तब दर्ज होती है जब परिवार कोर्ट का रुख करता है और कोर्ट के आदेश के बाद 31 मार्च 2026 को इस पूरे मामले में पहली FIR दर्ज होती है और कोर्ट ये मानती है कि जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप बहुत संगीन है और SHO और DCP की निगरानी में बहुत ही ज्यादा गहनता से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद ये पूरा मामला ग्रेटर कैलाश थाने से हटा करके डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन को दे दिया जाता है।
1: अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: अस्पताल से बच्चे गायब हो जाने या बच्चे बदल दिए जाने की कहानियां पहले भी बहुत हो चुकी है, अब भी होती है, लेकिन यहाँ राहुल और मीनू की कहानी थोड़ी जुदा है। यहाँ शक के घेरे में आईवीएफ सेंटर और अस्पताल भी है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चे अस्पताल में बदले गए या फिर सैंपल आईवीएफ सेंटर में। वैसे डीएनए रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि राहुल और मीनू दोनों जुड़वा बेटियों के बायोलॉजिकल माँ बाप नहीं है।
1: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर राहुल और मीनू के साथ हुआ क्या होगा, क्योंकि आईवीएफ के जरिए भी जो जुड़वा बेटियां पैदा हुई उसके लिए जरूरी स्पर्म और एक राहुल और मीनू के ही थे, तो ऐसे में बेटियों का डीएनए इन दोनों में से कम किसी एक के साथ तो मैच होना ही चाहिए। अब अगर मैच नहीं हो रहा तो इसके दो ही मतलब है, या तो अस्पताल में बच्चे बदल दिए गए या फिर आईवीएफ में सैंपल। पर क्या ये मुमकिन है?
0: आईवीएफ सेंटर्स को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि वो लोग बिल्कुल सच्चाई से आईवीएफ करें, और अगर डोनर एग या स्पर्म यूज कर रहे हैं तो कंसेंट लेके करें, और नहीं तो चाहे फेलियर हो वो वही एम्ब्रियोज डालें जो उस कपल से बने हुए हैं। आजकल इतने एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स आ गए हैं, प्लस हमारे यहाँ दो विटनेसेस हर एक प्रक्रिया के लिए होते हैं, मतलब एक सीमन सैंपल भी कलेक्ट होता है और उसको यूज किया जाता है, तो दो विटनेसेस उसको प्रूव करते हैं। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग आ गई है, बहुत जगहों में इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग हो सकती है जिसमें एक चिप डाल देते हैं, तो उससे गलती हो ही नहीं सकती है कि हम किसी और का स्पर्म या किसी और का एक गलती से यूज कर लें।
1: फिलहाल 5 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये सच्चाई सामने नहीं आ सकी है कि आखिर जुड़वा बेटियों का सच क्या है। कोर्ट ने तो ऑर्डर सुना दिया लेकिन दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बावजूद अब भी उसी रफ्तार से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।
4: इस घटना को घटित हुए करीब 5 महीने का समय बीत चुका है लेकिन पीड़ित परिवार आज भी हाथों में फाइलें लेकर सरकारी दफ्तरों के ठोकर खा रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। हालांकि अब यह पूरा मामला बस एक परिवार और एक आईवीएफ सेंटर के बीच के विवाद का नहीं रहा है, बल्कि एआरटी यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पर भी कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि वो इस पूरे मामले की बहुत ही गहनता से जांच कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद अगर ये आरोप सिद्ध साबित होते हैं तो देश में चल रहे आईवीएफ सेंटर्स के खिलाफ एक ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी बन सकती है।
1: राहुल और मीनू सिर्फ इतनी मिन्नतें कर रहे हैं कि बस उन्हें उनके असली बच्चों या बच्चियों को उनकी गोद तक पहुंचा दिया जाए। दोनों का ये भी कहना है कि जुड़वा बेटियों को भी वो उतना ही प्यार देंगे, उन्हें भी पालेंगे, क्योंकि इन बच्चियों की क्या गलती है।
2: इन बच्चों के माँ बाप कौन है, क्योंकि इन बच्चों की क्या गलती है कि जन्म लेने से पहले या जन्म लेते ही इनके माँ बाप बदल दिए गए, इसमें इन बच्चों की क्या गलती है सर? हम जितना मर्जी प्यार दे लें इन बच्चों को, जितनी मर्जी केयर कर ले, लेकिन हर बच्चा अपने माँ बाप के पास होना चाहिए सर। तो मेरी बस पुलिस प्रशासन से हर जगह बस यही गुजारिश है कि प्लीज जिसने भी गलत किया है उसको सामने लाया जाए और उसके बाद लॉ के हिसाब से जो कार्रवाई है कीजिए।
1: मतलब कई बार किस्मत भी क्या रंग दिखाती है। एक लंबे इंतजार के बाद राहुल और मीनू के घर खुशियां आई, मासूम किलकारियों से घर गूंजने लगा, और फिर तभी दोनों को पता चला कि मिलावट करने वालों ने किलकारियों में भी मिलावट कर दी है। अगर सचमुच जिंदगी की शुरुआत ऐसी ही होती है तो इससे बेहतर है ऐसी जिंदगी शुरू ही ना हो। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए
6: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, Every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे के ऐलान के बाद बोले ट्रंप, तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज, पीएम मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया। रक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। रीनीट एग्जाम को लेकर गृह सचिव के हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट लीक, सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर जड़ावे में गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच। अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन। लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: संजय शिरसाठ का उद्धव ठाकरे पर हमला, बोले यूबीटी शिवसेना खुद बिखर रही है, अब उसे तोड़ने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में राजनीतिक वार पलटवार, शिरसाठ बोले सांसदों को बचाने की चिंता करें, उद्धव ठाकरे पार्टी में भरोसा कमजोर पड़ रहा है। मुंबई के नाला सुपारापुर में 22 साल की गुमगुम भाग्य फेम एक्ट्रेस संचिता उगले की आत्महत्या मामले में जांच तेज, इंस्टा पोस्ट ने बढ़ाया रहस्य। अभिनेत्री संचिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस का बयान, AICWA ने निष्पक्ष जांच की मांग। थाने में बाइक चोरी गैंग का बंडाफोड़, 70 मामलों में मानचित मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार, 8 बाइक बरामद। गुजरात में जामनगर द्वारका हाईवे पर आग लगी, समय रहते यात्री बाहर निकले, बड़ा हादसा टला। गुजरात के अमरेली में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या, नाबालिग प्रेमिका समेत परिवार के 4 लोग गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में ऑयल मिल में बड़ा हादसा, मशीन में कपड़ा फंसने से 55 वर्ष की महिला मजदूर की मौत। गुजरात के वलसाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, महिला की मौत। साबरकांठा के हिम्मतनगर में तेज रफ्तार कार ने 3 को मारी टक्कर, 2 महिलाओं समेत 3 घायल, ड्राइवर गिरफ्तार। करीना कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 वर्ष पूरे होने के जश्न में शिरकत की, फिल्म लगान से जुड़ी यादों को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक सुभाष का ऐलान, आर्यन श्याम निभाएंगे मुख्य भूमिका। प्रभास की पीरियड वॉर फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट, 2026 में होगी रिलीज। कॉकटेल 2 को सेंसर बोर्ड से मिला ए सर्टिफिकेट, शाहिद कृति सेनन रश्मिका आएंगे नजर। तमिल एक्शन फिल्म ब्लास्ट का बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन, 46 करोड़ से अधिक की कमाई की। यूएस ईरान के बीच शांति समझौता होने के दावे पर अंततः ईरान ने लगाई मोहर, 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर के बाद हॉर्मुज खुलेगा। केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल को वाहन ईंधन के तौर पर दी स्वीकृति, नितिन गडकरी बोले अगले 6 सप्ताह में कंपनियां केवल एथेनॉल से चलने वाले वाहन लॉन्च कर सकती हैं। FSSAI ने 8 बड़ी फूड कंपनीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया, रेगुलेटर का कहना है जीरो मैदा ब्रेड और विटामिन जैसे नाम से गुमराह हो रहे हैं ग्राहक। विदेशी निवेशकों ने जून के पहले 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 62,853 करोड़ रुपए निकाले, इस वर्ष अब तक कुल विदेशी बिकवाली लगभग 3.25 लाख करोड़ पर पहुंच चुकी। होम लोन इंश्योरेंस लेने वालों की डिमांड 5 महीने में 7 गुना बढ़ी, घर खरीदने के साथ साथ परिवार की वित्तीय सुरक्षा पर भी लोगों का फोकस बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। लेकिन मुंबई मेट्रो की शुरुआत हम एक गंभीर खबर से कर रहे हैं। 22 वर्ष की जिंदा दिल एक्ट्रेस संचिता उगले की आत्महत्या की खबर से टीवी इंडस्ट्री हैरान है। 19 घंटे पहले हंसती खिलखिलाती संचिता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटे बाद संचिता ने मौत को गले लगा लिया? क्या संचिता सिर्फ काम नहीं मिलने से परेशान थी, या फिर किसी ने संचिता को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया? फिलहाल पुलिस कई एंगल से कुमकुम भाग्य फेम टीवी एक्ट्रेस संचिता की मौत की जांच कर रही है।
2: मायानगरी में फिल्म सिटी के अंदर लाइट कैमरा और एक्शन की चकाचौंध के पीछे के अंधकार ने एक और एक्ट्रेस की जान ले ली। नाला सुपारा पूर्व के आचोले गांव में रहने वाली अभिनेत्री संचिता मच्छिंद्र उगले ने रविवार शाम अपने घर में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 साल की संचिता के सुसाइड की खबर 14 जून को शाम करीब 7:30 बजे आई। सूत्रों से खबर है कि संचिता को पिछले कुछ महीनों से फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो काफी परेशान और निराश थी। संचिता उगले ने टीवी सीरियल दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में मुख्य किरदार सुकून की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा संचिता ने फिल्म छावा में ताराबाई का किरदार निभाया था। वहीं वो टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य और बागले की दुनिया जैसे चर्चित सीरियल में भी अभिनय कर चुकी हैं।
3: साजन घर में काम करने के कुछ महीने बाद ही उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया गया। उनकी जगह आ गई एक नई अभिनेत्री और उसके बाद संचिता घर पर है। तो आखिर क्या ये वजह थी कि संचिता ने ये कदम उठाया, या कोई और वजह थी जो उन्हें सता रही थी, जो उनके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई थी? उनके भाई के अनुसार उन्हें कोई परेशान कर रहा था, जो उनको संचिता के दोस्तों ने बताया। अब मामला क्या है वो तो पुलिस करेगी, लेकिन ये पूरा मामला एक सवाल उठाता है कि आखिरकार मुंबई में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी कितनी संवेदनशील होती है।
2: बताया जा रहा है कि संचिता अपने माता पिता और 15 साल की छोटी बहन के साथ नाला सुपारा के आचोले गांव में रहती थी, लेकिन रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बहन अंजलि घर से बाहर गई थी। उस समय घर में कोई और सदस्य मौजूद नहीं था। इसी दौरान संचिता ने अपने बेडरूम में सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में संचिता को वसई विरार महानगर पालिका के तुलींज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
4: मुझे मेरे चाचा से पता चला कि वो खोई खोई सी रहती थी, दोस्तों से पता चला खोई खोई रहती थी, जो जो लोग उसको परेशान करते थे उनके बारे में दोस्तों से शेयर करती थी।
5: सुसाइड हुआ मेरी बहन का, तो मैंने थोड़े से उसके दोस्त लोगों से बात की। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेसी इशू है, लेकिन जिनसे भी मैंने बात की उनसे मुझे पता चला कोई तो कास्टिंग वाले लोग हैं, वो परेशान करते थे, टेक्स्टिंग करते थे एंड बार बार मेंटली हरास करते थे, जिसकी वजह से मेरी बहन परेशान थी। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं इसके पीछे, किसका हाथ है इसके पीछे, क्या इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, क्या चल रहा था, ये सारी बातें रिसर्च की छानबीन की बातें हैं, जो कि हमारा प्रशासन अच्छे से करेगा, शासन अच्छे से करवाएगा।
2: फिलहाल आत्महत्या के पीछे की ठोस वजह का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर हर एंगल से जांच शुरू कर दी है।
6: कल 14/6/2026 को आचोले पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक मामला सामने आया है। कुमारी संचिता मच्छिंद्र उगले, उम्र 22 साल, इन्होंने अपने खुद के घर में कुछ रीजन की वजह से सुसाइड हैंगिंग किया है। उस वजह से उनके पिताजी की मच्छिंद्र उगले इनके फिरियाद से गुनाह दाखिल किया है। आकस्मिक 58/2026 दाखिल किया है और आगे का कार्रवाई चालू है। इंक्वेस्ट पंचनामा कार्रवाई हो गई है और मरने का रीजन इन्वेस्टिगेशन में आगे समझ में आएगा, वो हिसाब से आगे का कार्रवाई होगा।
7: संचिता कुछ फिल्मों में भी काम कर चुके अभिनेत्री है कुछ?
6: फिलहाल वो काम करती थी ऐसा समझ में आया है। फिलहाल रीजन क्या है आपने को इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया?
7: सर कोई सुसाइड वगैरह मिला है?
6: अभी तक फिलहाल वैसा कुछ नहीं मिला, मगर पिताजी का कहना है कि उनकी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।
2: हैरान करने वाली बात यह है कि संचिता ने मौत से 19 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वो हंसती और चहकती हुई दिख रही है। यह वीडियो देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कैमरे पर खिलखिलाने वाली यह एक्ट्रेस इतनी जल्दी सुसाइड जैसा कदम उठा लेगी। वीडियो में संचिता कैमरा हाथ में पकड़े हुए दिखती हैं। संचिता ने इस वीडियो का कैप्शन लिखा था, मैं नाचू तू नाचा। उनकी मौत से टीवी इंडस्ट्री हैरान है।
8: एक और एक्टर ने सुसाइड कमिट कर ली, 30 साल की संचिता उगाले। चैनल को टीआरपी चाहिए, प्रोड्यूसर को बजट बचाना है और ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन इसके पीछे कभी ये सोचा है कि एक एक्टर पे क्या गुजरती है? एक छोटी सी बात, रिप्लेसमेंट, किसी के साथ सोगे नहीं तो रिप्लेसमेंट, अगर किसी से बहस कर लोगे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाओगे तो रिप्लेसमेंट, या तुम्हारे डेज काट देंगे। कभी एक्चुअली किसी ने सोचा कि एक एक्टर पे क्या बीत रही है या इन्फ्लुएंसर पे जो लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं? हर सुबह हम उम्मीद लेके उठते हैं, एक ऑडिशन देते हैं और हर शाम कंपैरिजन रिजेक्शन के बाद सो जाते हैं। सब कहते हैं ना स्ट्रांग बनो, लेकिन ये तो कोई नहीं बताता कि कब तक स्ट्रांग बनना है और कितनी बार स्ट्रांग बनना है। और जहाँ तक रही चैनल प्रोड्यूसर्स के बाद, वो सबसे ज्यादा गलीच लोग होते हैं, उनको अपनी प्रॉफिट बेनिफिट से ऊपर कुछ नहीं दिखता है। ट्रस्ट में, मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपका ऑडिशन अच्छा है, आप परफॉर्मर है, दे विल स्टिल रिजेक्ट यू फॉर 1,000 रुपीज।
2: सवाल है कि संचिता के चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे किस बात का दर्द छिपा था। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखकर समझ आता है कि वो जिंदा दिल, हंसने मुस्कुराने और बिंदास रहने वाली एक्ट्रेस थी।
8: आप किसी के साथ, किसी को लाइन देने को तैयार नहीं है, किसी के साथ कुछ करने को तैयार नहीं, दे विल रिप्लेस यू, दैट इज सो इजी फॉर देम। दे आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज जब भी आपको लगे ना कि लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, प्लीज अपने घर चले जाओ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। आई एम लाइक राइट नाउ आई एम इन दिल्ली मेरे माँ बाप के साथ, क्योंकि मैं भी बहुत प्रेशर में थी, स्ट्रेस में थी। अकेले ये डिप्रेशन खा जाएगा और ट्रस्ट मी, ना प्रोड्यूसर काम आएगा ना चैनल काम आएगा, ये सबसे ज्यादा सेल्फिश लोग हैं। प्लीज अपनी फैमिली के आसपास रहिए।
2: संयोग देखिए कि साल 2020 में 14 जून को ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया था। संचिता को खोने के बाद उनका परिवार पूरी तरह टूट गया है। सवाल है कि क्या बुलंदी पर पहुंचने के बाद जब काम नहीं मिलता तो इसीलिए संचिता जैसी एक्ट्रेस एक्टर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत की हाई लेवल जांच की मांग की है।
9: 22 वर्षीय अभिनेत्री संचिता उगले ने अपने नाला सुपारा के पास अचोले गांव में स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार शाम को हुई, जब उनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उनकी छोटी बहन थोड़ी ही देर पहले घर से बाहर गई थी, जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि संचिता उगले ने एक साड़ी की मदद से अपने आप को पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। संचिता उगले को उसके बाद महानगर पालिका तुलंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। आपको बता दें कि संचिता उगले हाल ही में छावा फिल्म में महारानी ताराबाई के किरदार में नजर आई थी। इसके अलावा टीवी धारावाहिकों में वागले की दुनिया, कुमकुम भाग्य और दिलवाली दुल्हा ले जाएगी, इन टीवी धारावाहिकों में भी संचिता उगले ने काम किया था। परिवारजनों का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो निराश थी। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि इस आत्महत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है, उसकी जांच अभी चल रही है। पुलिस ने फिलहाल ADR रजिस्टर किया है और जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और नाला सुपारा से प्रवीण नलावड़े के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
10: महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसदों को अपने पास लाने के लिए ऑपरेशन टाइगर चला रही है, और इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ऑपरेशन भेड़िया चलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस तरह उद्धव ठाकरे की मीटिंग में उनके 5 सांसद गैर हाजिर रहे, उससे प्रश्न उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों ने एकनाथ शिंदे कैंप में आने का मन बना लिया है, और क्या वाकई उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरी बार टूटने जा रही है

0: क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर टूटने की कगार पर है? क्या शिंदे के ऑपरेशन टाइगर से डर गए उद्धव? क्या ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे उद्धव ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि शिंदे के दिल्ली दौरे पर कुछ यूबीटी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की। इन्हीं अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव तब हैरान रह गए जब 9 सांसदों में उनके घर सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। उद्धव ठाकरे की बैठक में सांसद संजय यादव, संजय देशमुख, उमराजे निम्बालकर, भाव साहब वागचौरे और नागेश पाटिल अष्टीकर, ये सभी सांसद नहीं शामिल हुए।
1: ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच में 9 में से 4 सांसद मातोश्री पहुंचे, जबकि बाकी 5 उनका कहना है कि हाइब्रिड तरीके से उन्होंने उनसे मुलाकात की। कुछ ने मीटिंग अटेंड की, कुछ ने फोन पे बात की, लेकिन उद्धव ठाकरे की गुट के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सांसद एक साथ हैं, यही जताने की कोशिश की गई। और ये भी बताने की कोशिश की गई कि ये मीटिंग कोई किसी दबाव में नहीं किया गया है, ये उनकी एक रेगुलर मीटिंग थी जिसका ऑपरेशन टाइगर से कोई लेना देना नहीं था।
0: खबर है कि उद्धव के घर हुई मीटिंग से नदारद रहने वाले 5 सांसदों के बीच दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग हुई। ये वही 5 सांसद हैं जो आदित्य ठाकरे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। किरकिरी होने के बाद शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि जो गायब सांसद थे वो मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ठाकरे सिर्फ 1 सांसद से ही ऑनलाइन बात कर पाए। बगावत की चर्चा के जोर पकड़ने के साथ नाराज उद्धव ठाकरे ने गैर मौजूद सांसदों को अपनी वफादारी साबित करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव की मीटिंग से गायब यूपीटी सांसद संजय देशमुख को दिल्ली में शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव के साथ बंद कमरे में बैठक करते देखा गया। देशमुख ने आनंद फानंद में मातोश्री को फोन करके कहा कि मामला कॉलेज के परमिशन का है, लेकिन सत्ता की इस बेरहम खेल में उनकी इस बहाने का भला उद्धव यकीन करना चाहे तो कैसे करें।
2: शिंदे जो भाजपचे लोक असे उपद्रव करत असतात, या क्षणी हे सगळे खासदार शिवसेनेबरोबर आहेत, त्याच्यामुळे काय तुमचं ते कुठलं ऑपरेशन वगैरे होतं आता आम्ही ऑपरेशन वुल्फ करू ना, म्हणजे ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, हे शक्य नाही आमच्याकडे।
0: लेकिन शिंदे की शिवसेना का जोश हाई है, वो कह रही है कि उद्धव ठाकरे का सियासी वजूद ही खतरे में है, इसलिए शिवसेना यूबीटी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
3: देखिए उबाटा की हालत इतनी खराब है, खस्ती हालत इसको बोलते वो है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। कल जो मीटिंग बुलाई गई थी वो इसीलिए बुलाई गई थी कि हम सब एक है ये दिखाने की कोशिश। क्या हुआ, कुछ लोग वीसी पे थे, कुछ लोग वहां उपस्थित थे। जैसा नेता रहेगा उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता रहे। इनको मिलने के लिए वक्त नहीं है इसलिए ये वीसी पे रहते हैं, तो अब उनको उनके पास भी वक्त नहीं है, वो भी वीसी पे रहे। पार्टी का वजूद अब खत्म होते जा रहा है, इनको किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही टूटे हुए हैं। और इसलिए शायद ही कुछ दिनों में ये जो सांसद है, ये जो एमएलएज है, ये जो बिखर रहे, उनसे जो टूट रहे, मुझे लगता है अब उद्धव साहब को वो संभालना मुश्किल होता है।
0: लेकिन शिवसेना यूबीटी बीजेपी से कह रही है कि वो छोटे दलों को तोड़ने वाली राजनीति से बाज आए।
4: देखिए हम 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? अरे टीएमसी तोड़ दिया, हमारी पार्टी तोड़ दी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, इस देश में विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं? कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए, बाकी हम लोग को हमारा काम करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को देश की जनता ने विकास के लिए चुन के दिया है, न कि ऑपरेशन करने के लिए दिया है।
0: अब इंतजार इस बात का है कि उद्धव ठाकरे ने जिन 5 लापता सांसदों को 48 घंटे के भीतर मातोश्री में पेश होने को कहा है, क्या वो नेता उनकी शरण में जाएंगे या इन सभी सांसदों ने पाला बदलने का मूड बना लिया है?
5: उद्धव ठाकरे के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब गेंद उन 5 लापता सांसदों के पाले में है। क्या ये सांसद मातोश्री लौटकर अपनी वफादारी साबित करेंगे या फिर महाराष्ट्र यूबीटी के इस किले को ढहता हुआ देखेगा? अब अगले 48 घंटे तय करेंगे कि क्या जंगल में अभी भी शेर का राज है या तो फिर एनडीए ने अपना शिकार कर लिया है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में खटपट की खबरें आ रही हैं। महायुति में साथ में सरकार चला रहे दोनों दलों की खटास कई जगह जग जाहिर हो चुकी है। ताजा मामला ठाणे का है, जहां गार्जियन मंत्री होने के बावजूद एक उद्घाटन समारोह के निमंत्रण पत्र में शिंदे का नाम हटा दिया गया, जिसके विरोध में शिवसैनिकों ने बीजेपी कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गणेश नाइक को काले झंडे दिखाए और गणेश नाइक के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की।
7: महाराष्ट्र में महायुति सरकार के दो प्रमुख घटक दल बीजेपी और शिवसेना के ये नेता आपस में टकरा रहे हैं। शिवसेना समर्थक बीजेपी कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री गणेश नाइक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सत्ता के दो दलों के लोग आपस में टकराए तो उन्हें शांत करने के लिए पुलिस को भी पसीना बहाना पड़ा। देखिए ये शिवसैनिक कैसे मंत्री गणेश नाइक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ठाणे में शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता संघर्ष कई बार देख चुका है। ठाणे लंबे वक्त से शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है। वहीं बीजेपी कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री गणेश नाइक भी ठाणे में अपना सियासी वर्चस्व साबित करने के लिए हमेशा जद्दोजहद करते नजर आए हैं। एक बार फिर दोनों के बीच तनाव की वजह से महायुति में ही जबरदस्त मतभेद दिखा। उसकी वजह ये रही कि नवी मुंबई नगर निगम ने एक नई हेल्थ केयर सर्विस शुरू की, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ता इस बात से नाराज हो गए कि कार्यक्रम के शेड्यूल में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम नहीं छपा गया था। शिवसैनिकों का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर शिंदे को नजरअंदाज कर रही है। इसीलिए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और काले झंडे दिखाए।
8: नवी मुंबई मध्ये हम करो सा कायदा सुरू आहे, ते पक्षाला सुद्धा मानत नाही आहे, त्यांचा पूर्वीचा इतिहास आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या आमदार आहेत मन्नाताई मात्रे, त्यांनी आज सकाळची स्टेटमेंट बघा, त्यांना सुद्धा मानत नाहीत, पक्षाला सुद्धा मानत नाहीयेत, मोदी साहेबांना मानत नाहीयेत, अमित शाह साहेबांना मानत नाहीयेत। हम करोसो कायदा आहे, त्या ठिकाणी कुठेही म्हटलं जात नाही भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे ती गणेश नाईक जनता पार्टी आहे, नाईक जनता पार्टी आहे।
7: देखिए नवी मुंबई नगर निगम द्वारा आयोजित हेल्थ केयर सर्विस लॉन्च के निमंत्रण पत्र पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है। शिवसेना नेता कह रहे हैं कि जिले के गार्जियन मिनिस्टर होने के बावजूद शिंदे का नाम शामिल नहीं किया गया।
9: बीजेपीला समजायला पाहिजे का बीजेपीच्याच एका आमदारांनी ज्या आमदाराचा तो मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी त्यांना डावलं गेल्यात आलं,
10: तर मग त्या ठिकाणी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब हे देखील आमदार आहेत कोपरी पासपकडीतून, त्यानंतर ते मंत्री आहेत आणि आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत आताचे, तुम्हाला त्यांचं नाव टाकण्यासाठी काय एवढा तुम्हाला छोटेपणा वाटतोय?
11: मागितला होता।
7: वही मंत्री गणेश नाइक ने पूरे विवाद में कहा कि प्रशासन को ये पता लगाना चाहिए कि निमंत्रण पत्र पर एकनाथ शिंदे का नाम क्यों नहीं था। फिलहाल महायुति में एक बार फिर तनाव दिखने से दोनों दलों के बड़े नेता असहज दिख रहे हैं।
12: बीजेपी और शिवसेना के बीच में नवी मुंबई में अक्सर महायुति में सत्ता संघर्ष देखने को मिला है। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम एक पत्रिका से गायब था और आज फिर जब आरोग्य सुविधा के लिए कई उद्घाटन होने थे तब एकनाथ शिंदे जो कि वहां के गार्डियन मिनिस्टर है उनका नाम नहीं था, जिसके चलते शिवसैनिकों ने प्रदर्शन किया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में नई मुंबई की राजनीति में क्या होता है। एक तरफ मंत्री गणेश नायक, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। नवी मुंबई में नीलेश पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।
6: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे के ऐलान के बाद बोले ट्रंप, तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज। मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। रक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा, लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी।

लिए फ्रांस पहुंच रहे हैं दुनिया के दिग्गज नेता। ट्रंप स्टार्मर पहुंचे, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने G7 बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। 15 से 17 जून तक समिट। यूरोपीय देश स्लोवाकिया ने किया भारत की यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन। पीएम मोदी ने कहा धन्यवाद। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई मजबूती। पीएम बोले दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा, साझा विश्वास साझा भविष्य का प्रतीक। पीएम मोदी ने भारत स्लोवाकिया दोस्ती को दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन बताया। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 22 जून को आएंगे भारत। 22, 23, 24 को भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के तहत निर्णायक चर्चा। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर बीजेपी आरएसएस की बैठक। अमित शाह, नड्डा, संतोष, अरुण कुमार समेत कई दिग्गज मौजूद। नितिन नवीन की नई टीम पर चर्चा। आरएसएस बीजेपी बैठक में नीट पेपर लीक पर मंथन। धर्मेंद्र प्रधान, दत्तात्रेय होसबोले मौजूद। सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। नीट पेपर लीक में युवाओं के अधिकार से राहुल की हुंकार। 17 जून को कोटा से करेंगे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। कोटा से अभियान शुरू करने से पहले राहुल बोले हर पेपर लीक लाखों सपनों पर वार, ये आपके भविष्य की लड़ाई, मैं आपके साथ। वाराणसी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल हिरासत में, कार्यकर्ताओं संग पुलिस की झड़प। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने मारे थप्पड़। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन अभिजीत दीप के। वीबीजी रामजी योजना के तहत बंगाल को केंद्र की बड़ी सौगात। ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए 8,508 करोड़ रुपए के फंड को स्वीकृति। कोलकाता में डीएमसी विधायक कुणाल घोष पर युवक ने फेंके अंडे। ममता बनर्जी के घर के बाहर घटना। कोलकाता में अंडे फेंके जाने की घटना पर डीएमसी विधायक कुणाल घोष का बयान, बोले हमला कर मुझे इस तरह से चुप नहीं करा सकते। बंगाल के फलता में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी नेता जहांगीर खान की रिहाई के लिए सड़क जाम की। आरजी कर रेप मर्डर मामले की जांच तेज। सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने अस्पताल पहुंचकर किया निरीक्षण, अधिकारियों से पूछताछ। लखनऊ में 3 दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी का आयोजन। योगी सरकार की जमकर तारीफ। संवाद में बोले योगी आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र यूपी। यूपी में 9,00,000 युवाओं को रोजगार दिया। प्रतिभाशाली युवा हमारे साथ। योगी बोले अब राम भक्ति की बात वही कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। जेवर एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू। सीएम योगी का बड़ा बयान, किसानों के भरोसे 13,000 एकड़ में रचा हमने इतिहास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3,900 मीटर लंबे रनवे। 7 करोड़ वार्षिक यात्री क्षमता के साथ देश का पहला एविएशन हब बना नोएडा। निरव्वा ने योगी के विकास कार्य की तारीफ की, बोले 2027 में योगी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के करीबी गोपाल राव पर लापरवाही का आरोप। एसआईटी से बचते नजर आए गोपाल राव। पटना में जेल से रिहा होते ही कोचिंग सेंटर पहुंचे रोशन आनंद। एकेडमी के बाहर छात्रों ने फैजल खान गो बैक के नारे लगाए। पटना में जेल से रिहा होते ही ज्ञान बिंदु के संचालक का बड़ा बयान, खान सर ने मेरे भाई की हत्या करवाई, साजिश रच। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले पंजाब में नशे के व्यापार से जुड़े हैं सत्ता के तार। केजरीवाल ने मान सरकार की तारीफ की, चिट्ठा नेटवर्क पर कार्रवाई से युवाओं को नई उम्मीद जगी। पंजाब में आरटीई के तहत 25% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र राज्य को जारी किया नोटिस। ईडब्ल्यूएस बच्चों को प्रवेश न देने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, पंजाब सरकार से मांगा जवाब। आरटीई एक्ट के पालन पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर केंद्र पंजाब को नोटिस। मुंबई के नाला सुपारा में 22 वर्ष की कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस संचिता उगले की आत्महत्या मामले में जांच तेज। अंतिम इंस्टा पोस्ट ने बढ़ाया रहस्य। अभिनेत्री संचिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस का पहला बयान, महाराष्ट्र सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग।

दिल्ली ISI अंडरवर्ल्ड नेटवर्क केस में चार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, 22 जून तक हिरासत में। वाराणसी में साथ लड़ेंगे डेंगू से अभियान का एक वर्ष पूरा, डेंगू के खिलाफ अभियान की बनाई गई पहली वर्षगांठ पंडितपुर गांव में विशेष आयोजन। DRDO की बड़ी सफलता, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप हत्याकांड पर हंगामा, आरोपी एनकाउंटर की मांग पर अड़े परिजन। बंगाल के आसनसोल में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हटन रोड से इस्माइल मोड़ तक हटाए गए अवैध कब्जे। मेरठ में राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद पुलिस थाने की जमीन पर निकली मस्जिद, इमाम को अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत। ओडिशा के मलकानगिरी में बड़ा हथियार डंप बरामद, 3 कार्बाइन समेत भारी विस्फोटक सामग्री जब्त, ये सभी नक्सलियों के हथियार। पटना में भीषण गर्मी के चलते निर्णय, DM ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को 20 जून तक के लिए बंद किया। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी, तेज हवाओं से बिगड़ा मौसम, बिजली गिरने का जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली NCR में बदला मौसम, एयरपोर्ट पर तेज आंधी तूफान, खूब हुई बारिश। दिल्ली में धूल भरी आंधी, 92 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाएं। राजस्थान के चुरू में रेतीले तूफान का हड़कंप, तेज धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा। राजस्थान के सीकर के फतेहपुर शेखावटी में धूल भरी आंधी से ढका आसमान, तेज हवाएं चली। गुरुग्राम में तेज बारिश से मिले गर्मी से राहत, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। शिमला के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, जाकू में सड़कों पर गिरे ओले, तापमान गिरा। शिमला में बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक, 18-19 को आंधी तूफान का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, कई हिस्सों में आंधी और गरज के साथ होगी बारिश। देहरादून में सहस्त्र धारा के बाद गुचू पानी बन रहा है पर्यटकों की पहली पसंद, वीकेंड पर उमड़ी भीड़। चमोली में बद्रीनाथ धाम में 10,70,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बारिश ठंड के बावजूद जबरदस्त भीड़। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी, दर्शन किए, पूजा अर्चना की, 5 करोड़ रुपए दान दिए। नैनीताल के खैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर नीप करौली बाबा के दरबार में 70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ महाप्रसादम योजना से महिला समूहों को मिल रहा है रोजगार, मोटे अनाज के उत्पाद बनाकर महिलाएं कर रही हैं आमदनी। गुरुग्राम में सजा आमों का महाकुंभ, मैंगो फेस्ट का भव्य शुभारंभ, 70 से ज्यादा किस्में। लखनऊ विधान भवन में पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के कमरे में आग से अफरा तफरी। मैसूर में पब में संदिग्ध गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग, 2 की मौत। गुजरात में जामनगर द्वारका हाईवे पर चलती कार में आग, समय रहते यात्री निकले बाहर। अजमेर के इंडस्ट्रियल एरिया में 2 प्लास्टिक फैक्ट्रीज में भीषण आग, 24 गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के कौशाम्बी में बेटी ने पिता को मारी गोलियां, अवैध संबंध के चक्कर में मार डाला। करनाल में किराना स्टोर पर चोरों का धावा, रिफाइंड के टिन और चावल के कट्टे चोरी करते पकड़े। थाने में बाइक चोर गैंग गिरफ्तार, 70 बाइक बरामद की गई। गुजरात के अमरेली में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या, नाबालिग प्रेमिका समेत परिवार के 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में पुलिस आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान 1400 पेटी अवैध शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में कार ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, 1 मासूम घायल। गुजरात के राजकोट में ऑयल मिल में बड़ा हादसा, 55 वर्ष की महिला मजदूर की मौत। गुजरात के वलसाड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार महिला की मौत। साबरकंठा के हिम्मतनगर में तेज रफ्तार कार ने 3 को मारी टक्कर, 2 महिलाओं समेत 3 घायल, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। इंदौर में साइबर ठगी का मामला, पानी की बॉटल ऑर्डर के बाद छात्रा का मोबाइल हैक किया, रिफंड के नाम पर 2.5 लाख रुपए वसूली। मुजफ्फरपुर में लॉकअप में युवक की पिटाई के मामले में थानेदार पर FIR, कार्रवाई तेज। राजस्थान के अलवर में पेट्रोल पंप से ट्रेलर चोरी, स्कॉर्पियो से आए लोग। राजस्थान के खैरथल पिजारा जिले में बड़ा हादसा,
लटकते बिजली के तार की चपेट में आने से 3 वर्ष की बच्ची की मौत। देवरिया के एक रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर हंगामा, लाइन में खड़े युवकों को दलालों ने पीटा। मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ नकल का खुलासा, सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आम से लदी पिकअप वैन पलटी, घायल दंपत्ति को छोड़ लोगों ने आम लूटा। करीना कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 वर्ष पूरे होने पर जश्न में पार्टी में शामिल हुई और लगान फिल्म की यादों को ताजा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक सुभाष का ऐलान, आर्यन श्याम निभाएंगे मुख्य भूमिका। प्रभास की पीरियड वॉर फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट, दिसंबर 2026 में होगी रिलीज। कॉकटेल 2 को मिला सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट, शाहिद कपूर, कृति सनन, रश्मिका मंदाना आएंगे नजर। फिल्म ब्लास्ट का बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन, 46 करोड़ से अधिक की अभी तक कमाई। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद ईरान ने लगाई मोहर, 19 जून को हस्ताक्षर करने के बाद खुल जाएगा हॉर्मुज। केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल को वाहन ईंधन के तौर पर दी स्वीकृति, नितिन गडकरी बोले अगले 6 हफ्तों में कंपनियां केवल एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां लॉन्च कर सकती हैं। FSSAI ने 8 बड़ी फूड कंपनीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 0 मैदा ब्रेड और विटामिन जैसे गुमराह कर रहे हैं ये लोग ग्राहकों। विदेशी निवेशकों ने जून के पहले 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 62,853 करोड़ रुपए निकाले, इस वर्ष का अब तक का सबसे कुल विदेशी बिकवाली 3.25 लाख करोड़। होम लोन इंश्योरेंस लेने वालों की डिमांड 5 महीनों में 7 गुना बढ़ी, घर खरीदने के साथ साथ परिवार की वित्तीय सुरक्षा पर भी फोकस बढ़ा।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। 3.5 महीने से दुनिया जिस महायुद्ध के साए में जी रही थी, वो अमेरिका ईरान युद्ध पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वो एक ऐतिहासिक समझौते पर राजी हो गए हैं। इस एक फैसले ने दुनिया के बाजारों में बड़ी हलचल मचा दी है। कच्चा तेल धड़ाम से गिरकर $83 आ गया है, $83 पर, जिसे भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन इस महासमझौते के पीछे की इनसाइड स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन के गिफ्ट के चक्कर में ईरान की हर शर्त के आगे घुटने टेक दिए? क्योंकि इस डील में अमेरिका को सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि ईरान को उसके फ्रीज हुए $24 बिलियन और तबाही के मुआवजे के तौर पर $300 बिलियन का पैकेज मिलने जा रहा है। आखिर इस डील से अमेरिका को क्या मिला और क्यों इजराइल इस समझौते को ठुकराकर अब भी लेबनान और गाजा पर बारूद बरसा रहा है? ईरान की वो 14 शर्तें आखिर क्या हैं जिन्होंने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया, आज आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बारे में बताएंगे। फ्रांस में G7 समिट के दौरान दोनों की मुलाकात संभावित है। यह मुलाकात बहुत संवेदनशील मोड़ पर हो रही है। 13 फरवरी 2025 के बाद दोनों नेता पहली बार आमने सामने होंगे, वो भी तब जब हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप बाजार में मिलने वाले हेल्दी, ऑर्गेनिक और वीगन लिखे प्रोडक्ट्स को बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शुद्धता के नाम पर आपके भरोसे आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। रहिएगा जरूर हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको गुमराह कर रही हैं, जिसे लेकर अब FSSAI ने इन पर बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का युद्ध अब पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी है और यह बताया है कि दोनों देशों ने उन शर्तों पर सहमति बना ली है जो अंतिम समझौते का आधार बन सकती है। इस फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $83 का हो गया है, जो सिर्फ कल $87 पर था, जबकि WTI इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $80 का हो गया है, जो कल $85 का था। तो ब्रेंट क्रूड जो आप देख रहे हैं उसमें लगभग $0.5 की कीमत में गिरावट आई है, और वहीं जब आप WTI देखते हैं तो उसमें लगभग 5.13% की गिरावट। युद्ध के दौरान कच्चे तेल की यही कीमतें $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो आज आप 83 पे देख रहे हैं $116। और अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये कीमतें सामान्य हो जाएंगी और बड़े दिनों बाद कम से कम महंगाई के मुद्दे पर कुछ अच्छी खबर आ सकती है। युद्ध समाप्ति की घोषणा से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में 2-5% की तेजी आई, तो स्टॉक बाजार में भी थोड़ी सी ही सही रौनक लौटी है। और भारत का सेंसेक्स 736 पॉइंट्स मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी 231 पॉइंट्स मजबूत हुआ। कुल मिलाकर सिर्फ आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को 8,09,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यह पैसा कई देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है। युद्ध खत्म होने से अब डॉलर की मांग कम होगी, इसीलिए आज डॉलर 0.28% कमजोर हुआ, जबकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत मामूली लेकिन बढ़त हुई है। पहले से 0.73 की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के 94.67 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर है, जबकि मई, यही 20 मई आप सोचिए, यही मूल्य 96.84 रुपए तक पहुंच गया था। 2 रुपए की मामली गिरावट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ, गिरते रुपए को युद्ध समाप्ति की घोषणा ने थोड़ा सा संभाला है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सोना चांदी महंगा हो सकता है। जब डॉलर की मांग बढ़ रही थी, निवेश सोने चांदी की जगह डॉलर में निवेश कर रहे थे, तब इनकी कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब डॉलर का मूल्य जब घट रहा है तो सोने में निवेश बढ़ सकता है। सोने के दाम आज से ही बढ़ने लगे हैं। आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,50,000 रुपए का हो गया, सिर्फ 10 ग्राम।
और इसमें कल के मुकाबले 2,846 रुपए की तेजी आई, जबकि इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,51,000 रुपए हो गई और सिर्फ आज में 1 किलो चांदी लगभग 9,000 रुपए महंगी हुई। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान ने कुछ शर्तों पर सहमति बना ली है और अब 19 जून को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इससे ये सवाल भी उठता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध से क्या हासिल हुआ। ये तस्वीर तुर्की में ईरान के दूतावास ने साझा की है जिसमें यह लिखा है कि नए युग के मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे ईरान का एक ऐलान मान रहा है, ऐसा ऐलान जिसमें ईरान यह बता रहा है कि अब वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो सुपर पावर जिसे अमेरिका और इसराइल मिलकर भी हरा नहीं पाए और अमेरिका को ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका पर किस हद तक दबाव बनाकर रखा उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद राष्ट्रपति ट्रंप है। आज सुबह डील का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को 2 बार अपना बयान बदलना पड़ा। पहले बयान में उन्होंने यह कहा कि डील के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने वाला है, जबकि इसके 1 घंटे बाद फिर पोस्ट आया और यह कहा कि हॉर्मुज को इस शुक्रवार तब खोला जाएगा जब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाए कि क्या अब भी इस डील को लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, वरना 1 घंटे में ये बात पलटी कैसे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी जिन शर्तों पर अमेरिका और ईरान ने सहमति बनाई है वो शर्तें किसी डील का रूप नहीं लेंगी। इसकी जगह दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे जो अगले 2 महीने के लिए लागू होगा। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दो पक्षों के बीच आपसी समझ का एक दस्तावेज। एमओयू किसी भी डील या एग्रीमेंट से इसलिए अलग होता है क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता है। अगर कल को राष्ट्रपति ट्रंप का मूड बदल जाए, वो अपनी ही कही बातों से पलट जाए, तो इसके लिए कानूनी रूप से उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और इसीलिए दुनिया कह रही है कि ये डील का पहला चरण है लेकिन डील नहीं है। दूसरा, अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक रूप से एमओयू की शर्तों को तो सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन दोनों देशों ने ये तो माना है कि वो एक दस्तावेज पर बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में कौन सी शर्तें शामिल हैं, इस पर आधिकारिक जानकारी ना तो अमेरिका ने दी है और ना ही ईरान ने दी है। हालांकि इसके बावजूद एक एमओयू अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है जिसे ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। ये एजेंसी ईरान के तेहरान टाइम्स का हिस्सा है जो उन 14 शर्तों के बारे में बताती है जिन पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। इनमें पहली शर्त यह है कि ईरान के कच्चे तेल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें निलंबित किया जाएगा। 23 मई 2026 को फॉर्च्यून मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले 8 साल में ईरान पर 2,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं जिनमें ज्यादातर प्रतिबंध ऐसे हैं जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बेचने से रोकते हैं। अब अगर ये प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। कारण यह है कि वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, ईरान के पास है, जो 209 बिलियन बैरल का माना जाता है। दूसरा, 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा और अभी राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं जबकि सच ये है कि इस युद्ध से पहले हॉर्मुज खुला ही हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन इस दावे को लेकर भी अभी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। और एक बार कोई डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला दे कि इस युद्ध से पहले सारे जहाज निकल रहे थे और कोई वसूली वहां पर नहीं हो रही थी, ये तो आपने ऐसे हालात पैदा किए कि हॉर्मुज भी ब्लॉक कर दिया गया और पैसे भी वसूले जाने लगे। ईरान की ही मेहर न्यूज एजेंसी ये तो नहीं कहती कि ईरान हॉर्मुज में टैक्स वसूलेगा या नहीं, लेकिन वो ये जरूर लिखती है कि हॉर्मुज को ईरानी व्यवस्था के साथ खोला जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि जो हॉर्मुज अब तक पूरी दुनिया की संपत्ति था वो अब ईरान की व्यवस्था वहां पर होगी। हॉर्मुज के खुलने से दुनिया में तेल गैस का संकट कम होगा। इस युद्ध से पहले हॉर्मुज से हर दिन औसतन 138 जहाज 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था जो युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन अब यह आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकती है। तीसरी शर्त यह है कि अमेरिकी नौसेना 30 दिनों के अंदर अपने नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाएगी। ये वही नेवल ब्लॉकेड है जिसके तहत ईरान के 116 जहाजों को
अमेरिका वापस भेज चुका था, उनकी नाकेबंदी कर दी गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे आकर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से ईरान के भी जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और चौथी शर्त यह है कि ईरान के आसपास अमेरिका ने अपने सैन्य बलों की जो तैनाती की है उन्हें वापस बुलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास कई समुद्री जहाज सैनिकों को तैनात रखता था, लेकिन अब उसे यह तैनाती हटानी होगी, जिसे कई विश्लेषक अमेरिका के लिए झटका मान रहे हैं। पांचवी शर्त, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। यानी ईरान में अगर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां लोगों को फांसी होती है, वहां का कोई भी आंतरिक मामला होता है, तो उसमें अमेरिकी ठेकेदारी नहीं चलेगी, अमेरिका ठेकेदार नहीं बन पाएगा और उसे ईरान से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं छठी शर्त। तो छठी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान पर ना तो कोई नया प्रतिबंध लगाएगा और ना ही मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाएगा। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, विदेशों में ईरान के जो $100 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज किए हैं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उनमें से $24 बिलियन उसे वापस देने होंगे। सोचिए, मतलब इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया? ईरान तो बहुत कुछ हासिल करता हुआ दिख रहा है। ये वही पैसा है जो ईरान ने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन डॉलर में व्यापार के कारण अमेरिका ने यह पैसा एक तरह से जब्त कर लिया था। अब $24 बिलियन भारतीय रुपयों में 2,27,000 करोड़ रुपए होते हैं और यह पैसा अगले 60 दिनों में जारी होगा, जिनमें से $12 बिलियन बातचीत से पहले जारी होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे कि मैं ईरान को बिना एक पैसा दिए डील करके दिखाऊंगा, लेकिन इस दस्तावेज से ऐसा लगता है कि ईरान उन पर भारी पड़ा है। ईरान ने ना सिर्फ ये शर्त मनवाई बल्कि अमेरिका ये वादा भी ले लिया है कि इससे ये वादा भी ले लिया है कि वो ईरान के पुनः निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन की योजनाएं पेश करेगा। यानी ईरान को अपने पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही युद्ध में हुए नुकसान के लिए अलग से पैसा मिलेगा। और $300 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। मिडल ईस्ट में ओमान, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था ही $300 बिलियन से कम की है। नौवीं शर्त यह है कि ईरान भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके लिए ईरान को ट्रीटी और द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर दोबारा अपनी पुष्टि देनी होगी। और दसवीं शर्त यह है कि परमाणु मुद्दों सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर अंतिम समझौता करने के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू होगी। ग्यारहवीं शर्त यह है कि अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी। यानी जब यह बातचीत सफल होगी तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में फाइनल डील पर दोनों ही पक्ष दस्तखत करेंगे। हालांकि इसी में 12वीं शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह लिखा है कि अंतिम समझौते के लिए तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी जब तक ईरान के कुल $12 बिलियन जारी नहीं होते, ईरान के कच्चे तेल से प्रतिबंध नहीं हटते और अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से जब तक वापस नहीं होती। 13वीं शर्त, समझौते का पालन कराने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष इन शर्तों का पालन करें। और 14वीं और आखिरी शर्त यह होगी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी शांति स्थापित की जाएगी। यानी लेबनान में अगर इजराइल ने बमबारी की, जो वो लगातार कर रहा है, तो ईरान इस शांति समझौते से पीछे हट जाएगा और इसे उसका उल्लंघन मानेगा और अब यह सारा पेच फंस रहा है। डील का ऐलान होने के बाद भी इसराइल ने लेबनान और गाजा पर अपने हमले नहीं रोके। गाजा पर इसराइल के नए हमलों में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान पर भी इसराइल ने बारूद बरसाना जारी रखा। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका का समझौता उन पर लागू नहीं होता। इसराइल अब भी लेबनान और गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा। सुनिए,

0: इसराइल इस डील को इसलिए भी नहीं अपनाएगा क्योंकि इससे ईरान को फायदा ज्यादा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट का देश नहीं है, अगर कल को ईरान एक बड़ी सुपर पावर बनता है तो इससे अमेरिका को सीधे कोई बड़ा खतरा भी नहीं होगा, लेकिन ईरान का मजबूत होना इसराइल के लिए चैलेंज है, चुनौती बन जाएगा। और जो इसराइल अब तक मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को डोमिनेट करता आया है, वहां आने वाले दिनों में ईरान का प्रभाव उसे टक्कर देगा। और यही कारण है कि इसराइल न सिर्फ इस डील के खिलाफ है बल्कि वो लेबनान और गाजा में सैन्य संघर्ष जारी रखकर इस डील को तुड़वा भी सकता है और कम से कम कमजोर तो कर ही सकता है। यहां यह भी समझना होगा कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बर्थडे गिफ्ट के चक्कर में ईरान की ज्यादातर शर्तों पर अपनी सहमति दे दी, और क्यों ईरान ने फिर भी ऐसा होने नहीं दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उसे नाम ना छापने की शर्त पर ईरान के दो बड़े अधिकारियों ने यह बताया कि ईरान की इस्लामिक सरकार ने जानबूझकर इस एमओयू को तब अपनी मंजूरी दी जब रविवार बीत चुका था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप का 80वां जन्मदिन था, यानी बीते दिन, और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे थे कि यह डील उनके जन्मदिन पर ही होगी, जबकि ईरान नहीं चाहता था कि दुनिया में यह संदेश जाए कि इतना बड़ा समझौता राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर हुआ और इसका राजनीतिक श्रेय उन्हें दिया जाए। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपने जन्मदिन पर इस एमओयू को मंजूरी दे दी, लेकिन ईरान ने इस पर सहमति देने में वक्त लिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान ने रात को 12 बजने का इंतजार किया और उस वक्त इस डील की घोषणा की जब वो ये कह सके कि ये डील 15 जून को हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर यह समझौता नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के ऐसा करने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप कह सकते हैं कि इस एमओयू की घोषणा उन्हीं के जन्मदिन पर हुई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के टाइम में 7 घंटे का अंतर है और इस हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान दोनों अपनी अपनी सुविधा से इस डील की तारीख को लेकर दावे कर सकते हैं। यहां यह भी समझना होगा कि क्या इस युद्ध के लिए दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप की विवेचना करेगी। आज से 11 साल पहले साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की थी जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इसके तहत यह तय हुआ था कि ईरान अभी भी यूरेनियम के 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा, अपने यूरेनियम भंडार में कटौती करेगा, इसे सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या 2/3 घटानी होगी। यही नहीं, अमेरिका ने कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रहेगा और प्लूटोनियम बनाने की भी कभी कोशिश नहीं करेगा। बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया था और कुछ लोग दावा करते हैं कि तब अमेरिका की तरफ से ईरान को $150 बिलियन अलग से दिए गए थे और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं, लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक उस वक्त ईरान को अलग से एक भी पैसा नहीं दिया गया था। ईरान को वही पैसे मिले थे जो अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए थे और जो उसी के पैसे थे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगता है कि उन्होंने गलत दावा करके साल 2018 में इस डील को रद्द करा दिया किया और आज 2026 में वो 3 महीने का युद्ध लड़कर ईरान से ऐसी डील करने जा रहे हैं जो डील 2015 की डील से कमजोर मानी जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप फिर भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। हकीकत में जीत तो ईरान की हुई है जिससे अपने निष्क्रिय फंड से कुल $24 बिलियन भी मिलने वाला है, उसके परमाणु पुनर्निर्माण के लिए अलग से $300 बिलियन की एक नई योजना पेश होने वाली है। देखिए,
1: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
2: it'll be soon, maybe this weekend.
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes, that's true. That's part of the deal. Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. That with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but... JD will be there, Vice President and some of the people.
0: इस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि अंतिम समझौते पर इसके 60 दिनों बाद दस्तखत होंगे. और ऐसे में पूरी दुनिया के लिए और आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कब से तेल, गैस ये सप्लाई सामान्य हो पाएगी, और यहां बिछाए गए समुद्री बारूद को हटाएगा कौन? युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया समुद्री नक्शा जारी किया था, जिसमें यह बताने की कोशिश हुई थी कि हॉर्मूज में जहाजों के गुजरने वाले रास्ते पर सी माइंस बिछाई गई हैं. अनुमान है कि ईरान के पास 2000 से 6000 तक समुद्री माइंस हो सकती हैं, जिनमें से काफी ईरान ने खुद बनाई है. लेकिन अभी यह स्पष्ट ही नहीं है कि ईरान ने इनमें से कितनी माइंस को समुद्र में बिछाया है, वो अभी कहां पर है. इससे भी बड़ी बात यह है कि माइंस को हटाना बहुत आसान नहीं होता. इस प्रक्रिया को माइन काउंटर मेजर्स यानी MCM कहते हैं. इसमें दो मुख्य काम होता है. पहला है माइन हंटिंग यानी खोजना, सोनार की मदद से माइंस को ढूंढा जाता है, और दूसरा है माइन स्वीपिंग, जिसमें माइंस मिलने के बाद उन्हें निष्क्रिय करना है, इनएक्टिव करना है, नियंत्रित विस्फोट करके उड़ाया जाता है. अब बड़ी समस्या ये है कि अगर ईरान ने 500 माइंस भी हॉर्मूज में बिछाई होंगी, 500 सिर्फ, तो इन्हें हटाने में बहुत समय लगेगा. एक सी माइन को ढूंढकर उसे नष्ट करने में औसतन 5 घंटे लगते हैं. इस हिसाब से 500 माइंस को हटाने में 2500 घंटे लगेंगे. 2500 घंटों का मतलब हुआ 104 दिन या 3 महीने 14 दिन. अगर अमेरिका ईरान के साथ मिलकर एक साथ 20 टीमें भी इन सी माइंस को ढूंढकर उन्हें नष्ट करने में लगाता है, तब भी ऐसा करने में 3 महीने चाहिए. हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी. हालांकि इससे कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी और धीरे धीरे तेल और गैस का संकट जरूर खत्म होगा. मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि हॉर्मूज के खुलने से किन देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. तो यहां आप देख सकते हैं कि युद्ध से पहले हॉर्मूज से किन देशों का कितना कच्चा तेल जो है वो निर्यात होता था. तो हॉर्मूज से जो कच्चा तेल है उसमें सबसे पहले आप देखिए इराक बसरा, जहां 18% जाता था. कुवैत से आप देख लीजिए, कुवैत से 11%. उसके बाद आप आ जाइए ईरान, ईरान 11%. और यहां से ये आगे बढ़ता था ऐसे ही. जब आप देखेंगे सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में भी 28%. अब इसको एक सेकेंड में डिलीट कर दूं यहां. अब आपको दिखाते हैं कि ये कहां से आता है, और यहां से जब सऊदी अरब से ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी कुछ 3 जगह है, जिसमें एक बहरीन हो गया, एक कतर हो गया, और एक UAE, जहां पे दुबई और अबू धाबी ये सब है. तो यहां से भी 14% यहां से, 28% सऊदी अरब है. यहां से ये तेल, कच्चा तेल जो है वो आगे बढ़ता है और निर्यात के लिए आगे बढ़ता है. जाता कहां है सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये एशिया, जिसमें 80% मुझे लगता है उससे ज्यादा. ये देखिए एशिया का 80%, ये जो 80% है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाता है. और यहीं पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको अन्य जगह भी दिखा देते हैं, जिसमें यूरोप और अन्य देशों में 13% है. ये एशिया में जैसे हमने आपको दिखाया 18% है. उसके बाद अमेरिका में देखिए 7%, भारत में 13% और 25% जाता है चाइना में, जो कि इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहां कहां पर पहुंचता है. तो दक्षिण कोरिया में 10% पहुंचता है ये कच्चा तेल और गैस. उसके बाद से कच्चा तेल और गैस जापान में 9%, दक्षिण पूर्व एशिया में ये लगभग 11% है जो आप देख रहे हैं, और अन्य एशियाई देशों में ये जाता है 10%. तो इससे आपको समझ में आ गया कहां कहां पर ये कितना तेल जाता है, कितना तेल मौजूद है, किन देशों में कितना पहुंचता है, किन देशों से निकलता है. तो ये जो पूरा रास्ता है तेल और गैस की सप्लाई का, वो बाधित हुआ है. और सभी को इसी बात का इंतजार है कि वो एक बार वापस हो जाए ताकि कीमतें कंट्रोल में आए. और अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये डील पाकिस्तान ने कराई या ये डील कतर ने कराई है. सार्वजनिक रूप से इस डील का पहला ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ. शहबाज शरीफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को इस डील के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि पहली सूचना शहबाज शरीफ की तरफ से आई थी, इसीलिए अभी कई लोग पाकिस्तान को इस डील का श्रेय दे रहे हैं. लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है. पिछले महीने ईरान के सरकारी मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हुई कि पाकिस्तान मध्यस्थता में गड़बड़ी कर रहा है. वो राष्ट्रपति ट्रंप की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस तरह से काम करता रहा जो अमेरिकी हितों के अनुकूल था और चापलूसी करने में इतना उस्ताद कि ईरान की तरफ से हमेशा गलत संदेश अमेरिका को पहुंचाया जा रहा था। जी हजूरी वाली तबीयत और मिजाज पाकिस्तान की छूट नहीं रही थी, लेकिन बाद में ईरान ने पाकिस्तान के डबल गेम पर चिंता जताते हुए उसकी मध्यस्थता को संदेह के दायरे में रख दिया और जब मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका सीमित हो गई तो कतर आगे आया। पिछले महीने 25 मई को ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुंचा। इनमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची शामिल थे। इसी दौरान कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच चर्चा की, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच एक भरोसेमंद संपर्क शुरू हुआ। ईरान ने कतर को जब यह बताया कि वो अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को मुक्त कराना चाहता है, तब कतर ने ईमानदारी से यह बात अमेरिका तक पहुंचाई कि हमारी जो संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज की हुई है, हमें वो संपत्ति चाहिए। अमेरिका के लिए कतर पर भरोसा करना इसलिए भी आसान था क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका की डील भी कतर ने ही कराई थी। और कतर की खासियत यह है कि वो ऐसे विरोधी पक्षों से भी बातचीत बनाए रखता है जो आपस में सीधे बात नहीं करते, और यहां भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान बार हुआ नहीं कि समझौता होने लगा। इनमें भी 12 जून का दिन सबसे महत्वपूर्ण था जब कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने राष्ट्रपति ट्रंप से खुद बात की। दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता तैयार करवाया जो अंतिम समझौते का आधार बने। जब ईरान ने कतर को अपना जवाब भेजा तो उसके बाद इस डील का ऐलान हुआ और कतर ने खुद कहा कि इस मध्यस्थता में कई सहयोगियों ने भूमिका निभाई लेकिन केंद्रीय भूमिका में वही रहा। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म कि उसने यहां इस समझौते का श्रेय लेने की कोशिश की। और आप खुद देखिए कि पाकिस्तान की संसद में कैसे शहबाज शरीफ इसका ऐलान करके वाहवाही भी लूट रहे हैं। पीओके में लगातार आम लोगों का खून बह रहा है। अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है पाकिस्तान और जो बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना भी कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकवा दिया। देखिए,
3: मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पजशकियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। फायदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की होगी।
0: खैर, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात अहम क्यों मानी जा रही है। पिछले साल जब कनाडा में G7 समिट का आयोजन हुआ था और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध के कारण समय से पहले Washington DC, अगर आपको याद हो तो वो अचानक Washington DC के लिए रवाना हो गए थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे और लौटते वक्त उनसे मिलने के लिए व्हाइट हाउस आए, मतलब वो वहां से निकलकर पहले व्हाइट हाउस जाएं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और फिर भारत आए। लेकिन ओडिशा में एक कार्यक्रम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के निवेदन को अस्वीकार कर दिया था और उस वक्त ये खबर इसलिए भी बड़ी बनी थी क्योंकि तब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था और भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अब इस साल फ्रांस में G7 समिट का आयोजन होने वाला है और उम्मीद है कि इस बार इस समिट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मुमकिन है। 13 फरवरी 2025 के बाद इन दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी और ऐसे वक्त में होगी जब हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमला किया है। इनमें एक हमले में हमारे 3 नाविकों की जान चली गई है। हालांकि इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंचे जहां प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच नई डिफेंस और ट्रेड डील का ऐलान हुआ है। देखिए,

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात हुई है। और बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात में भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसलिए आज हम ये भी समझेंगे कि एआई के क्षेत्र में भारत फ्रांस से क्या चाहता है और फ्रांस भारत से क्या चाहता है।

0: संत ऐसे होते हैं
1: जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया।
2: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब फरवरी महीने में भारत आए थे, तब उन्होंने भारत में आयोजित इंटरनेशनल एआई समिट में हिस्सा लिया था। और ऐसा नहीं है कि एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की नजदीकी सिर्फ कुछ समझौते और कुछ निवेश के कारण है, असल में खेल इससे भी बड़ा है। आप रोज सुनते होंगे कि एआई इज द न्यू ऑयल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एआई पूरी दुनिया के बाजार को बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे अब तक कच्चे तेल और गैस पर दुनिया के ज्यादातर देशों की निर्भरता रही, वैसी ही निर्भरता अब एआई पर भी बन रही है। एआई इस वक्त हर जगह है, आपके फोन पर, आपके टेलीविजन में, आपकी गाड़ी में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, यहां तक कि आपकी नौकरी में भी एआई है ज्यादातर जगहों पर। अब समस्या यह है कि अब तक एआई पर जिस तरह का नियंत्रण अमेरिका, चाइना ने स्थापित किया, वैसा नियंत्रण दूसरे देश हासिल नहीं कर पाए। आज भी एआई कंप्यूटिंग पावर में अमेरिका और चाइना की हिस्सेदारी जानते हैं 90% है, जबकि एआई निवेश में हिस्सेदारी 70-80%, यानी पैसा भी उन्हीं का लगा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि अगर दुनिया का 90% कच्चा तेल सिर्फ दो देशों के पास हो तो दुनिया कैसे उन देशों पर निर्भर हो जाएगी और उससे अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। अब एआई के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। उदाहरण के लिए एआई चिप्स में अमेरिकी कंपनी एनविडिया की सबसे बड़ी 90% हिस्सेदारी है। इसके अलावा आप जो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी अमेरिका के हैं। एआई रोबोट के मामले में चाइना बहुत आगे है। अब ये दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से दुनिया इनकी ग्राहक बनकर रहे और इसी मोनोपोली यानी एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत और फ्रांस ने हाथ मिलाया है। जैसे भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि हम मिलकर एआई मॉडल्स बनाएंगे, एआई साझेदारी में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और अमेरिका और चाइना जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और फ्रांस ऐसा कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत दुनिया में 30वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत में एआई कौशल का प्रसार दुनिया के औसत से 2.5 गुना ज्यादा है, यानी हमारे देश में एआई टैलेंट की कमी नहीं है। और ऐसे में हमारे देश में भी 87% कंपनियां जो हैं उसमें आगे बढ़ रही हैं। इसे भारत के एआई क्षेत्र में निवेश भी बढ़ रहा है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो एआई में निवेश के मामले में भारत अब 8वें स्थान पर है जबकि फ्रांस 7वें स्थान पर। तो अगर 7वें और 8वें नंबर पर दोनों हैं और हाथ मिला लें तो बड़ी ताकत बनेंगे। भारत के पास एक और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास एआई टैलेंट की कमी नहीं। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके बाजार में आते हैं और एआई ऑथर्स और इन्वेंटर्स के मामले में भारत अमेरिका के बाद आता है और हम जर्मनी जैसे देशों से भी आगे हैं। अब भारत को अगर बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है तो हमें फ्रांस का साथ चाहिए होगा, जहां हम एआई टैलेंट दे सकेंगे और फ्रांस हमें अपना अनुभव दे सकेगा। और यही वजह है कि एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की मित्रता बड़ी मानी जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। कल तक माना जा रहा था कि केंद्र की एनडीए सरकार सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के भरोसे टिकी है, लेकिन अब इस कहानी में अहम किरदार बनकर उभरी है ममता बनर्जी से बगावत करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तेदार। काकोली घोष दस्तेदार और उनके साथ आने वाले टीएमसी के बाकी 19 बागी सांसदों ने ऐसा दांव चला है कि वो दल बदल कानून के पेच से बच जाए। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने खुद के एनसीपीआई में विलय हो जाने की घोषणा की और स्पीकर ओम बिरला से संसद में अलग मान्यता की मांग की है और कहा है कि हम एनडीए का समर्थन करेंगे, यानी ये सांसद भी आ गए बीजेपी के खेमे में, मोदी के खेमे में। एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, अगर मैं कल से पहले पूछती तो आप में से कितने लोग, हम लोग भी शायद एकदम से नाम ना आए कि कौन सी पार्टी है, कहां की पार्टी है। आम लोग तो छोड़िए, नेता भी शायद और जो राजनीतिक पंडित हैं, पत्रकार हैं, वो भी ना बता पाते कि कौन है ये पार्टी। कल रात को जब टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई का नाम लिया, उससे पहले एनसीपीआई के फेसबुक पेज पर सिर्फ 75 फॉलोअर्स थे, अब 4800 हो गए हैं फॉलोअर्स। एक राजनीतिक दल के तौर पर एनसीपीआई का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2023 को हुआ था। एनसीपीआई ने अपना पहला चुनाव बंगाल के बजाय त्रिपुरा में लड़ा था। 2023 के चुनाव में त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर एनसीपीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इसके बाद एनसीपीआई ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। छवामनु सीट पर पार्टी उम्मीदवार को 536 और कैलाश शहर सीट पर 286, कुल 286 वोट मिले, यानी एनसीपीआई को टोटल वोट कितने मिले, 822। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई के त्रिपुरा चुनाव का नारा था रिजेक्ट पॉलिटिकल टर्न कोट्स, यानी दल बदलुओं को नकारो। अब पश्चिम बंगाल में हावड़ा के सकराइल के पते पर पार्टी का एक रजिस्टर्ड दफ्तर है। इस बिल्डिंग के गेट पर एक पत्रकार के तौर पर उत्तिया कुंडू और कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील के तौर पर शिवली कुंडू के नाम है। बिल्डिंग में एनसीपीआई का बैनर टंगा हुआ है। 2023 के बंगाल पंचायत चुनाव में भी एनसीपीआई ने उम्मीदवार उतारे थे और अब ये सभी के सभी सांसद इसी पार्टी में मिल गए। साल 1970 में एक फिल्म आई थी, नाम था सफर। इस फिल्म का एक गीत है जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। प्रेम गीतों में भले ही इस तरह की बातें कही जाती हों, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन को रात कह देने से रात नहीं हो जाएगी। गाने का उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन वो कह देती हैं, स्टैंप लगा देती हैं और उन्हें लगता है कि जैसा वो कहते हैं लोग उसे मान भी लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की शायद ही ऐसी कोई चीज बची हो जिसमें मिलावटखोरी की खबरें ना आई हो। त्योहारों का समय होगा तो दूध दही घी मक्खन मावे मिलावट ही मिलावट, नवरात्र होंगे तो कट्टू के आटे में मिलावट शुरू हो जाएगी, और तो और जब ये मिलावटी चीजें खाकर बीमार होने लगेंगे लोग तो एक्सपायर्ड या मिलावटी दवाइयों का शिकार बन जाएंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उसकी शुद्धता की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। इसी डर की वजह से लोग बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा करते हैं। वो मानकर चलते हैं कि इन कंपनियों की कोई चीज अगर खरीदी तो शुद्ध ही मिलेगी। ये कंपनियां भी टेलीविजन, अखबार या प्रोडक्ट की पैकेजिंग में उनसे इसी तरह का दावा भी करती हैं। जैसे कंपनी है वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक, नाम से लगता है कि ये कंपनी ऑर्गेनिक सामान बेचती है, यानी ये कंपनी जो भी बेच रही है उसका दावा है इसकी उसकी जो खेती है प्राकृतिक रूप से हुई है और उसमें किसी तरह की कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कम से कम कंपनी का लेबल तो यही कहता है, नाम भी ऐसा रख दिया। आप में से कई लोग घर में द हेल्थ फैक्ट्री का जीरो मैदा ब्रेड भी, जो है ना जीरो मैदा ब्रेड, वो इस्तेमाल करते होंगे। नाम से लगता है कि ये कंपनी कंज्यूमर्स की सेहत का बड़ा ख्याल रखती है, तभी इसने नाम हेल्थ फैक्ट्री रखा है। इमामी कंपनी के आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ये कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो बनाती है, इसमें इसके अलावा खाने का तेल जैसे सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड राइस ब्रांड भी बेचती है। अपनी कंपनी के खाने के तेल को वो हेल्दी एंड टेस्टी बताकर बेचती है, मतलब कंपनी का दावा है कि उनका तेल हेल्दी है। कम से कम पैकेजिंग देखकर तो यही लगता है, लेकिन इन कंपनी से जुड़ा सच कड़वा है। सच यह है कि देश की कई बड़ी कंपनियां आजकल हेल्दी, ऑर्गेनिक और वीगन के नाम पर झूठ बोल रही हैं। ये कंपनियां मिलावटखोरी को लेकर आपके डर का फायदा उठाती हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14 कंपनियों को देश की जनता में भ्रम फैलाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FSSAI का कहना है कि इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट पर भ्रामक दावे करके जनता को गुमराह किया। संस्था के मुताबिक इन कंपनियों ने हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन के नाम पर झूठ फैलाया, जबकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत अपने प्रोडक्ट का भ्रामक नाम रखना प्रतिबंधित है। आजकल लोग अपने परिवार के लिए शुद्ध सामान खरीदना चाहते हैं। कस्टमर्स की इच्छा को कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का ट्रेड नेम बना लिया, जैसे वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक, नाम से लगता है ऑर्गेनिक सामान ही मिलेगा। लेकिन FSSAI का कहना है कि इस कंपनी के पास ऑर्गेनिक सामान बेचने का सर्टिफिकेट ही नहीं है, यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये ऑर्गेनिक सामान बेचती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स नाम की कंपनियों ने भी यही सर्टिफिकेट नहीं लिया और ऑर्गेनिक पर अपना सामान कंपनी का ही नाम रखकर बेचने लगे। स्टोरिया नाम की एक कंपनी अनार का जूस बेच रही है। इसकी पैकेजिंग देखकर लगता है कि इसमें अनार का शुद्ध जूस होगा, लेकिन सच ये है कि इसकी एक बॉटल में केवल 4% अनार का जूस है। आयोटा नाम की कंपनी पानी की बॉटल्स बेचती है, दावा है कि इसमें अलग से मिनरल्स मिलाए जाते हैं। अब FSSAI का कहना है कि यह दावा नियमों का उल्लंघन है, पानी की बॉटल में अलग से मिनरल्स मिलाने का दावा बिल्कुल गलत है। ये मामला केवल ऑर्गेनिक सामान तक सीमित नहीं है, कई कंपनी तो अलग लेवल पर ही झूठ बोल रही है। तो सुनिए, देश में द हेल्थ फैक्ट्री, हेल्दी चॉइस, हेल्दी मास्टर्स, हेल्थ एड नाम की कंपनियां जिन्होंने सामान बेचने के लिए अपने नाम में ही हेल्दी शब्द जोड़ लिया है ताकि लोगों को लगे कि उनका प्रोडक्ट सेहत के लिए बड़ा बढ़िया है। इमामी ने भी ऐसे ही खाद्य तेल की ब्रांडिंग हेल्दी एंड टेस्टी कर दी, जैसे बहुत सेहतमंद है, और वो भी तेल। FSSAI का कहना है कि कोई भी अपनी कंपनी जो है वो अपने ट्रेड नेम में हेल्दी होने का दावा नहीं कर सकती, ये भ्रामक है, नियमों का उल्लंघन है। इसी तरह एक कंपनी है ट्रूवी, नमकीन बनाती है, अपनी नमकीन की ब्रांडिंग है द हेल्दी चिप्स। अब हेल्दी चिप्स कहके वो अपनी ब्रांडिंग करती है और इसी नाम से बेचती है, यानी इसका दावा है कि इसके चिप्स और नमकीन सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। आजकल कुछ लोग वीगन डाइट लेते हैं, यानी उनका खाना, उनका जो खान पान है पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होता है, कुछ भी मांसाहारी नहीं। देश में कंपनी है प्लान बी, इसका दावा है कि ये प्लांट बेस्ड वीगन बेचती है, जबकि FSSAI के मुताबिक इस कंपनी के पास वीगन प्रोडक्ट बेचने का लाइसेंस ही नहीं है। मतलब वीगन सामान कितना वीगन है कोई गारंटी नहीं है। जिन कंपनीज को FSSAI ने झूठी ब्रांडिंग को लेकर नोटिस भेजा है उनसे पूछा गया है कि क्या उनके पास ऑर्गेनिक या वीगन सामान बेचने का लाइसेंस है। कंपनीज को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जैसे सर्टिफिकेट लेने होते हैं। ये सर्टिफिकेट तब मिलते हैं जब एजेंसी ऑर्गेनिक खेती उत्पादन से जुड़ी पूरी जांच को सही पाती है। इसी तरह से वीगन सामान बेचने के लिए वीगन फूड सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। जहां तक प्रोडक्ट्स को हेल्दी बताने की बात है तो इसके लिए कंपनीज को वैज्ञानिक प्रमाण देना होता है जिसके कारण से उनका प्रोडक्ट हेल्दी माना जाए। सच यह है कि कंपनियां ऐसा कोई प्रमाण नहीं देती, और कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस अपने प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक, वीगन, हेल्दी नहीं लिख सकती, नहीं बेच सकती, इसके लिए बाकायदा नियम है। अब समझना यह होगा कि यह तो लोगों को ठगने के बराबर है, सावधान आपको रहना है और झूठे दावों पर भरोसा नहीं करना है। अब आपको बताएंगे कि आखिर इस बार मॉनसून रूठा रूठा सा क्यों नजर आ रहा है। जून का महीना आधा बीत चुका है, आसमान में बादल भी हैं लेकिन जमीन राहत की फुहारों को तरस रही है। पूरे देश को बारिश से सराबोर करने वाले जो मॉनसून है वो बीच रास्ते में ही ठिटक गया है। मौसम विभाग यानी IMD के ताजा आंकड़ों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक 4 जून से 14 जून के बीच भारत में सिर्फ 34.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान देश में 47.7 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। इस हिसाब से देश में कुल मिलाकर 28% बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। आखिर बादलों की इस लुका छिपी और मानसून के अचानक थम जाने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल देश के दक्षिण और मध्य हिस्से में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो अचानक एक बड़ी रुकावट का शिकार हो गया है। अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली वेस्टली जेट स्ट्रीम यानी पश्चिमी हवाओं की एक तेज धारा अपने सामान्य रास्ते से खिसक कर काफी दक्षिण में आ गई है। इसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि मॉनसून की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो कमजोर पड़ गई। इसका परिणाम यह रहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो मॉनसूनी सिस्टम बन रहे हैं उन्हें जमीन की तरफ धकेलने के लिए कोई मजबूत सहारा नहीं मिल रहा है। हवा में नमी तो है, बादल भी हैं, लेकिन इस हवा में वो लिफ्ट यानी उठाव नहीं है जो इन बादलों को भारी बारिश करने वाले बादलों में बदल सके। हालांकि अनुमान है कि 20 जून के बाद अपर एटमॉस्फेयर की ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, जिससे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के सफर फिर से मजबूत होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो मॉनसून को फिर से नया जीवन मिल सकता है। मौसम का ये मिजाज देश के करोड़ों किसानों, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मई के महीने में जिन वेदर मॉडल्स ने एक शानदार मॉनसून की भविष्यवाणी की थी उन्हें प्रकृति ने फिलहाल एक बड़ा झटका दिया है। अब देश की नजरें 20 जून के बाद आसमान में होने वाले बदलावों पर टिकी है। क्या रूठा हुआ मॉनसून समय रहते मान जाएगा या देश के सामने पानी का संकट गहरा जाएगा? आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और दूसरों की जिंदगी के स्क्रीनशॉट लेकर घूमने वाले भूल जाते हैं कि ऊपर वाले के पास उनका पूरा बैकअप मौजूद है। नमस्कार।
0: एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ, एक पार्टी रातों रात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं। जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
3: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, कुत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा

0: दूसरी तरफ इन्हीं उतिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट MSc मैथ्स XMBA LLM MSc ऑनर्स LLB आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स लैंड सर्वे में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन IIBF NCFM एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां TMC के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
1: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
2: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
0: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कॉन्ट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
3: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
4: यूं तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन DMC के बाकी 20 सांसद एक झटके में NCPI में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
0: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब NCPI में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए वहाँ मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो MPs हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के साकराइल में मौजूद हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन साकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के साकराइल में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट पे दो नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: जिस NCPI में TMC के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो NDA में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। NDA में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी NCPI की हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं,

0: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
1: अभी कौन प्रेसिडेंट?
0: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए बस।
1: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
0: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
1: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
0: वो भी बदला होगा, बदला जाएगा,
1: बदला जाएगा
0: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
1: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
0: मेरे हस्बैंड था।
1: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
2: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
3: उत्तर मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है
4: अभी तो
3: वो हमारे साथ मर्जर कर
4: न, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
2: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का जो अब तक सामने नहीं आए, ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
3: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
4: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
5: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
6: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
2: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
6: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
2: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
7: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है इसी से एसआईटी की टीम, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
8: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
9: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस बार। अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
2: राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में आरोप है, चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि राम शंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
7: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है, और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, वीएचपी से जुड़े हैं। ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
10: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया, और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
11: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हल्ला करने के लिए और लोगों को घबराए, तो आप राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
2: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
9: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
2: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
5: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
12: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
13: हम अपनी इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
12: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
14: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
12: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
15: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है, बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
12: अब वो वैसे ही ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
16: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
12: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
12: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
17: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमों के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
12: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
17: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
12: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
17: हमारी तो केमिस्ट्री पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
12: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई। जेवर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंची। ये वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी।
18: इन किसानों के चेहरे पर खुशियां खिली हुई, ललक की लहक है इनमें। जिस जमीन पर चलाते थे हल आज वहीं से इन्होंने उड़ान भरी लखनऊ के लिए, और लखनऊ में किसानों का सीएम योगी ने इस तरह स्वागत किया।
19: जिस जमीन पर कभी किसानी की खेती की, शायद ही किसानों ने सोचा होगा कि उस जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा और उस जमीन से उड़कर वो आज राजधानी पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही नजारा आपको आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 170 के ऊपर किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
18: ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
20: बहुत अच्छा लगा आज,
21: अति सुंदर, बहुत बढ़िया लगा।
20: जो कार्य योगी जी ने किया है वो किसी सरकार पर नहीं हुआ,
22: देखो उन्होंने बहुत बढ़िया करो माल दिया और कहा प्लांट बैठ गए हम तो।
18: अब सीएम योगी इन किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं।
23: और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
18: जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी। दूसरी फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खानसर हैं।
24: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं।
0: ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
1: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
0: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
3: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चढ़वा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचेगी हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
0: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
4: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
0: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
2: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
24: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
2: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
24: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.
2: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
24: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
2: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
6: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
2: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे के ऐलान के बाद बोले ट्रंप, तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज। मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। रक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा, लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी। ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन। लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ। एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं। जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, कुत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: ये तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं, बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं वहां मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई की हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
6: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
5: अभी कौन प्रेसिडेंट?
6: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
5: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
6: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
5: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
6: वो भी बदला होगा, बदला जाएगा,
5: बदला जाएगा
6: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
5: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
6: मेरे हस्बैंड था।
5: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
1: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
7: मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है
8: अभी तो
7: वो हमारे साथ मर्जर कर
8: ना, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का, जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
7: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
8: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
9: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
1: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है।
9: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
1: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
10: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो VVIP गेट है, इसी से SIT की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण S और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, ये SIT गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
11: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
12: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस बार। अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
1: राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में आरोप है, चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि रामशंकर यादव और पिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो रामशंकर यादव और पिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते हैं चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
10: रामशंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, VHP से जुड़े हैं। ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
13: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
14: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए और लोगों को घबराए तो आप राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
1: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
12: अब जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
1: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
15: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
16: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
15: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
17: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
15: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
18: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
15: अब ओवैसी ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
19: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
15: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
15: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
20: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहाँ चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
15: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
20: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
15: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
20: हमारी तो केमिस्ट्री पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
15: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
2: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
21: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
2: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
22: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
2: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
23: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
2: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
1: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
24: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
1: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
24: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either we'll get it back from them or we'll take it.
1: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन
3: खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए.
4: They got five, we got five. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
3: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे. 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे. उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था. ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है. इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी. इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है. इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई.
5: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
3: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है. डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे. आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है.
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. देखते रहिए आज तक.

0: ईरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज। मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। रक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा, लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी। ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन। लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ। एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं। जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI

0: से इतनी जल्दी एनसीपीआई पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके बाद आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
1: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप मेरा पर्टिकुलर ग्रुप हुआ, एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
2: अब जिस एनसीपीआई नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़े, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कॉन्ट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को टीएमसी से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
3: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
4: ये तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है। लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
2: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं, वहाँ मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
2: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई के हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
6: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
5: अभी कौन प्रेसिडेंट?
6: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
5: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है, जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
6: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
5: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
6: वो भी बदला होगा, बदला जाएगा,
5: बदला जाएगा
6: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
5: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
6: मेरे हस्बैंड था।
5: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
2: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
7: उत्तर मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है
8: अभी तो
7: वो हमारे साथ मर्जर कर।

0: तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत और एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम मुतिया कुंडू का है, जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
2: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
0: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैंने ही किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
3: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
4: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
1: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
4: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
1: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
5: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है, इसी से एसआईटी की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
6: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
7: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर, अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
1: राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोप है, चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि रामशंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है, राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
5: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है, और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, वीएचपी से जुड़े हैं, ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
8: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
9: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
1: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
7: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
1: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
3: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
10: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
11: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
10: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
12: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
10: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
13: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
10: अब ओवैसी ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
14: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
10: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
10: पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है,
15: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
10: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
15: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
10: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
15: हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
10: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई। जेवर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंची। ये वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी।
16: इन किसानों के चेहरे पर खुशियां खिली हुई, ललक की लहक है। जिस जमीन पर चलाते थे हल, आज वहीं से इन्होंने उड़ान भरी लखनऊ के लिए। और लखनऊ में किसानों का सीएम योगी ने इस तरह स्वागत किया।
17: जिस जमीन पर कभी किसानी की खेती की, शायद ही किसानों को ने सोचा होगा कि उस जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा और उस जमीन से उड़कर वो आज राजधानी पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही नजारा आपको आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 170 के ऊपर किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
16: ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
18: बहुत अच्छा लगा आज,
19: अति सुंदर, बहुत बढ़िया लगा।
20: जो कार्य योगी जी ने किया है वो किसी सरकार पर नहीं हुआ।
21: देखो उनने बहुत बढ़िया करो माल लिया और प्लांट बैठ गए हम तो।
16: अब सीएम योगी इन किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं।
22: और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
16: जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी। दूसरी फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
23: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
24: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
23: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
25: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचेगी हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
23: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
0: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
23: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
1: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
2: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
1: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
2: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.
1: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
2: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
1: Biden से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
2: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
1: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
4: دشمن است که زبان مذاکره نمیفهمه، زبان آتش بس نمیفهمه، زبان زور میفهمه و به حمد الله نیروهای مسلح ما زبان زور را نشانشون داده و نشانشون خواهند داد.
3: بہت چھوٹا سا بریک، پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے آج تک.

0: तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार, दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज, मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, रक्षा व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा, सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू, अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ, एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं, जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, MBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके बाद आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दें, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: ये तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं, बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं वहां मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई की हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
6: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
5: अभी कौन प्रेसिडेंट?
6: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
5: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
6: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
5: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
6: वो भी बदला होगा, बदला जाएगा सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
5: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
6: मेरे हस्बैंड था।
5: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
1: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
7: मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो हैं,
8: अभी तो
7: वो हमारे साथ मर्जर कर
8: न, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का, जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
7: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
8: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैंने ही किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
9: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
1: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
9: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
1: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
10: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो VVIP गेट है, इसी से SIT की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण S और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, ये SIT गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
11: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
12: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर। अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
1: राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में आरोप है, चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि राम शंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते हैं चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
10: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, VHP से जुड़े हैं। ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
13: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
14: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हल्ला करने के लिए और लोगों को घबराए, तो आप राम के दड़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
1: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
12: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
1: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
15: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
16: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
15: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
17: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
15: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
18: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
15: अब ओवैसी ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
19: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
15: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
15: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
20: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहाँ चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
15: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
20: ये कहते कहते कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
15: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
20: हमारी तो केमिस्ट्री पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
15: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है, जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर है।
2: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
21: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
2: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
22: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
2: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
23: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
2: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
1: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
24: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
1: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
24: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.
3: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
24: They got five, we got five. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
3: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
4: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
3: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार, दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज, मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, रक्षा व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा, सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू, अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ, एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं, जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इनी उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, एमएससी मैथ्स, एक्स एमबीए, एलएलएम, एमएससी ऑनर्स, एलएलबी, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके बाद आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ।

0: ही इतिहास रचा है। मतलब वह क्या ही कंट्रास्ट, एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को टीएमसी से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
1: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करें।
2: यूं तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
0: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं, बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं वहां मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
3: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई की हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
4: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
3: अभी कौन प्रेसिडेंट?
4: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए बस।
3: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
4: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
3: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
4: वो भी बदला होगा,
3: बदला जाएगा
4: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
3: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
4: मेरे हस्बैंड था।
3: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
0: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
5: पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है
6: अभी तो
5: वो हमारे साथ मर्जर कर
6: न, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
0: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का जो अब तक सामने नहीं आए, ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
5: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
6: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
2: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम

0: मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
1: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
2: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
1: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
2: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
3: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है, इसी से एसआईटी की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
4: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
5: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर। अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
2: राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोप है। चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि राम शंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
3: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, वीएचपी से जुड़े हैं, ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
6: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया। अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
7: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
2: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
5: अब जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
2: फिलहाल यूपी सरकार ने SIT को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर BJP अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि BJP को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि BJP को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
8: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
9: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
8: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
10: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
8: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
11: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है BJP को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
8: अब वो वैसे ही ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
12: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
8: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का PDA वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
8: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
13: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहाँ चले गए? अकाली, शिवसेना, DMK, TMC और गिनमों के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
8: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
13: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई, कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
8: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
13: हमारी तो केमिस्ट्री पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
8: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस से सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
14: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
15: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
14: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
16: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
14: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
17: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
14: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
2: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
18: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
2: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
18: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either we'll get it back from them or we'll take it.
2: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
18: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
2: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
19: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
2: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
0: छोटा सा ब्रेक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पास नहीं होगा परमाणु हथियार, दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज, मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, रक्षा व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा, सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू, अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ, एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं। जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इनी उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, एमएससी मैथ्स, एक्स एमबीए, एलएलएम, एमएससी ऑनर्स, एलएलबी, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप मेरा पार्टी ग्रुप हुआ, एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को टीएमसी से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: यूं तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए वहाँ मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के साकराइल में मौजूद हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन साकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के साकराइल में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दलबदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई के हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
6: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
5: अभी कौन प्रेसिडेंट?
6: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
5: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
6: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
5: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
6: वो भी बदला होगा,
5: बदला जाएगा
6: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
5: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
6: मेरे हस्बैंड था।
5: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
1: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
7: तो मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है
8: अभी तो
7: वो हमारे साथ मर्जर कर
8: ना, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का है जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
7: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
8: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैंने ही किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
9: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
1: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
9: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
1: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
10: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो VVIP गेट है, इसी से SIT की टीम, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, ये SIT गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
11: प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
12: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर। अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
1: राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में आरोप है, चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि रामशंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो रामशंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते हैं चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
10: रामशंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, VHP से जुड़े हैं, ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
13: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
14: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, UP में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हल्ला करने के लिए और लोगों को घबराए तो आप, राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
1: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
12: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
1: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
15: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
16: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
15: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
17: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करती है।
15: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
18: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
15: अब ओवैसी ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
19: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
15: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
15: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
20: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहाँ चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
15: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
20: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
15: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
20: हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
15: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है, जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
2: ये धारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
21: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
2: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
22: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
2: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
23: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
2: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
1: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
24: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
1: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
24: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.
3: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
24: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
3: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
4: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
3: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक का, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: ईरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार, दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज, मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, रक्षा व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा, सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू, अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ, एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं। जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, कुत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप मेरा पर्टिकुलर ग्रुप हुआ, एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दें, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: यूं तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए वहाँ मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, तो उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई के हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक भी जीत हासिल न की हो,

0: राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
1: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
2: अभी कौन प्रेसिडेंट?
1: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
2: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
1: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
2: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
1: वो भी बदला होगा,
2: बदला जाएगा
1: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
2: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
1: मेरे हस्बैंड था।
2: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
0: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
3: सर मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो है
4: अभी तो
3: वो हमारे साथ मर्जर कर
4: न, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
0: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का है जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
3: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
4: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
5: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
6: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
0: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
6: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
0: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
7: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है इसी से एसआईटी की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
8: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे?

0: ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
1: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर। अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
2: राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोप है। चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि राम शंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते हैं चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
3: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है, और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, VHP से जुड़े हैं। ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
4: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
5: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हल्ला करने के लिए और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
2: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
6: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
2: फिलहाल यूपी सरकार ने SIT को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर BJP अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
7: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि BJP को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि BJP को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
8: तकबीर की जुबान, तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान। यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
9: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
8: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
10: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करती है।
8: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
11: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
8: अब वो वैसे ही ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
12: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
8: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
7: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
8: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
13: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहाँ चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
8: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
13: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
8: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
13: हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
8: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई। जेवर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंची। ये वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी।
14: इन किसानों के चेहरे पर खुशियां खिली हुई, ललक की लहक है इनमें। जिस जमीन पर चलाते थे हल आज वहीं से इन्होंने उड़ान भरी लखनऊ के लिए, और लखनऊ में किसानों का सीएम योगी ने इस तरह स्वागत किया।
15: जिस जमीन पर कभी किसानी की खेती की, शायद ही किसानों को ने सोचा होगा कि उस जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा और उस जमीन से उड़कर वो आज राजधानी पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही नजारा आपको आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 170 के ऊपर किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
14: ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
16: बहुत अच्छा लगा आज,
17: अति सुंदर, बहुत बढ़िया लगा।
16: जो कार्य योगी जी ने किया है वो किसी सरकार पर नहीं हुआ।
18: देखो उनने बहुत बढ़िया करो मान लियो, प्लांट बैठ गए हम तो।
14: अब सीएम योगी इन किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं।
19: और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
14: जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी। दूसरी फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक।
7: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
20: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
21: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
20: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
22: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
20: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
23: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
20: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
2: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
24: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
2: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
24: Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either we'll get it back from them or we'll take it.
2: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
24: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
2: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
0: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
2: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
7: छोटा सा ब्रेक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे के ऐलान के बाद बोले ट्रंप, तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज। मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। रक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा, लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच। अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन। लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ। एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं। जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इनी उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, एमएससी मैथ्स, एक्स एमबीए, एलएलएम, एमएससी ऑनर्स, एलएलबी, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके साथ आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी नेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी नेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को टीएमसी से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: ये तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं, बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं वहां मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर यस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई के हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
6: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
5: अभी कौन प्रेसिडेंट?
6: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
5: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
6: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
5: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
6: वो भी बदला होगा,
5: बदला जाएगा
6: सर, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
5: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
6: मेरे हस्बैंड था।
5: मर्जर के बारे में कुछ भी नहीं?
1: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
7: उत्तर मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो हैं,
8: अभी तो
7: वो हमारे साथ मर्जर कर
8: ना, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का जो अब तक सामने नहीं आए, ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
7: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
8: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैंने ही किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
9: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
1: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
9: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
1: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
10: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है, इसी से एसआईटी की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
11: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
12: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस बार। अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
1: राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोप है। चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबा कर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि राम शंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते हैं चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
10: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, वीएचपी से जुड़े हैं, ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
13: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया, और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
14: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
1: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
12: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
1: फिलहाल यूपी सरकार ने SIT को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर BJP अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि BJP को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि BJP को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
15: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
16: हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
15: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
17: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के जरूर जाते हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं।
15: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
18: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है BJP को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
15: अब वो वैसे ही ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
19: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
15: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का PDA वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
15: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
20: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहाँ चले गए? अकाली, शिवसेना, DMK, TMC और गिनमों के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
15: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
20: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
15: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को यह भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
20: हमारी तो केमिस्ट्री पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
15: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई। जेवर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंची। ये वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी हैं।
2: इन किसानों के चेहरे पर खुशियां खिली हुई, ललक की लहक है इनमें। जिस जमीन पर चलाते थे हल, आज वहीं से इन्होंने उड़ान भरी लखनऊ के लिए। और लखनऊ में किसानों का सीएम योगी ने इस तरह स्वागत किया।
21: जिस जमीन पर कभी किसानी की खेती की, शायद ही किसानों को ने सोचा होगा कि उस जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा और उस जमीन से उड़कर वो आज राजधानी पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही नजारा आपको आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 170 के ऊपर किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
2: ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
22: बहुत अच्छा लगा आज,
23: अति सुंदर, बहुत बढ़िया लगा।
24: जो कार्य योगी जी ने किया है वो किसी सरकार पर नहीं हुआ,
25: देखो उनने बहुत बढ़िया करो मान लिया और प्लांट बैठ गए।
2: अब सीएम योगी इन किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं।
26: और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
2: जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी। दूसरी फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
27: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
28: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
27: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
29: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
27: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
30: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
27: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के एक कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
1: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
3: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
1: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
3: Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them, or we'll take it.
1: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को $6 बिलियन की डील करने के लिए बाइडेन की आलोचना करते नहीं थकते थे, लेकिन खुद युद्ध रुकवाने के लिए बुरी तरह से झुक गए।
3: They got five, we got five. That was the good news. The bad news is they also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
1: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
4: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
1: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
5: دشمن
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: तेहरान के पास नहीं होगा परमाणु हथियार, दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज, मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, रक्षा व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा, सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू, अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी, ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ, एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए कि आपके यहां 20 सांसद शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं, जिनका एक पार्षद तक भारत की राजनीति में नहीं हुआ वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में टीएमसी के 20 बागी शामिल हो गए।
1: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बानीपुर इलाके का ये घर भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी घर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का इकलौता पता दर्ज है। वो पार्टी दफ्तर जिसके गेट पर दोनों तरफ लिखे बायोडेटा पर गौर करिएगा, उत्तिया कुंडू, जो बंगाल के न्यूज़पेपर का एडिटर खुद को बताते हैं, गणित का टीचर खुद को कहते हैं, आईएसओ ऑडिटर है, हेल्थ कंसल्टेंट है, योगा वॉलंटियर है, गणित और योगा से लेकर लैंड सर्वे तक में डिप्लोमा किया है, बैंकिंग फाइनेंस वाला IIBF का सर्टिफिकेट है। गेट पर जगह कम पड़ गई, कोने में इनको लिखना पड़ा सोलर टेक्नीशियन। दूसरी तरफ इन्हीं उत्तिया कुंडू की पत्नी शिवली कुंडू का परिचय गेट पर दर्ज किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, MSc मैथ्स, XMBA, LLM, MSc ऑनर्स, LLB, आयरलैंड से डिप्लोमा इन मैथ्स, लैंड सर्वे में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन IIBF, NCFM, एन्यूमरेशन यानी गणना की एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पति पत्नी को पता नहीं पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये लोग इस गेट पर लिखना भूल गए। शून्य से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने पहुंचाने के एक्सपर्ट यहां तसल्ली बख्श तरीके से एक झटके में 20 सांसद पार्टी में शामिल कराए जाते हैं। यकीन नहीं आता तो अब रविवार की इस तस्वीर और वीडियो पर गौर करिएगा, जहां टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने जीवन में एक पार्षद तक की जीत का स्वाद नहीं चखी। त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की।
2: इतनी जल्दी NCPI पार्टी से गठबंधन हो गया है, उसके बाद आप लोग कार्यभार करेंगे, क्या कहेंगे?
3: वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा ग्रुप ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए, एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा, वो बाद में बता देंगे।
1: अब जिस NCPI नाम की त्रिपुरा की अनजान सी पार्टी को एक झटके में 20-20 सांसदों की ताकत मिल रही है, जरा उसके एक पोस्टर पर गौर करिएगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार का ये पोस्टर, जिस पर पहले लिखा जाता है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी बदलने वालों को छोड़ दें और समाज सेवियों के साथ जुड़ें, न कि राजनेताओं के साथ। पेन की निब यानी कलम की नोक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने अलग ही इतिहास रचा है। मतलब वाह, क्या ही कंट्रास्ट। एकदम आज की सियासत के मुताबिक जो पार्टी कहती रही कि दल बदलुओं को छोड़ दे, उसी पार्टी को TMC से बगावत करके दल बदल करने वाले 20 सांसदों ने चुना है।
4: हमारा 20 आदमी सिग्नेचर करके कल दिया है, हम ऑफिस मांगा है, हमको ऑफिस मिलेगा, हमारा ऑफिस चालू हो जाएगा, हमको सीट मिल जाएगा, हम बैठ के काम करेंगे।
0: ये तो राजनीति का कोई रिवाज है कि कोई छोटा नेता भी किसी दल में इधर से उधर हो तो बाकायदा स्वागत समारोह होता है, लेकिन डीएमसी के बाकी 20 सांसद एक झटके में एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात लेकिन यह है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हवा तक नहीं लगती कि 3 साल में केवल एक राज्य में 4 सीट पर विधानसभा लड़ने वाली पार्टी अचानक देश के सत्ताधारी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कैसे बन गई, पता ही नहीं किसी को।
1: ममता बनर्जी के 20 सांसद स्पीकर के पास पहुंचे, कहे कि हम अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, 2/3 सांसद से ज्यादा टूट कर निकले हैं, इसलिए दूसरी पार्टी में शामिल होने में दिक्कत नहीं, बस दिक्कत ये कि जिस पार्टी में 20 सांसद गए हैं वहां मेन पार्टी दफ्तर तक पर किसी को पता नहीं उनकी पार्टी की लॉटरी कैसे लग गई।

0: जो ये बिल्डिंग है ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: जिस एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसद शामिल होते हैं, अब वो एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए में अब समर्थन करने वालों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सांसद काकोली घोष की अगुवाई में बगावत करके दल बदल करके ताकतवर बनी एनसीपीआई की हो चुके हैं। जिस पार्टी ने त्रिपुरा में केवल 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक भी जीत हासिल न की हो, वो देश में बिना कोई लोकसभा चुनाव लड़े सांसदों की संख्या के आधार पर अभी लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। जिस पार्टी में बागी सांसद चले जाते हैं, उस पार्टी को बनाने वाली और अब तक की अध्यक्ष शिवली कुंडू कहती हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं।
2: मैं पहले फाउंडर प्रेसिडेंट था और मैं कुछ दिन पहले इसके रिजाइन दे दिया ऑलरेडी, तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है वो लोग ये बताएंगे और कुछ टाइम वेट करना होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
0: अभी कौन प्रेसिडेंट?
2: कुछ दिन वेट करिए, कुछ ही टाइम वेट करिए।
0: लेकिन आप एनसीपीआई का अभी भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे देखने?
2: बिल्कुल, वो हमारा घर का ही रजिस्टर्ड एड्रेस है अभी भी।
0: तो वो क्यों, वो कैसे नहीं बदला फिर?
2: वो भी बदला होगा,
0: बदला जाएगा।
2: सर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं।
0: मिस्टर उत्तियो कुंडू कौन लगते हैं आपको?
2: मेरे हस्बैंड था।
0: बजर के बारे में कुछ भी नहीं?
1: जिस पार्टी में एक साथ 20-20 सांसद ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव तक को भी पता नहीं होता कि 20 सांसद कब आ गए।
3: तो मेंबर को पता ही नहीं चल रहा है कि 20 टीएमसी के रेबल जो हैं,
4: अभी तो
3: वो हमारे साथ मर्जर कर
4: ना, अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ।
1: तीसरा नाम उत्तिया कुंडू का है, जो अब तक सामने नहीं आए। ये शिवली कुंडू के पति हैं, कोषाध्यक्ष का काम करते रहे, उनके बारे में सचिव को पता नहीं।
3: तो आपके दल का हेड कौन है अभी तक?
4: अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैंने ही किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था। शिवली कुंडू का हमने 2-3 बार फोन किया, तो एक बार तो उन्होंने बोला बिजी है, तो और उनका हस्बैंड जो है जिनको ट्रेजरर रखा हुआ था उनका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है।
5: उत्तर प्रदेश की राजनीति की आइए बात कर लें, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच में क्या तलाशा जा रहा है, इसकी हर जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है।
6: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है।
1: अयोध्या के जिस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है,
6: मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती?
1: अयोध्या के जिस श्री राम मंदिर को लेकर पूरे विपक्ष को धर्म संकट के सियासी कटघरे में बीजेपी खड़ी करती आई, क्या उसी राम मंदिर को लेकर 2027 से पहले विपक्ष के हाथ ऐसा मौका लग गया जिसके दम पर वो बीजेपी को घेर सकता है? 100 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जहाँ कहते हैं कि 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, उस राम मंदिर में अब दावा है कि श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जो दान चढ़ावा अर्पित किया उसमें से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है।
7: राम मंदिर के इसी प्रवेश द्वार से जो वीवीआईपी गेट है, इसी से एसआईटी की टीम जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के अधिकारी नील रतन, ये 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, ये एसआईटी गठित की गई है। ये तीनों अफसर राम मंदिर पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कैसे दान पात्र पर निगरानी रखी जा रही थी, दान पात्र में जो रकम डाली जाती थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाता था, नोटों की गड्डी जिस कमरे में बनाई जाती थी उस कमरे में निगरानी के क्या इंतजाम थे, जो लोग निगरानी में रखे जाते थे या जो लोग नोटों की गड्डी बनाते थे उनकी निगरानी होती थी।
8: प्रभु श्री राम

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते।
1: ये हल्का फुल्का मामला नहीं है इस पर। अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ।
2: राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले में आरोप है। चढ़ावे का पैसा गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिला है। दावा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, जबकि कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई। आरोप है कि एक और कर्मचारी से संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। दावा है कि चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी जहां महीने के 18 से 20 हजार रुपए का वेतन पाते थे, वहीं उनकी संपत्ति में अचानक असामान्य इजाफा मिला। दावा है कि एक संदिग्ध कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जबकि राम शंकर यादव और टिन्नू यादव जांच के दायरे में है। राम मंदिर निर्माण से पहले तक जो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव टेम्पो चलाता था, कहते चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उसके दिन पलटने लगे और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है।
3: राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है, और ये रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, बीएचपी से जुड़े हैं, ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। कहा जा रहा है कि रामशंकर यादव टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से संपत्ति बढ़ने लगी।
4: सारी बातें महिपाल सिंह जी ने सार्वजनिक की, उसमें उन्होंने आज के जो अयोध्या के आधुनिक स्वयंभू शंकराचार्य हैं चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया, और भी कई नाम सार्वजनिक किए, जिनके नाम सार्वजनिक किए महिपाल सिंह ने, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अब वही मीटिंग करके जो है क्या करना है ये तय कर रहे हैं।
5: राम के घर में चोरी हो गई, आपके राज में, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हल्ला करने के लिए, और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है।
2: सवाल है कि अगर राम मंदिर के दान में गड़बड़ झाला कुछ लोग कर रहे हैं तो पहले मामला दबाने की कोशिश क्यों हुई, जहां बड़े संत ही जांच तक पर सवाल उठाने लगे।
6: और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं।
2: फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच दे दी है, 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट आएगी, इसके बाद और तस्वीर साफ होगी। एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अब तक आक्रामक रही उसे पहली बार डिफेंसिव मोड में देखा जा रहा है।
7: उत्तर प्रदेश की गठबंधन पॉलिटिक्स में अब गर्मी दिख रही है और इसे लेकर 3 महत्वपूर्ण बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वालों का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि बीजेपी को हराने की क्षमता सिर्फ राहुल गांधी में है, तो ओवैसी ने बहराइच की रैली से इसकी शुरुआत भी कर दी। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जहां हमारी इज्जत होगी।
8: संविधान तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क के सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है।
9: हम अपने चार की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे।
8: ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं।
9: जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करती है।
8: फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
10: पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
8: अब वो वैसे ही ने इशारा किया तो समाजवादी पार्टी ने भी इशारे को हाथों हाथ लिया।
11: भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत।
8: तो क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फायदा पहुंचा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में काफी तेज हो गई, लेकिन बड़े दलों ने भी कमर कस ली है। सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा।
8: चंद रोज पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात करके एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही अखिलेश ने संकेत दिया था कि कांग्रेस यूपी में मुगालते में न रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान आया है।
12: बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे? बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए? अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो के छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए।
8: इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रखी हैं। कांग्रेस साफ लफ्जों में कहती है कि यूपी में उन्हें किसी से सीटें मांगने की जरूरत नहीं है।
12: ये कहते कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे, कौन है आप देने वाले भाई? कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए।
8: और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ और सीटें नहीं मिली तो और भी दल हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है।
12: हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती, अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी, अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है।
8: चुनावी सरगर्मी जब से शुरू हुई है तब से तीन ऐसे दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें ओवैसी की पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर का दल है जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई। जेवर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंची। ये वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी।
13: इन किसानों के चेहरे पर खुशियां खिली हुई, ललक की लहक है इनमें। जिस जमीन पर चलाते थे हल आज वहीं से इन्होंने उड़ान भरी लखनऊ के लिए, और लखनऊ में किसानों का सीएम योगी ने इस तरह स्वागत किया।
14: जिस जमीन पर कभी किसानी की खेती की, शायद ही किसानों को ने सोचा होगा कि उस जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा और उस जमीन से उड़कर वो आज राजधानी पहुंचेंगे। ठीक वैसा ही नजारा आपको आज लखनऊ के एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 170 के ऊपर किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
13: ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी।
15: बहुत अच्छा लगा आज,
16: अति सुंदर, बहुत बढ़िया लगा।
15: जो कार्य योगी जी ने किया है वो किसी सरकार पर नहीं हुआ।
17: देखो उनने बहुत बढ़िया करवा माल नहीं होता, प्लांट बैठ गए ने हम तो।
13: अब सीएम योगी इन किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं।
18: और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
13: जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी। दूसरी फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस की मौत पर अभी भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंस की मौत कैसे हुई, लेकिन सवालों के बीच आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस की मौत के पीछे कोचिंग संचालक खान सर हैं।
13: ये नारे फैजल खान के खिलाफ लग रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में जेल से निकलकर घर पहुंचे थे। रोशन आनंद जेल से निकले तो आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस की मौत के जिम्मेदार फैजल खान हैं, उन्होंने ही उनके भाई की हत्या करवाई है।
19: फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है।
13: रोशन आनंद की फैजल खान से अदावत तो है ही, फैजल खान के आरोपों पर ही वो जेल गए, इसीलिए उनका आरोप लगाना समझ आता है। मगर जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप यादव को भी लगता है कि फैजल खान ने ही हत्या कराई है।
20: अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो खान सर को हम लगाएंगे, इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता।
13: इन सब के बीच फैजल खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो प्रिंस यादव की मौत पर दुख जता रहे हैं।
21: पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको, इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है।
13: एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के कमरे में मिला था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इस मामले में एक नेपाली को भी हिरासत में लिया है। अब जांच की जा रही है कि प्रिंस की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया और इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। 14 पॉइंट्स के एमएयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलना है। 30 दिन के अंदर हॉर्मुज से व्यापार पहले की तरह शुरू हो जाएगा।
2: ईरान खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है, और हो भी क्यों ना, कंगाल हो चुके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर्स की जो बरसात होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र के जारी किए गए मसौदे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन यानी 28,38,000 करोड़ रुपए देने की बात मानी। तेहरान को तत्काल $24 अरब यानी 2,27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1,13,000 करोड़ रुपए बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर की तरफ से जारी अगर ये मसौदा लागू हो जाता है तो फिर समझौते को ईरान के लिए लॉटरी माना जा सकता है। इसकी वजह जंग से भागने की अमेरिकी राष्ट्रपति की बेताबी है, जिसने ईरान के हौसलों को एक नई ताकत दे दी। शुक्रवार को ईरान की तरफ से जारी किए गए 14 सूत्रीय मसौदे को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने अमेरिका की हार बताना शुरू कर दिया है, भले ही बड़बोले ट्रंप कुछ भी कहें।
22: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
2: आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इसराइल के हमलों का सामना किया, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके सबको हैरान कर दिया। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि समझौते के तहत ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को न तो नष्ट करने की बात मानी है, न ही वो किसी और देश को ये देगा। बस वो परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर बातचीत करेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी।
22: Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them, or we'll take it.
2: ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 3 साल पहले तक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान को झुक गए।
22: They got 5, we got 5. That was the good news. The bad news is They also got $6 billion, right? And you say, how the hell, who would do a deal like that?
2: बाइडेन से पहले ट्रंप बराक ओबामा की ईरान के साथ डील की आलोचना करते थे। 2015 में हुए उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध स्वीकार किए थे। उसे अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 300 किलोग्राम से कम तक सीमित करना था और यूरेनियम संवर्धन का स्तर 3.67% तक रखना था। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक लगभग 90% संवर्धन से काफी कम है। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 करने पर सहमति दी। इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 16,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आज ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद ट्रंप उसे बातचीत से पहले ही 2,27,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में ईरान के साथ डील की कड़ी आलोचना शुरू हो गई।
0: That agreement that had been reached by President Obama actually resulted in Great Britain, France, Germany, South Korea, India, Japan, and thanks to the leadership from President Obama and his administration, China and Russia all engaged with Iran to limit their nuclear aspirations. Donald Trump then enters us into this reckless and costly war of choice. And the question that the American people are understandably asking is, how has this in any way made things better? Gas prices are through the roof. Iran is stronger now, not weaker, and the American people are less safe.
2: अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए बेताब थे। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान एक शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब हुआ है।
7: छोटा सा ब्रेक, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

के पास नहीं होगा परमाणु हथियार। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, शुक्रवार को जारी होंगे दस्तावेज। मोदी ने किया स्वागत। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। रक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। एग्जाम को लेकर गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा, लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों के अनुसार संघ बीजेपी की बैठक में नीट पेपर लीक और सीबीएसई का उठा मुद्दा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप की जांच शुरू। अयोध्या पहुंची एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी। ट्रस्ट में करेगी जांच, अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। और डीआरडीओ ने दुश्मन को दी टेंशन। लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एक ऐसी डील हुई जहां चमत्कार हुआ। एक पार्टी रातोंरात 20 सांसद की पार्टी बन गई। चमत्कार ये भी हुआ कि एक पार्टी जिसके अध्यक्ष से पूछिए